0: स्थान पर और क्यों किया था? अमृत मंथन के समय उच्च शवा घोड़ा किस कार उत्पन्न हुआ? उच्च शवा महर्षि शौनक आदि का प्रश्न सुन के उनसे अमृत मंथन की कथा कहने लगे। देवता लोग इकट्ठे होकर अमृत प्राप्ति के लिए सलाह करने लगे। उनमें भगवान नारायण और ब्रह्मा जी भी थे। नारायण ने देवता से कहा, देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करें, इस मंथन के फल स्वरूप अमृत की प्राप्ति होगी। देवताओं ने भगवान नारायण के परामर्श से मंदाकिनी को उखाड़ने की चेष्टा की। ये पर्वत मेघों के समान ऊंची चोटियों से युक्त 11,000 योजन ऊंचा और उतने से ही नीचे धसा हुआ था। जब सर्वश्रेष्ठ देवता पूरी शक्ति लगाकर उसे नहीं उखाड़ सके, तब उन्होंने विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी की तरफ प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनते श्री नारायण और ब्रह्मा जी ने शेष नाग को मंदराचल उखाड़ने के लिए प्रेरित किया। महाबली शेषनाग ने वन और वनवासियों के साथ मंदराचल को उखाड़ लिया। अब मंदराचल के साथ देवगण समुद्र तट पर पहुँचे और समुद्र से कहा कि हम लोग अमृत के लिए तुम्हारा जल मथेंगे। समुद्र ने कहा, यदि आप लोग अमृत में मेरा भी हिस्सा रखे तो मैं मंदराचल को घुमाने से जो कष्ट होगा वह सह लूंगा। देवता और असुरों ने समुद्र की बात स्वीकार करके कच्छप राज से कहा, आप इस पर्वत के आधार बनिए। कच्छप राज ने कहा, ठीक है, कहकर मंदराचल को अपनी पीठ पर ले लिया। अब यंत्र के समान यंत्र के द्वारा मंदराचल को घुमाने लगे। इस प्रकार देवताओं और असुरों ने मंदराचल की मथानी वासुकी नाग की डोरी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। वासुकी नाग के मुंह की ओर असुर और पूंछ की ओर देवता लगे थे। बार बार खींचे जाने के कारण वासुकी नाग के मुख से धुएं और अग्नि ज्वाला के साथ सांस निकलने लगी। सांस थोड़ी देर में मेघ बन जाती और मेघ थके मांदे देवताओं पर जल बरसाने लगते। पर्वत के शिखर से पुष्पों की झड़ी लग गई। पहाड़ पर वृक्ष आपस में टकरा कर उनकी रगड़ से आग लग गई। इंद्र ने मेघों द्वारा जल बरसवा कर उसे शांत किया। वृक्षों के दूध और औषधियों के रस चू चू कर समुद्र में आने लगे। औषधियों के अमृत के समान प्रभावशाली रस और दूध सुवन में मंदराचल की अनेक दिव्य प्रभावशाली मणियों को से चूने वाली जल के स्पर्श से ही देवता अमरत्व को प्राप्त होने लगे। उन उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का जल दूध बन गया और दूध से घी बनने लगा। देवताओं ने मत्ते मत्ते थक कर ब्रह्मा जी से कहा, भगवान नारायण के अतिरिक्त सभी देवता और असुर थक गए हैं। समुद्र मत्ते मत्ते इतना समय बीत गया परंतु अभी तक अमृत ही निकला। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप इन्हें बल दीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं मैं उन्हें बल दे रहा हूँ। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल को घुमाए, समुद्र को शुद्ध कर दे। भगवान के इतना कहते ही देवता और असुरों का बल बढ़ गया। वे बड़े वेग से मचने लगे। सारा समुद्र शुद्ध हो गया। इसी समय समुद्र से अनगिनत किरणों वाला शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वर्ण का चंद्रमा प्रकट हुआ। चंद्रमा के बाद भगवती लक्ष्मी और सुरा देवी निकली। उसी समय श्वेत वर्ण का उच्च शवा घोड़ा भी पैदा हुआ। भगवान नारायण के वक्षस्थल पर सुशोभित होने वाली दिव्य किरणों से उज्ज्वल कौस्तुभ मणि कल्पवृक्ष कामधेनु भी उसी समय निकले। लक्ष्मी सुरा चंद्रमा उच्च शवा ये सब आकाश मार्ग के देवताओं के लोक में चले गए। इसके बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए। वे अपने हाथ में अमृत से भरा श्वेत कमंडल लिए हुए थे। ये अद्भुत चमत्कार देखकर दानवों में ये मेरा है मेरा है ऐसा कोलाहल मच गया। तदनंतर चार श्वेत दांतों से युक्त विशाल इरावत हाथी निकला। उसे इंद्र ने ले लिया। तब समुद्र का मंथन किया गया। तब उसमें कालकूट विष निकला। उसकी गंध से ही लोगों की चेतना जाती गई। ब्रह्मा की प्रार्थना से भगवान शंकर नीले कंठ में धारण कर लिया। तभी से वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सब देखकर दानवों की आशा टूट गई। अमृत और लक्ष्मी के लिए उन्होंने बड़ा बैर विरोध और फूट हो गया। उसी समय भगवान विष्णु मोहिनी श्री अवेश धारण करके दानवों के पास गए। मूर्खों ने उनकी माया न जानकर मोहिनी रूपधारी भगवान को अमृत का पात्र दे दिया। उस समय वे सभी मोहिनी के रूप पर लट्टू हो रहे थे। इस प्रकार विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्य और दानवों से अमृत छीन लिया और देवताओं ने उनके पास जाके उसे पी लिया। उसी समय राहु दानव भी देवताओं का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। अभी अमृत उसके कंठ तक ही पहुंचा था कि चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद बतला दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत ही चक्र से उसका सिर काट डाला। और राहु का पर्वत शिखर के समान सिर आकाश में उड़कर गरजने लगा और उसका धड़ पृथ्वी पर गिरकर सबको कपाता हुआ तड़फड़ाने लगा। तभी से राहु के साथ चंद्रमा और सूर्य का पैर हो गया। विष्णु भगवान ने अमृत लाने के बाद अपनी मोहिनी रूप त्याग दिया और तरह तरह के घरावने अस्त्र शस्त्र से असुरों को डराने लगे। खारे समुद्र के तट पर देवता और असुरों का भयंकर संग्राम छिड़ गया। देवासुर संग्राम कहा जाता है इसमें। भांति भांति के अस्त्र शस्त्र बरसने लगे। भगवान के चक्र से कट कट कर कोई कोई असुर खून उगलने लगा। कोई कोई देवताओं के खड़क शक्ति और गदा से घायल होकर धरती पर लौटने लगे। चारों ओर से यही आवाज सुनाई पड़ती, मारो काटो दौड़ो गिरा दो पीछा करो। इस प्रकार भयंकर युद्ध हो ही रहा था कि विष्णु भगवान ने दो रूप नर और नारायण युद्ध भूमि दिखाए। नर का दिव्य धनुष देखकर नारायण ने अपने चक्र का स्मरण किया। भगवान नारायण के चलाने पर चक्र शक्रु दल ने घूम घूम कर कालाग्नि के समान सहस्र शस्त्रों का सहार करने लगे। देव शिरोमणि नर ने बाणों के द्वारा पर्वतों की चोटियां काट काट कर उन्हें आकाश मार्ग में बिछा दिया। सुदर्शन चक्र घास फूस की तरह दैत्यों को काटने लगे। इससे भयभीत होकर असुरगण पृथ्वी और समुद्र में छिप गए। देवताओं की जीत हुई। मंदराचल को सम्मान पूर्वक यथास्थान पहुंचा दिया गया।
1: जी तो श्रोताओं बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहे हैं और समुद्र मंथन की कथा अभी रागलेख दशी जी से हमने जानी कि किस तरह से देवताओं को अमृत मिला और ये सारी कथाएं बहुत सुंदर जो है इस महाभारत के अंतर्गत हम जान रहे हैं। आगे और भी कथाएं प्रसंग हैं जो हम जानेंगे रागलेख दशी जी से, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कथाएं प्रसंग जानते हैं। जी
0: उच्च सवा घोड़े को देखकर कधु ने वनिता से कहा, बहन जल्दी से बताओ इस घोड़े का किस रंग का है। नीता ने कहा, बहन ये अश्वराज श्वेत वर्ण का है, तुम इसे किस रंग का समझती हो। सधु ने कहा, अवश्य ही इस घोड़े का रंग सफेद है परंतु पूछ काली है, आओ हम दोनों इस विषय में बाजी लगाए। यदि तुम्हारी बात ठीक हो तो मैं तुम्हारी दासी रहूं और मेरी बात ठीक हो तो तुम मेरी दासी रहना। इस प्रकार दोनों बहने आपस में बाजी लगाकर दूसरे दिन घोड़े देखने का निश्चय करके घर चली गई। कधु ने वनिता को धोखा देने के विचार से अपने हजार पुत्रों को आज्ञा दी, पुत्रों तुम लोग शीघ्र ही काले बाल बनकर उच्च सभा की पूछ ढक लो, इससे मुझे दासी ना बनना पड़े। जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा ना मानी उसने उन्हें श्राप दिया कि जाओ तुम लोग अग्नि जलने दे के सर्प अग्नि जलकर भस्म हो जाओगे। कधु और वनिता ने दासी बनने की बाजी लगाकर बड़े रोष और आवेश में रात बिताई। उसी दिन प्रातःकाल होते ही निकट से घोड़े को देखने के लिए दोनों चल पड़े। सर्पों ने परस्पर विचार करके निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसलिए चलो हम लोग घोड़े की पूंछ को काली कर दें। ऐसा निश्चय करके उच्च सभा की पूंछ से बाल बनकर लिपट गए और जिसे काली जान पड़ने लगी। वे कधु और वनिता बाजी लगाकर आकाश मार्ग से समुद्र को देखते देखते दूसरे पार जाने लगे। दोनों ही दूसरे पार पहुँच कर नीचे उतर पड़े। उन्होंने देखा कि घोड़े का सारा शरीर तो चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है परंतु पूछ काली है। ये देखकर वनिता उदास हो गई। कद्दू ने उसे अपनी दासी बना लिया। समय पूरा होने पर माँ तेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़े ही उससे बाहर निकल आए। जनते ही आकाश में ऊपर उड़ने लगे। उस समय वैसे जान पड़ते थे माना दूसरा बड़वा नर ही हो। अग्नि के साथ जाकर देवता और ऋषियों ने गरुड़ की स्तुति की। ऋषियों की स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने कहा, मेरे भयंकर शरीर को देखकर जो लोग घबरा गए थे अब वे भयभीत ना हो, मैं अपने शरीर को छोटा और तेज को कम कर लेता हूँ। सब लोग प्रसन्नता पूर्वक लौट गए। एक दिन विनीता ने अपने पुत्र को पास बिठाया और कद्दू ने उसे बुलाकर कहा, मुझे समुद्र के भीतर नागों का एक दर्शनीय स्थान देखना है, वहां तू मुझे ले चल। और वनिता ने कद्दू को और गरुड़ जी ने माता की आज्ञा से सर्पों को अपने कंधों पर बिठा लिया। उनके अभिष्ट स्थान को चले। तीक्ष्ण गर्मी के कारण सर्प बेहोश हो गए। कद्दू ने इंद्र की प्रार्थना करके सारे आकाश को मेघ मंडल से आच्छादित कर दिया। वर्षा हुई, सब सर्प सुखी हो गए। मनोहर वन आदि उधर देख कर यथेष्ट उन्होंने विहार किया और खूब खेल कूद कर गरुड़ से कहा, तुमने तो आकाश में उड़ते उड़ते बहुत से सुंदर सुंदर द्वीप देखे होंगे, अब हमें किसी द्वीप ले चलो। करुड़ कुछ चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोच विचार कर अपनी माता से पूछा, माँ मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए। विनीता ने कहा, बेटा इन सर्पों के छल से मैं बाजी हार गई, और दुर्भाग्यवश अपनी सौट कद्रु की दासी हो गई। अपनी माता के दुख से वरुण भी बड़े दुखी हो गए। उन्होंने सर्पों से कहा, सर्पगण ठीक ठीक बताओ, मैं तुम्हें कौन सी वस्तु ला दूं, किस बात का पता लगा दूं, अथवा तुम लोगों का कौन सा उपकार कर दूं जिससे मैं और मेरी माता दासत्व से मुक्त हो जाएं। सर्पों ने कहा, गरुड़ यदि तुम अपने पराक्रम से हमारे लिए अमृत ला दो तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। सर्पों की बात सुनकर गरुड़ जी माता विनीता से कहा, माता मैं अमृत लेने के लिए जा रहा हूँ, इसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ खाऊंगा क्या। नीता ने कहा, बेटा समुद्र में निषादों की बस्ती है, उसे खाकर तुम अमृत ले आओ। स्मरण रखना, ब्राह्मण का वध कभी ना करना, ये सबके लिए अवध्य है। गरुड़ जी माता की आज्ञा के अनुसार उस दीप के निषादों को खाकर आगे बढ़े। गलती से एक ब्राह्मण उनके मुंह में आ गया, जिससे उनका तालू जलने लगा। उसे छोड़कर वे कश्यप जी के पास गए। कश्यप जी ने पूछा, बेटा तुम लोग सकुशल तो हो, आवश्यकता अनुसार भोजन तो मिल जाता है ना। गरुड़ जी ने कहा, मेरी माता सकुशल है, हम भी आनंद है, यथेष्ट भोजन न मिलने से कुछ दुख रहता है। मैं अपनी माता को दासीपन से छुड़ाने के लिए सर्पों के कहने से अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ। अब आप कोई ऐसी खाने की वस्तु बताइए जिसे खाकर मैं अमृत ला सकूँ। कश्यप जी ने कहा, बेटा यहाँ पर थोड़ी दूर पर एक विश्व विख्यात सरोवर है, उसमें एक हाथी और कछुआ रहता है। वे दोनों पूर्व जन्म में भाई थे, परंतु एक दूसरे के शत्रु हैं। अब वे दोनों एक दूसरे से उलझे रहते हैं। अच्छा, उनके पूर्व जन्म की कथा सुनो। प्राचीन काल में विभावसु नामक एक बड़े क्रोधी ऋषि थे। उनका छोटा भाई था तपस्वी सुप्रतीक अपनी धन को बड़े भाई के साथ नहीं रखना चाहता था, वह जितने बंटवारे के लिए कहा करता। विभावसु ने अपने छोटे भाई से कहा, सुप्रतीक धन के मोह के कारण लोग उसका बंटवारा चाहते हैं, और बंटवारा हो जाने पर एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं, और शत्रु भी उनके अलग अलग मित्र बन जाते हैं, और भाई भाई में भेद डाल देते हैं। तू भेदभाव के कारण धन अलग अलग करना चाहता है, तुझे हाथी की योनि प्राप्त होगी। सुप्रतीक ने कहा, मैं हाथी होऊंगा तो तुम कछुआ होगे। गरुड़ इस प्रकार दोनों भाई धन के लालच में एक दूसरे को शाप देकर हाथी और कछुआ हो गए। तुम जाकर उन दोनों भयंकर जंतुओं को खा जाओ और अमृत ले आओ। कश्यप जी की आज्ञा प्राप्त कर गरुड़ जी सरोवर पे गए। उन्होंने एक नख से हाथी को और दूसरे से कछुए को पकड़ लिया, और आकाश में ऊंचे उड़कर अलम्ब तीर से जा पहुंचे। सुवर्ण गिरी पर बहुत से देव वृक्ष लहलहा रहे थे। उनको देखते हुए भय से कांपने लगे, और कहीं उनके धक्के से हम टूट ना जाएं। उनको भयभीत देखकर गरुड़ जी दूसरी ओर निकल गए। उधर एक बड़ा सा वट वृक्ष था। वट वृक्ष ने गरुड़ जी को मन के वेग से उठते देखकर कहा, तुम मेरी 100 योजन लंबी शाखा पर बैठकर हाथी और कछुए को खा लो। जो ही गरुड़ जी ने उसकी शाखा पर बैठे तो ही वे चढ़ाकर टूट गए और गिरने लगे। गरुड़ जी ने गिरते गिरते शाखा को पकड़ लिया और बड़े आश्चर्य से देखा, उसमें नीचे की ओर सिर करके बालखिल्ले नामक ऋषिगण लटक रहे थे। गरुड़ जी ने सोचा, यदि शाखा गिर गई तो तपस्वी ब्रह्म ऋषि मर जाएंगे। अब उन्होंने झपट कर अपनी चोट से वृक्ष की शाखा पकड़ ली और हाथी और कछुए को पंजे में दबाया, आकाश में उड़ने लगे। कहीं भी बैठने का स्थान न पाकर वे आकाश में उड़ते ही रहे। इस समय उनके पंखों की हवा से पहाड़ भी कांप उठते थे। बालखिल्ले ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण वे कहीं बैठ ना सके। उड़ते उड़ते गंधमादन पर्वत पर गए। कश्यप जी ने उन्हें इस अवस्था में देख कर कहा, बेटा कहीं साहस का काम न करना, घर बैठना। सूर्य की किरण पीकर तपस्या करने वाले बालखिल्ले ऋषि ने क्रोध होकर कहीं तुम्हें भस्म न कर दे। पुत्र से इस प्रकार कहकर उन्होंने तप शुद्ध बालखिल्ले ऋषि से प्रार्थना की। तपोधनो, जरूर प्रजा के हित के लिए एक महान कार्य करना चाहते हैं, आप लोग इसे आज्ञा दीजिए। बालखिल्ले ऋषि ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर वट वृक्ष की शाखा छोड़ दिया, तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। गरुड़ जी ने वह शाखा फेंक दिया, पर्वत की चोटी पर बैठकर हाथी और कछुए को खाया। गरुड़ जी खा पी कर उस पर्वत की चोटी से ही ऊपर की ओर उड़े। उस समय देवताओं ने देखा कि उनके यहाँ भयंकर उत्पात हो रहे हैं। देवराज इंद्र ने बृहस्पति से पूछा, भगवान एकाएक बहुत से उत्पात क्यों होने लगे? इंद्र, तुम्हारे अपराध और प्रमाद से महाप्रबाल के लिए ऋषियों के तपोबल से वनिता नंदन गरुड़ अमृत देने के लिए यहाँ आ रहे हैं। वे अपनी शक्ति से हर साध्य कार्य को साध सकते हैं। इंद्र ने अमृत की रक्षकों को सावधान करके कहा कि देखो, परम पराक्रमी बक्षीराज गरुड़ यहाँ से अमृत ले जाने के लिए आ रहे हैं, सचेत रहो, वे बलपूर्वक अमृत न ले जाने पाओ। सभी देवता और स्वयं इंद्र अभी अमृत को घेर कर उसकी रक्षा के लिए डट गए। गरुड़ जी वहाँ पहुँचते ही पंखों की हवा से इतनी धूल उड़ाई कि देवता अंधे से हो गए और वे धूल से ढककर मूर्छा से मर गए। सभी रक्षक की आंखें खराब होने के डर हो गए। वे एक क्षण तक गरुड़ को देख भी नहीं सके। सारा स्वर्ग शुद्ध हो गया। चोर पंखों की चोट से देवताओं के शरीर जर्जरित हो गए। इंद्र ने वायु को आज्ञा दी, तुम इस धूल का पर्दा फाड़ दो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। वायु ने वैसे ही किया, चारों ओर उजाला हो गया। देवता उनका प्रहार करने लगे। धूल में उड़ते उड़ते गरज कर उनके प्रहार फैलिए और आकाश से भी ऊंचे पहुंच गए। देवताओं ने शस्त्रों के प्रहार से गरुड़ तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके आक्रमण को विफल देखकर गरुड़ की पंखों और चोटों की चोट से देवताओं की चमड़ी उधर गई और शरीर खून से लथपथ हो गया। वे घबरा कर स्वयं ही तितर बितर हो गए। उसके बाद गरुड़ आगे बढ़े। उन्होंने देखा अमृत के चारों ओर आग की लाल लाल लपटें उठ रही हैं। अब गरुड़ ने अपने शरीर को 8,100 मुंह बनाए और बहुत सी नदियों का जल पीकर उसे दहकती हुई आग पर उड़ेल दिया। अग्नि शांत होने पर छोटा सा शरीर धारण करके वे आगे बढ़े। सूर्य की किरणों के समान उज्जवल और सुनहरा शरीर धारण करके गरुड़ ने बड़े वेग से अमृत के स्थान में प्रवेश किया। उन्होंने वहाँ देखा अमृत के पास एक लोहे का चक्र निरंतर घूम रहा है। उसकी धार तीखी है, उसमें सहस्त्र अस्त्र लगे हुए हैं। यह भयंकर चक्र सूर्य और अग्नि के समान जान पड़ता था। उसका काम ही था अमृत की रक्षा। गरुड़ जी चक्र के भीतर घुसने का मार्ग देखते रहे। एक क्षण में ही उन्होंने अपने शरीर को संकुचित किया, चक्र के आरों के बीच में से भीतर घुस गए। अब उन्होंने देखा कि अमृत की रक्षा के लिए दो भयंकर सर्प नियुक्त हैं। उनकी दृष्टि से विष का संचार होता था। गरुड़ जी ने धूल झोंक कर उनकी आंखें बंद कर दी। चूचों और पंजों से मार मार कर उन्हें कुचल दिया, चक्र को तोड़ डाला और बड़े वेग से अमृत पात्र को लेकर वे उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत नहीं पिया, बस आकाश में उड़कर सर्पों के पास चल दिया। आकाश में उन्हें विष्णु भगवान के दर्शन हुए। गरुड़ जी ने मन में अमृत पीने का लोभ नहीं है ये जानकर भगवान उन पर प्रसन्न हो गए और बोले, गरुड़ मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, मन चाहे वस्तु मांग लो। गरुड़ जी ने कहा, भगवान एक तो आप मुझे अपनी ध्वजा में रखिए, दूसरा मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊँ। भगवान ने कहा, तथास्तु, मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ। गरुड़ जी ने कहा, मुझसे कुछ मांग लीजिए। भगवान ने कहा, तुम मेरे वाहन बन जाओ। गरुड़ जी ने कहा, ऐसे ही होगा, और कहकर उनकी अनुमति से अमृत लेकर यात्रा की। अब तक इंद्र की आंखें खुल चुकी थी। उन्होंने गरुड़ को अमृत पी जाते देखकर क्रोध में भरकर बजर चलाया। गरुड़ ने मजा हाथ होकर भी हंसते हुए कोमल वाणी से कहा, इंद्र जिनकी हड्डी से ये बजर बना है उनके सम्मान के लिए मैं अपना एक पंख छोड़ देता हूँ, तुम कभी अंत नहीं पा सकूंगी, मुझे कभी भी पीड़ा नहीं है। गरुड़ ने अपना एक पंख गिरा दिया। उसे देखकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ। सबने कहा, जिसका यह पंख है उस पक्षी का नाम सुपर्ण है। पक्षीराज, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें कितना बल है, साथ ही तुम्हारी मित्रता भी चाहता हूँ। गरुड़ ने कहा, देवराज आप अपनी इच्छा अनुसार हमारी मित्रता रहे, मैं मित्र के समान ही बतलाता हूँ। पर्वत वन समुद्र जल सहित सारी पृथ्वी को और इसके ऊपर रहने वाले आप लोगों को आपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम के उठ सकता हूँ। अब मेरी घनिष्ठ मित्रता स्वीकार कीजिए। यदि आपको अमृत की आवश्यकता ना हो तो मुझे दे दीजिए। आप ये ले जाकर जिन्हें देंगे वे हमें बहुत दुख देंगे। गरुड़ जी ने कहा, देवराज अमृत को ले जाने का एक कारण है, मैं इसे किसी को पिलाना नहीं चाहता हूँ। मैं इसे जहाँ रखूँ वहाँ से आप उठा ले जाइए। इंद्र ने संतुष्ट होकर कहा, गरुड़ उसे मुँह मांगा वर मांग लो। गरुड़ जी ने सर्पों की दुष्टता और उसके छल के कारण होने वाले माता के दुख का स्मरण हो आया। उन्होंने वर मांगा, ये बलवान सर्प भी मेरे भोजन की सामग्री हो। देवराज इंद्र ने कहा, तथास्तु। इंद्र से विदा लेने के बाद गरुड़ सर्पों के स्थान पर आए। वहीं उनकी माता भी थी। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, सर्पों से कहा, ये लो मैं अमृत ले आया, परंतु पीने में जल्दी मत करो, मैं इसे कुशों पर रखता हूँ, स्नान करके पवित्र हो लो फिर इसे पीना, स्नान करके पवित्र हो लो फिर इसे पीना। अब तुम लोगों के कथा अनुसार मेरी माता दासीपन से छूट गई क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी है। सर्पों ने स्वीकार कर दिया। जब सर्पों को सुंदरता से भरकर स्नान करने गए तब इंद्र अमृत कलश को लेकर स्वर्ग में चले गए। मंगल कृत्यों से लौटकर सर्पों ने देखा अमृत उस पर नहीं था स्थान पर। उन्होंने समझ लिया कि हमारी विनीता को दासी बनाने के लिए जो कपट किया था उसी का फल है। फिर ये समझ कर अमृत रखा गया था इसमें संभव है इसमें कुछ अंश लगा हो, सर्पों ने कुशों को चाटना शुरू कर दिया। ऐसे करते ही उनके जीव के दो टुकड़े हो गए। अमृत का स्पर्श होने से कुछ पवित्र

0: माना जाने लगा। अब गरुड़ कृत्य कृत्य होकर आनंद से अपनी माता के साथ रहने लगे। वे पक्षी राज हुए और उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई और माता सुखी हो गई।
1: जी श्रोताओं, बहुत ही सुंदर कथा हमने जानेंगे किस तरह से अपनी माता के लिए गरुड़ जो है अमृत का कलश लेने गए और उसमें वो सफल भी हुए और किस तरह से वो भगवान जी का वाहन बने, ये भी हमने जाना और ये पूरी कथा जो है हमने जानी इस महाभारत काव्य के अंतर्गत। तो श्रोताओं, इसमें ऐसी बहुत सारी कथाएं प्रसंग हैं जो हम जानते रहेंगे रागली खदासी जी से, लेकिन अभी जो वक्त है आपसे इजाजत लेने का हो चुका है। तो रागली खदासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी, तो श्रोताओं, आज के लिए कार्यक्रम आत्मदर्शन में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी कथाएं प्रसंग हम जानेंगे, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।
2: अभी न जाओ छोड़ कर,

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूँ आपकी कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ शिव पुराण, जिससे कि आप सबका कल्याण हो सके। तो दोस्तों, शिव पुराण का सुनवाने के लिए हमने अपने स्टूडियो में लीना जी को आमंत्रित किया हुआ है। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: दोस्तों, शिव का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता। परम ब्रह्म के इस कल्याण रूप की उपासना उच्च कोटि के सिद्धों, आत्म कल्याण कामी साधकों एवं सर्वसाधारण आस्तिक जनों सभी के लिए मंगलमय एवं सर्व सिद्धिदायक हैं। तो श्रोताओं, हम भी क्यों ना इस तरह से अपने जीवन की सारी सिद्धियां प्राप्त करें। क्यों, कैसे कि शिव पुराण की व्याख्या सुनकर। तो लीना जी, आपने जो पिछली एपिसोड में जो आपने वर्णन सुनाया था हमारे श्रोताओं को, कि ब्रह्मा जी ने कहा कि हिमालय सब सुनकर अपने परिवार वालों से कहने लगे कि सुमेरों, और परिवार कौन था, सारे पर्वत, सुमेरों पर्वत राजों सुनो, मुझे क्या करना चाहिए। पर्वत राजों ने कहा, अब क्या विचार करना है, इसका जन्म तो कल्याण के लिए ही हुआ है, इसे शिव जी को दे दीजिए। फिर हिमालय ने निर्णय लिया कि मैं अपनी कन्या शिव जी को ही दूंगा, सब कुछ मैंने सोच लिया है। तो आप सारे के सारे जो मंगल पर्वत राज थे और ऋषि मुनि थे, सबने कहा आप दाता हो और शिव जी भिक्षु, अब बताइए इससे बड़ा आपका सम्मान और क्या हो सकता है। सप्त ऋषियों ने जब ऐसा कहा और विश्वास दिलाया तो गिरिराज और मैना ने अपनी कन्या भगवान शिव को देने की सोच ली। तो उसके बाद सबने मिलकर शिव जी के पास गए और उनको कहा कि आप सभी देवों को आमंत्रित कीजिए और हिमालय अपनी पुत्री आपको देने के लिए तैयार है। अब आगे लीला जी, कैसे ये कथा बढ़ती है, क्या होता है, तो जरा हमें बताइए।
1: बिल्कुल, एक रोचक कहानी हम लोग सुन रहे हैं।
0: हाँ।
1: और इस रोचक कहानी में पार्वती और शिव के विवाह प्रस्ताव की चर्चा है।
0: हाँ जी, हाँ।
1: अब शिव पुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 37वां अध्याय शुरू हो रहा है और इस 37वें अध्याय में देखिए क्या होता है।
0: जी।
1: नारद उवाच, तात प्राज्ञ बदेद इदानीम सप्तर्षिषु गतेषु च किम आकर्षीद धम किम आकर्षित धमगिरी तन्मे कृत्वा कृपां प्रभो। कहते हैं हे प्राज्ञ, उन सात मुनियों के चले जाने पर हिमालय ने क्या किया। जो सप्तर्षि थे वो तो प्रस्ताव लेकर के गए थे हिमालय के पास, पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर के। तो अब वो लोग जब चले गए तब हिमालय ने क्या किया, कृपा करके कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अब ब्रह्मा जी सुना रहे हैं उस बात को, कहते हैं गतेषु तेषु मुनिषु सप्तसु अपि मुनीश्वर सारुन्धतीषु हिमवान यद आकर्षीद ब्रवीमि ते तत आमंत्रिय स्वभ्रातृन मेवार्दिन ससुत प्रिय महामना स मुमुदे हिमवान पर्वतेश्वर। कहते हैं ब्रह्मा जी की हे मुनिवर, अरुंधति सहित उन सप्तर्षियों के चले जाने पर हिमालय ने जो किया वह मैं तुमसे कह रहा हूँ। उसके बाद पुत्रों सहित मेरु आदि अपने भाइयों को आमंत्रित कर वह पर्वतराज हिमालय प्रसन्न हुआ। उसने प्रसन्न होकर अपने पुरोहित गर्गाचार्य से लग्न पत्री दिखवा कर शिव जी के पास उसे भिजवा दिया। देखिए उस समय लग्न पत्री भी चलती थी और लोग उसे मानते भी थे, आज भी चलती है लेकिन बहुत कम लोग उसे मानते हैं। लेकिन लग्न पत्री आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होता है, ये वर और वधु जो भी बनने वाले हैं भविष्य में उनके साथ क्या क्या हो सकता है और अगर नहीं मिलान होता है तो वो हर समय दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं भोग सकते, इसलिए ये जो है लग्न पत्री आवश्यक होती है कि दाम्पत्य जीवन का वो सुख भोग पाए, ऐसे उचित वर या वधु से विवाह हो सके, इसलिए लग्न पत्री।
0: जैसे लीना जी, आजकल ये देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर हमारे समाज में भी आधुनिक युग में कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, मंदिर में मैरिज कर रहे हैं। चलो मंदिर में तो पंडित सारे जो श्लोक हैं मंत्र हैं उनसे ही करवाएगा, या कहीं भी विवाह कर लेते हैं तो अग्नि को, कहीं भी अग्नि को साक्षी मान के कहीं भी निर्जन स्थान में कर लेते हैं। तो अब ये जो हमारी लग्न पत्रिका है या पहले से उनके नक्षत्र लग्न सब दिखवाए जाते हैं, तो और वो जो सारा का सब पत्रिका, उनकी जन्म पत्रिकाएं मिलवाई जाती हैं, गुण मिलवाए जाते हैं, वो उनका महत्व फिर क्या, मतलब क्या रह जाता है उन सब के लिए?
1: बिल्कुल महत्व तो नहीं रह जाता है, चाहे माने या नहीं माने। हाँ। अगर हम शास्त्र वचन मानते हैं तो शास्त्र को नेत्र कहा गया है। अगर शास्त्र वचन नहीं मानते हैं तो समझिए हमारे, हम अपनी आंखें ही बंद किए हुए हैं। और आंखें बंद करके जब आप रास्ते पर चलेंगे तो कहाँ गड्ढा है, कहाँ खाई है, कहाँ पर्वत है, कहाँ नदियां है, हम नहीं जान पाएंगे। और हम कहीं भी गिर सकते हैं। इसलिए आज के युग में आप देखेंगे कि दाम्पत्य संबंधों में वह मधुरता नहीं रह गई है जो होनी चाहिए। हाँ। एक ही छत के नीचे पति पत्नी रहते हैं लेकिन वह प्रेम नहीं दिखता, वह संगीत मधुर नहीं दिखता जो दाम्पत्य संबंधों में होना चाहिए। हाँ। और जो कोर्ट मैरिज करें या कोई भी मैरिज करें, लेकिन वो मधुरता तभी होगी जब हम एक दूसरे का मिला के स्वभाव का मिलान करेंगे। वास्तव में तमोगुणी लड़की है और सतोगुणी लड़का है तो फिर मिलान नहीं होगा।
0: हाँ।
1: अगर सतोगुणी लड़की है तमोगुणी लड़का है तब भी मिलान नहीं होगा, क्योंकि तमोगुणी लड़का मांस मदिरा खाएगा, सतोगुणी मांस मदिरा से परहेज करेगी, दोनों में लड़ाई झगड़े होंगे। ठीक उसी तरह लड़के और लड़की दोनों में सेम बातें हैं। तो इसलिए जो लग्न पत्री होती है उसमें गुणों का मिलान होता है।
0: तो अब ये भी देखने को मिल रहा है लीना जी समाज में कि सारे गुण भी मिले, लग्न पत्रिका भी लिखवाई, उसके बाद भी एक साल बाद ही उनका डिवोर्स भी हो गया, उनका तलाक भी हो गया। उसमें ना वर ने सोचा कुछ आगे के बारे में, ना वधु ने सोचा, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने।
1: इसका भी कारण ये है कि विवेक का अभाव रहता है।
0: हाँ।
1: दंपति के बीच में विवेक बहुत आवश्यक है, एक दूसरे पर विश्वास भी आवश्यक है और एक दूसरे के हितों के विषय में सोचकर आगे बढ़ना भी आवश्यक है। आप देखिएगा अधिकांश घरों में क्या होता है, शादी तो हो जाती है, लड़की लड़के के ससुराल को, लड़के के परिवार वालों को स्वीकार भी कर लेती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन लड़की के परिवार वालों को स्वीकार नहीं जब ससुराल करता है तो लड़की पर क्या बीतती है ये कोई नहीं सोचता
0: नहीं।
1: तो लड़की भी चाहती है कि उसके परिवार वालों को भी वही आदर वही सम्मान मिले जो वह अपने ससुराल के में सबको देती है।
0: हाँ।
1: चाहे वो ससुर हो ननद हो सभी जगह। हाँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि सभी लड़कियां ऐसी होती हैं, सभी लड़के ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन प्रायः आप देखिएगा कि बच्चियां जो भी होती हैं जिनकी भी शादी होती है वो स्वीकार कर लेती हैं और जैसे भी हो आदर करती हैं। लेकिन वहीं पर अगर बच्चियां चाहेंगी कि हम अपने मायके जाएं तो 10 बातें बताई जाती हैं कि अभी क्या करोगी, अभी तो आई थी, अभी तो ऐसा हुआ था। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए और ना ही लड़की की तरफ से होना चाहिए कि हर समय मायके मायके मायके करते रहें और मोबाइल फोन से चिपके रहें, तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमेशा विवेक से काम लेना होता है कि जितना आपको दिया जा रहा है उतना ही आप वापस भी दीजिए, तो दोनों के हृदय का मिलन होगा। हृदय से हृदय का जब तक मिलन नहीं होगा तब तक हृदय से हृदय का स्पंदन नहीं होगा और उसमें पुलकन नहीं उठेगी। जब पुलकन नहीं उठेगी, रोम रोम पुलकित ही नहीं होंगे तो घर में आनंद कैसे होगा। तो इसलिए विवेक आवश्यक है। ठीक है, प्रेम हृदय का, हृदय से प्रेम होना चाहिए। तो जब शिव और पार्वती की हम लोग बातें कर रहे हैं तो शिव और पार्वती में हृदय का हृदय से प्रेम, और ऐसा प्रेम अद्वितीय प्रेम है जो कि हमें कहीं

भिजवा दिया और प्रसन्न चित्त होकर अनेक प्रकार के फल पकवान तथा मिठाइयाँ भी भिजवाई तथा उन लोगों ने कैलाश में शिव जी के पास जाकर फल आदि सहित वह लग्न पत्रिका दी और शिव जी को तिलक किया। शिव जी ने भी उन सब का यथोचित सम्मान किया। उसके बाद वे हिमालय के पास लौट आए। अब कौन लौट आए? जो सप्त मुनि थे वो लौट आए। और दूसरी बात कि हिमालय ने अपने पुत्रों सहित मेरु आदि अपने भाइयों को आमंत्रित किया था और गर्गाचार्य से जनपत्री लिखवा कर उसे भिजवाया था अपने पुत्रों से, तो फिर वो सब दिए वहाँ जा कर के और शिव जी ने उन्हें ग्रहण किया। अब देखिए क्या होता है कि अपने लोगों का शिव जी ने विशेष प्रकार से सम्मान किया, ये बड़ी बात है। यह जानकर हिमालय मन में प्रसन्न हुआ। तब उसने प्रसन्न होकर अनेक देशों में स्थित अपने बंधुजनों को सुखद निमंत्रण भेजा। तब उसने आदर से विवाहोचित अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री का संग्रह करवाया, क्योंकि शादी ब्याह में तो समय लगता ही है और बहुत सारी चीजें देनी होती हैं। तो उसने संग्रह करवाया, हिमालय ने चावल तथा चूड़ों के पहाड़ लगा दिए, उसी प्रकार गुड़ चीनी नमक के ढेर लगा दिए, दूध दही तथा घी की बावड़ियां बना डाली। देखिए बावड़ी बना डालना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शिव पार्वती का विवाह था तो पूरे संसार से लोग आने वाले थे, तो अब किसी को वो मना तो कर नहीं सकते थे, तो इसलिए उसने बावड़ी बना दी। जौ गेहूं के आटे का संग्रह करा दिया, लड्डुओं पूड़ियों स्वस्तिकों चीनी के ढेर लगा दिए, अमृत तथा ईख के रसों से बावड़ियां भर गई, मक्खन आसव तथा अनेक प्रकार के पकवान तथा स्वाद युक्त रसों के ढेर लग गए, अनेक प्रकार के व्यंजन जो देवताओं तथा शिव जी के गणों के लिए बनाए गए थे, बहुमूल्य अनेक प्रकार के शुद्ध वस्त्र, अनेक प्रकार के मणि रत्न सोने चांदी से बने हुए आभूषण तथा पात्रों को विधि पूर्वक संग्रह करके शुभ मुहूर्त में हिमालय ने मंगलाचार आरम्भ कर दिया और पर्वत की स्त्रियाँ पार्वती का श्रृंगार करने लगी। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं और इसमें अतिशयोक्ति हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि युग पुरुष का युग स्त्री से विवाह हो रहा था, काल पुरुष का काल स्त्री से विवाह हो रहा था, तो होगा तो ऐसा ही। विवाह कोई साधारण मनुष्य का तो था नहीं, साधारण नर और नारी का था नहीं, ये प्रकृति का पुरुष के साथ संयोग था। और प्रकृति यानी संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण जगत, संपूर्ण माया के साथ सौंदर्य के साथ विराजमान थी और उन माया के मायापति उनसे मिलन के लिए आ रहे थे, उनका विवाह होने वाला था, प्रकृति का पुरुष से परमेश्वर से विवाह होने वाला था, तो ऐसा अचंभा ऐसा अद्वितीय तो होना ही था। कहते हैं कि मंगलम कर्तुम आरभे गिरिर्मंगल कृत दिने संस्कारम कार्यामासु पार्वत्या पर्वत स्त्रिय ता मंगलम मुदा चक्रुर्भूषिता भूषण स्वयं पुर द्विज स्त्रियो हृष्टा लोकाचारम प्रचक्रिरे सोत्सवम विविधम तत्र सुमंगलपुर सरम हिमालयो अपि हृष्टात्मा कृत्वाचारम सुमंगलम। अब कहते हैं मंगल ही मंगल था हर तरफ, क्योंकि मंगल पुरुष का मंगल स्त्री से विवाह हो रहा था, तो फिर मंगल ही मंगल क्यों नहीं होता। अब देखिए कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में हिमालय ने मंगलाचार आरंभ कर दिया और पर्वत की स्त्रियां पार्वती का श्रृंगार करने लगी। वे स्वयं अनेक आभूषणों से सुशोभित होकर मंगलाचार करने लगी और ब्राह्मणों की स्त्रियां भी उस लोकाचार में सम्मिलित हुई। वहां मंगलाचार के साथ हिमालय भी लोकाचार करने लगे। बंधुओं के आने से वह प्रसन्न हुआ। इसी बीच उसने दूसरे बंधु बांधवों को भी निमंत्रित किया। वे सब अपने स्त्री पुत्र नौकर चाकरों के साथ आए। हे देवर्षि, उन पहाड़ों के आने की चर्चा आदर से सुनो, मैं संक्षेप से शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कह रहा हूँ। अब देखिए अब पहाड़ों की चर्चा है। कवि जो है कौन है? लेखक इसके वेद व्यास है। वेद व्यास जो व्यास यानी कि व्यापक और व्यापक रूप से वो वर्णन कर रहे हैं। और पुराण का वर्णन कब किया गया है वेद व्यास के द्वारा? जब वो महाभारत लिख करके बहुत ज्यादा उद्विग्न हो गए थे, क्योंकि महाभारत में युद्ध की चर्चा थी और रक्तपात की चर्चा थी, हत्या मारकाट की चर्चा थी, तो वे बड़े उद्विग्न हो गए थे। तो उन उद्विग्न वेद व्यास को नारद जी ने कहा कि आप भक्ति का की गंगा बहाइए तो आपको आनंद आएगा। तो भक्ति की गंगा बहाने में भक्त को भी उतना ही आनंद आता है

0: जितना कि पाठकों को श्रोताओं को आनंद आता है। जैसे कि हमको आपको आनंद आ रहा है भक्ति रस में अवगाहन करने पर, अब श्रोता गण सुनेंगे तो उनको भी आनंद आएगा। हम भाव विभोर होकर के इसे पढ़ रहे हैं, भाव विभोर होकर के इसे सुन भी रहे हैं, और हमें लग रहा है कि वास्तव में शिव पुराण है तो क्या।
1: लीना जी, यह जो जिस प्रकार से यहाँ वर्णन किया जा रहा है पार्वती और शिव के विवाह का और तैयारियों का, तो ऐसा लग रहा है कि हम बैठे हैं और सामने ये सारा कुछ हो रहा है, सारा विवाह का वर्णन हो रहा है, विवाह की तैयारियाँ हो रही हैं और सारे सीन ऐसा लग रहा है कि हम लोग भी देख रहे हैं, हम भी शामिल हो रहे हैं। तो वो जो आनंद हम महसूस कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगी अपने श्रोताओं से कि हर व्यक्ति, हर श्रोता उस आनंद को महसूस करे, क्योंकि यह
0: अपूर्व दृश्य है,
1: अपूर्व दृश्य,
0: अभूतपूर्व दृश्य है, रोमांचक दृश्य है।
1: जी जी,
0: तो इस दृश्य का वर्णन वेदव्यास जी किस तरह से भाव विभोर होकर कर रहे हैं, यह हमें सुनना चाहिए। अब देखिए, पर्वतों के विषय में वो वर्णन कर रहे हैं। हम लोग कितने पर्वत का नाम जानते हैं, हिमालय है, अरावली है, सतपुरा है, सतपुरा के घने जंगल, अरावली के पर्वत है, सतपुरा के घने जंगल,
1: देखा तो सबने एक दो को ही
0: है, आल्प्स है,
1: नाम है,
0: तो बहुत सारे पर्वत सारे अगर पर्वत। हम नाम लेना चाहें तो बस गिन करके 10-15 पर्वत के नाम लेंगे। अब यहाँ वेदव्यास जी कितने पर्वतों का नाम ले रहे हैं, और हर पर्वत एक से एक बढ़कर, जिनके नाम हम जानते भी नहीं है, लेकिन उस समय ये पर्वत तो अवश्य होंगे, तभी उन्होंने नाम लिया है। अब देखते हैं किन किन पर्वतों का इन्होंने नाम लिया है। वो कहते हैं वेदव्यास जी कि आजगमु स स्त्रियो हिष्टा स सुता स परीक्षदा तदेव शृणु देवर से गिरिया गमन आद्रिता वर्णयामि समासेन शिव प्रीति विवृधय देवालय गृढ़ो ही दिव्य रूप धरो महान। अब वो देवालय पर्वत के विषय में बताते हैं। हिमालय तो है ही, अब देवालय पर्वत है। कहते हैं देवालय नाम के महान पर्वत दिव्य रूप धारण कर, अनेक रत्नों को धारण कर अपने समाज तथा परिवार के साथ आए। वे अपने साथ अनेक मणि तथा रत्न लेकर पहुंचे। अब देवालय पर्वत का वर्णन करने के बाद वो किसका वर्णन कर रहे हैं, मंदराचल, जिनका नाम हमने हमेशा सुना है मंदराचल। वो कहते हैं कि सुवेशा अलंकृता श्रीमान जगाम च हिमालयम नाना रत्न परिभ्राजत समाज सपरिच्छद नाना मणि महारत्न सारन आदा यत्नता। सुवेशा अलंकृत श्रीमान जगाम च हिमालयम मंदर सर्व सौभाड्य स नारी तनयो गिरो। अब वो कहते हैं कि श्रीमान मंदराचल सुंदर वेश धारण कर, अनेक रत्नों को धारण कर अपने समाज तथा परिवार के साथ आए। वे अपने साथ अनेक मणि तथा रत्न लेकर पहुंचे। श्रीमान मंदराचल सुंदर वेश धारण कर स्त्री पुरुष सहित हिमालय के घर पधारे। अब आम व्यक्ति में जिज्ञासा हो सकती है कि ये पर्वत थे तो आए कैसे, सुंदर वेश धारण कर कैसे आए, तो ये जिज्ञासा भी यही शांत हो जानी चाहिए कि वास्तव में ये पर्वत, ये नदियाँ, ये सभी आत्मावान थे, वो जो चाहे रूप धारण कर सकते थे। अब जैसे अगस्त मुनि की पत्नी है लोपामुद्रा, आज वो नदी के रूप में है दक्षिण भारत में, तो नदी क्यों बनी, क्योंकि उस जगह पानी नहीं था, कहीं भी पानी नहीं था, और अगस्त मुनि बड़े परोपकारी थे, मुनि थे, ऋषि थे, बहुत परोपकारी थे, उन्होंने अपनी पत्नी को नदी बना दिया। गंगा नदी बन गई, यमुना नदी बन गई, कोशी नदी बन गई।
1: आज भी लीना जी इनको माता की गंगा माता, यमुना मैया, माँ कहकर ही पुकारते हैं इनको।
0: जी, जी।
1: तो और ये जब हमारा महाभारत हम देखते हैं तो भीष्म अपने माँ गंगा को सामने ही जब प्रार्थना करते थे वो आती थी।
0: बिल्कुल,
1: तो साक्षात अभी भी अगर कोई बिल्कुल सात्विक मन से माँ गंगा को पुकारे, माँ यमुना को पुकारे, वो अपना उसी रूप में दर्शन देती हैं।
0: जी।
1: तो यह सत्य ही है कि पर्वत राज भी उस समय अपने अपने रूप में सब पधारे होंगे,
0: पधारे।
1: जी,
0: तो सबसे पहले उन्होंने देवालय का वर्णन किया, फिर मंदराचल का वर्णन किया। अब कहते हैं कि दिव्यात्मा तथा बुद्धि वाले, उदार बुद्धि वाले, अस्ताचल भी एक पर्वत है। देवालय, मंदराचल, अस्ताचल, अनेक प्रकार के उत्तम उपहारों को अपने साथ लेकर वहाँ गए। अत्यंत शोभा वाले उदयाचल, देखिए हमें नाम भी याद हो रहा है कि उदयाचल, अस्ताचल, देवालय, मंदराचल, तो प्रसन्नता पूर्वक उत्तम प्रकार के रत्नों तथा मणियों को लेकर वहाँ आए। महान सुखी उत्तम परिवार वाले मलय गिरिराज भी आदर पूर्वक आए। मलय पर्वत का तो नाम सभी जानते हैं, क्योंकि वहाँ से मलयालिन यानी कि मलय पर्वत से जो हवा, सुगंधित हवा बहती है, वो कहा जाता है कि मलय पर्वत से आई होगी। तो सुगंधित, क्योंकि वहाँ चंदन के वृक्ष हैं और चंदन के वृक्षों से टकरा करके जब हवा चलती है तो वो क्या होता है, सुगंधित हो जाता है। तो कहते हैं मलय पर्वत भी आए। भली भांति सज धज कर बहुत सी सेना को लेकर स्त्री सहित प्रसन्न चित दर्दुन नामक पर्वत शीघ्र वहां आए। मंदरा चलाए, अस्ता चलाए, उदया चलाए, देवालय आए, मलय पर्वत आए, दर्दुन आए। फिर हे तात, अनेक प्रकार से सुसज्जित प्रसन्न चित विशद पर्वत भी सपरिवार हिमालय के घर आए। भाग्यवान गंधमादन पर्वत भी स्त्री पुत्रों सहित प्रेम से हिमालय के घर आए। कहते हैं महेंद्र पर्वत श्रेष्ठ आजगाम हिमालयम सगण ससुत स्त्री को बहु शोभा समन्वित परियात्रो ही हृष्टात्मा मणि रत्ना करैर युतः सगण सपरिवार आययो हिम भूधरम। क्रौंच पर्वतराजो ही महाबल परिच्छद आजगाम गिरिश्रेष्ठ समुपायन आदृत। अब देखिए अनेक प्रकार की संपत्ति को लेकर करवीर पर्वत भी वहां पहुंचे और पर्वतराज महेंद्र भी हिमालय के घर निमंत्रण में पधारे। अपनी स्त्री पुत्र तथा सेवकों को तथा मणिरत्नों को साथ लेकर प्रसन्नचित पारयात्री भी आए। पर्वतराज क्रौंच भी अपने परिवार, सेवक तथा सेना के साथ हिमालय के घर पहुंचे। पुरुषोत्तम नामक शैल भी अनेक प्रकार के उपहारों को लेकर अपने समाज सहित आदर पूर्वक हिमालय के द्वार पर आए। नील पर्वत आनंद के साथ पुत्र, पुत्री, स्त्री तथा बहुत सा धन लेकर हिमालय के घर आए। त्रिकूट, चित्रकूट, वेंकट, श्रीगिरी, गोकामुख, गोकामुख कहा गया भारतवर्ष में स्थित ये एक विशेष पर्वत है, तो गोकामुख तथा नारद ये पर्वत भी हिमालय के घर पहुंच गए। पर्वतराज विंध्याचल भी स्त्री पुत्रों को साथ लेकर तथा अनेक प्रकार की उपहार की वस्तुओं को लेकर प्रसन्न होकर वहां आए। कालंजर नामक महापर्वत अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अनेक गणों के साथ हिमालय के घर आए। गिरिराज कैलाश भी, कैलाश जहां शिवजी वास करते हैं, क्योंकि शिवजी तो उस समय हिमालय पर वास कर रहे थे, तो गिरिराज कैलाश भी अत्यंत प्रसन्न होकर सबके ऊपर कृपा करते हुए वहां आए। ये सभी उन पर्वतों के अधिष्ठात्री देवता थे। हे नारद, दूसरे द्वीपों में भी जो जो पर्वत थे और इनके अतिरिक्त जो भारतवर्ष में पर्वत थे, वे सभी हिमालय के घर आए। अभी तो पर्वतों का वर्णन चल रहा है और कितने पर्वतों का वर्णन उन्होंने कर दिया। ये सारे पर्वत आए और जिन पर्वतों का वर्णन नहीं किया है वो भी हिमालय के घर आए। कैसे? कहते हैं कि दूसरे द्वीपों में भी जो जो पर्वत थे और इनके अतिरिक्त जो भारतवर्ष में पर्वत थे, वे सभी हिमालय के घर आए। हे मुनि, हिमालय द्वारा निमंत्रित सभी पर्वत प्रसन्नता पूर्वक शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए वहाँ आए। अब यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगी कि एक बार मैं गई थी यहाँ केदारनाथ। केदारनाथ से लौटते हुए एक जगह पड़ी जहाँ पर शिव पार्वती का विवाह हुआ था। अच्छा। सतयुग में विवाह हुआ था उनका, लेकिन आज तक वहाँ अग्नि जल रही है, ऐसा उन लोगों का कहना है। अच्छा। और अग्नि जल रही थी, बहुत बड़ा यज्ञ कुंड था और उसमें जो भी जाते हैं एक लकड़ी डाल करके आते हैं। अच्छा। तो हम लोगों ने भी डाला एक एक लकड़ी और वो सच में अग्नि वहाँ जल ही रही है। क्या सच है नहीं है ये तो जो ज्योतिषी हैं वो सब बताएंगे, लेकिन चूंकि हम लोग भक्ति करते हैं तो जो देख रहे हैं वही सत्य है। हम ऐसा सोचते हैं कि जो शंकराचार्य आदि ने वर्णन किया है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि शंकराचार्य के विषय में कहा गया है कि जब सारे मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गए थे और पता भी नहीं था, और ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म का प्रभाव अपने देश में था और वैदिक धर्म बिल्कुल ही समाप्त प्राय सा हो गया था, तो उस समय शंकराचार्य ने सब कुछ पुनर्जीवित किया, पुनरोद्धार किया। उसी पुनरोद्धार प्रकरण में उन्होंने देखा जहाँ महिष मर्दिनी ने महिषासुर का वध किया था, वो जगह भी उन्होंने देखी अपने ज्ञान
1: अंतरचक्षु से,
0: ज्ञान चक्षु से, और फिर उसका भी पुनरोद्धार किया। तो केदारनाथ से आने पर, नीचे आने पर बहुत सारे ऐसे मंदिर आपको मिल जाएंगे जिनका शंकराचार्य जी ने उद्धार किया है, आदि गुरु शंकराचार्य ने। और उसी में ये मंदिर भी पड़ा था रास्ते में, जहाँ पर हम लोगों ने भी यज्ञ किया।
1: ये भी हमारे श्रोताओं को ज्ञान मिल गया। तो लीना जी, क्योंकि एपिसोड्स को समाप्त होने का समय हो चला है, तो दोस्तों हम सब अपनी तरफ से और आपकी तरफ से मैं लीना जी का धन्यवाद करती हूँ। तो लीना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद,
0: धन्यवाद
1: कि आपने इतना अमूल्य रत्नों से, अमूल्य ज्ञान से हम सबको कृतार्थ किया। अब मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, क्योंकि अगले एपिसोड में पुनः हम लीना जी के साथ यहीं पर मिलेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

Radio 107.8 FM पर ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर 1।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। नमस्कार, मैं हूं प्रांगा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
1: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
0: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं। उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा है, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
2: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन है और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हरन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। मानस शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अमर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं आता। तो इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
0: बिल्कुल,
2: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है, तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते
0: हैं बिन बुलाए मेहमान,
2: जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में। तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं, उसके मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण हैं। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में लें तो कहा जाता है KP² LHBP अर्थात के फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, पी फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर पी फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, पी फॉर पीस, एल फॉर लव, एच फॉर हैप्पीनेस, बी फॉर ब्लिस और लास्ट पी पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
3: खुद के मन में क्या है
2: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
3: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है।
2: जी बिल्कुल, उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो फिर से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
3: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला।
2: तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही, तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियां आती है तब भी हम स्टेबल रहे, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है, जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया। और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का अशांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
3: बिल्कुल। और ये जितनी भी सात चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
4: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मरकर के स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहाँ मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
3: जी।
4: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग, अध्याय का नाम है, तो यहां पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूं तो भी मैं इनकम्प्लीट हूं। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है, उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है। जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा, तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने, पर नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है, अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को, तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकंड बाय सेकंड रिकॉर्ड हो रही है
3: जी।
4: और जब एंड ऑफ द डे, यानी जब मृत्यु आती है, तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहाँ अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ, डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो, तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं, तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
3: बिल्कुल।
4: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है, तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वही कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे, अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें, तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं, और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो, तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
3: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
2: कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिणे जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, मना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव, ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एकरस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से माना आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहां कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहां ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाएं आइस फैक्ट्री, मुख में लगाएं शुगर फैक्ट्री, अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री, अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो, और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है, उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं, तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देखो देख रही है चीजें उसमें आकर्षित, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट कि अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया कहाँ खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थिर प्रज्ञ स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है, जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे, उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी, और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया, तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है, और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं, उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं। अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
3: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
2: जी,
3: आपको बदलना पड़ेगा
2: जी।
3: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे,
2: जी,
3: आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली है, और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
2: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस्ड करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवाम्भस्सी माना। अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील मन व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है, वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं। 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्मसंयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे, जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना है, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं। लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं, इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है, उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
3: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ, जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए वीडियो मानवृष 107.8 FM पर। नमस्कार।
5: खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर 1।

गुड मॉर्निंग रेडियो मैरिव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती है बातें. और आज मैं आपके लिए जो प्रोग्राम लेकर के आई हूँ, जिसमें बहुत सारी बात करती हूँ, रेसिपीज लेकर के आती हूँ. और पिछले हफ्ते मैंने ना बात करी थी 2 ऐसी डिशेस की, और जो कि बहुत टेस्टी होती हैं, और वो है समोसा और जलेबी. इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है. कई लोग इसे जो है वो घर पे नहीं बनाते हैं, बाहर से लेकर के आते हैं. ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन जब आप घर पर बनाएंगे तो इसकी क्वालिटी और इसकी क्वांटिटी बहुत ही कमाल की आपको मिलेगी. इसी के साथ मैं आपको बता दूं, देखिए मैंने पिछले हफ्ते समोसे की बात करी थी और इसके बारे में आपको बताया था कैसे वो बनता है और कहां से आया, उसका इतिहास क्या है, सारी बातें हमने करी थी. आज मैं बात करने वाली हूँ जलेबी की. जी हाँ, अब देखिए हमारे इस सेगमेंट में, इस प्रोग्राम में ना, मैं जलेबी की आपसे बात करने वाली हूँ. इसके इतिहास के बारे में भी आपको बताऊंगी, कहाँ से शुरुआत हुई और आज कहाँ है, पहले क्या कहा जाता था और अब क्या कहा जाता है, ये सारी बातें मैं आपसे करने वाली हूँ. लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक तो बनता है. आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

0: सुनो हरदी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे।
1: कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: नौ बरस लंबी थी ना।

0: Dim tanana dir tanum tanana dir natim tanana dir tanum tanana dir natim tanana dir tanum tanana dir natim tanana dir tanum tanana dir tanana dir tanum dir tanana dir tanum.
1: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप. मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें. और आज है सैटरडे का दिन. मैं आपके लिए सैटरडे वाले दिन कमाल की टेस्टी रेसिपीज लेकर के आ जाती हूँ. और आज की हमारी जो टेस्टी बहुत ही कमाल रेसिपी है वो है जलेबी की. जी हाँ, अब देखिए अपने फेवरेट प्रोग्राम मेरा, आप जलेबी की बातें सुन रहे हैं ना, मजा ही आ जाता है. सुबह सुबह का टाइम है, सोचिए जरा ठंडी ठंडी हवा चल रही हो और अचानक किचन से धीमी धीमी मीठी चाशनी की खुशबू आने लगे. मैं सच बताऊं, दिमाग की ना बत्ती जलने के लिए ना किसी अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ती है. और ये जो खुशबू होती है ना, यही हमारी दिमाग की घंटियां बजा देती है. मैं आपको बता दूं कितनी कमाल टेस्टी ये रेसिपी हो सकती है. अब देखिए भारत एक ऐसी देखिए कंट्री है, एक ऐसा देश है जहाँ देखिए घूमने से लेकर खाने पीने तक आपको हर गली में एक नया स्वाद मिलेगा. और जब बात मीठे की हो और जलेबी का नाम ना, ऐसे कैसे हो सकता है भाई. दिल दिमाग पूरी बॉडी हमारी झूम उठती है जब जलेबी की बात आती है. और देखिए ये जो बातें हैं ना, सीधा दिल को छू जाती हैं. और आज का ये प्रोग्राम जलेबी, देखिए इसकी बातें मैं आज आपको बताने वाली हूँ कैसे बनेगी. तो अपनी जो रेडियो है अपना, उसकी वॉल्यूम बढ़ा लीजिए क्योंकि आपकी मनपसंद जलेबी कैसे बनेगी घर पर वो बताने वाली हूँ. लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के सातों दिन। बहुत सारी होती है बातें और आज है सैटरडे का दिन और आपके लिए कमाल की टेस्टी रेसिपी लेकर के आ गई हूँ। देखिए, जलेबी की मैं बात कर रही हूँ और जलेबी जैसे हम बिल्कुल अपना देसी समझते हैं लेकिन वो एक्चुअली में हमारे देश की है ही नहीं। जी हाँ, देखिए शौक बिल्कुल मैं तो ये गया क्योंकि जलेबी का असली इतिहास हमें मिडल ईस्ट यानी कि पर्शिया ईरान लेकर के जाता है। यहाँ इसे जो है वो जुल्बिया या इसे जो है वो जालाबिया कहा जाता था और 10th century के एक मशहूर अरेबिक कुक बुक यानी कि किताब अल तभी में इसका जिक्र बिल्कुल पाया जाता है और इसका बकायदा एक पूरा देखिए जिक्र है उस बुक में। और 14th और 15th century में जब पर्शिया ट्रेडर्स और बगदाद के जो कुक हैं वो इंडिया आए तो वो इस रसीले डिश को अपने साथ लेकर के आए। सोचिए जरा, जो डिश बाहर से आई थी आज वो हमारी थाली की जान बन गई है और इतनी टेस्टी रेसिपी। हाँ, ये बात अलग है कि इंडियन फ्यूजन उसका जरूर हुआ कि वो हमारे देसी फ्लेवर्स में वो जरूर आई, वो देसी कलर में या फिर वो एक जो टेस्ट है उसमें जरूर आई, लेकिन जो इसका देखिए जो इतिहास है वो यही कहता है कि बगदाद के कुक्स है या फिर ईरान के जो है वो ये मिडल ईस्ट से आई है ये डिश और बहुत टेस्टी है, बहुत कमाल है। चलिए इस डिश के बारे में आपको थोड़ा सा और बताऊंगी लेकिन उससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें मैं लेकर के आई हूँ आज प्रोग्राम, जिसमें रेसिपीज लेकर के आती हूँ। और आज की हमारी जो पहली हमारी रेसिपी और बहुत टेस्टी रेसिपी और वो है जलेबी की। अब देखिए एक बड़ा मजेदार फैक्ट आपको बताती हूँ, जब ये जुल्बिया यानी कि हमारी जलेबी और वहां की ईरान की या बगदाद की जो जुल्बिया है हमारे भारत पहुंची, तो हमारे देश के लोगों ने इसे नाम को थोड़ा सा इसके आसान बना दिया और मीठा बना दिया और ये बन गई हमारी अपनी प्यारी जलेबी। 15th सेंचुरी के संस्कृत टेक्स्ट में भी इसका जिक्र जो है वो जलावलिका इससे पाया जाता है, इसका नाम जो है जलावलिका इस नाम से पाया जाएगा आपको संस्कृत टेक्स्ट में, जिसका मतलब होता है वाटर वेव स्वीट यानी कि पानी की लहर जैसी मीठी। सोचिए जरा हमारे देश ने इसे एक ऐसा देखिए अपना इसे अपना बना लिया और इसमें अपनी देसी जो है एक भाई एक स्वाद डाल दिया, इसमें एक तड़का डाल दिया, इसमें एक फ्लेवर डाल दिया जो आप भूल ही नहीं सकते। कभी आपके साथ हुआ है कि आपने कोई नए तरीके का फ्यूजन जलेबी ट्राई किया हो, कहीं आप गए हो? क्योंकि देखिए कई सारे लोग हैं भाई जो ऐसे ट्राई करते हैं और मैंने भी एक होती नॉर्मल जलेबी, केसर जलेबी भी आती है, रोज वाली जलेबी भी आती है, कई सारी अलग अलग फ्लेवर्स की आती हैं। अगर आपने भी कोई ऐसी अलग सी ट्राई की है तो मुझे जरूर बताइएगा, नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। फिलहाल कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लव।

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के।

जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

प्यासा मुसाफिर नदी किनारे पानी पीने आया। महुआ को देखते ही उस पर रीझ गया। नादान महुआ भी उसे दिल दे बैठी। जंगल की आग की तरह गांव में फैल गई उनकी प्यार की बात। सौतेली माँ भला कैसे देख सकती थी उनका सुख। उसने महुआ को एक सौदागर के हाथ बेच दिया। रोती छटपटाती महुआ चली गई सौदागर के साथ। बिछड़ गई जोड़ी। महुआ का प्रेमी आज भी जैसे रोता है।

0: साधु नेता।
1: इस क्या कहती हैं आप?
0: मैं सच कहती हूँ, तुम तो मेरे गुरु हो। हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है कि एक अक्षर सिखाने वाला गुरु और एक राग सिखाने वाला।
1: आप शास्त्र पुराण भी जानती हैं?
2: मैंने क्या सिखाया है आपको?
0: क्यों नहीं सिखाया ये गीत?

0: दत्तात्रेय जैन, अब ये गीत हमसे नहीं गाया जाएगा।
1: क्यों?
0: इससे बड़ी आप कोई क्या गा सकता है? आपने तो जान डाल दिया इस गीत में।
2: वेलकम बैक, रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें। मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ प्रोग्राम। जी हाँ, देखिये रिचार्ज मॉर्निंग में आज बात करें सैटरडे वाले दिन रेसिपीज की। आज की हमारी रेसिपी है जलेबी। जी हाँ, देखिये भारत को ऐसी ही नहीं, देखिए इसे विविधता का देश कहा जाता है। हमारे यहाँ हर फेस्टिवल और सीजन का एक अपना स्पेशल मेन्यू होता है। अब देखिए, अगर दशहरा हो या इंडिपेंडेंस डे हो या रिपब्लिक डे हो, हलवाई की दुकान पर लगने वाली वो लंबी भीड़ जलेबी के लिए खड़ी जरूर रहती है। स्ट्रीट फूड हमारे सिटीज की लाइफ लाइन होती है। सोचिए जरा, जब पूरा परिवार एक साथ

कर गरम गरम जलेबी और भाई इसके साथ समोसे खाता है ना तो स्वाद डबल हो जाता है। ये खाना हमारे त्योहारों की रौनक बढ़ाता है। और आप मुझे जरूर बताइएगा, व्हाट्सएप कीजिए 8013781078 पर कि आपकी सबसे क्रेजी जलेबी मेमोरी कौन सी है। भाई मैं अपनी बताऊं तो मुझे याद है कि एक बार देखिए हुआ ये कि घर पे कुछ खाना नहीं था, अब क्या खाएं क्या खाएं, और एकदम से मेहमान खुद आए और अपने साथ जलेबी और समोसा लेकर के आ गए। और भाई इतना मजा आया, मेहमान नवाजी तो हुई लेकिन उन्हीं के भाई खाने पीने से जो वो लेकर के आए। लेकिन जब देखिए जब आप जलेबी और समोसा घर पर बनाएंगे ना तो उसका स्वाद बहुत टेस्टी होता है और कितनी मर्जी आप खा लीजिए। अच्छा जब कोविड आया था ना, जब सेकेंड वेव आई थी, जब तब तो काफी ज्यादा लोग जो है वो चिंतित हो गए थे, लेकिन जब फर्स्ट वेव आई थी कई सारे लोगों ने ना अपने घर पर कुकिंग करनी शुरू करी थी, भाई मैं भी उनमें से एक थी। और चाहे हम डालगोना कॉफी बनाए या फिर जलेबी बनाए, हमने जलेबी बड़ी बनाई घर पर, जलेबी बनाई या फिर घर पर घेवर बनाया, बड़ी सारी चीजें करी थी। वो फर्स्ट वेव की बात है जब तुरंत लॉकडाउन लग गया था और क्या करें समझ नहीं आता था, तो भाई सबसे पहले जो चीजें बनाई थी तो वो यही सब थी। कभी लड्डू बने, कभी पेड़े बने, भाई हलवाई की दुकान बंद हो जाए लेकिन घर पर सब हलवाई बन गए थे। तो देखिए अगर आपकी भी ऐसी कोई मेमोरी है तो जरूर बताइएगा, नंबर बहुत ही आसान है 8013781078। फिलहाल कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए ओनली ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें. इसी के साथ वक्त आपको बता दूं ये बताने का, अगर आप फरीदाबाद से बाहर जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि रेडियो मैंने रचना के साथ कैसे जुड़ना है, तो बस आपको क्या करना है, हमारा इंटरनेट ऐप डाउनलोड करना है, जिसको डाउनलोड करने के लिए आपको अपने एंड्रॉयड या मोबाइल फोन लेना है और उसके बाद उसके प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे जाना है, सर्च बॉक्स में लिखना है रेडियो मानव रचना और जल्दी से झटपट से आपको डाउनलोड करना है, जिसके बाद ढेर सारे पॉडकास्ट एक्सपर्ट की एडवाइस और बहुत ही कमाल के सुपर डुपर हिट गाने आप सुन सकते हैं वर्ल्ड में कभी भी कहीं से भी. तो बस देर किस बात की, डाउनलोड कीजिए ऐप और हमारे और करीब आ जाइए और बहुत सारी भाई अपडेट्स आपको मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ज्यादा अपडेट्स और जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं विद द नेम रेडियो मानव रचना. चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती है बातें. इसी के साथ आपको बता दूं

0: अभी लेकर के आई हूँ आपके लिए प्रोग्राम। सैटरडे का दिन है आज और बहुत सारी हो रही है बातें। जलेबी की बात मैं कर रही हूँ। देखिए, जब जलेबी की बात आए ना तो मुंह में पानी तो आ ही जाता है, लेकिन देखिए कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कभी कि आप रास्ते से जा रहे हो और अचानक से दुकान से आने वाली जो मीठी चाशनी खुशबू आपको सीधा आपके बचपन में ले जाए। मुझे याद है संडे की सुबह पापा जब मतलब घर पे रहते थे और अखबार पढ़ रहे हैं और सडनली प्लान बनता था, अच्छा जो सबसे टेस्टी जो जलेबी है जो मुझे याद है, अगर आप घर पर नहीं बना रहे हैं तो पहाड़गंज की जो जलेबी है ना बहुत फेमस है, और हर संडे सुबह सुबह जाके वहां से इतनी दूर से जलेबी लेकर के आना, मतलब ऐसा लगता था जैसे वो ना बहुत रेयर होता था। ओकेजनली वो आती थी और जब भी वो आती थी तो लगता था वाह कमाल हो गई। और वहां की जलेबी सच में मतलब बहुत टेस्टी मानी जाती है, बहुत कहा जाता है, तो जरूर आप ट्राई कीजिएगा कभी और घर पर बनाने की भी कोशिश कीजिएगा। और मैं आपके लिए देखिए रेसिपी तो लेकर के आती रहती हूँ। और एक स्पेशल हमारे पास मैसेज भी आया है ऋतु जी का, फरीदाबाद से लिखती है साक्षी, घर पर जब भी जलेबी बनाते हैं वो कुरकुरी नहीं बनती है, नरम हो जाती है। डोंट वरी रितु जी, जलेबी बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से मेल्टेड चाशनी से भरी बिल्कुल होगी। मैं आपको देखिए बिना देर के इंस्टेंट जो हलवाई जैसी टेस्टी कुरकुरी जलेबी रेसिपी है ना वो स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कैसे आप इसे बना सकते हैं, और किसी अवन या तंदूर की आपको जरूरत नहीं होगी। और बस एक डायरी और पेन बिल्कुल तैयार रखिए, नोटपैड अपना बिल्कुल तैयार रखिए, क्योंकि मैं आपको इस ब्रेक के बाद बताने वाली हूँ कैसे आप घर पर टेस्टी रेसिपी जलेबी की बना सकते हैं जो कि बहुत टेस्टी हो। थैंक यू रितु जी, आपने ये सवाल बिल्कुल पूछा, क्योंकि कई लोग देखिए ये कहते हैं कि जब भी जलेबी बनाते हैं वो सॉगी हो जाती है, बहुत सॉफ्ट हो जाती है, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए इसको एक तरीका होता है कि वो सॉफ्ट ना हो और जैसे हलवाई जैसी क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल चाशनी से भरी हुई, और वो भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब भी जलेबी बनाते हैं चाहे चाशनी में वो डाल भी दें लेकिन फिर भी वो चाशनी जो है वो इतनी ज्यादा क्रिस्पी हो जाती है जो जलेबी है कि चाशनी बाहर ही रह जाती है और अंदर से वो खोखली हो जाती है और साथ ही बिल्कुल फीकी हो जाती है। तो इसके बारे में भी मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानवराज नाउ 107.8 एफएम, फील गुड फील लाइव।
1: ना इज्जत की चिंता ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन।
2: गुरुदेव यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए।
1: हाँ गुरुदेव, ना इज्जत

मुद्रा बन के हम सन्यासी, काम है चलते रहना, मौका है तकदीर बना लो।

छोटा जूठ संग है महाराज पधारे, चिमटा चरस चिलम और चेले साथ साथ है सारे। टिकटे लेकर भी गाड़ी में खड़े शरीफ बेचारे, और ये देखो भगवान के चमके पड़े हैं।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन. बहुत सारी होती है बातें. इसी के साथ ना मैं आपके लिए कमाल की टेस्टी रेसिपी लेकर के आ गई. और आज की हमारी रेसिपी है जलेबी की. पिछले हफ्ते हमने बात करी थी समोसे की, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत कमाल होता है. तो अब ये शाम की चाय को या सुबह के नाश्ता अगर प्लेट में बिल्कुल कुरकुरी गरम और रसीली जलेबी अगर आपको मिल जाए ना, तो मजा ही आ जाता है. अच्छा मैं आपको बता दूं, वैसे तो ये इसका जो ओरिजिन है वो मिडिल ईस्ट यानी कि पर्शिया का है, जहां इसे जुल्बिया कहते थे. इंडिया में आकर ये हमारे त्योहारों और संस्कृति का सबसे मीठा हिस्सा बन गया. और देखिए इसको बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लीजिए. 1 कप मैदा, 1/4 कप दही, और ये थोड़ी सी खट्टी होनी चाहिए. बेकिंग पाउडर लेना है 1/2 टीस्पून, और इसको आप ले सकते हैं या फिर इनो जो होता है वो भी आप ले सकते हैं, 1 टीस्पून ले सकते हैं. और इससे इंस्टेंट फर्मेंटेशन होती है. इसी के साथ आपको लेना है कॉर्नफ्लावर, या 1 टेबलस्पून आप घी ले सकते हैं. मैं कहूंगी थोड़ा कॉर्नफ्लावर ले लीजिए, एक्स्ट्रा क्रंच इससे आता है. ऑरेंज फूड कलर 1 पिंच आप ले सकते हैं. नहीं भी चाहते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आपको बिल्कुल वैसा ही मार्केट जैसा कलर चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा आप ये जो ऑरेंज कलर है वो ले सकते हैं. चीनी लेनी है आपको, 1.5 कप चीनी लेनी है. और इसी के साथ साथ पानी लेना है 1 कप, और ये सिरप के लिए होगा. और इसी के साथ साथ इलायची पाउडर लेना है 1/2 टीस्पून, केसर लेने हैं 4 से 5 धागे, और ऑयल लेना है फ्राई करने के लिए. तो आप जैसा भी, अगर रिफाइन या फिर ऑलिव ऑयल जैसा भी ठीक समझे आप वो ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे. इसी के साथ देखिए अब बात करूंगी मैं कि इसकी विधि क्या है, कैसे आप इसे बना सकते हैं घर पर, वो भी बहुत ही जल्दी से, झटपट से. लेकिन उससे पहले लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. Feel good, feel live.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ आपको बता दूं, अभी मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए प्रोग्राम में वही इतनी टेस्टी रेसिपी जलेबी की लेकर के आई हूँ। अच्छा, जब भी जलेबी की बात होती है ना तो मुंह में पानी आ जाता है। तो जलेबी बनाने के लिए ना सबसे पहले आपको जल्दी से नोट डाउन करनी है, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ विधि क्या है। तो आपको चाशनी बनानी है, सबसे पहले 1 कप पानी में 1.5 कप आपको चीनी और 1 कप आपको जो पानी है वो डाल देना है एक बड़े बर्तन में लेके एक पैन में। इसके बाद इसको जो है ढककर आपको उबलने के लिए आपको रख देना है। अब इसमें आपको इलायची पाउडर और केसर डालना है, और इसमें जो है हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। बस पानी को 5 से 6 मिनट के लिए आपको उबलने के लिए रख देना है, एकदम स्टिकी, जब ये चिपचिपी हो जाए इसका जो देखिए थोड़ा सा टेक्सचर है वो जो थोड़ा सा हनी जैसा हो जाए, तो गैस आप बंद कर दीजिए और इसे साइड में रख दीजिए। अब हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है, बिल्कुल जल्दी से झटपट से चाशनी आप साइड रख दीजिए। अब बनाएंगे हम बैटर। एक मिक्सिंग बोल में आपको मैदा, कॉर्नफ्लोर और दही ऐड करनी है, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक स्मूथ और थिक बैटर आपको बना लेना है। और ये जो बैटर है बिल्कुल इसकी रिबन कंसिस्टेंसी जो है ये होनी चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल एकदम अच्छे से आना चाहिए। अब इसमें बेकिंग पाउडर या पीनो ऐड कर दीजिए और हल्के हाथ से इसे आप एक डायरेक्शन में ही मिक्स कीजिएगा। याद रखना है एक डायरेक्शन में, क्योंकि वो अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाएगा और आपका इंस्टेंट बैटर जो है ये रेडी हो जाएगा। अब एक देखिए क्या करना है, इस बैटर को आपको एक केचप की बॉटल में जो है वो शिफ्ट कर देना है। जलेबी जो है या फिर जलेबी का जो क्लॉथ आता है या फिर जो पाइपिंग बैग होता है उसमें आप शिफ्ट कर दीजिए। इसके बाद आपको एक फ्लैट बॉटम वाली कढ़ाई लेनी है जिसका तला बिल्कुल फ्लैट हो, वो लेनी है। और उसके बाद जो घी है या तेल है जिसमें भी आप बना रहे हैं, जिसमें आपको ठीक लगे भाई, वो उसमें डाल देना है और फ्लेम को मीडियम रखना है। अब बॉटल को आपको गोल गोल घुमाते हुए जलेबी का शेप उसमें डालना है और अंदर की तरफ लॉक कर देना है। दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक आपको इसे फ्राई करना है, और उसके बाद गरम गरम जलेबी को निकालकर तुरंत हल्की गुनगुनी चाशनी में आपको डाल देना है। सिर्फ 30 से 40 सेकंड के लिए आपको डिप करना है और फिर निकाल लेना है। आपकी ये जो रसीली जलेबी है बिल्कुल रेडी हो गई है। याद रखें, जब भी आप जलेबी बनाएंगे तो उसे पतला बनाइएगा, जितना कोशिश कीजिए पतली बनेगी तो अच्छी बनेगी। जो मोटी होती है देखिए उसमें कोशिश कीजिएगा घर पे पतली बने तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो कुरकुरी बनती है। ज्यादा मोटी थोड़ी सौगी हो जाती है और उसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो पतली बनाएंगे तो अच्छी बनेगी और खाने में भी टेस्टी लगेगी। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कुछ और कुकिंग टिप्स भी आपको जरूर दूंगी। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो बैंड रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ मैं बात कर रही हूँ आज जलेबी की और बहुत कमाल टेस्टी जलेबी की रेसिपी बता रही हूँ। अच्छा कुछ कुकिंग टिप्स भी आपको दूंगी। चाशनी ना बहुत ज्यादा गर्म होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा ठंडी होनी चाहिए। अगर चाशनी ठंडी होगी तो जलेबी का रस नहीं सोखेगी और अगर बहुत ज्यादा गर्म होगी तो जलेबी को नरम बना देगी। रितु जी यही आपकी थोड़ी सी गलती हुई होगी और इसी वजह से आपकी जो जलेबी है बिल्कुल सौगी हो गई। और देखिए अगर जलेबी बनाते वक्त उनका शेप फैल रहा है तो उसका मतलब बैटर पतला है। उसमें आप 1 से 2 चम्मच मैदा मिलाकर अच्छे से मिक्स कर सकते हैं और ताकि उसकी शेप जो है बिल्कुल परफेक्ट आ जाए। इसी के साथ जलेबी को हमेशा फ्लैट बॉटम वाले पैन पर ही आप फ्राई करें। नॉर्मल राउंड कढ़ाई में जलेबी जो है एक के ऊपर एक जो है वो आ जाती है और शेप उसकी जो है वो खराब हो जाती है, इसलिए फ्लैट बॉटम वाली जो पैन होता है उसके लिए आपको मैंने कहा था, तो इसलिए वो जरूरी है। इसी के साथ साथ देखिए इंस्टेंट एनर्जी आपको इससे मिल जाएगी, मूड बड़ा अच्छा हो जाएगा जब आप जलेबी खाएंगे तो, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। बस याद रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं, जितनी क्वांटिटी मतलब थोड़ा ही खाएं लेकिन अच्छे से खाएं। और भाई घर पे बनाएंगे तो कमाल तो बनेगा ही, मेहमानों को भी खिलाएं और बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी होती है तो भाई मज़े ही आ जाते हैं। घर पे बच्चों को पसंद आती है तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, अब जब भी बारिश का मौसम हो घर पे बनाइए समोसा जलेबी और मज़ेदार रहेगा। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के साथ दिन बहुत सारी होती हैं बातें. और इसी के साथ वक्त वक्त वक्त ये जो वक्त है ना ये हो चला है आपसे इजाजत लेने का. और ये वक्त कहता है कि साक्षी अब मुलाकात जो है ना वो होगी अभी नहीं लेकिन अगले हफ्ते ये जो प्रोग्राम है रेसिपी जो है वो लेकर के आती हूँ. लेकिन उससे पहले अभी कुछ देर में फिर से आने वाली हूँ आपके लिए प्रोग्राम सफरनामा लेके 11 बजे से लेकर सुबह और दोपहर 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ. और बड़ी कमाल की खूबसूरत जगह पर आपको घूमने के लिए लेकर के जाती हूँ. और आज की इतनी अच्छी जगह आपको लेकर के जा रही हूँ ना कि आप कहेंगे वाह साक्षी क्या जगह है हमें तो पता ही नहीं था. भाई पता होता भी है तो मतलब उसको अंदर से हम नहीं जान पाते एक्सप्लोर नहीं करेंगे. कुछ ऐसी जगहों के बारे में बात करूंगी एक ऐसी जगह के बारे में जो अनएक्सप्लोर्ड है अभी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है लोगों ने तो वो बताऊंगी. फिलहाल आप कहीं मत जाइए बस हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव 107.8 FM. फील गुड फील लाइफ बाय बाय टेक केयर.

रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मैं हूं दीक्षा आपके साथ और प्रोग्राम ग्रीन ग्रह में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसा कार्यक्रम जिसका उद्देश्य है अपने पर्यावरण, अपनी इस पृथ्वी का ख्याल रखना, उसके खोए हुए अस्तित्व को वापस पहचान दिलाना। खोया हुआ अस्तित्व मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जिन इलाकों में आप और हम रहते हैं, कहलाने को वो दिल्ली NCR के सबसे आगे बढ़ते हुए इलाके हैं, जहां पर महंगी गाड़ियां, बड़ी इमारतें और बड़ी चौड़ी सड़कें और एक्सप्रेसवेज दिख जाते हैं। लेकिन इनके पीछे की एक सूरत होती है जो आपके और हमारे घरों से हर रोज बाहर निकलता हुआ कूड़ा होता है, वो कूड़ा जो धीरे धीरे धीरे धीरे इकट्ठा होता है। हर सुबह लगभग 7 से 11 बजे के बीच हमारे घर एक कूड़ा इकट्ठा करने वाला व्यक्ति आता है, जो घरों से कूड़ा इकट्ठा करके लेके जाता है और अपनी एक गाड़ी में डाल देता है। सभी के घर का अमूमन यही एक रूटीन होता है। लेकिन इस कूड़े को आगे जाकर क्या किया जाता है? आपको लगता होगा कि ये कूड़ा यूं ही डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है या इसे सेग्रीगेट किया जाता है, यानी इसको अलग अलग किया जाता है। पर अगर आप कूड़ा अलग अलग करके नहीं दे रहे हैं तो ये कूड़ा एक बड़े पहाड़ का रूप ले लेता है। वो पहाड़ जो आपको दिल्ली में भी दिखा, वो पहाड़ जो आपको फरीदाबाद से गुड़गांव जाते हुए बंदवाड़ी के रूप में भी दिखा। बहुत सारे लोगों को दूर से ये पहले अरावली की पहाड़ी ही दिखती थी, लेकिन जब पास जाते थे तो एक अजीब सी स्मेल आती थी। ऊपर चील मंडराती हुई दिखती थी और बड़े बड़े ट्रक इसके ऊपर चल रहे होते थे जो कूड़ा फेंकने के लिए जाते थे। हाल ही में बंदवाड़ी के इस लैंडफिल को बंद कर दिया गया है, लेकिन सन 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी और यहां पर हर रोज हजारों टन कूड़ा पूरे फरीदाबाद शहर का पहुंचता है। मैं आज बंदवाड़ी के बारे में बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम ग्रीन ग्रह का उद्देश्य ही यही है कि हम वेस्ट को सेग्रीगेट करके सही तरीके से डिस्पोज करने का कुछ माध्यम जाने, कुछ तरीका जाने और अपने इस शहर को थोड़ा सा बेहतर रूप दें। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन का, साथ ही इको क्लब का और PTC फाइनेंस लिमिटेड का, जो हमारे इस कार्यक्रम की श्रृंखला में हमारा साथ दे रहे हैं। अगर बंदवाड़ी की बात की जाए तो बंदवाड़ी शुरुआत से ही एक लैंडफिल नहीं था, ये एक अच्छा खासा गांव था जो फरीदाबाद और गुरुग्राम के बॉर्डर से मिलता है। अरावली की पहाड़ियों में एक बहुत ही अच्छा सा गांव रहा है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव अरावली हिल्स में बसा हुआ गांव रहा है, जहां पर बहुत सालों से लोग बसते चले आए हैं। 2008 में इसे लैंडफिल म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए बनाया गया। यहां पर शहर भर का कूड़ा जो है वो नीचे दबाया जाएगा। 1200 टन वेस्ट पर डे यहां पर आने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता चला गया। 2000 से 2200 टन हर रोज यहां पर लोड पहुंचने लगा, यानी अपनी क्षमता से लगभग डबल। धीरे धीरे धीरे धीरे ये इतना ऊंचा हो गया कि ये कूड़े का पहाड़ बन गया, एक ऐसा पहाड़ जिसके आसपास रहने वाले लोगों के घरों में माहौल रहने लायक ही नहीं रहा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी बंदवाड़ी गांव में रहते हैं, जिनके घर गंदगी की स्मेल 24 घंटे आती है, जिनके घरों में पानी दूषित आता है, क्योंकि धीरे धीरे ये जो लैंडफिल का इतना बोझ है ये जमीन के नीचे भी जा रहा है। खासतौर पर जब बारिश होती है तो यही कूड़ा रिस कर अपनी गंदगी, अपने केमिकल्स जमीन के नीचे डाल रहा है और फिर जो ग्राउंड वाटर है वो उसकी वजह से खराब होता चला जा रहा है। सो टॉक्सिसिटी यहां पर बहुत ज्यादा महसूस होती है, चाहे आप हवा की बात करें चाहे आप पानी की बात करें। बहुत सारे लोगों को अपनी दुकानें, अपना कारोबार चलाने में दिक्कत आ रही है क्योंकि दुकानों में लोग आना नहीं चाहते सामान खरीदने। घरों में लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि कोई भी माता पिता अपनी बेटी को एक ऐसे ससुराल में या ऐसे घर में जिंदगी बिताने के लिए नहीं भेजना चाहता है जहां पर हवा पानी पूर्ण रूप से दूषित हो और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां फैलने की कगार पर हो। इतना ही नहीं, इस लैंडफिल में बहुत ज्यादा आगजनी की घटनाएं भी होने लगी और ये बहुत कॉमन सी बात होती है। जहां पर जरूरत से ज्यादा कूड़ा होगा वहां पर आग लगना बहुत आसान होगा क्योंकि मीथेन गैस यहां से जनरेट होती है। जो भी वेस्ट डिकम्पोज होता है उससे मीथेन गैस जनरेट होती है जो आग पकड़ने में बहुत सक्षम होती है। इसके साथ साथ अगर आप बात करें तो टॉक्सिक लिक्विड जिसको लेचेट कहते हैं वो यहां पर बहुत आसानी से पहुंच रहा है ग्राउंड वाटर में, जो मैंने अभी जिक्र किया। इसकी वजह से घरों में पानी गुलाबी आ रहा है।
आपको लग रहा होगा गुलाबी पानी तो अच्छा होता है ना। अक्सर गुलाबी या फिर ऐसा रंग बहुत अच्छा माना जाता है तो शायद अच्छी चीज हो, लेकिन ये जहरीला पानी होता है और ये पानी किसी के लिए भी खराब होगा। अरावली इको

बहुत ज्यादा धरना प्रदर्शन किया। एमसीएफ कमिश्नर सामने आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले 6 महीने में इस प्लांट को भी बंद कर दिया जाएगा, यानी प्रतापगढ़ लैंडफिल को रोक दिया जाएगा। इसकी जगह शहर में या शहर से बाहर कोई ऐसी जगह चिन्हित की जाएगी, कोई ऐसी जगह ढूंढी जाएगी कूड़े को डिस्पोज करने के लिए जहां पर आबादी ना रहती। अब ऐसा फैसला क्यों लिया गया? क्योंकि प्रतापगढ़ के आसपास रहने वाले लोगों के घरों में वही चीजें हो रही थी जो कभी बंधवाड़ी में हो रही थी, यानी घरों में बदबू आ रही थी, इतनी ज्यादा आ रही थी कि वो 24 घंटे अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर रहे थे। उनको दरवाजे खोलने या कूलर चलाने पर अंदर बैठना भी मुश्किल हो रहा था। दूषित पानी के डर से, काला या ऐसा लाल पानी आने के डर से भी लोग बहुत ज्यादा घबराहट में थे। साथ ही वही बात, दुकानों पर बैठना मुश्किल हो रहा था, बिजनेस ठप हो रहा था। क्यों ठप हो रहा था? क्योंकि 24 घंटे अगर आपके आसपास कूड़े की स्मेल आती रहेगी तो आप अपने बिजनेस में, अपनी दुकान में, अपने कारोबार में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। आप अगर अपनी दुकान चलाते हैं तो आप वहां खुद नहीं बैठ पाएंगे तो ग्राहक कैसे आएगा। इन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी। हर रोज शहर भर में से 1200 टन के करीब कूड़ा निकलता है। हर रोज फरीदाबाद से इतना कूड़ा जब एक जगह पर इकट्ठा होने लग जाएगा, खासतौर पर से बरसात के मौसम में, तो दिक्कतें डबल ट्रिपल हो जाती हैं। ऐसे में लोगों ने धरना दिया, पर एमसीएफ कमिश्नर सामने आए और आकर उन्होंने आश्वासन दिया कि इसे बंद कर दिया जाएगा, अगले 6 महीने में कोई नया रास्ता निकाला जाएगा। आप तक ये सारी जानकारी मैंने इसलिए पहुंचाई क्योंकि आपके और हमारे घर में से हर रोज कूड़ा निकलता है। अब इस कूड़े के निकलने का पर्पस होता है घर की सफाई, क्योंकि हर गंदी चीज को आप घर में नहीं रख सकते, पर आप एक काम कर सकते हैं, इन्हें अलग अलग कर सकते हैं। दिन भर में खाने पीने का वेस्ट बहुत ज्यादा होता है, जैसे हमारे घर में सब्जियां बनती हैं तो उनके छिलके होते हैं। जैसे आपके घर में अगर कोई खाना बच गया है, रात का खाना है या एक दिन पहले का खाना है, तो आप उसको यूं ही फेंक देते हैं जानवरों के लिए। लेकिन अगर आप इन सब खाने पीने की चीजों को बिना किसी प्लास्टिक या फिर किसी और मटेरियल के जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, उससे अलग कर एक अलग थैली में रखेंगे या एक अलग डब्बे में रखेंगे, तो ये आगे जाकर आपको मैन्योर यानी ऑर्गेनिक खाद बनाने में मदद करेगा। दूसरे डब्बे में यानी दूसरे कूड़ेदान में आपको वो कूड़ा डालना है जो कि इजीली रिसाइकल हो सकता है। अब अगर आपको लग रहा है कि रोज रिसाइकल का मटेरियल इकट्ठा नहीं कर सकते, तो भारत में एक बहुत अच्छी चीज होती है, आपके घरों के आसपास कबाड़ी वाले घूमते हैं जो आपकी मदद करते हैं आपके घर को साफ रखने में। जिस तरीके से आप अपनी रद्दी सेल करते हैं, यानी पुराने न्यूज़पेपर, किताबें, कागज या फिर गत्ते, उसी तरीके से आप ये दूध की थैलियां, जिनको आप आसानी से हर रोज एक बार अच्छे से पानी और साबुन से धो के फिर इकट्ठा करके और महीने में एक बार उसी कबाड़ी वाले को रिसाइकलिंग के लिए दे सकते हैं, बशर्ते ये एकदम बदबू रहित होनी चाहिए, यानी इनमें किसी तरीके की स्मेल नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज आप कर सकते हैं, सारे महीने भर के प्लास्टिक के कंटेनर, बॉटल्स या फिर जो भी आपके पास डब्बे आए हैं, उन्हें भी साफ सुथरा करके कबाड़ी वाले को यानी रद्दी वाले को दे दीजिए, जो अक्सर हम करते भी आए हैं, लेकिन इसको थोड़ा और सुचारू रूप से करें। इसके साथ साथ तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है हैजार्डस मटेरियल, यानी आप जिस तरीके की मेडिकल चीजों का उपयोग करते हैं उसको आपने कलेक्ट करना है और अपने गार्बेज वाले को अलग से पैक करके देना है, जिसके बैग्स आपको केमिस्ट की दुकान पर मिल जाएंगे, हैजार्डस जिन पे लिखा होता है या मेडिकल वेस्ट लिखा होता है, नहीं तो आप किसी भी थैली में डालकर उस जो आपके गार्बेज को कलेक्ट करने आता है उस व्यक्ति को दे सकते हैं, ये बताकर कि इसमें इंजेक्शंस या दवाइयां या फिर मेडिकल वेस्ट है, चाहे उसमें आप सैनिटरी पैड्स या फिर डायपर्स भी ऐड कर सकते हैं, वो भी मेडिकल वेस्ट में ही आते हैं, क्योंकि जब ये कूड़े में जाते हैं तो ये किसी भी तरीके से रिसाइकल या डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं, सो ये भी मेडिकल वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं जिसको आपको बताना जरूरी होता है। तो ये अगर 2-3 चीजें हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कर लेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी और आसपास के एरिया को सुरक्षित रखने में हम मदद करेंगे। लेकिन वापस उसी जगह पहुंचती हूं जहां पर मैंने शुरुआत करी थी, कूड़े को सेग्रीगेट करने की, और आपसे ये कहा था कि आप घर पर बैठे खाद बना सकते हैं। अभी इसका प्रोसेस क्या होता है? बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा सा डब्बा लेना है, प्लास्टिक

0: आप चाहें तो टेराकोटा या मिट्टी का भी ले सकते हैं बर्तन। अगर प्लास्टिक का ले रहे हैं तो उसके चारों तरफ थोड़े छेद कर दीजिए, यानी नीचे से ऊपर तक गोलाई में छेद करते जाइए छोटे छोटे, और उस छेद की वजह से उसमें एयर आएगी और जाएगी। जितना भी कूड़ा आप इकट्ठा कर रहे हैं हर रोज का उसमें डालते रहिए। इस कंटेनर को आप अपनी बालकनी में, अपने गार्डन में, अपनी छत पे कहीं भी रख सकते हैं। इसको कवर कर लीजिए, इसमें ढेर सारे गत्ते के टुकड़े डाल दीजिए या फिर न्यूज़पेपर फाड़ के डाल दीजिए जो एक्स्ट्रा आपके पास है, और थोड़ी सी छाछ, जी हाँ, जो हमारे घरों में अक्सर इस्तेमाल होती है, वो छाछ डाल दीजिए, लगभग एक कटोरी या आधा ग्लास जितनी। धीरे धीरे इसको थोड़ा सा चलाते भी रहिए, यानी कभी कभी इसको हिला लीजिए। इसमें अपने आप फर्मेंटेशन होगी और थोड़े समय बाद आप इसमें देखेंगे कि धीरे धीरे मैन्योर बननी शुरू हो जाएगी। ये बहुत सिंपल सा तरीका होता है घर बैठे अपने पौधों को ऑर्गेनिक खाद देने का। अगर आपके घर में इतने पौधे नहीं हैं तो आप अपनी सोसाइटी में या फिर आसपास के बढ़िया गार्डन्स में भी ये सप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने बिजनेस मॉडल्स भी बना लिए हैं इस चीज को लेकर। सो आप भी ये काम कर सकते हैं। और इसमें अगर आप ड्राई लीव्स, यानी पतझड़ के मौसम में इतने सारे सूखे पत्ते होते हैं, अगर आप वो भी इकट्ठा करके डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, ताकि पत्तों को जलाकर पर्यावरण को दोबारा दूषित करने की आवश्यकता ना पड़े। उम्मीद है ये सारी बातों से आपको काफी जानकारी मिल गई होगी। लेकिन अब एक छोटे से नाटक के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा ये कूड़ा सेग्रीगेट, यानी कूड़ा अलग अलग करना कितना आवश्यक है, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये कितना मुश्किल हो जाता है हर एक इंसान के लिए जो आपके घर से कूड़ा इकट्ठा करके जा रहा है या जो आगे जाकर इसे डिस्पोज करने वाला है या लैंडफिल्स तक पहुंचाने वाला है, ये उनके लिए कितना हानिकारक और जानलेवा है। तो छोटी सी कोशिश से हम कुछ बेहतर प्रयास कर सकते हैं। आइए इस रेडियो नाटिका के माध्यम से जानते हैं।
1: क्या हुआ तारा बेटा, आज सोना नहीं है क्या?
2: पापा मुझे नींद नहीं आ रही।
1: क्यों, ऐसा क्या हुआ आज हमारी गुड़िया को?
2: मुझे ना डर लग रहा है। आज वाणी मैम ने हमें बताया कि हम लोगों ने अगर ध्यान नहीं दिया तो ये दुनिया हमारी वजह से खत्म हो जाएगी।
1: ऐसा क्यों बोला उन्होंने?
3: पूरी बात बताओ बेटा।
2: मम्मा, आज ना मैम ने हमें क्लास में वेस्ट मैनेजमेंट सिखाया, तो मैम ने सबसे पूछा कि आपके घर में कितने डस्टबिन हैं? तो सबने बोला एक, बस व्यान ने बोला कि उसके घर में तीन डस्टबिन हैं। तो फिर मैम बोलती कि जिनके घर में एक डस्टबिन है उन्हें तीन डस्टबिन रखने होंगे घर में, अगर वो एनवायरमेंट बचाना चाहते हैं तो।
1: ये क्या बात हुई बेटा, ये सब फैंसी बातें हैं, आप सो जाओ। हम लोग बिल्कुल एनवायरमेंट खराब नहीं कर रहे, हम तो सारा वेस्ट भी डस्टबिन में डालते हैं। और स्निग्धा, तुम कल स्कूल जाके कंप्लेन करना, अपने बच्चों को डराने के लिए थोड़ी भेजते हैं हम, ये सब क्या सिखा रहे हैं वो।
0: बेटा ऐसा कुछ नहीं है, कल मैं आपके साथ स्कूल जाके मैम से बात करूंगी, बिल्कुल मत डरो और अभी सो जाओ।
2: ठीक है मम्मा, गुड नाइट।
4: दीदी कूड़ा दे दो।
0: हाँ भैया, अभी लाती हूँ। आपके पैर में क्या हुआ राजू भैया, ये चोट कैसे लगी?
4: दीदी अब क्या बताऊँ, मैं तो सबको समझा समझा के थक गया हूँ। सब लोग वो एक ही बैग में सारा कचरा इकट्ठा करके दे देते हैं। वो वान्या दीदी है ना, वो 150 दूसरे माले वाली, उनके घर में कोई पार्टी हुई होगी तो उन्होंने वो कांच की सारी बोतलें और बाकी सारा सामान एक ही बैग में डाल दिया, और जब मैं उसे उठा रहा था तो वो बैग मेरे पैर के नीचे आ गया। उसमें कांच के टूटे हुए टुकड़े थे, बस वो उसी से कट गया जी, 12 टांके लगे हैं।
0: ओ गॉड राजू भैया, तो आप रेस्ट करो ना कुछ दिन।
4: नहीं दीदी मैं ठीक हूँ, और अगर मैं आराम करूँगा तो बच्चों की फीस, उनका खाना किराया, ये सब कौन करेगा?
0: मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ आपकी?
4: दीदी बस एक निवेदन है आपसे, आप गीला कचरा, सूखा कचरा और कांच वाला कचरा ये सब अलग अलग बैग में रख दिया करो, अगर हो सके तो। लेके मैं ही जाऊँगा, बस फिर मुझे पता होगा कि किस कचरे को कैसे उठाना है और कहाँ रखना है।
5: Come in. Oh, hi, Mrs. Arora.
0: Hello, ma'am.
5: आज कैसे आना हुआ आपका? तारा का तो सब ठीक चल रहा है।
0: वो एक्चुअली कल रात को तारा बहुत डरी हुई थी, वो सो भी नहीं पा रही थी और बता रही थी कि वाणी मैम ने स्कूल में उसे बोला है कि अगर आपके घर में बस एक ही डस्टबिन है तो आप गलत कर रहे हो।
5: अच्छा, ऐसा बोला वाणी ने? मैं वानी को बुलाती हूँ, आप उससे खुद बात कर लीजिए। वानी, कम टू माई ऑफिस, कम इन।
6: गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मिसेज अरोड़ा।
7: गुड
5: आफ्टरनून वानी। मिसेस अरोड़ा इज कंसर्न अबाउट तारा। शी इज सेइंग कि तारा कल रात सो नहीं पाई बिकॉज आपने कुछ बोला होगा उसे अबाउट द डस्टबिन।
6: ओह यस, आई रिमेम्बर। कल हम वेस्ट सेग्रीगेशन के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने तारा को स्पेशली नहीं पूरी क्लास को बोला था कि वेस्ट अगर हम सेग्रीगेट नहीं करेंगे तो हमारे प्लैनेट को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचेगा।
7: बट मैम, वो बहुत डर गई थी। उसे लग रहा है कि अकेली वो रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के पीछे।
6: आई एम सॉरी मिसेज अरोड़ा, अगर तारा को ऐसा लगा, बट मैंने अकेले तारा को नहीं पूरी क्लास को समझाया था। तारा या कोई भी एक बच्चा या उसकी फैमिली अकेले बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट इस प्लैनेट को हील करने में हेल्प एक एक इंसान कर सकता है। प्लैनेट कोई एक दिन में खराब नहीं होता, ना ही एक दिन में ठीक हो जाएगा, बट हमारी हर दिन की हैबिट्स, हर दिन का एटीट्यूड, ये डिसाइड करता है कि आने वाली जनरेशंस की लाइफ कैसी होगी यहाँ पर।
7: पर सिर्फ अलग डस्टबिन रखने से इतना क्या फर्क पड़ता है?
6: बहुत फर्क पड़ता है। मान लीजिए आपने बचा हुआ खाना, प्लास्टिक की बॉटल्स, खराब सब्जियां, ई वेस्ट और टूटा हुआ ग्लास सब एक ही बैग में डाल दिया। अब जो गीला कचरा है वो बाकी सारे वेस्ट को भी गंदा कर देगा। प्लास्टिक रिसाइकल हो सकती थी बट अब नहीं हो पाएगी। पेपर भी रिसाइकल हो सकता था लेकिन गीला होने की वजह से वो भी खराब हो जाएगा। ई वेस्ट भी सेम जगह पर फेंका जाएगा जहां ये सब फेंका जाएगा और उसकी वजह से पूरे लैंडफिल में आग लग सकती है। और सबसे डेंजरस, टूटा हुआ कांच अगर किसी वेस्ट कलेक्टर को पता ही ना हो कि उसके बैग में ग्लास है तो उसके हाथ या पैर कट सकते हैं, कोई जानवर उसे खा सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। हम लोग घर के अंदर सिर्फ 2 मिनट बचाने के चक्कर में सब कुछ एक ही बैग में डालकर फेंक देते हैं और खुश हो जाते हैं कि हमारा घर साफ हो गया, बट एक्चुअली किसी ना किसी को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। या तो वेस्ट कलेक्ट करने वाले भैया, या सेग्रीगेट करने वाले भैया, या कोई जानवर। तो बस इसीलिए हम बच्चों को सिखाते हैं ग्रीन बिन गीला कचरा, ब्लू बिन सूखा कचरा, और अगर घर में ग्लास या शार्प वेस्ट हो तो उसे अलग पैक करके क्लियरली बता कर देना चाहिए। ये सिर्फ एनवायरमेंट के लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी है जो रोज हमारा कचरा उठाते हैं।
7: आप बोल तो बिल्कुल ठीक रही हैं। आज सुबह ही मुझे पता लगा कि हमारे वेस्ट कलेक्टर के पैर में 12 स्टिचेस लगे हैं क्योंकि किसी के वेस्ट बैग में ग्लास की टूटी हुई बॉटल्स रखी हुई थी।
6: ये पहली बार नहीं हुआ होगा और शायद आखिरी बार भी नहीं होगा। जब तक हम बदलेंगे नहीं तब तक ये ठीक नहीं हो पाएगा।
7: थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक तारा का डरना बिल्कुल ठीक था। उसके डर को दूर करने के लिए मुझे स्कूल नहीं आना चाहिए था, मुझे मार्केट जाना चाहिए था अलग अलग डस्टबिन्स खरीदने के लिए।
1: हेलो, कोई है?
8: पापा आ गए।
1: ए, मेरी प्रिंसेस, ये क्या है? स्निग्धा, तुम्हें तो स्कूल भेजा था बात करने के लिए, तो ये 3-3 डस्टबिन कब आ गए?
7: हाँ भाई, मैं स्कूल गई थी शायद बहुत सालों के बाद, आज कुछ सीख कर निकली स्कूल से। ये एक्सपेंस नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी तारा के फ्यूचर के लिए, बाकी आने वाली जनरेशंस के लिए भी।
1: मतलब तुम स्कूल से सीधा डस्टबिन्स लेके आ गई?
7: अरे डस्टबिन्स नहीं, समझदारी लेके आई हूँ। तुम्हें पता है आज सुबह राजू भैया आए थे, उनके पैर में 12 स्टिचेस लगे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने टूटा हुआ ग्लास बाकी कचरे के साथ एक ही बैग में डाल दिया था। और हमें लगता है हम सिर्फ डस्टबिन में कचरा डाल रहे हैं, असल में हम किसी और की जिंदगी ना बहुत मुश्किल बना देते हैं।
1: ऐसा क्या? मुझे लगता था ये सब तो बस फैंसी बातें होती हैं।
8: पापा, अब हमारा घर भी एनवायरनमेंट बचाएगा ना?
1: हाँ मेरा बच्चा, अब तारा का घर भी एनवायरनमेंट बचाएगा।
8: ये अब मेरे दोस्त के घर की तरह हमारे घर में भी 3 डस्टबिन हैं।
4: दीदी, कूड़ा।
7: हाँ राजू भैया, ये लीजिए, गीला अलग, सूखा अलग और ग्लास इस बॉक्स में, ध्यान से लेके जाना।
4: अरे अरे, आज तो मेरा काम आधा आसान हो गया। थैंक यू दीदी, काश सब लोग ऐसे ही करने लगे।
1: अरे एक दिन जरूर करेंगे, शुरुआत किसी ना किसी घर से तो होगी।
9: अगर हर घर सिर्फ अपना कचरा अलग करने की जिम्मेदारी उठा ले तो सिर्फ कचरा अलग नहीं होगा बल्कि हमारी दुनिया भी बहुत अलग होगी। गीला अलग, सूखा अलग, कांच और हानिकारक अलग, सिर्फ तीन कूड़ेदान और एक सुनहरा कल।
0: तो दोस्तों, उम्मीद है इस रेडियो नाटिका के माध्यम से आपने अपने घर में कूड़े को सेग्रीगेट यानी सही तरीके से कूड़ा निस्तारण के बारे में जानकारी अवश्य ग्रहण कर ली होगी। छोटी छोटी कोशिशों से बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल होती है। और अब जहां AQI 400 के पार पहुंचता है, पानी का TDS बढ़ता चला जाता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है, हर खाने की पीने की चीजों में प्रदूषण या फिर दवाइयां और केमिकल मिलने लग गए हैं, वहां पर जरूरी है कि हम अपने पर्यावरण के लिए छोटी सी कोशिश जरूर करें, क्योंकि जब ये छोटी छोटी कोशिशें मिलेंगी तो बड़े बड़े बदलाव आएंगे। इसलिए अगली बार अपने घर में कूड़ा देते वक्त ध्यान रखिएगा कि गीला कूड़ा अलग रखें, सूखा अलग रखें और मेडिकल वेस्ट अलग रखें। कार्यक्रम ग्रीन ग्रह में हमारा सपोर्ट करने के लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर ओपी भला फाउंडेशन, इको क्लब व PTC फाइनेंस लिमिटेड का। अब कार्यक्रम ग्रीन ग्रह में अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। धन्यवाद और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। फील गुड, फील लाइव। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
3: रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ, और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा कार्यक्रम जो जुड़ा हुआ है हम सभी की जिंदगियों से। ईश्वर ने हमें जीवन दिया, लेकिन इस जीवन में कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं जब हमारे शरीर के कुछ अंग सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं, और तब हमें ज़रूरत पड़ती है उस ऐसे एक डोनर की जो हमारी मदद करता है स्वयं ईश्वरी रूप बन के। ऐसे ही खास कार्यक्रम को आपके बीच लेकर आता है ऑर्गन इंडिया और रेडियो मानव रचना 107.8। और इस कार्यक्रम का नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। आइए जानते हैं कुछ बहुमूल्य बातें अंग दान से जुड़ी हुई।

0: आप सभी सुनने वालों को ऑर्गन इंडिया की तरफ से नमस्कार। मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। आज हम आपका स्वागत करते हैं ऑर्गन इंडिया के इस बेहद खास कार्यक्रम में, जीवन एक अनमोल उपहार, जिसमें हम अंग दान के बारे में बात करेंगे। ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क यानी कि ऑर्गन इंडिया की पहल साल 2013 में पराशर फाउंडेशन ने की थी, जो दिल्ली की एक गैर सरकारी सामाजिक संस्था है। अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम अंगदान, देहदान और उतक दान के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम ऑर्गन फेलियर या अंगों के खराब होने की गंभीर समस्या से पीड़ित मरीजों को, जिनके पास ऑर्गन ट्रांसप्लांट या अंग प्रत्यारोपण के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, उन्हें सही जानकारी देते हैं और वो अपने उत्तम इलाज के लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, ये सब बताते हैं। अगर आप में से किसी को भी अंग दान और देह दान के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जा सकते हैं या हमारे टोल फ्री नंबर 1-800-120-3648 के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी सहायता करके हमें बेहद खुशी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज हमारे साथ है डॉक्टर गीतिका वशिष्ठ, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर ऑर्गन इंडिया की। Over to you, Dr. Kitika.
1: नमस्कार। आज के शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है मिसेस कनिका जैन, जो कि इस बात का प्रतीक है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी व्यक्ति सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं और खासकर महिलाएं माँ भी बन सकती हैं। कनिका जी, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद डॉक्टर गीतिका, आपने मुझे शो पे बुलाया। सबसे पहले इस शो को सुनने वाले सभी लोगों को, खासकर वो लोग जो किडनी या और कोई भी अंग के ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं या उससे गुजर रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारी हिम्मत, बहुत सारी अच्छी ऊर्जा कि आपकी जिंदगी बहुत अच्छी रहे। डॉक्टर गीतिका, मेरा जो ये जर्नी थी, ये शुरू हुई थी किडनी से रिलेटेड, गुर्दे से रिलेटेड, लगभग 13-14 साल पहले, जबकि मेरे शादी के तुरंत बाद ही मुझे ये बताया गया था कि आपकी दोनों किडनीज खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, कारण वो नहीं ढूंढ पाए डॉक्टर्स, उन्हें ज़्यादा पता नहीं चला, पर ये था कि अब कुछ साल, 2-4 साल आप दवाइयों पर रहिए और उसके बाद आपको आपका ट्रांसप्लांट करना ज़रूरी है। वो तो तय है कि ट्रांसप्लांट तो होगा ही होगा। मैं लगभग 8 साल दवाइयों पे रही हूँ। इस दौरान अच्छी बात ये हुई है डॉक्टर गीतिका कि मैंने सामान्य जीवन जिया है। मैं एक प्रोफेशनल हूँ ह्यूमन रिसोर्सेज में। मैंने कॉर्पोरेट्स में भी, कंसल्टिंग में भी बहुत साल काम किया है, ट्रैवल किया है। मेरी शादीशुदा जिंदगी भी सामान्य रही है हर तरह से। परंतु जो एक परेशानी थी या एक दुख कहना चाहिए मेरा और मेरे हस्बैंड का, वो था कि मेरी इस किडनी की कंडीशन की वजह से, इस किडनी की परेशानी की वजह से मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि आप गर्भवती नहीं हो सकती, या रादर आपको गर्भवती नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान किडनीज पर बहुत प्रभाव पड़ता है, और क्योंकि आपकी किडनीज अब ठीक नहीं है, दोनों ही खराब है, तो आपको गर्भवती नहीं होना चाहिए। आप समझ सकते हैं डॉक्टर गीतिका कि मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए ये बहुत बहुत दुख की बात थी। मुझे याद है मैं शायद महीनों बहुत रोई हूँ ये सोच सोच के कि मैं कभी माँ बन ही नहीं सकती। धीरे धीरे, जैसा कि सब करते हैं, उस चीज़ को हम मान लेते हैं, अपने जीवन जीते रहते हैं, और इसी तरह से हमारा जो जीवन है वो 8 साल मेरा इन दवाइयों पे चलता रहा। जैसा कि पहले से ही डॉक्टर्स ने तो खैर 2-3 साल कहा था, बट फिर भी 8 साल तक चला दवाइयों पे। उसके बाद मेरा डायलिसिस पे मुझे डाला गया, क्योंकि बिल्कुल ही एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि सब खत्म था, कि मतलब अब दवाइयाँ भी नहीं कर सकती, ट्रांसप्लांट तो अब करना ही पड़ेगा। लेकिन उससे पहले लगभग 1 साल तक मुझे डायलिसिस पे डाला गया। उसके लिए गर्दन में कैथेटर्स लगे, हाथ में एक पहली बार फिस्टुला बनाया, वो फेल हो गया, दूसरी बार जब कैथेटर्स डाले, लंग इन्फेक्शन हो गया। मतलब इस तरह के, जैसे कि नॉर्मल जो चुनौतियां होती हैं वो रही, इस 8 साल के दौरान और डायलिसिस के दौरान ना सिर्फ शारीरिक तौर पर मानसिक तौर पर भी बहुत परेशानियां रही, क्योंकि बहुत अंदर से एक बड़ी ऐसा लगा कि मैं शायद पूर्ण रूप से अपने आप को पूर्ण रूप से महसूस नहीं कर पाती थी कि मैं एक औरत हूँ, एक बीवी हूँ, क्योंकि जैसा कि शायद सभी औरतें ऐसा महसूस करती होंगी कि माँ बनना बहुत बड़ी बात है और जीवन अधूरा सा लगता है जब हम माँ नहीं बन पाते हैं। तो मेरे लिए वो 8 साल मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत कठिन रहे। शारीरिक रूप से तो खैर देखिए रहे, क्योंकि इतनी जब हम दवाइयाँ खाते हैं तो उसका हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता ही है, बट मानसिक और भावनात्मक रूप से मेंटली और इमोशनली थोड़ा कठिन रहा मेरे लिए।
1: तो जब आपको ये बताया गया कि आपको अभी फिलहाल के लिए माँ नहीं बनना चाहिए, गर्भ धारण करने से आपको परेशानियां हो सकती हैं, तो आपके परिवार का इस पर क्या प्रभाव पड़ा?
2: दो बातें हुई। अच्छी बात तो ये हुई कि मैं बहुत बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया इतने सालों में। आज शादी के 14-15 साल बाद तक भी, शुरू में जबकि डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आप माँ नहीं बन सकती हैं, वो दिन आज का दिन मेरे हस्बैंड ने, मेरे पति ने मेरा हाथ थामे रखा है, मुझे गले लगाए रखा है। तो अच्छी बात ये रही है कि मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत बहुत साथ दिया है, ठीक है। उसके साथ साथ मेरे माँ बाप ने, मेरे भाई भाभी ने, इन चारों ने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ क्योंकि मैं ऐसे बहुत से औरतों को जानती हूँ जिनके परिवार ने उनका साथ नहीं दिया, बट मैं भगवान की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे परिवार ने, खासतौर पे मेरे पति ने मेरा बहुत साथ दिया है। ये तो पहली बात हुई जो अच्छी हुई। इसके अलावा बुरा तो नहीं कहना चाहिए, बट शायद जो इतनी अच्छी नहीं रही, देखिए बाकी के जो परिवार में लोग थे और जो समाज के जो लोग थे, उन्होंने मेरे लिए थोड़ा परेशानियाँ करी, मानो जैसे मुझे नीचा दिखा रहे हों या मुझे हीन दृष्टि से देख रहे हों कि माँ नहीं बन सकती, ओहो बड़ा दुख हुआ सुन के। तो उस तरह का जब मुझे लोगों से प्रतिक्रिया मिलती थी तो बहुत दुख होता था, और शायद मुझे मानसिक और भावनात्मक दुख जो रहे हैं वो शायद उस समाज और बाकी परिवारजनों के उस प्रतिक्रिया से ज्यादा रहे।
1: कनिका जी, हमें ये बात बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं तो हम बात कर रहे हैं कनिका जी से, जो हमें अपनी किडनी ट्रांसप्लांट की जर्नी के बारे में बता रही हैं और बता रही हैं कि कैसे किडनी प्रत्यारोपण के बाद उनके जीवन में एक नया बदलाव आया। कनिका जी, तो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद किस तरह से और क्या परिवर्तन आपके जीवन में आया?
2: डॉक्टर कितिका, सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये आपके श्रोताओं से को बताना चाहूँगी कि ट्रांसप्लांट के समय, ट्रांसप्लांट से तुरंत पहले मैं लगभग 1 साल तक डायलिसिस पे थी। अब डायलिसिस पे क्या होता है कि दो तरह से होता है कि एक तो आपको गर्दन में कैथेटर डाल देते हैं या फिर आपके हाथ पैरों में कहीं पे फिस्टुला बना देते हैं। तो इवन दो मैं काफ़ी खुशनसीब रही हूँ, लकी रही हूँ कि मुझे अच्छे डॉक्टर्स मिले, लेकिन परेशानियाँ भी आई। देखिए जीवन है तो उसमें अच्छा बुरा सुख दुख सभी आता है, ठीक है। मेरा एक फिस्टुला भी फेल हुआ तो और परेशानी हुई, गर्दन में मुझे कैथेटर डाल दिया तो उससे मुझे लंग इन्फेक्शन हो गया और मैं बिस्तर पे काफ़ी महीनों तक रही, जिसकी वजह से जो ट्रांसप्लांट से पहले हमारे बहुत सारे टेस्ट्स किए जाते हैं ये देखने के लिए कि अब आप पूरा ट्रांसप्लांट, कोई भी किसी भी अंग का, सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट ही नहीं, किसी भी अंग का आप ट्रांसप्लांट कराते हैं तो पूरे टेस्ट किए जाते हैं कि आप सही हैं। तो उसमें काफ़ी देरी हो गई, क्योंकि जब तक मैं पूरे 100% ठीक नहीं हूँ तब तक वो ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते थे। तो उसमें मुझे शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से बहुत परेशानी हुई। सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये रही, जो लोगों को चुनौती आती है उनके जीवन में वो ये होती है कि उन्हें डोनर नहीं मिलता। डोनर मतलब जो आपको अपनी किडनी या आपका कोई भी जो आपको अंग चाहिए ट्रांसप्लांट के लिए वो आपको वो दे। मेरी खुशनसीबी ये रही कि शुरू से ही ऐसा, मानिए भगवान ने ही शायद तय किया था हमारे लिए कि मेरे पापा ने मुझे अपनी किडनी देनी थी और मेरे पापा ने मुझे अपनी किडनी दी। उनकी उम्र लगभग 60 के करीब थी उस समय, मेरे ट्रांसप्लांट को आज 6 साल हो चुके हैं और उस समय उनकी उम्र लगभग 60 के करीब थी, मेरी 33 के करीब थी। हमारे सारे टेस्ट अच्छे होते गए, कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं आई। दूसरी जो चुनौती ज़्यादातर लोगों को आती है वो पैसे की आती है, क्योंकि ये बहुत महंगा वो हो जाता है, क्योंकि सिर्फ ट्रांसप्लांट के ही पैकेज का खर्चा नहीं होता है कि 2 लाख 4 लाख का पैकेज है, उससे पहले बहुत से टेस्ट के खर्चे होते हैं, दवाइयों के होते हैं, उस दौरान के जब आप उस समय 10 दिन हॉस्पिटल में हैं उसके होते हैं, उसके बाद के होते हैं। फिर से भगवान की दया से मेरे पति ने मेरा बहुत साथ दिया है और उन्होंने मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी, हर चीज़ अच्छे से अच्छा मेरे लिए उन्होंने करवाया और उन्होंने वो किया। तीसरी अच्छी चीज़ जो मेरे साथ रही, जो फिर कई खासतौर पे महिलाओं के साथ परेशानी या चुनौती होती है, कि उन्हें अपने हस्बैंड का, अपने पति का सपोर्ट नहीं मिलता, उनका साथ नहीं मिलता। तो सबसे पहली बात ऑफकोर्स ये कि मेरे पति ने मेरा बहुत साथ दिया है, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी और भगवान की कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। अव्वल तो मैं बहुत स्ट्रांग रही हूँ, बहुत मैं मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से बहुत दृढ़ हूँ। फिर भी कई बार होता था कि मैं उदास हो जाती थी, तब मेरे पति मेरा हाथ थाम के बोलते थे नहीं तुमने करना है। तो इन तीन चीज़ों के उस पर जो मेनली चुनौतियाँ आती हैं, मेरे साथ भगवान ने बहुत अच्छा किया है। ट्रांसप्लांट बहुत अच्छे से हो गया था। देखिए हर व्यक्ति का या हर औरत का शरीर यूनिक है, अलग है, तो हम ट्रांसप्लांट के तुरंत बाद से ही बहुत दवाइयाँ दी जाती हैं, हर तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं, इम्यूनोसप्रेसेंस, स्टेरॉइड्स, मतलब बहुत तरह की, और उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगर वो कुछ अच्छा कर रही हैं वो दवाइयाँ हमारे शरीर में, तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, वो कुछ बुरा भी करती हैं। तो उस तरह से ट्रांसप्लांट के बाद हर एक के अलग अलग इफ़ेक्ट होते हैं। मेरे साथ भी रहे कि जैसे ना मेरा जो वज़न है बहुत बढ़ गया था, लगभग 15-20 kg बढ़ गया था, मेरे बाल बहुत बुरी तरह से झड़े हैं, मतलब आज की डेट, और क्योंकि ये दवाइयाँ हमें जीवन भर खानी हैं, तो आज की डेट में 6 साल बाद भी मैं 80-90% 80-90% तक अपने सर के बाल खो चुकी हूँ। लेकिन सबके साथ अलग अलग होता है, ये चुनौतियाँ आती हैं, रहती हैं। ये है कि हम जब पूर्ण रूप से उस तस्वीर को देखते हैं अपने जीवन की, तो पाते हैं कि मेरे को इस ट्रांसप्लांट के बाद बहुत खुशियाँ मिली हैं। मेरी ज़िंदगी जो में जो बदलाव आया है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, छोटा मोटा चेंज नहीं है, जो पूरा रूप परिवर्तन हुआ है, वो उसके लिए मेरे पास एक्चुअली शब्द नहीं है ये समझाने के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये हुई है कि ट्रांसप्लांट से पहले मेरे पास कोई उम्मीद या होप ही नहीं थी कि मैं कभी माँ बन सकती हूँ। ट्रांसप्लांट ने मुझे वो उम्मीद दी, वो आशा की किरण दी कि नहीं, अब आप 1 साल के बाद माँ बन सकती हैं और आपको अपना ध्यान रखना है, क्योंकि पहले 1 साल तक ट्रांसप्लांट के बाद हमें अपने शारीरिक तौर से बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अपने खाने पीने का, सफाई का, धूल मिट्टी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने बहुत ही दृढ़ता से, बहुत डिसिप्लिन के साथ अपनी लाइफ को, और स्पेशली अपने उस पहले 1 साल के जो ट्रांसप्लांट के बाद था वो किया है, कि कहीं आप बाहर आ जा नहीं सकते, हर जगह कुछ भी आप ऐसे खा पी नहीं सकते। आज भी 6 साल बाद भी मैं सड़क पे कनेर पे खड़े हो ऐसे गोलगप्पे नहीं खा सकती, पापड़ी चाट नहीं खा सकती, क्योंकि वो चीज़ अब मेरे लिए नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की छोटी बड़ी परेशानियां होती हैं, बट ट्रांसफॉर्म जो लाइफ हुई है, इतना प्यार जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने खुद के लिए महसूस किया है, अपने पति से महसूस किया है, और इस वजह से आज मैं माँ बन पाई हूँ, वो मेरा जो सबसे बड़ा मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया है, वो जो सिर्फ उम्मीद नहीं, वो उम्मीद पूरी हुई है, वो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी किडनी ट्रांसप्लांट की वजह से, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हुई है। तो आज मैं बहुत खुशी के साथ आपको ये बता सकती हूँ कि 1.25 साल पहले जो है मेरा बेटा हुआ। मैंने बहुत नॉर्मली कंसीव किया, मेरी प्रेगनेंसी में भी कोई खास बहुत बड़े कोई उतार चढ़ाव नहीं थे, तो मेरे लिए ये बहुत बहुत बड़ी बात है। मेरी जो ज़िंदगी की जो काया पलट हुई है, मेरे मेरी सोच की, मेरे बर्ताव की, मेरे जीवन के देखने के जो मेरे नज़रिए की जो काया पलट हुई है, वो एक्चुअली मेरी किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हुई है।
1: सो हमारे श्रोताओं को ये तो समझ आ ही रहा होगा कि माँ बनने का जो एक सुखद एहसास है और जो आपका एक अनुभव रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है, शांतिपूर्वक रहा है। तो आप उसके बारे में कुछ और बताना चाहें और क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे श्रोताओं को?
2: सबसे पहले तो ये कि मैं अपने परिवार की, अपने पापा की जिन्होंने मुझे किडनी दी, मेरी मम्मी की जिन्होंने मेरा शायद इस उम्र में भी मेरे को अपनी शायद गोदी में ही खिला के मेरा ध्यान किया, मेरे हस्बैंड की, मेरे भाई भाभी की, मेरे परिवार की. क्योंकि देखिए डॉक्टर गीतिका, डॉक्टर्स जो होते हैं ना वो सिर्फ एक हद तक हमारी मदद कर सकते हैं, ठीक है. वो हमें दवाइयाँ दे सकते हैं, टेस्ट करवा के बता सकते हैं कि ये परेशानी है, आप ये खा लीजिए, ये कर लीजिए. लेकिन जब तक हम खुद अंदर से आत्मदृढ़ नहीं हैं, हम अपने अंदर आत्मविश्वास जब तक हम नहीं रखेंगे, तब तक डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे, दवाइयाँ भी कुछ नहीं कर पाएंगी. सबसे पहला तो ये कि इस अनुभव के बाद मेरे अंदर का ऑफकोर्स आत्मविश्वास तो पहले से ही बहुत था, मेरी दृढ़ता पहले से ही बहुत थी, इसके बाद बढ़ गई. माँ बनने के बाद अब मुझे बहुत, एक औरत होने के नाते अब मुझे पूर्ण महसूस होता है. वीर ने हमारी जिंदगी में आके, मेरे जीवन में आके माँ बनने का सुख दिया. संदेश मैं उन सब लोगों को ये कहना चाहूंगी जो शायद किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पे शायद ट्रांसप्लांट उन्हें कराना पड़े, मन में हो सकता है डर, वो मेरे भी था, तो उनको मैं ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले अपने ऊपर आत्मविश्वास रखिए, अपने डॉक्टर पर विश्वास रखिए. मैं बहुत बहुत बहुत खुशनसीब रही हूँ कि मेरा ट्रांसप्लांट से लेके अब तक पिछले 6 सालों में डॉक्टर सौरभ पोखरियाल जो ये मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका में नेफ्रोलॉजी हेड हैं, उन्होंने मेरा ध्यान किया है. उनकी मैंने उन पर इतना विश्वास किया है, उनसे पूछे बिना मैं आज तक भी कोई दवाई नहीं मुँह में डालती हूँ. मैं अपना इतना डिसिप्लिन तरीके से अपना ध्यान रखती हूँ और उनकी कहीं एक एक बात मानती हूँ. क्योंकि ज़्यादातर ये भी होता है कि डॉक्टर हमें कुछ भी कह देते हैं.

0: हम उस बात को हवा में उड़ा देते हैं, हम उनकी बात नहीं मानते हैं। तो हमें उस चीज़ की इज्जत रखनी चाहिए। तो अपने डॉक्टर पे विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ बहुत फूल ही फूल हैं, गुलाब का फूल है तो नीचे कांटे भी होंगे। ट्रांसप्लांट में अगर खुशियाँ हैं तो साथ में परेशानियाँ भी हैं, दर्द भी है, लेकिन अपने आप पे, भगवान पे विश्वास रखिए, आप वो कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अगर मैं 38 की उम्र में भी ट्रांसप्लांट के बाद माँ बन सकती हूँ तो मैं भी तो एक सामान्य साधारण औरत हूँ। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो हर कोई कर सकता है। तो पहला संदेश उनके लिए जो डर रहे हैं, उनके लिए जो शायद ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं लेकिन जूझ रहे हैं, अपने पे विश्वास रखिए, ये एक फेज है, निकल जाएगा जीवन का। और मैं दूसरा संदेश आप सभी सुनने वालों को, सभी श्रोताओं से ये हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग, अगर हो सके तो आपके लिए अपने अंग दान का संकल्प लें। आप ये जानते नहीं हैं कि आपके जाने के बाद आपके इस संकल्प लेने से आपके अंग जिसको भी मिलेंगे, आप कितने लोगों के जीवन में खुशियां लाएंगे। मेरे जैसी कोई औरत माँ बन पाएगी, किसी बच्चे को वो वापस अपने माँ बाप को देख पाएगा। आप उनका चाहे लिवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे हार्ट हो, जो भी अंग आपका उनको मिलेगा, ठीक है, किसी माँ को खुशी मिलेगी, कोई बच्चा अपनी माँ के साथ वापस जुड़ सकेगा। आप ये सोच भी नहीं सकते कि आपका ऐसा संकल्प ले लेने से आप कितने जीवन को, कितनी जिंदगियों को खुशियाँ देंगे, उन्हें जीने की उम्मीद देंगे। क्योंकि मेरे जीवन में माँ बनने की जो खुशी आई है, उम्मीद आई है, वो तो मेरे किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ही आई है। तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती करती हूँ कि हो सके तो अपने अंग दान का संकल्प लें, ताकि आपके जाने के बाद आपके परिवारजन उसको पूरा कर सकें और आपके थ्रू बहुत से लोगों के जीवन में खुशियाँ आ सकें।
1: कालिका जी, आपने ये बिल्कुल सही कहा, और पूरा ये वार्तालाप जो हम कर रहे हैं उसका हम लोग ये चाहते हैं कि लोगों के बीच ये संदेश जाए कि अंगदान करना चाहिए। इससे एक व्यक्ति मरने के बाद कम से कम 8 जिंदगियां बचा सकता है, और उस 8 जिंदगी से जुड़ी हुई अनेक जिंदगियां, उनमें सब में खुशहाली ला सकता है। आज हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
1: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपकी कहानी, आपका सफर जान के बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि वीर बड़ा होके आपके आपके साहस की बातें करें, और ऑल द बेस्ट, आपका जीवन खुशनुमा रहे। धन्यवाद।
0: धन्यवाद, थैंक यू।
2: जैसे कि आप सभी जान गए हैं कि अंगदान एक बेहद खूबसूरत विरासत है, जिसके जरिए हम मृत्यु में भी 8 लोगों की जिंदगी खुशनुमा बना सकते हैं। मैं आप सभी सुनने वालों को बता दूं कि अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.organindia.org विजिट कर सकते हैं, या आप हमें हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-120-3648 पर फोन कर सकते हैं। व्हाट्सएप करने के लिए नंबर नोट डाउन कर लीजिए 9650952810, या फिर आप हमें info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं, और कॉल करना चाहें तो इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, जो है 0114183-8382। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर एक फॉर्म भरकर अनेक जिंदगियों को आशा की किरण दिखा सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद अपने परिवार के लोगों को जरूर बताइएगा और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दीजिएगा। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और सर्टिफिकेट भेजा जाएगा, जिसे आप सबको दिखाइए और दूसरों को प्रेरित भी करिए। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होने की आशा करती हूँ। हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।
3: तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत सी बातें जानी अंगदान से जुड़ी हुई। ऑर्गन इंडिया के सौजन्य से कार्यक्रम हम आपके बीच लाए। रेडियो मानव रचना 107.8 की इस कोशिश में अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं और अपनी राय और अपने कुछ खास विचार हमारे समक्ष रखना चाहते हैं तो हमें मैसेज या कॉल करें 8010781078, या फिर हमारे इंटरनेट रेडियो रेडियो मानव रचना के माध्यम से आप डाउनलोड करके भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं, और जिस भी व्यक्ति के साथ आप शेयर करना चाहें, दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी शेयर कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जीवन एक अनमोल उपहार, इसकी अहमियत को समझिए और अपना ख्याल रखिए। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ.

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें। www.organindia.org पर जाकर अपना फॉर्म भरें और अपना ऑर्गन डोनर कार्ड प्राप्त करें। अंगदान, जीवन दान।
1: Hi, this is Benny Deol. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM.

हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर हम करते हैं उन लोगों की बातें जिन्होंने अपनी मेहनत, अपने हौसले और अपनी लगन से सफलता की एक नई मिसाल को कायम किया है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों की हम लाइफ की जर्नी लेकर आते हैं आपके लिए, ताकि आप भी अपनी लाइफ में उनसे इंस्पायर हो सके और साथ ही मोटिवेट हो सके कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। पता है कभी कभी क्या होता है हमारी लाइफ में, जब हम किसी की स्टोरी सुनते हैं, किसी के बारे में जानते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर सामने वाला इंसान अगर अपनी लाइफ में इतना कुछ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। पता है क्या होता है, कभी कभी ना हम अपनी लाइफ में ना उम्मीदें छोड़ देते हैं, या फिर कहीं तो एक बार अगर हार मान जाते हैं तो उसके बाद हम ना सोचते हैं कि शायद अब हमसे होगा ही नहीं। पर मैं आपको बता दूं, ये प्रोग्राम है ही इसलिए ताकि हम आपको ना मोटिवेट कर सके, हम आपको बता सके कि सक्सेस की जो मंत्राज है जिसे आप फॉलो करके ना आप भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। क्योंकि सक्सेस आज के टाइम में हर किसी को चाहिए, हर कोई चाहता है कि मैं सक्सेस बनूं। पर आपको मैं एक और चीज़ बता देती हूं कि सक्सेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मुझे नाम मिल गया, मुझे फेम मिल गया, मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो मैं सक्सेस हो गया या फिर हो गई। पर नहीं, मैं आपको सही बताऊं, सक्सेस के असली मायने वही होते हैं जहां पर आप खुद तो सक्सेस होते हैं पर साथ ही आप लोगों को भी अपने साथ लेकर चलते हैं, जहां पर आप अपनी सक्सेस के बदौलत लोगों की मदद करते हैं, उनके काम आते हैं, साथ ही आप हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए भी कुछ करते हैं। तो असली सक्सेस का मतलब वही कहलाता है। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं आपके लिए बहुत सारी जर्नी, और आज भी इसी जर्नी के साथ मैं आपके पास आ गई हूँ दोबारा से। जी हाँ, और आज हम करने वाले हैं जिनकी बात, वो मुझे पता है आप सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी उनका नाम सुना जाता है। जी हाँ, बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस का नाम, जिनका नाम मैं आपको बताने वाली हूँ, पर अभी लूंगी मैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। इस ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आज हम किसकी जर्नी की बात करने वाले हैं, किसकी जर्नी के साथ आज हम चलने वाले हैं। पर उससे पहले सुनिए बहुत ही प्यार सा गाना, सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर हम लोगों की बात करते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने हौसले से और अपनी सफलता की लगन से एक नई मिसाल को कायम किया है। और आज भी हमारी कहानी एक ऐसी ही शख्सियत की है जिन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। और आज हम बात कर रहे हैं एक एक्ट्रेस की, एक प्रोड्यूसर की, एंटरप्रेन्योर की और ग्लोबल आइकन की, यानी कि जिसकी आज हम बात करने वाले हैं वो है प्रियंका चोपड़ा। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा की आज जर्नी के साथ हम चलने वाले हैं। दोस्तों, जब हम प्रियंका चोपड़ा का नाम सुनते हैं ना तो हमारे जहन में एक रेड कार्पेट इवेंट होता है और बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर और फिर हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स की तस्वीरें उभर कर आती है। लेकिन हर सफलता के पीछे एक सफर भी होता है और प्रियंका चोपड़ा का सफर भी उन चुनौतियों, मेहनत और निरंतर सीखने की कहानी है। प्रियंका चोपड़ा का जन्म 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर में हुआ था। उनके माता पिता डॉक्टर अशोक चोपड़ा और डॉक्टर मधु चोपड़ा इंडियन आर्मी में डॉक्टर्स थे। आर्मी बैकग्राउंड होने की वजह से उनके परिवार को अक्सर अलग अलग शहरों में रहना पड़ता था। प्रियंका ने बचपन में बरेली, लखनऊ, पुणे और दिल्ली जैसे शहरों में पढ़ाई की है। बार बार स्कूल और शहर बदलने के कारण उन्होंने हर बार लोगों के बीच खुद को एडजस्ट करना पड़ता था। लेकिन शायद यही वजह थी कि बचपन से ही उनके अंदर अडेप्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। ये क्वालिटी आगे चलकर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बनी। कुछ समय के लिए प्रियंका पढ़ाई के लिए अमेरिका भी गई थी। वहाँ उन्होंने नए कल्चर और नए एनवायरनमेंट को देखा, लेकिन हर नई जगह की तरह वहाँ भी उन्हें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जैसे कि इन अनुभव ने उन्हें और ज़्यादा मजबूत बना दिया और ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखना भी सिखाया। दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा की कहानी हमें ये बताती है कि सफलता की बुनियाद बचपन में ही तैयार होने लगती है। हर नया अनुभव, हर नई चुनौती और हर नई जगह हमें कुछ न कुछ जरूर सिखाती है। प्रियंका ने भी हर परिस्थिति को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और खुद को बेहतर बनाती गई। और बस यही था उनकी जिंदगी का सबसे पहला सक्सेस मंत्रा, यानी कि हर बदलाव को एक मौके की तरह देखिए, क्योंकि कभी कभी वही बदलाव आपको मंजिल तक पहुंचा देते हैं। वक्त हो गया है अभी एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आता है आपके लिए आपके सक्सेस होने के मंत्रास। और आज हम बात कर रहे हैं इस जर्नी में प्रियंका चोपड़ा की। दोस्तों, पिछले सेगमेंट में हमने प्रियंका चोपड़ा के बचपन और उनके शुरुआती जीवन के बारे में जाना। हमने देखा कि कैसे अलग अलग शहरों और देशों में रहने के अनुभव ने उनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस और अडेप्टिबिलिटी को मजबूत बना दिया। लेकिन अब उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उन्हें पूरी दुनिया के सामने लाने वाला था। दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा ने कभी सोचा नहीं था कि वो ब्यूटी पेजेंट की दुनिया में इतनी बड़ी पहचान बना लेंगी। कहा जाता है कि उनकी माँ ने उनकी कुछ तस्वीरें फेमिना मिस इंडिया कंपटीशन के लिए भेजी थी। ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन इसी कदम ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। साल 2000 में प्रियंका ने फेमिना मिस इंडिया कंपटीशन में भाग लिया। देश भर से आई टैलेंटेड और कॉन्फिडेंट कंटेस्टेंट के बीच अपनी जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन प्रियंका ने अपनी पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस और कॉन्फिडेंस के दम पर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उनकी मेहनत रंग लाई और वो मिस इंडिया पेजेंट के टॉप विनर में शामिल भी हुई। और इसके बाद उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, यानी कि मिस वर्ल्ड 2000 कंपटीशन में। सोचिए दोस्तों, सिर्फ 18 साल की एक यंग लड़की जो पूरे देश की उम्मीदों को लेकर इंटरनेशनल स्टेज पर खड़ी हो, ये किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़े प्रेशर हो सकता है। लेकिन प्रियंका ने इस प्रेशर को अपनी ताकत बना लिया। दिसंबर 2000 में लंदन में आयोजित मिस वर्ल्ड कंपटीशन में प्रियंका चोपड़ा ने दुनिया भर के कंटेस्टेंट्स को पीछे छोड़ते हुए मिस वर्ल्ड 2000 का खिताब अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ वो दुनिया भर में पहचानी जाने लगी। भारत के लिए भी ये एक गर्व का पल था। लेकिन दोस्तों, इस जीत के पीछे सिर्फ खूबसूरती ही नहीं थी, इसके पीछे था कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, तैयारी और खुद पर भरोसा। प्रियंका ने साबित कर दिया कि असली पहचान सिर्फ बाहरी रूप से नहीं बल्कि व्यक्तित्व और सोच से बनती है। यहाँ से हमें प्रियंका चोपड़ा का दूसरा सक्सेस मंत्रा मिलता है कि जब जिंदगी आपको एक मौका दे तो उसे पूरी तैयारी और पूरे विश्वास के साथ अपनाइए। कभी कभी एक मौका ही आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर हम बात करते हैं सक्सेस होने की, और आज इस सक्सेस मंत्रा की जर्नी में हम चल रहे हैं प्रियंका चोपड़ा के साथ। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा की जर्नी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे प्रियंका चोपड़ा ने सिर्फ 18 साल की उम्र में मिस वर्ल्ड 2000 का खिताब जीतकर पूरे देश का नाम रोशन किया। लेकिन दोस्तों, एक टाइटल जीतने और उसके बाद उस सफलता को बराबर रखना दोनों अलग बातें होती हैं। प्रियंका के लिए असली चुनौतियां अब शुरू होने वाली थी। मिस वर्ल्ड बनने के बाद प्रियंका चोपड़ा के पास कई नए अवसर आए। इस दौरान उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की तरफ अपने कदम बढ़ाए। उनकी शुरुआती फिल्मों में साउथ इंडियन सिनेमा के प्रोजेक्ट भी शामिल रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना इतना आसान नहीं था। फिल्म इंडस्ट्री में पहले से कई स्टेब्लिश्ड और मजबूत लोग थे और हर साल नए चेहरे भी आ रहे थे। ऐसे में किसी नए कलाकार के लिए अपनी अलग जगह बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। प्रियंका को भी कई बार क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों को लगता था कि ब्यूटी पेजेंट विनर सिर्फ ग्लैमर तक ही सीमित रहते हैं और एक्टिंग में ज्यादा सफल नहीं हो पाते, लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने इन बातों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने लगातार मेहनत की, एक्टिंग को सीखा और नए रोल के साथ खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की। धीरे धीरे उनकी मेहनत नजर भी आने लगी। फिर आया साल 2003। साल 2003 में आई फिल्म अंदाज ने उन्हें पहली बड़ी सफलता दी। इस फिल्म में उनके काम को काफी सराहा गया और उन्हें अवार्ड्स भी मिले। इसके बाद मुझसे शादी करोगी, एतराज और कई अन्य फिल्मों में उनके करियर को मजबूती दी। खास बात तो ये थी कि प्रियंका सिर्फ ग्लैमरस रोल तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने हर तरह के किरदार निभाने की कोशिश की और अपनी पहचान को साबित किया। दोस्तों, सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, बल्कि प्रियंका चोपड़ा की जर्नी हमें बताती है कि पहली जीत के बाद भी लगातार मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो मिस वर्ल्ड जीतने के बाद रुक जाती तो शायद आज उनका नाम दुनिया की सबसे सफल एंटरटेनर में शामिल ना होता। यहाँ से हमें प्रियंका चोपड़ा की जर्नी से तीसरा सक्सेस मिलता है, और वो ये है कि सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक कंटिन्यूस जर्नी है। हर अचीवमेंट के बाद खुद को और बेहतर बनाने की और असली ग्रोथ को हासिल करने की। वक्त हो गया है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। सक्सेस मंत्रा में आज हम चल रहे हैं प्रियंका चोपड़ा की जर्नी के साथ। पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआती संघर्षों का सामना किया और धीरे धीरे इंडस्ट्री में अपनी जगह बनानी शुरू की। लेकिन एक अच्छी एक्ट्रेस और एक सुपरस्टार में फर्क होता है। सुपरस्टार वही बनता है जो नए चैलेंजेस लेने से नहीं डरता, और प्रियंका चोपड़ा ने भी कुछ ऐसा ही किया। दोस्तों, जब कई एक्टर्स एक ही तरह के रोल्स करके अपनी सेफ इमेज बनाए रखना पसंद करते थे, तब प्रियंका ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने ऐसे किरदार निभाने शुरू किए जो चैलेंजिंग भी थे और रिस्क भरे भी। उनका मानना था कि अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है। फिर आया साल 2008। साल 2008 में आई फिल्म फैशन उनके करियर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। इस फिल्म में उन्होंने एक स्ट्रगलिंग मॉडल का किरदार निभाया जिसमें सक्सेस, फेलियर, प्रेशर और कमबैक की कहानी दिखाई गई थी। प्रियंका ने इस रोल को इतनी ईमानदारी के साथ निभाया कि दर्शक और क्रिटिक्स दोनों ही उनके फैन हो गए। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला था। इसके बाद कमी ने सात खून माफ, बर्फी और मैरी कॉम जैसी फिल्मों में उनकी एक्टिंग की रेंज को और ज्यादा मजबूती से सबके सामने रखा। खासकर मैरी कॉम में उन्होंने ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर की भूमिका निभाई और उसके लिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की तैयारी भी की। ये दिखाता है कि वो हर रोल को सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह लेती थी। प्रियंका की खास बात तो ये थी कि वो हर फिल्म के साथ कुछ नया करने की कोशिश करती थी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे या फिल्म चलेगी या नहीं। उनका फोकस हमेशा अपने काम को बेहतर बनाना था। इसी सोच ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे सफल और सम्मानित एक्ट्रेस में शामिल कर दिया। दोस्तों, जिंदगी में ना कई बार हमें भी ऐसे ही फैसले लेने पड़ते हैं जहाँ पर रिस्क होता है, लेकिन अगर हम डर की वजह से नए मुकामों को छोड़ दें तो शायद हम भी अपनी असली क्षमता को कभी नहीं जान पाएंगे। प्रियंका चोपड़ा का चौथा सक्सेस मंत्र है कि ग्रोथ तब शुरू होती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का साहस करते हैं। रिस्क के बिना बड़ी सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। और इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हुस्नी हूं आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम चल रहे हैं प्रियंका चोपड़ा की जर्नी के साथ। अब तक हमने प्रियंका चोपड़ा की जर्नी के कई अहम पड़ाव देखे हैं। एक छोटे शहर की लड़की ने मिस इंडिया बनने तक का सफर तय किया, बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना और फिर चैलेंजिंग रोल्स के जरिए सुपरस्टार के रूप में उभरना। लेकिन प्रियंका चोपड़ा की सोच हमेशा बड़ी रही। जब उन्होंने बॉलीवुड में सब कुछ हासिल कर लिया था तब उन्होंने एक और बड़ा सपना देखने की हिम्मत की कि हॉलीवुड में अपनी पहचान बनाएं। वो भी कैसे दोस्तों, किसी नए देश, नए इंडस्ट्री और नए ऑडियंस के बीच खुद को एस्टेब्लिश करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आप पहले ही अपने देश में एक सक्सेसफुल स्टार हो। लेकिन प्रियंका ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनके लिए सीखने और आगे बढ़ने की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा भी बन गई। उनके करियर का एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो था अमेरिकन टेलीविजन सीरीज क्वांटिको। इस सीरीज में प्रियंका ने लीड रोल निभाया और फिर पहली साउथ एशियन एक्ट्रेस में से एक बनी जिन्होंने अमेरिकन टेलीविजन पर इतना बड़ा लीड रोल प्ले किया। क्वांटिको की सफलता के बाद दुनिया भर के दर्शकों ने प्रियंका चोपड़ा को एक नए रूप में भी देखा। उनकी एक्टिंग, उनके कॉन्फिडेंस और स्क्रीन प्रेजेंस ने इंटरनेशनल ऑडियंस को भी प्रभावित किया। इसके बाद उन्होंने हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया और कई बड़े ग्लोबल इवेंट्स का हिस्सा भी बनी। लेकिन इसमें सबसे खास बात तो ये थी कि ग्लोबल सक्सेस मिलने के बाद भी प्रियंका ने अपनी भारतीय पहचान को कभी नहीं छोड़ा। वो हर मंच पर अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों पर गर्व करती हुई नजर आई। इसी वजह से वो सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं है बल्कि भारत की एक ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव भी बन गई। दोस्तों, अक्सर लोग अपने सपनों की सीमा खुद तय कर लेते हैं, लेकिन प्रियंका चोपड़ा की कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आप अपनी मंजिल किसी एक शहर या फिर किसी एक देश या फिर किसी एक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रखते। यहाँ से हमें प्रियंका चोपड़ा की लाइफ से पांचवा सक्सेस मंत्र मिलता है, वो है कि सपने हमेशा बड़े

देखिए, जब आप अपनी सोच की सीमा बढ़ा देते हैं, तब आप अपनी संभावनाओं की असली ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। और इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। सुनी बहुत ही प्यार सा गाना, सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। दोस्तों, पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का सफर तय किया, खुद को एक ग्लोबल आइकन के रूप में स्थापित भी किया। लेकिन दोस्तों, असली सफलता सिर्फ नाम, शोहरत या फिर अवार्ड्स तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि असली सफलता तब होती है जब आप अपनी पहचान और अपने प्रभाव का इस्तेमाल दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करते हैं। प्रियंका चोपड़ा की कहानी का ये पहलू भी उतना ही प्रेरणादायक है। एक्टिंग के साथ साथ प्रियंका ने बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में भी अपने कदम मजबूती से बनाए रखे। उन्होंने कई बिजनेस वेंचर्स और ब्रांड के साथ काम भी किया। ये साबित किया कि एक कलाकार सिर्फ एक फील्ड तक सीमित नहीं होता है, बल्कि उनकी सोच हमेशा नई चीजें सीखने और नए अवसर तलाश

क्वालिटी कंटेंट और नए टैलेंट को मौका देने पर भी रहा है। दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा एक सक्सेसफुल ऑथर भी हैं। उनकी बुक दुनिया भर में काफी चर्चा में रही है। इस किताब में उन्होंने अपनी जिंदगी के अनुभव, संघर्ष और सफलता और साथ ही सीखों को खुलकर साझा किया है। इससे ये भी पता चलता है कि हर सफलता व्यक्ति के पीछे एक इंसान होता है जो लगातार सीखता रहता है और इवॉल्व करता रहता है अपने आप को। लेकिन उनके काम का सबसे प्रेरणादायक पहलू है कि उनके सोशल कॉजेस के प्रति समर्पण। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा ने सालों से यूनिसेफ के साथ जुड़ी रही हैं और उन्होंने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों के लिए आवाज उठाती रही हैं। उन्होंने कई सामाजिक मुद्दों पर भी खुलकर अपनी बात रखी है और अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए किया है। दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा की जर्नी हमें ये सिखाती है कि सफलता का असली मतलब सिर्फ खुद को आगे बढ़ाना नहीं होता है, बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर चलना होता है। जब आप अपनी उपलब्धियों का इस्तेमाल समाज के हित में करते हैं, तब आपकी सफलता और भी ज्यादा मायने रखने लग जाती है। यहाँ हमें प्रियंका चोपड़ा की लाइफ से, उनकी जर्नी से हमें एक और छोटा सक्सेस मंत्र मिलता है कि अपनी सफलता को सिर्फ अपने तक ही सीमित मत रखिए, बल्कि उसे दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी लाने के लिए इस्तेमाल करिए, एक जरिया बन जाइए। वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्र। और आज की इस खास सफर में हमने प्रियंका चोपड़ा की जिंदगी के अहम पड़ाव देखे हैं। एक आर्मी फैमिली में जन्मी एक लड़की जो बचपन में अलग अलग शहरों में रही, फिर मिस वर्ल्ड बनी, बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई, हॉलीवुड तक पहुंची और आज दुनिया की सबसे पहचानी जाने वाली भारतीय हस्तियों में से एक बन गई। लेकिन दोस्तों, हर सफलता की कहानी के पीछे कुछ ऐसे सबक भी होते हैं जो हम सबको अपनी लाइफ में काम आ सकते हैं। प्रियंका चोपड़ा का पहला सक्सेस मंत्र है कि कभी भी अपने सपनों को मत छोड़िए या उसे छोटा मत समझिए, उसके ऊपर हमेशा काम करते रहिए। दूसरा सक्सेस मंत्र है, बदलाव से मत डरिए। जी हाँ, लाइफ में जब तक चेंजेस नहीं आएंगे, हम अपने आप को उसके साथ कैसे ढाल पाएंगे और या उसके साथ कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए जब चैलेंजेस आते हैं या कोई बदलाव आता है तो सोचिए कि कुछ हमारे भले के लिए ही हो रहा है। तीसरा है, खुद पर विश्वास रखिए। जी हाँ, विश्वास खुद पर रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना भी बहुत जरूरी है। चाहे आप कोई बड़े बिजनेसमैन बन गए हो या कोई पेजेंट क्यों ना हो, बॉलीवुड के स्टार क्यों ना हो, हॉलीवुड के स्टार क्यों ना हो, हर जगह पर कंपटीशन था, लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को किसी से कम नहीं समझा और हमेशा अपने एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ती रहीं। चौथा सक्सेस मंत्र है, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। टैलेंट आपको शुरुआत दे सकता है, लेकिन लगातार मेहनत ही आपको लंबे समय तक सफल बनाती है। प्रियंका की जर्नी इसका बेहतरीन उदाहरण भी है। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण सीख, सफलता के साथ विनम्रता और जिम्मेदारी भी जरूरी है। अपनी अचीवमेंट के साथ साथ उन्होंने सामाजिक कार्यों, बच्चों की भलाई और मीनिंगफुल इनिशिएटिव में भी योगदान दिया है। ये बताता है कि असली सफलता वही है जो दूसरों के भी काम आए। दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा की कहानी हमें ये बताती है कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई ये उतना मायने नहीं रखता, बल्कि मायने रखता है आपका विजन, आपकी मेहनत और आपका हौसला। अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं और सीखना कभी नहीं छोड़ते तो दुनिया की कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं है। और इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ मैं आरजे स्नेहा ले रही हूँ आपसे इजाजत। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी एक और नई शख्सियत की कहानी के साथ, जिनकी जिंदगी से हमें सफलता का एक नया मंत्र मिलेगा। तब तक के लिए बड़े सपने देखते रहिए, उनके लिए मेहनत कीजिए और अपने आप पर भरोसा रखिए। और जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगरा जधाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ। और बहुत सारी होती हैं बातें हर शनिवार ना, आपको बड़ी खूबसूरत जगह लेकर के जाती हूँ घुमाने के लिए। कभी जाते हैं हम कश्मीर तो कभी कन्याकुमारी, कभी जाते हैं वेस्ट बंगाल तो कभी जाते हैं हम गुजरात। अलग अलग जगहों पर, भारत के अलग अलग कोनों में, और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि हम भारत से बाहर भी जाते हैं घूमने के लिए। और आज जिस जगह आपको घूमने के लेकर के आई हूँ भाई, वो तो इंडिया की ही बहुत ही खूबसूरत जगह है। आज आपको सदियों पुरानी मिट्टी, जहाँ इतिहास का आईना बन जाए और हर गली से जास्मीन की खुशबू आए, एक ऐसी जगह आपको लेकर के जाने वाली हूँ। तो जरा सोचिए, जास्मीन की बात हो रही है, किस जगह की मैं बात कर रही हूँ? तो चलिए इसके बारे में आपको बताऊंगी कि किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं। और साथ ही अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं या फिर कोई संदेश है, कोई गाना है सुनना चाहते हैं, तो आप जरूर हमें मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 8010781078। फिलहाल गई मन जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ।
2: इज्जत की चिंता ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन।
3: गुरुदेव, यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए।
2: हाँ गुरुदेव।

बनाए, ऊपर अकेले बिल अंदर नकली घी और चाय, पॉपलीन का बदल के नंबर टेरीलीन बनाए, या बेईमानी तेरा आसरा बोल के

मेरी सीट पे जटा जूट संग है महाराज पधारे, चिमटा चरस चिलम और चेले साथ साथ है सारे, लेकर भी गाड़ी में खड़े शरीफ बेचारे।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाते हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। और आज ना आपको बहुत खूबसूरत सी जगह लेकर के मैं आ गई हूँ। और आज के इस प्रोग्राम में ना हम जा रहे हैं साउथ इंडिया के ऐसे शहर में जिसे द एजेंट्स ऑफ द ईस्ट और या फिर थुंगा नागरम जो है यानी कि द सिटी ऑफ दैट नेवर स्लीप जिसे कहा जाता है। और यानी कि देखिए ये जो जगह है ना ये कभी सोती नहीं है। आज हमारा रास्ता ना मुड़ रहा है मदुरई की तरफ। इमेजिन कीजिए एक ऐसा शहर जिसका डिजाइन बिल्कुल एक खिलते हुए लोटस यानी कि कमल के फूल जैसा है, जिसके सेंटर में माता मीनाक्षी का एक विशाल एक बड़ा भव्य मंदिर है और चारों तरफ से शहर बसे हुआ है और पूरा शहर बड़ा खूबसूरत है। जब हम पहली बार वहां जाएंगे तो मदुरई की मिट्टी पर जब आप कदम रखेंगे तो हवाओं में गरम फिल्टर की कॉफी जो है फिल्टर कॉफी वही उसकी ताजा खुशबू और मदुरई के जो मल्ली यानी कि जो जैस्मिन है इस फूलों की यहाँ पर आपको खुशबू भाई इतनी अच्छी आपको महका देगी बिल्कुल। आज के इस प्रोग्राम में हम मदुरई जाने वाले हैं और यहाँ की जो पुरानी जिंदा गलियों से हम भाई का जो एहसास है हम ढूंढने वाले हैं और वहाँ के ग्रैंड पैलेस आपको मैं उसके बारे में बताने वाली हूँ, अनोखे किस्से आपको सुनाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं मदुरई और यहाँ की बहुत सारी बातें लेकर के आपके पास आई हूँ। तो फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ।
1: आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, ये हुई ना बात।

मंदिर के ऊंचे गोपुरम जब आकाश को छूते हैं तो लगता है आस्था ने खुद को पत्थर पर उकेर दिया है। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं, मैं हूँ साक्षी आपके साथ। प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा एक खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी बातें होती हैं। मदुरई की पहचान, इसकी धड़कन और इसका दिल, सब कुछ एक ही जगह बसा हुआ है और वो है मीनाक्षी अम्मन टेम्पल। ये मंदिर जो आर्किटेक्चर है ना, उसका एक ऐसा अजूबा है जिसे देख कर ना सांसें रुक जाती हैं। इस मंदिर में 14 विशाल गोपुरम यानी कि टावर हैं और सबसे बड़े टावर पर हजारों देवी देवताओं की, जानवरों की कलरफुल मूर्तियां इतनी बारीकी से बनाई गई हैं कि आप दंग रह जाएंगे। ये मंदिर माता पार्वती यानी कि मीनाक्षी और भगवान शिव यानी कि सुंदरेश्वर को डेडिकेट ये मंदिर किया गया है। और जब आप यहाँ पर जाएंगे सुबह सुबह इस मंदिर के अंदर एंटर जब आप करते हैं तो वहाँ की गोल्डन लोटस पॉन्ड जो है उसका पानी चमक रहा होगा। कहते हैं कि पुराने जमाने में यहाँ जो पोएट होते थे अपनी किताबें पानी में डालते थे और जो किताब सच्ची होती थी वो पानी पर तैरते लगती थी। मंदिर के अंदर की हवा भी चंदन और जो कपूर है उसकी खुशबू वहाँ पर आती है, पवित्र खुशबू वहाँ पर आती है, आपके मन को

एक अलग लेवल की यहाँ पर शांति मिलेगी जब आपको इस मतलब उस भव्य मंदिर के जो अंदर एहसास है ना, उसमें रम जाएंगे आप खो जाएंगे उस टाइम पर ना, मतलब उस जगह में, उस एटमॉस्फेयर में, उस ऑरा में आप एकदम गायब हो जाएंगे सुकून से। वहीं आप बस कहीं बस खो जाएंगे, बस सुकून में ही खो जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला है एक छोटे से ब्रेक की इजाज़त लेने का, क्योंकि मदुरई की बातें हो रही हैं, इतनी खूबसूरत बातें हो रही हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और प्यारे प्यारे गाने सुनते हैं। एंजॉय कीजिए आप भी ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा एक खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। मीनाक्षी मंदिर के अंदर की मैं अब बात कर रही हूँ। पहले हम मदुरई आ जाए हैं तो वहाँ का जो सेंटर पॉइंट है वो है मीनाक्षी अम्मन टेम्पल। मीनाक्षी मंदिर के अंदर एक ऐसी देखिए जगह है, एक ऐसा हॉल है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अय्यरम काल मंडपम यानी द हॉल ऑफ 1000 पिलर्स। असल में यहाँ 985 पिलर्स हैं और एक पिलर पर इतनी बारीक जो देखिए नक्काशी जो है वो की गई है जिसे देखकर लगता है जैसे पत्थर को जो देखिए मक्खन की तरह जो है काटा गया हो और इतनी खूबसूरत जो नक्काशी है वो की गई है कि क्या कहने। जब आप वहाँ जाएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। और एक और मैं आपको बात बताती हूँ, बड़ी जादुई बात है ये, बल्कि कई लोग हैरान होंगे ये जानकर जिनको अभी नहीं पता है। देखिए इसके बाहर खड़े होकर जब आप इन पत्थरों पर धीरे धीरे थपथपाते हैं तो उनमें से संगीत के 7 अलग अलग सुर निकलते हैं, यानी कि सारे गामा पा धानी सा माफ कीजिएगा मेरी आवाज लेकिन जब आप खुद एक पिलर को हल्के से छूकर और आप छुएंगे और उसमें से मेटल जैसी आवाज जो है वो आएगी तो मतलब आप दंग रह जाएंगे। और ये आवाज जो है बिल्कुल एक सुर की तरह जो है वो निकलती है, इसलिए इसे म्यूजिकल पिलर्स भी कहा जाता है। ये हमारे पुरखों के ज्ञान और इंजीनियरिंग का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है जो बताता है कि पुराने जमाने में साइंस और आर्ट कितना गहरा जो है वो कितनी अच्छी तरह से जो है वो जुड़े हुए हैं। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। चलिए अब मंदिर से थोड़ा बाहर निकलते हैं और चलते हैं मदुरई के रॉयल इतिहास की तरफ, थिरुमलाई नायक्कर महल। इसे जो राजा है थिरुमलाई नायक ने 1636 में बनवाया था। जब आप इस महल के देखिए जाएंगे, आंगन में जाएंगे, वहाँ खड़े जब होंगे तो आपको सबसे पहले दिखेंगे इसके विशाल सफ़ेद खम्भे यानी कि पिलर्स। और ये खम्भे इतने बड़े और इतने ज़्यादा बड़े मतलब मोटे हैं कि 4 लोग मिलकर भी एक खम्भे को नहीं पकड़ सकते हैं। इस महल का आर्किटेक्चर इटालियन और इस्लामिक स्टाइल का इससे बना हुआ है और एक परफेक्ट मिक्स है। जब आप यहाँ शाम को जाएंगे तो देखिए यहाँ पर साउंड एंड लाइट शो आप ज़रूर देखिएगा, जहाँ लाइट्स की रोशनी में महल की दीवारें जो हैं वो बोल उठती हैं और राजा थिरुमलाई की बहादुरी और उनके ख्वाब की दास्तां सुनाई जाती है। ये महल आपको एहसास करवाता है कि मदुरई सिर्फ एक स्पिरिचुअल शहर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा रॉयल किंगडम भी है। चलिए देखिए, एक बहुत रॉयल किंगडम की हम बात कर रहे हैं और ये रहा था मतलब बहुत ही खूबसूरत एक टाइम पर जो था वो एक किंगडम रहा था और उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। चलिए अब मदुरई की बात करें, और भी बहुत सारी जगहें यहाँ घूमने के लिए, खाने पीने की भी बहुत सारी जगहें हैं। अब खाना तो खाएंगे, अब आए हैं मदुरई तो, लेकिन उससे पहले अभी लेते हुए एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं सफरनामा। सफरनामा एक खूबसूरत से प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ। हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज आपको बड़े खूबसूरत सी एक जगह लेकर के आई हूँ और ये जगह है मदुरई। जी हाँ, मदुरई की हम बात कर रहे हैं। मीनाक्षी मंदिर में हर रात एक बहुत ही यूनिक और इमोशनल रिचुअल होता है, जिसे जो है वो पालियाराई सेरेमनी, द नाइट सेरेमनी जिसे कहते हैं। हर रोज रात को लगभग 9 बजे भगवान सुंदरेश्वर यानी कि शिवा की, यानी कि भगवान शिव की, भगवान देखिए यहाँ पर जो हमारे महाकाल हैं, उनकी मूर्ति को एक रंगीन पालकी में बिठाकर ढोल नगाड़ों और आरती के साथ माता मीनाक्षी के दरबार में, यानी कि माता पार्वती के दरबार में ले जाया जाता है ताकि वो दोनों एक साथ आराम कर सकें। जब आप सामने से ये देखेंगे ना, ये दृश्य देखेंगे, तो पूरा मंदिर जो है बादाम और चंदन के जो धुआंदार रोशनी से जो है वो भरा हुआ होता है और लोग भावुक हो जाते हैं, इमोशनल होकर जो भजन कीर्तन है वो करते हैं। और ये जो रिचुअल है, ये जो देखिए वहाँ पर होता है, जब मदुरई के लोग जब देखते हैं तो आप मतलब जब आप वहाँ जाएंगे ना, जब आप उन लोगों से बात करेंगे, ईश्वर को सिर्फ एक भगवान नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा लोग मानते हैं वहाँ, जिन्हें हर रात प्यार से सुलाया जाता है। ये 20 मिनट आपके दिल को एक ऐसा देखिए एहसास देंगे, जो गर्माहट है, जो भक्ति है, जो शक्ति है वो दिखाएंगे और आप कभी वो भूल नहीं पाएंगे, बहुत खूबसूरत लगेगा वो आपको। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जिसके बाद आपको और भी बहुत सारी बातें बताऊंगी, लेकिन फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, और बहुत सारी होती हैं बातें। जायका वहाँ का बेहतरीन होता है जहाँ खाने के हर एक बाइट में शहर का जश्न खुला हो। अब थोड़ी पेट पूजा हो जाए तो देखिए, मदुरई को फूड कैपिटल ऑफ तमिलनाडु भी कहा जाता है। यहाँ का खाना एकदम लाजवाब है। अगर आप यहाँ हैं तो सबसे पहले आपको ट्राई करना चाहिए यहाँ का आइकॉनिक ड्रिंक जिगर ठंडा। इसका नाम सुनकर ही मतलब ऐसा लगता है जैसे जिगर को ठंडक ये पहुंचा दे। ये जो दूध आलमंड यानी कि बादाम और गोंद यानी कि बादाम गोंद से जो है वो तैयार किया जाता है, और साथ ही साथ इसमें जो है सरसा पारिल्ला जो सिरप है वो डाला जाता है, और एकदम रिच आइसक्रीम से ये बनती है। एक सब में आपको जन्नत का एहसास हो जाएगा। और अगर आप नॉन वेज के शौकीन हैं तो मदुरई का जो करी डोसा है, करी डोसा ही है, यहाँ पर ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। ये एक मोटा डोसा होता है जिसके ऊपर मसालेदार चॉप किया हुआ मटन जो है और अंडा एग जो है इसकी लेयरिंग होती है। जब आप यहाँ जाएंगे तो देखिए आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ लगेगा, और क्रंची और तीखा स्वाद जुबान पर आपको रह जाएगा। और यहाँ हर स्वाद में ना मज़ा है। यहाँ का खाना थोड़ा मसालेदार ज़रूर है लेकिन आपको काफ़ी कमाल लगेगा। चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, और बहुत सारी होती हैं बातें। मीनाक्षी मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा और विशाल टेम्पल टैंक यानी कि तालाब है, जिसे कहते हैं वांदियोर मारियम्मन तेप्पाकुलम, और ये पूरे तमिलनाडु का सबसे बड़ा टेंपल टैंक यानी कि जो पॉन्ड है इसे माना जाता है। और ये इतना बड़ा है कि इसके बीच में एक छोटा जो है छोटे से हरा भरा जो आइसलैंड है जहाँ एक छोटा सा मंदिर स्थित है। कहते हैं कि जब थिरुमलाई जो राजा है यहाँ के, जब जो महल है जिसने बनाने के लिए यहाँ की मिट्टी जो है वो खोदी जा रही थी, तो ज़मीन के नीचे से भगवान गणेश की बहुत बड़ी मूर्ति निकली थी, और बाद में उस खाली जगह को इस विशाल तालाब में बदल दिया गया। और जनवरी फरवरी के महीने में यहाँ जो फ्लोट फेस्टिवल है ये होता है, जहाँ उस जगह पर उस जो आइलैंड एक बना हुआ है तो इस पे मंदिर को लाखों दियों से सजाया जाता है, और माता मीनाक्षी यानी कि माता पार्वती की जो एक बोट निकाली जाती है शाम को इस तालाब के किनारे, जो अगर आप बैठते हैं तो ठंडी हवा का मज़ा ले सकते हैं और सुकून आपको यहाँ मिल जाएगा। मदुरई एक ऐसी जगह है, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर आपको हर जगह मंदिर जो है वो आपको मिल जाएंगे, और साथ ही आपको जो नेचर से आप कनेक्ट कर पाएंगे, जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं उसे महसूस कर पाएंगे, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है वो भी आप महसूस कर पाएंगे। अच्छा, एक और ख़ास बात मैं आपको बताती हूँ, जो मदुरई है ना इसको जैस्मिन कैपिटल भी जो है वो कहा जाता है। फूलों की महक जब शहर की हवाओं में और घुल जाना तो हर रास्ता एक नया ख्वाब लगने लगता है, और हर रास्ता आपको ख्वाब ही लगने लगेगा जब आप मदुरई आएंगे। चलिए इसके बारे में भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा एक खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आती हूँ, हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। और आज लेकर के आई हूँ आपको मदुरई। मदुरई की एक और बहुत बड़ी पहचान है वहाँ के जासमीन यानी कि मोगरे के फूल, जिसे लोकल लैंग्वेज में मदुरई मल्ली कहते हैं। और यहाँ के जासमीन के फूल यानी कि जो मोगरे के जो फूलों की खुशबू है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी यूनिक है कि इसे GI टैग यानी कि ग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो मिला हुआ है। जब आप मदुरई के फ्लावर मार्केट में जाएंगे तो आपको हर तरफ सफ़ेद फूलों के ढेर दिखाई देंगे और हवाओं में एकदम महक जो है ये रहती है वहाँ के फूलों की, यानी कि जो फूल हैं वहाँ पर मोगरे के, उसकी आपको खुशबू जो है ये आपको उसका महसूस आपको हो जाएगी। और यहाँ की जो महिलाएं हैं अपने बालों में ये गजरा बहुत ही प्यार से लगाती हैं और जब आप यहाँ जाएंगे, और मैंने सुना है कि मदुरई मल्ली की खुशबू इतनी फेमस है कि ये पूरी दुनिया के बड़े बड़े परफ्यूम ब्रांड्स यहाँ से फूल एक्सपोर्ट कराते हैं, और इस मार्केट से गुजरने पर आपको समझ आ जाएगा कि मदुरई सिर्फ पत्थरों का नहीं बल्कि खुशबू का भी शहर है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील नाइस।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा एक खूबसूरत से प्रोग्राम जिसमें बहुत सारी बातें करती हूँ। मदुरई आज हम घूमने के लिए आए हैं। मदुरई के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिक साइट जो है यहाँ पर है, जो हमारे देश के इतिहास में भी है, द गांधी मेमोरियल म्यूजियम। पूरी इंडिया में ऐसे सिर्फ 5 गांधी म्यूजियम है और मदुरई का ये एक जो म्यूजियम है उनमें से ये एक है। पता देखिए, मैं आपको इसलिए बता दूं, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए क्योंकि 1921 में मदुरई में ही महात्मा गांधी ने पहली बार देखा कि हमारे देश के गरीब जो है किसान कपड़ों के बिना रह रहे हैं, और उन्होंने वहीं फैसला किया कि वो पूरी अपनी ज़िंदगी सिर्फ एक छोटे की देखिए जो खादी धोती है, छोटी सी खादी धोती जो है वो पहनकर गुजारेंगे। और इस म्यूज़ियम के अंदर वो ऐतिहासिक कपड़ा यानी कि ब्लड स्टेन क्लॉथ रखा हुआ है जो बापू ने अपनी आखिरी वक्त में पहना हुआ था। जब आप इस म्यूज़ियम के हॉल में घूमते हैं और आज़ादी के उन पुरानी फ़ोटोज़ और लेटर्स को आप जब देखते हैं तो आपकी आंखें नम हो जाएंगी और दिल में देशभक्ति जो है वो भाई आ जाएगी, और गुरूर होगा आपको उस देशभक्ति पर। आपको एहसास होगा कि हमारे देश ने क्या कुछ नहीं किया, हमारे देश के जवानों ने, हमारे देश के उन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया है। यहाँ पर गांधी जी की अगर हम बात करें तो देखिए बहुत कुछ है, और साथ ही यहाँ पर आपको मदुरई की मैं बात आपसे कर रही हूँ। मदुरई की बात करें तो मदुरई को लोकल बड़े प्यार से कहते हैं ठुंगा नागरम, और इसका मतलब होता है द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। पूरे तमिलनाडु में ये एकमात्र शहर है जहाँ रात के 2 बजे भी आपको मार्केट्स खुले मिलेंगे, सड़कों पर चहल पहल होगी और गर्म इडली या फिल्टर कॉफ़ी आपको मिल रही होगी। जब आप यहाँ रात को जाएंगे तो 1 बजे के करीब भी आपको यहाँ पर लोग आसपास खूब चलते हुए मिल जाएंगे, आसपास बातें करते हुए लोग मिल जाएंगे, लोग दुकानों पर खड़े होकर बातें कर रहे होंगे, ऑटो चल रहे होंगे, स्ट्रीट फूड स्टॉल्स जो है वो चल रहे होंगे और वहाँ पर बन रहा होगा परौठा। मदुरई के लोग बहुत ही हार्डवर्किंग होते हैं और उनकी लाइफ में एक अलग ही जोश होता है, और ये शहर आपको सिखाता है कि ज़िंदगी में भी थकना नहीं चाहिए, हमेशा चलते रहना चाहिए जैसे ये शहर चलता रहता है। चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये जो प्रोग्राम है इसमें बहुत सारी बातें लेकर के आती हूँ और आपसे बातें करती हूँ। इसी के साथ वक्त जो है ये आपको बताने का है कि देखिए इतनी खूबसूरत ये जगह है, तो आप इस जगह पर ना सिर्फ घूमने मत आइए, यहाँ से आप जो है कुछ ना कुछ लेके जरूर जाइएगा, शॉपिंग जरूर कीजिएगा। शॉपिंग तो बनती है। मीनाक्षी मंदिर के बिल्कुल पास स्थित है पुट्ठू मंडपम। ये एक सदियों पुराना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसे राजा थिरुमलई नायक ने बनवाया था। इस मार्केट के अंदर जब आप घूमेंगे तो आपको दोनों तरफ लाइन से टेलर्स बैठे दिखाई देंगे जो कपड़े सिलते हैं। और यहाँ की सबसे फेमस चीज़ है मदुरई संगुड़ी साड़ी, और ये एक खास तरह की टाई और टाई एंड डाई जो कॉटन की साड़ी होती है जो बहुत ही लाइट वेट और कलरफुल होती है। और साथ ही यहाँ बेहतरीन क्वालिटी के आपको जो ब्रास हैं यानी कि जो पीतल का काम जो है उसके दिए मूर्तियाँ आपको मिल जाएंगी। जब आप यहाँ जाएंगे तो एक कोई भी चीज़ आप ज़रूर लेकर के आएगा तो एक यादगार चीज़ जो है वो रह जाती है। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लूँगी जिसके बाद होंगी बातें, तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा. और इस सफरनामा में आज हमने करी बहुत सारी बातें. आज हम आए मदुरई और मदुरई की बहुत सारी जगहों में हमने घूमा है और एक बहुत ही सुखमय, शांति, बहुत ही अच्छी खूबसूरत जगह है. मतलब शब्द कम पड़ जाए तो भी अच्छी जगह है ये, सुकून आपको मिल जाएगा यहाँ पर. तो आप भी मदुरई जरूर जाएगा. चलिए इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला है आपसे इजाजत लेने का. मुलाकात आपसे होती रहेंगी, तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ. फील गुड, फील लाइफ. बाय बाय, टेक केयर.

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम ये मेरी लाइफ में और मैं हूं प्रांका आपके साथ और ये प्रोग्राम जहां मैं आप लोगों के पास रहती हूं 1 बजे से 3 बजे तक जी हां और ये वक्त होता है जहां हम ढेर सारी बातें करते हैं और आज आपके लिए भाई बहुत कुछ लेकर के आई हूँ क्योंकि आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसको सुनकर आपको हैरानी भी होगी लेकिन कई सारे काम आपके आसान भी हो जाएंगे। अब वो कैसे और क्या लाई हूँ ये आपको मैं बताऊंगी थोड़ी सी देर में। फिलहाल आप मुझे बताइए कैसे हैं आप, क्या हालचाल, और मैसेज आप कीजिए हमें 8010781078 हमारा नंबर है। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कोई बात आपको शेयर करनी है या कोई मैसेज आप बाकी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं या कोई गाना आपको सुनना है, कोई सॉन्ग आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए पहले एक गाना इंजॉय करते हैं, उसके बाद आपको बताऊंगी कि आज के प्रोग्राम में क्या है खास। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूं प्रांका आपके साथ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांका आपके साथ. और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ कुछ बेहद इंटरेस्टिंग हैक्स एंड फैक्ट्स. जी हाँ, जिसको सुनकर आपको मज़ा भी बहुत आएगा और साथ ही आपके कामों में हेल्प आपको मिल जाएगी. जी हाँ, क्योंकि आजकल हम हैक्स से काफ़ी हैक्स होते हैं जिनको हम अपने घर में ट्राई करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में ट्राई करते हैं, अपने काम की जगह पर ट्राई करते हैं, जिस वजह से काम हमारा काफ़ी आसान हो जाता है. और आप सभी जानते हैं कि मैं ये आप लोगों के लिए बड़े चुन चुन कर हैक्स को लेकर के आती हूँ, फैक्ट्स को आपको बताती हूँ. तो चलिए आज के प्रोग्राम में भी कुछ ऐसा ही हम करने वाले हैं. और उससे पहले आपका मैं दोबारा चाहूँगी कि साथ जो है वो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप जब हमें मैसेज करते हो, अपनी बातें जब हम तक पहुँचाते हो, तो एक तो हमें बड़ा अच्छा लगता है और दूसरा ये कहूँगी कि आपकी बातें कई बार बहुत ज़्यादा एक आइडिया या मोटिवेशन दे जाती हैं और ये बहुत अच्छा लगता है हमें देख करके. और कितने मैसेज ऐसे होते हैं जो हम बाकी लोगों को भी आपके मैसेज बताते हैं. तो बस यही साथ आप बनाए रखें रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ. नंबर है हमारा 8010781078. तो चलिए, हैक्स तो आपको बताऊँगी, लेकिन अभी क्योंकि वक्त हो गया है एक और बहुत ही छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, तो आपको सुनाती हूँ दो बहुत ही प्यारे प्यारे से गाने. रेडियो मानव रचना 107.

रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं। मैं हूं प्रियंका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और चलिए मैं आपको बताती हूँ कुछ बेहद इंटरेस्टिंग हैक्स। अच्छा, आजकल ना घबराहट हमें ज़्यादा होने लगती है ना, क्योंकि इतना काम का प्रेशर और उस प्रेशर के चलते जब हम चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं या समझ नहीं आता कि इस काम को फिक्स कैसे करना है या उसे हैंडल कैसे करना है, तो अक्सर घबराहट का सामना हमें करना पड़ता है ना। और घबराहट किसी भी काम में हो सकती है। कई बार हमें किसी की बात नहीं अच्छी लगी, हमें घबराहट शुरू हो गई, या कोई काम हम उसे कर सकते हैं, कैपेबल है, बट इतना काम के प्रेशर के चलते अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही है तब घबराहट हो जाती है, या कोई हमें कुछ कह दे तब घबराहट हो जाती है। घबराहट का कोई एक रीज़न नहीं है, कई सारी चीज़ों पर हम रिएक्ट कर जाते हैं और उस वजह से एक घबराहट का हमें सामना करना पड़ता है। और ख़ास तौर से उन लोगों के साथ में होता है जो अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं, हाँ हम इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं, या और भी बहुत कुछ। ऐसे लोग जो बोल नहीं पाते हैं, अपनी बातें रख नहीं पाते हैं, उनके साथ घबराहट का जो ये मामला है वो और ज़्यादा देखने में आता है। तो मैं तो आपसे कहूँगी कि आप घबराइए नहीं, क्योंकि घबरा करके आप अपना काम खुद खराब कर रहे हैं और आप अपने आप को कहीं ना कहीं आप डाउन समझ रहे हैं, इस वजह से घबरा रहे हैं। नहीं, आप घबराहट का रीज़न खुद को समझिए ही नहीं, आप बल्कि ये सोचिए कि इस काम को मैं कर सकती हूँ, और बोलने के बजाय इस काम को आप करके दिखाइए। तो देखिए, किसी भी तरह से घबराहट हो सकती है, लेकिन अब अगर आप चाहकर भी, मतलब बहुत चाहते हो कि घबराहट ना हो या कम हो जाए, उसके बाद भी अगर घबराहट कम नहीं हो पाती है, तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ जिससे आपकी जो घबराहट है ना उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। अच्छा, किसी काम को करने से आपको घबराहट हो रही है तो उस काम को करते वक्त च्युइंगम चबाए, जी हाँ, घबराहट कम हो जाएगी। और पता है ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब हम घबरा रहे होते हैं या किसी चीज़ को लेके परेशान होते हैं और अचानक से हमारा ध्यान भटक जाए, यानी किसी दूसरे काम में लग जाए, तो हमारा पूरा ध्यान उस दूसरे काम पर चला जाता है ना। और यही चीज़ इस केस में आपको लागू करनी है कि आपको अपना ध्यान च्युइंगम चबाने में भटकाना है, और जब आप ऐसे करोगे तो घबराहट जो है वो चली जाएगी, कम हो जाएगी। और इसको आप करके देखिएगा। आप च्युइंगम अपने पास में रखें और ये जब भी आप करें उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ, आप क्या फील कर रहे हैं, या अगर आप नर्वस हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो कितना हो रहे हैं, कितना परसेंट आप फील कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप मुझसे ज़रूर बात करना इस पर। और नंबर हमारा है 8010781078। आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए, अब आपको कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो मैं बताऊंगी और साथ के साथ सुना रही हूँ गाने, तो चलिए अगला गाना एंजॉय करते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ।

0: मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ. और ये मेरी लाइफ में आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग हैक्स बता रही हूं जिसका काम जो है जब हम कहीं फंसे होते हैं ना तब बड़ा देखने में आता है. और आज मैं खुद को मजबूत कैसे बनाना है खुद के लिए जो चीज़ें होती हैं ना वो मैं बता रही हूँ आपको. उसके लिए हो सकता है आप सोचेंगे ऐसा हम कैसे कर सकते हैं भाई. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस चीज़ पर बात कर रही हूँ. बहुत से लोग होते हैं जो अपने आप को मजबूत नहीं समझते हैं या अपने आप को बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट करना वो नहीं समझ पाते हैं, उनको नहीं आता है. और घबराहट, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी कि घबराहट लोगों को ज़्यादा होने लगती है, अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पाते हैं, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाते हैं. अगर आप भी उनमें से हैं जो ये करते करते थक चुके हैं, बहुत सारे जिसने जैसा बोला कि आप ऐसे करो वैसे करो, आप वही चीज़ें कर रहे हैं लेकिन आपको कोई भी 1% भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है. मतलब आप जैसे पहले घबराते थे, जैसे पहले अपने आप को आप बिलीव नहीं कर पाते थे, ऐसे ही आज भी अगर आपके साथ में चल रहा है तो मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज बताती हूँ जिससे आप कुछ ही दिन में मेंटली स्ट्रांग हो पाएंगे और अपने आप पर बिलीव कर पाएंगे. और सच में इस चीज़ पर आप बिलीव करो, ये वाकई में काम करती है. तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है. आपको शीशे के सामने खड़े हो जाना है और खड़े होकर खुद से बात करनी है. जितना हो सकता है आप बात कीजिए कुछ अच्छी चीज़ों पर, और जो कमियां हैं उसको आप अपने से शेयर करें, मतलब आप बोलें, लेकिन उसको फिक्स मत कीजिए. उसको ठीक कैसे करना है उस पर बात करें, यानी कि अपने आप से अच्छी बातें करनी है. अपने अंदर किसी भी तरह की कोई कमी मत निकालिए, ना ही ढूंढने की कोशिश कीजिए. बट हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई ये चीज़ मुझे लगता है ठीक करने की ज़रूरत है, तो वो भी आईने के सामने रखिए. मतलब आप ये समझ लीजिए आईने के उस तरफ भी आप हैं और इस तरफ भी आप हैं, और इस तरफ जो है जिसमें काफ़ी सारी कमियाँ भी हैं, लेकिन उस तरफ जो खड़ा है जो आप ही हैं और आप बहुत स्ट्रांग हैं. पता है आप ये रोज़ करोगे ना, आप यकीन मानिए कि आप कुछ ही दिन में मेंटली स्ट्रांग हो पाएंगे, वो मजबूत आप हो पाएंगे. और फिर एक प्रेजेंटेशन जो होती है ना वो बहुत ऑसम होती है. आपको लोग ना केवल पसंद करेंगे बल्कि बात करना चाहेंगे. और इस बारे में तो मैं अक्सर बात करती भी हूँ आपसे कि शीशे के सामने खड़े होकर बात कीजिए, आईने को अपना बनाइए, आप शीशे से प्यार कीजिए क्योंकि वही आपको मजबूत बनाएगा. तो ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. जी हाँ, तो ये आप करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा. तो ये जब भी आप करें और कोई अगर चेंज आया है आपकी लाइफ में तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं. नंबर हमारा है 8010781078. आप सुनाती हूँ आपको एक गाना जो कि आईना से ही जुड़ा है, तो आइए इंजॉय करते हैं उस गाने को. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ.
1: भोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

मैं हूं प्रांका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और आज के प्रोग्राम में ना केवल आपको हैक्स बता रही हूँ बल्कि फैक्ट्स पर भी आज बात कर रही हूँ. और अगला जो फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ ना ये आप वाकिफ होंगे. अच्छा कभी ऐसे होता है कि आपको सिर्फ जागने का मन करता है और आप मन ही मन खुश हैं, आप जाग रहे हैं, आपको नींद नहीं आएगी. पता है ये सच्ची में होता है. जब हम खुश होते हैं ना तो नींद कम हो जाती है, यानी कि कम नींद में भी काम चल जाता है. और अगर आप मन से खुश हो, मान लीजिए कोई चीज़ हुई या फिर आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिली या कुछ ऐसा जिसका आप बहुत टाइम से बहुत सालों से वेट कर रहे थे और वो आपकी लाइफ में हो गया. अब देखो खुशियों के तो कई सारे ज़रिए हो सकते हैं ना, तो हर किसी के लाइफ में एक ना एक कुछ ना कुछ ऐसा ज़रिया होता है जिससे हमें खुशी मिलती है, राइट. तो ऐसा जब होता है ना तो कम नींद आती है और जब उसके बाद उठते हैं सो करके तब भी हम बहुत रिफ्रेश होते हैं. इसीलिए कहते हैं कि छोटी छोटी सी चीज़ों में खुशियां देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये खुशियां आपको एक तो लंबा जीवन देगी और दूसरा आप ताज़ा रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग रहेंगे, आपका शरीर अच्छा रहेगा, आप अच्छे गुड लुकिंग दिखाई देंगे. क्योंकि जिसका चेहरा खिलखिलाता हुआ होता है या बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति खुश होता है ना तो उसका चेहरा ही बता देता है कि अंदर से कितना खुश है. इसलिए खुशियाँ आप बाहर मत ढूंढिए बल्कि अंदर खुशियाँ ढूंढिए. और अगर खुश होना है तो बाहर लोगों को देख करके या उनकी बातों से खुश मत होइए बल्कि अंदर की जो खुशी है उसको महसूस कीजिए. तो इसलिए आप ये भूल जाइए कि अगर कोई मेरी तारीफ़ करेगा तो मैं खुश होंगी, अगर कोई मेरे को अच्छा बोलेगा तो मैं खुश होंगी. नहीं, अंदर जो हमारे खुशियां हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा प्रेज़ भी करते हैं और उसको हम मानते हैं तो उस चीज़ से ही आप आगे बढ़ें और उसको लेकर के खुश रहें, ना कि दूसरों की बातों से, राइट. तो ये वाली चीज़ जो कि वाकई में बड़ी काम की, और ये तो हम सभी जानते भी हैं और मानते भी हैं कि हाँ ऐसा होता है. तो अगर आप भी इसे फील करना चाहते हो ना तो फील करने के लिए आप पहले खुद को फील करना सीखें, आप अपनी खुशियों को फील करना सीखें, फिर देखें क्या कमाल लगेगा आपको. और मैं तो कहूँगी कि ये दिन आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आए. तो बस आप फील कीजिए, खुश रहिए, रेडियो मानव रचना को सुनिए, गानों को एंजॉय कीजिए और हाँ मैसेज करना ना भूलिएगा. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रांका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ.

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गे मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूं प्रांका आपके साथ। और आज मैं आपको कुछ हैक्स बता रही हूं, कुछ फैक्ट्स पे बातें कर रहे हैं और अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताती हूं जिससे आपको फायदा हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल कह रही हूं कि आपको फायदा होगा, क्योंकि चलो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वो बात क्या है। देखो, हम जब क्रेविंग को शांत करने की कोशिश करते हैं तो क्रेविंग उतनी ज़्यादा होती है। जैसे मान लो आपको पिज्ज़ा खाने का मन है और आप अपने आप को शांत करो कि नहीं, मुझे पिज्ज़ा नहीं खाना है, इसमें इतनी कैलोरीज है और ये मेरे लिए हेल्दी नहीं है। बट जितना आप खुद को रोकोगे उतनी ही क्रेविंग बढ़ती जाएगी। और एक टाइम ऐसा आता है जब एकदम से बस मिल जाए तो बस हम इंजॉय कर लें उसे, वो वाली चीज़ हो जाती है। तो यहाँ आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको फ़ोन नहीं लेना है, क्योंकि फ़ोन आप लेंगे तो ऑनलाइन ऑर्डर के लिए आप ज़रूर अपने फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए फ़ोन को आप अपने पास नहीं रखेंगे। अब आप जाइए किचन में, और कुछ बनाना नहीं है बल्कि आपको पीना है 2 गिलास पानी। जी हाँ, पानी पिए और अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करें और अपने आप से ये कहें कि पानी पीने के 10 मिनट बाद में डिसाइड करूँगा या करूँगी कि मुझे पिज्ज़ा खाना है या नहीं। पता है क्या होगा इससे? इससे आपकी क्रेविंग शांत हो जाएगी। जी हाँ, और ये बिल्कुल सही कह रही हूँ, आप करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। आप कितने सारे ऐसे अनहेल्दी खाने से बच जाएंगे। पता है क्या होता है, कई बार ना ये जो भूख होती है ये खाने की नहीं पानी की भी होती है। इस वजह से और ज़्यादातर लोग जो हैं, कितने सारे लोग हैं जो इस वक्त मुझे सुन रहे होंगे, जो यही सोच रहे होंगे कि हाँ पानी तो हम भी ज़्यादा नहीं पी पाते हैं, लेकिन खाना जो है वो हम टाइम टू टाइम लेते हैं, बट बॉडी को पानी भी तो चाहिए होता है ना। तो उसकी नीड जब उसे होती है तो हम पानी की भूख को खाने की भूख समझ लेते हैं और बहुत सारा खाना हम खा लेते हैं, तो पेट तो भर जाता है लेकिन पानी की कमी तो हम पूरी कर ही नहीं पाए, क्योंकि हमने पानी ही नहीं पिया उतना, है ना। और फिर हम खाने के ऊपर से पानी पी करके अपने पेट को कर लेते हैं ख़राब। तो ये वाली चीज़ आपको नहीं करनी है, बल्कि जब भी आपको कुछ बाहर का उल्टा सीधा या कुछ ऐसा खाने का मन करे तो आप पहले अपने आप से पूछो कि ठीक है, अगर मैं पहले पानी पीता हूँ या पीती हूँ, उसके 10 मिनट बाद भी अगर मुझे क्रेविंग होती है देन आई विल डिसाइड कि मुझे क्या करना है। ठीक है, ये आप करोगे ना, पता है इसका एक फ़ायदा क्या होगा, 10 मिनट बाद आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि मुझे पिज्ज़ा खाना है या नहीं, क्योंकि आपको क्रेविंग होगी ही नहीं, आपका पेट पूरी तरह से फुल हो चुका होगा और सिर्फ 2 गिलास पानी आपको पीना है, जो मीडियम साइज़ के गिलास होते हैं वो आपको पीना है। तो ये बहुत इफेक्टिव, आप इसे एक्सरसाइज कह लो या आप अपने माइंड को मैसेज देना कह लो, जो भी आप कहें, जो भी इसको आप नाम दें, लेकिन हाँ ये एक सच बात है कि इसका फायदा हर एक एक को मिलेगा। तो ये करके देखिएगा, बहुत अच्छी चीज है ये। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं प्रांका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ।

0: ज्वाला, समंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
1: और मैं ये कह रही हूं भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
0: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
1: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
0: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
1: तो फिर एक वादा करो।
0: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
1: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
0: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूं प्रियंका आपके साथ. और ये गाना आपने सुना ऐसे ही और बहुत ही प्यारे प्यारे से गाने जो मैं आपको इस प्रोग्राम में सुना रही हूं. तो आपका कोई पसंदीदा गाना है जिसे आप सुनना चाहते हैं रेडियो पर तो आप मैसेज कर सकते हैं. नंबर हमारा है 8010781078. आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं. आज के प्रोग्राम में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रही हूँ, कुछ हैक्स पर हम बात कर रहे हैं और अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिससे आपकी स्किन फ्लॉलेस हो जाएगी. जी हाँ, आपकी स्किन जो है बहुत ही चमकदार और खूबसूरत दिखने वाली है. अच्छा, एलोवेरा जेल जो है वो मुझे लगता है कि सभी के घर में मौजूद होगा ना. अब जिनके पेड़ हैं, जिन्होंने पेड़ लगा रखे एलोवेरा के, भाई वो तो बहुत ही कमाल है. क्योंकि जितना ताज़ा एलोवेरा आप इस्तेमाल करोगे उतना ही फ़ायदा हमें मिलता है. लेकिन अगर आपके पास एलोवेरा का पेड़ नहीं है, उसका पौधा नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप मार्केट से ले लीजिए. बस ध्यान रखिएगा कि एलोवेरा जेल अच्छी कंपनी का होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई कलर नहीं होना चाहिए, राइट. तो अब मैं यहाँ एलोवेरा की क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाली हूँ हैक वो इसी से ही जुड़ा है. अच्छा, हफ्ते में दो बार हम, जैसे क्या होता है एलोवेरा जेल को यूं ही हम अपने चेहरे पर लगा लेते हैं, है ना. और लगा करके कुछ लोग पूरी रात लगे रहने देते हैं, तो कुछ लोग एक घंटा लगाया और उसके बाद में वॉश कर लेते हैं. लेकिन अब जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ ये शायद आपको ना पता हो. हफ्ते में दो बार अगर गर्म पानी आप करते हैं और उसमें एलोवेरा जेल डालकर चेहरे पर भाप लेते हैं तो स्किन हेल्दी और ग्लोइंग होती है और चेहरे के दाग धब्बे भी धीरे धीरे जाने लगते हैं. जी हाँ, है ना कितना इंटरेस्टिंग. क्या आपको पता था इससे पहले कि इस तरह से अगर भाप लेते हैं तो स्किन में निखार आता है? अगर नहीं पता था तो ये कई सारे लोगों को वाकई में नहीं पता था, क्योंकि ये तरीका जो है हम लोग नहीं जानते हैं. हम एलोवेरा जेल को सीधा अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं, है ना. लेकिन आप इस तरह से करके देखें और गर्म पानी में आपको एलोवेरा डालना है और उसके बाद में आप भाप लीजिए और फिर जो असर है वो मुझे लगता है कि कुछ ही दिन में दिखाई दे जाएगा. तो ये जब भी आप इसको अप्लाई करें या जब भी आप इसको यूज़ करें तो उसका फीडबैक, मतलब मुझे अच्छा लगता है जब कोई फीडबैक देता है ना, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है ये देख करके सुन करके. तो आप ज़रूर बताना कि कैसा लगाइए. नंबर हमारा है 8010781078. मैं हूँ प्रियंका, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ.

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ। कुछ फैक्ट्स कुछ हैक्स आपको बता रही हूँ आज के प्रोग्राम में। अच्छा, कई बार ना बिजी होना काफ़ी अच्छा भी लगता है। कभी ऐसा महसूस किया आपने, कभी ये चीज़ फील की है? वैसे तो हम सब परेशान रहते कि इतना काम है कि टाइम ही नहीं मिल पाता है, और इस काम के चलते हम तो समय ही नहीं निकाल पाते हैं बात करने का या फिर समय स्पेंड करने का, है ना। देखिए, अगर ऐसी वाली चीज़ है तो कभी कभी तो आपको वक्त निकालना ही चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिज़ी होना भी एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए? जी हाँ, दरअसल जो ज़्यादा बिज़ी लोग होते हैं वो उन लोगों के मुकाबले जो कम बिज़ी होते हैं उससे ज़्यादा खुश होते हैं। पता है इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि ये लोग जब काम में बिज़ी होते हैं तो जो भी नेगेटिव चीज़ें दिमाग में आती है कि इसने हमें ऐसे बोला, मेरे साथ एक साल पहले ऐसे किसी ने मुझे गलत बोला था और मुझे अच्छा नहीं लगा था, उसने मेरे से माफ़ी क्यों नहीं मांगी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, जो भी ऐसी चीज़ें जो हमें पसंद नहीं आई या हमारे कहीं ना कहीं वो खिलाफ थी चीज़ें, वो चाहे जितनी पुरानी हो बट हमें याद आता रहता है। और जो लोग ज़्यादा बिज़ी होते हैं उनको ये सब सोचने की ज़रूरत, क्योंकि उनके पास वक्त ही नहीं होता है कि वो ये सारी चीज़ें सोच भी पाए। एक के बाद एक काम जो है वो उसमें बिज़ी होते हैं, इसीलिए वो लोग अपने प्रेजेंट में जीते हैं और ज़्यादा सोच नहीं पाते क्योंकि वक्त ही नहीं मिल पाता है। इसीलिए जो मैंने आपको बताया ना कि जो ज़्यादा बिज़ी लोग होते हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं उन लोगों के, जो लोग ज़्यादा बिज़ी नहीं होते हैं क्योंकि वो नेगेटिव चीज़ों को सोच ही नहीं पाते हैं और उनके पास टाइम ही नहीं होता है सब सोचने का। इसलिए कहते हैं कि काम करते रहो, कुछ कुछ चीज़ें लाइफ में आप करते रहो जिससे आप बिज़ी रहो। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लाइफ में एनी टाइम बिज़ी रहो कि आप अपनों को या अपने ख़ास रिश्तों को समय ही नहीं दे पा रहे हैं। ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे चीज़ें कमज़ोर होती हैं, रिश्ते कमज़ोर होते हैं। हाँ, समय ज़रूर दीजिए, लेकिन जब बात अपनी आती है तो अपने आप को नेगेटिव विचारों को सोचने से बचाने के लिए हमेशा बिज़ी आप रहें, तो इससे आप प्रेजेंट को जिएंगे, प्रेजेंट को एंजॉय करेंगे, और जो काम करता है वो अपने लक्ष्य को पा पाता है, है ना। तो बस ये आप करके आगे बढ़िए और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए अब इंजॉय करते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ प्रियंका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर ये गाना आपने सुना और अब मैं सुनाने वाली हूँ आपको अगला गाना. मैं हूँ प्रांका और मेरे चलने का वक्त हो गया है. तो आज का प्रोग्राम यहीं तक. प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं. बताने के लिए आप मैसेज कीजिए. नंबर है हमारा 8010781078. तो चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त. आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए बाकी आगे आने वाले प्रोग्राम्स को इन्जॉय कीजिए और बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. मैं हूँ प्रांका और फिर मिलेंगे. तब तक के लिए बाय.

0: अरे सुन रुबिया, प्यार हो गया
1: सच,
0: प्यार हो गया क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से रे।

हेलो एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पे। दोस्तों आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम लेके आई हूँ मैं कैफे क्लासिक्स। और आपको पता है कि कैफे क्लासिक्स में आपको गाने तो सुनाते ही हैं, साथ ही आपका एंटरटेनमेंट के साथ ही हम आपको कुछ कुछ जानकारी भी देते हैं। और दोस्तों आज मैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो शख्सियत है एक उर्दू शायर, प्रसिद्ध गीतकार भी रहे हैं और एक प्रगतिशील आंदोलन के एक हिस्सेदार भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उर्दू की शायरी और उर्दू को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करी। दोस्तों हम सभी ने उनका नाम सुना है और उनके लिखे हुए गीत हम सब ने सुने हैं। बात करिए दोस्तों मैं आज आपसे मजरू सुल्तानपुरी की, जिनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1919 को और 24 मई 2000 में वो हमारे बीच से चले गए। तो एक बहुत ही खास शख्सियत और बेहतरीन शायरों में उनका नाम गिना जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा कैफे क्लासिक्स का ये सफ़र मजरू सुल्तानपुरी जी के नाम ले रही। यहाँ पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद आई विल बी राइट बैक। स्टे ट्यून टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम पे दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और आज इस शो में मैं आपसे बात कर रही हूँ एक प्रसिद्ध उर्दू शायर मजरू सुल्तानपुरी की। दोस्तों, हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गीतकार भी रहे हैं और ये उर्दू के बहुत बड़े शायर रहे हैं। उर्दू साहित्य जगत में भी इन्होंने अपना बहुत अच्छा खासा नाम कमाया और बॉलीवुड में ये गीतकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए देश, समाज और साहित्य को एक नई दिशा देने का काम किया। दोस्तों, देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में सेमिनारों में इन्होंने हमेशा हिस्सा लिया और उर्दू को एक नया मुकाम दिया। तो देखिए दोस्तों, कितनी एक ऊंची शख्सियत। आइए चलते हैं इनकी ज़िंदगी के कुछ और हिस्सों पर। इनकी जन्म स्थली थी सुल्तानपुर और इसलिए अपने नाम के आगे सुल्तानपुरी लगाते हैं। दोस्तों, मजरू सुल्तानपुरी ने 50 से ज़्यादा सालों तक हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखे। आज़ादी मिलने से 2 साल पहले वे एक मुशायरे में हिस्सा लेने मुंबई आए थे तथा उस समय के मशहूर फिल्म निर्माता कारदार ने उन्हें अपनी नई फिल्म शहनशाह के लिए गीत लिखने को कहा। उनका चुनाव एक प्रतियोगिता द्वारा कराया गया था और इस फिल्म के गायक थे कुंदन लाल सहगल और गीत जो था वो बहुत ही फेमस था, गम दिए मुश्किल और जब दिल ही टूट गया। हम सभी जानते हैं कि गाना आज तक फेमस है। तो ये सभी गाने जो हैं ये उस वक्त जो है मजरू सुल्तानपुरी जी के लिखे में, जिसको गाया कुंदन लाल सहगल जी ने, और गाने आज तक हमारे दिल में बसे हुए हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा सफ़र मजरू सुल्तानपुरी जी के नाम, सुनेंगे हम इनके द्वारा लिखे हुए गीत और चर्चा करेंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में। ले रही हूँ यहाँ पर छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगी। आप भी कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील

में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा

वेलकम बैक रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम पे दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और आज का हमारा ये शो समर्पित है मशहूर उर्दू शायर और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी को। दोस्तों, अब मैं आपको एक बात खास बता दूं कि मजरू सुल्तानपुरी ये इनका ओरिजिनल नाम नहीं था। जी हाँ, इनका नाम था असरार उल हसन खान। तो मजरू इन्होंने अपना नाम रखा और सुल्तानपुरी क्योंकि ये सुल्तानपुर के जन्मे थे इसलिए इन्होंने अपने नाम के आगे अपना प्रदेश का नाम लगाया और नाम बन गया मजरू सुल्तानपुरी। दोस्तों, हिंदी भारतीय जगत के ये उर्दू कवि और हिंदी भाषा फिल्म उद्योग के ये गीतकार रहे। 1950 और 60 के दशक में इन्होंने भारतीय सिनेमा में प्रमुख संगीत शक्तियों में से इनका नाम आता है और बहुत सारे गाने इन्होंने जो हैं लिखे, जिसमें जो दोस्ती फिल्म के गाने बहुत ज़्यादा फेमस हुए, जिसमें गाना आया चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, बहुत ही खूबसूरत गाना है। इसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ गीतकार का भी पुरस्कार मिला। 1980 और 1990 के दशक में इन्होंने अधिकांश काम आनंद मिलन के साथ किया और उल्लेखनीय जिसमें सहयोग है कयामत से कयामत तक और लाल दुपट्टा मलमल का। जी हाँ, मजरू सुल्तानपुरी ही थे कयामत से कयामत तक के गानों के पीछे। और जतिन ललित के लिए जो जीता वही सिकंदर के गाने और पहली फिल्म यारा दिलदारा, इन मूवीज़ के गाने भी मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखे। तो बहुत ही इनका सुंदर लिखाई इन द सेंस जो ये लिखते थे, बहुत ही सुंदर गीत थे। हम सभी जानते हैं कि जो जीता वही सिकंदर के जो गाने हैं वो किस तरीके से हमारे ज़िंदगी में एक मोटिवेशन पैदा करते हैं। हालाँकि मूवी का प्लॉट खुद भी बहुत अच्छा था, बहुत ही मोटिवेटिंग था, लेकिन एक मूवी में जान डालने का जो काम होता है ना, वो गाने करते हैं। और गाने के अगर लिरिक्स अच्छे हों फिर तो सोने पे सुहागा। और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं मजरू सुल्तानपुरी जी को। तो दोस्तों, बात हो गई बहुत सारी इनकी बॉलीवुड के काम की, आइए अब चलेंगे इनके थोड़ा सा प्रारंभिक जीवन में, इनके चाइल्डहुड और एजुकेशन की तरफ, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बात। आई एम हेयर ओनली, आप भी ट्यून रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। मोना डार्लिंग, तुम्हें क्या चाहिए?

刚啊。

वेलकम बैक रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पे दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स। मैं आपसे बात कर रही हूँ आज एक ऐसे उर्दू शायर की और बॉलीवुड के गीतकार की जिन्होंने हमें बहुत से सुंदर सुंदर गाने लिख कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, असरार उल हसन खान उर्फ मजरू सुल्तानपुरी। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म सुल्तानपुर में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। इनके पिता 1919 और 1920 के टाइम पर पुलिस विभाग में तैनात थे। इन्होंने मजरू सुल्तानपुरी जी को कोई खास अंग्रेजी शिक्षा नहीं दी है और इनकी शुरुआती शिक्षा मदरसे में हुई। उसके बाद इन्होंने 7 साल का अरबी और फारसी लैंग्वेज का इन्होंने कोर्स भी करा और इनके पिताजी का जो ध्यान था ना, वो मेन कोर्स पढ़ाई से थोड़ा हटकर था, वो इनको धार्मिक पढ़ाई ज़्यादा कराना चाहते थे। और उसके बाद इन्होंने लखनऊ के तकमील उत तिब कॉलेज ऑफ यूनानी मेडिसिन में इन्होंने दाखिला ले लिया। वे एक संघर्षशील हाकिम भी थे शुरुआती टाइम में, लेकिन मुशायरे ये अपने साथ साथ उनमें ये जो पार्टिसिपेट करते रहते थे। और एक बार वहाँ पर इनको गज़ल मजबूरी में सुनानी पड़ी। गज़ल जो है श्रोताओं को बहुत ज़्यादा पसंद आई और इन्होंने अपनी नई नवेली प्रैक्टिस, मेडिकल प्रैक्टिस को छोड़ने का फैसला करा और इन्होंने गंभीरता से लिखना शुरू कर दिया। और जल्द ही ये मुशायरों में इन्होंने अपना अग्रणी स्थान जो है, टॉप लेवल पे अपना नाम जो है इन्होंने अपना बना लिया। और फिर हर मुशायरे में इनको बुलाया गया। हालांकि हम इनको ज़्यादा शायर के रूप में तो इन्होंने जब काम किया उस काम से हम इनको नहीं पहचानते हैं, हम ज़्यादा इनको इनके फिल्मों में जो एक गीतकार के रूप में है हम उससे इनको ज़्यादा पहचानते हैं। तो दोस्तों, बातें हो गई हैं ढेर सारी और मुझे पता है कि हम सब इनके लिखे हुए गाने सुनने के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहे हैं और मैं भी। तो आइए लेते हैं यहाँ पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं तुरंत वापस आऊँगी और थोड़ा सा इनके राजनीतिक झुकाव और इनकी फिल्मों के बारे में और बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं बात कर रही थी आपसे मजरू सुल्तानपुरी की, जो कि शुरुआती दौर में एक उर्दू शायर थे। दोस्तों 1945 में मजरू साहब सिद्दीकी इंस्टीट्यूट के एक मुशायरे में भाग लेने के लिए मुंबई आ गए। यहाँ उनकी गजलें और शायरी श्रोताओं को बहुत पसंद आई। प्रभावित श्रोताओं में एक फिल्म निर्माता बैठे हुए थे, उन्होंने इनके जो फिल्म में जो उनका राइटिंग सुनी कि ये तो बहुत बढ़िया लिखते हैं, तो उन्होंने जिगर मुरादाबादी से संपर्क किया और उन्होंने आगे मजरू सुल्तानपुरी से लिंक बनाया। हालांकि उस वक्त मजरू सुल्तानपुरी जी ने फिल्मों के लिए लिखने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस टाइम पर फिल्म में काम करना या फिल्म से जुड़ना एक अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि ये एक कमाई का बहुत अच्छा जरिया होगा और इनको अपने परिवार का पालन पोषण करने में मदद मिलेगी, तो ये सोचकर इन्होंने राइटिंग स्टार्ट कर दी और कारदार साहब इनको संगीतकार नौशाद साहब के पास ले गए और एक युवा लेखक के रूप में इनका वहाँ परिचय कराया और उन्होंने उनको एक धुन दी, यानी कि धुन पहले बन चुकी है, लिखा गाना नहीं गया, पहले धुन बनी और धुन इनको दे दी गई कि इस धुन पर आप जो है अपना एक गाना लिखो। और फिर उस धुन पर उन्होंने खूब खूबसूरत गीत लिखा और उसके बाद 1947 में एक नाटक था डोली, उसके लिए इन्होंने गीत लिखे और 1948 में अंजुमन मूवी आई, फिर 1953 में बाज मूवी आई गुरुदत्त साहब की और फिर मजरू सुल्तानपुरी ने अनिल विश्वास, नौशाद, गुलाम मोहम्मद, मदन मोहन, ओपी नैयर, रोशन साहब, सलिल चौधरी, चित्रगुप्त, एन दत्ता, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, सभी टॉप म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, ये बात आप और मैं दोनों जानते हैं। इन सब के लिए गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी ने, तो क्यों ना हम इनके कुछ गाने और सुने और फिर इनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे कुछ और भी। आइए लेते हैं यहाँ पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे हम थोड़ी सी और मजरू सुल्तानपुरी जी के बारे में। तब तक के लिए एक छोटा म्यूजिकल ब्रेक, आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में कैफे क्लासिक्स। और आज का ये सफ़र है मजरू सुल्तानपुरी के नाम पर, एक बहुत ही अच्छे उर्दू और हिंदी शायर, एक बहुत ही सफल गीतकार जिन्होंने कई दशकों तक हमको बहुत सुंदर सुंदर गाने लिख कर दिए। टॉप डायरेक्टर्स के साथ ये जुड़े और इनके लिखे हुए गानों को एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ सिंगर्स ने गाया और फिर इनको मिले ढेर सारे पुरस्कार। जी हाँ, कई बार इनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और 1993 में इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से हमारे देश की सरकार ने इनको सम्मानित किया। ये जो पुरस्कार होते हैं हम सभी जानते हैं, एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है और ये जो पुरस्कार है ये इनको मिला। और मजरू सुल्तानपुरी जी, थोड़ा सा दुख की बात है कि ये लंग्स की एक बीमारी से पीड़ित थे, निमोनिया इनको हो गया था और अपने आखिरी दौर में ये बीमार है और 24 मई 2000 को मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 80 वर्ष की। तो इनको मैं श्रद्धांजलि देती हूँ रेडियो मानव रचना के प्लेटफॉर्म से, सैल्यूट करती हूँ और हाथ जोड़ के उनको नमन करती हूँ, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत है कि अगर ये ना होते तो वो गाने कहाँ से आते जो सिंगर्स ने गा दिए। तो जो लिख के अगर बढ़िया गाने बढ़िया शब्द देते फिर तो फिर क्या ही बात है। तो मजरू सुल्तानपुरी जी को शत शत नमन। और मेरे ये शो का था अंतिम चरण, यहाँ से मैं आपसे ले रही हूँ विदा और मिलते हैं आपसे अगले शो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, सायोनारा। मैं जा रही हूँ, आपने कहीं नहीं जाना, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील ला।

0: अरे अरे अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में। कूड़ेदान में
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
3: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आरजी सागर, आया हूं लेकर के शो सत्यमेव जयते, जय हिंद, जय भारत। ये शो रेडियो मानव प्रश्न 107.8 FM की एक कह सकते हो बहुत खास पहल है। रीजन बीइंग

0: यू शुड नो अबाउट द लॉ एंड लीगल फ्रेमवर्क जो हमारी कंट्री में ऑपरेट किया जाता है. Why it matters? Because as a citizen of this country, we should know कि कानून क्या बोलता है किस पर्टिकुलर डोमेन को लेकर के. आज का शो होगा इसी डोमेन में, बट थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसे पॉइंट को टच करने वाले हैं जो अमूमन हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा रहा है, और वो है भारतीय सिनेमा. लेकिन सिनेमा को भी आप इतना ब्रॉडर व्यू में नहीं देख सकते हैं, उसमें भी कुछ कुछ फ्लॉज हैं जो हमें फिगर आउट करने पड़ेंगे. और इसके लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर अरात्रिका. डॉक्टर अरात्रिका इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर विद स्कूल ऑफ लॉ एट मानव रत्न यूनिवर्सिटी. तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले स्वागत करते हैं. हाय डॉक्टर अरात्रिका, आपका स्वागत है.
1: थैंक यू सो मच सागर फॉर इनवाइटिंग मी अगेन. एंड आई गेस वी आर गोना टॉक अबाउट टुडे हाउ कास्ट हैज इन्फ्लुएंस्ड इंडियन सिनेमा, एंड टेक्निकली स्पीकिंग कैसे इंडियन सिनेमा ने कास्ट को इन्फ्लुएंस किया है या सोसाइटी को इन्फ्लुएंस वो किया है थ्रू कास्ट. दिस इज समथिंग विच वी आर गोना डिस्कस टुडे.
0: या डेफिनेटली वी गोना टॉक अबाउट कास्ट इन इंडियन सिनेमा, बट मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट इट? आई मीन Why does it even matter? क्यों बात करनी चाहिए इस टॉपिक की?
1: So technically speaking, I'll start. हम जब छोटे रहते हैं ना, तो हम अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं ना. नॉर्मलाइजेशन हमारा वहीं से स्टार्ट होता है. लड़कियों के लंबे बाल, ये हमें किसी ने किसी एजुकेशन सिस्टम ने नहीं सिखाया, किसी ने वो हमें नहीं बताया कि दैट्स हाउ इट हैज़ टू बी. जो नॉर्मलसी की डेफिनेशन है वो हम अपने आसपास की चीज़ों से ही देखते हैं और सीखते हैं. Now what happens that certain things तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कवर हो जाते हैं कि चलो आपके करिकुलम में आ गया, आपको पढ़ा दिया गया. कुछ चीज़ें हम अपनी सोसाइटी से सीखते हैं. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आजकल तो, बिकॉज OTT इज़ अवेलेबल टू everyone, राइट? पहले के टाइम पे तो चलो बहुत कम सिनेमाज होते थे, बहुत ही कम आपके पास टेलीविजन्स होते थे. अब के टाइम पे OTT इज़ अवेलेबल टू everyone. सो इट बिकम्स अ क्वेश्चन कि वेन इट कम्स टू कास्ट, राइट, फ्रॉम वेयर वी आर लर्निंग. हर इंसान कास्ट के बारे में लॉ स्कूल जाकर के नहीं सीख रहा है. एवरीवन इज नॉट कमिंग टू मानव रत्न स्कूल ऑफ लॉ की नहीं आओ कास्ट के बारे में सीखते हैं. सो हाउ दे आर लर्निंग? सो वी नीड टू नो कि रूट कॉज कहाँ है, कहाँ से लोग कास्ट के बारे में सीख रहे हैं. अब आपको ये पता चल जाता है कि भाई सोर्स क्या है. अब आप सोर्स को वेरीफाई तो करोगे, बिकॉज बहुत सारा OTT कंटेंट तो ऐसे ही है, इट इज़ अवेलेबल टू ऑल. सो यू कॉन्ट फिल्टर इट आउट वॉट इज राइट वॉट इज रॉन्ग. सो देर आर लॉट्स ऑफ कंटेंट जो हमें लग रहा है सही है, हम कंज्यूम कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस बिकॉज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है या फिर अवेलेबल है सिनेमा में. तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसके बारे में लॉ क्या कहता है, क्या हम जो TV पे या बड़े पर्दे पे या OTT पे देख रहे हैं क्या वो सही है, और हम उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और उससे कास्ट के बारे में जान रहे हैं. सो एज अ नॉर्मल पर्सन ऑल्सो यू शुड नो कि वाई कास्ट मैटर्स एट ऑल, लॉ का कास्ट के बारे में क्या कहना है. सो टुडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट द सेम.
0: ओके, सो वंडरफुल. बट यहीं पर एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि यू बीइंग अ लॉ प्रोफेसर, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक?
1: सो फॉर द एंटायर ऑफ माई लाइफ, हमें जब से हम लॉ स्कूल में हमने एडमिशन लिया ना, तब से हमसे एक ही सवाल पूछा जाता है, लॉ क्यों, लॉ क्यों करना चाहते हो? हम भी वी बिकेम प्रोफेसर्स, वी आर स्टूडेंट द सेम, लॉ क्यों करना है? कहीं ना कहीं एवरी सिंगल टाइम व्हेन वी आर वेरी यंग वी यूज टू से दैट यू नो वी नीड टू चेंज द सोसाइटी, वी नीड टू बी अ गुड पर्सन, बेटर ह्यूमन बीइंग. धीरे धीरे जब हम इस प्रोफेशन में आगे बढ़े तो हमें रियलाइज हुआ कि बिफोर बिकमिंग एनी वन ऑफ दीज, द फर्स्ट थिंग ऑफ अ लॉ स्टूडेंट और लॉ प्रोफेसर और अ पर्सन हु इज प्रैक्टिसिंग लॉ शुड बी अवेयरनेस, राइट? हमें लोगों को बताना है कि भाई ये इशू हैं, ये नॉर्मलसी की परिभाषा से अलग हैं, हमें उन्हें बताना है. सेकेंडली, मेरा पर्टिकुलर इंटरेस्ट इस वजह से कास्ट में है बिकॉज आई डील विथ वल्नरेबल क्लास इन जनरल. सो वेमेन, जेंडर, कास्ट, ये मेरे स्पेशलाइजेशन है. मुझे इनके बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम ये सारे इशूज़ देखते हैं, और अंटिल अनलेस मुझे इस इशू की खुद नॉलेज नहीं है तो मैं उस इशू को रिजॉल्व कैसे करूँगी? सो इसलिए फॉर मी, बिकॉज लॉ में तो बहुत सारे आपके स्ट्रीम्स हैं, वाई स्पेसिफिकली कास्ट? बिकॉज ये डेली बेसिस पे हमारे आसपास बहुत देखने को मिलता है. आप कभी भी एक न्यूज़पेपर उठाइए, अब तो बहुत ही कम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यूजुअली पीपल टेक देयर न्यूज़ फ्रॉम इंस्टाग्राम एंड अदर सोर्सेज, बट आप किसी भी दिन न्यूज़पेपर उठाइए और पूरा न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई सा भी न्यूज़पेपर, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो रीजनल न्यूज़पेपर है, आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए, ऐसा न्यूज़पेपर बहुत ही कम देखने को मिलता है जहाँ पे एक रिपोर्ट कास्टिज्म के ऊपर, कास्ट बेस्ड वायलेंस के ऊपर या सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर ना हो. मतलब इट्स अ वेरी यूजुअल थिंग राइट. एंड इतनी यूजुअल थिंग के बारे में अगर हम बात नहीं कर रहे हैं सो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद अस. सो ये इतना कॉमन है फिर भी इसके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है, बातचीत नहीं होती है, लोग सेम सिस्टम में चलते चले आ रहे हैं ये कहते हुए कि ये सिस्टम है. ठीक है, जैसे आप मूवीज़ वगैरह में भी देखेंगे, हमने आई गेस वी हैव स्टार्टेड सीइंग मूवीज़ बहुत पहले से ना, तो पहले की मूवीज़ में और अब की मूवीज़ में OTT पे जो कंटेंट है और जो मूवीज़ हैं बहुत बदलाव हुआ है. कास्ट को ही डिफरेंटली दिखाया जाता था पहले, अब डिफरेंटली कास्ट को दिखाया जा रहा है. फॉर एन एग्जाम्पल, पहले के टाइम पर अगर आप देखो तो हीरोज़ और एक्ट्रेसेस वे सपोज टू बी फ्रॉम अर्बन क्लास ना, कोई ऐसा सरनेम नहीं लगाते थे, बट हमेशा वेल स्पोकन, अच्छे से बोलना, अच्छे से बर्ताव, वेल ड्रेस्ड, हमेशा से अर्बन वो दिखाया गया है. कभी भी कास्ट को इतना अर्बनाइजेशन में नहीं दिखाया गया. इफ यू सी कि कोई इंसान है जो लोअर कास्ट आपको दिखाना है, यू विल नेवर सी अ लोअर कास्ट पर्सन इन अर्लियर मूवीज टू बी वेल स्पोकन, वेल ड्रेस्ड, वेल एजुकेटेड, नेवर. बट आज के टाइम पे हम देख रहे हैं बिकॉज नॉट इन मेन स्ट्रीम बॉलीवुड, अब तो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड ने भी इंट्रोड्यूस कर दिया है बिकॉज लॉज के लिए, राइट्स के लिए लोग बोलने लग गए हैं. बट पहले की मूवीज में आप देखेंगे कभी भी आपको आप दिखा दो कि कहीं पे भी लोअर कास्ट इंसान को बहुत रिच दिखाया गया हो, वेल स्पोकन दिखाया गया हो, वेल ड्रेस्ड दिखाया गया हो, नहीं दिखाया गया. अब मेरा कंसर्न ये है कि आज के टाइम पे ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है? इज इट समथिंग विच वी हैव चेंज? बिकॉज लॉज तब के टाइम पे भी सेम थे, राइट. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आज का तो बना नहीं है, SC ST एक्ट भी आज 2026 में नहीं बना है. 1900 के डॉक्यूमेंट्स हैं, 1900 के लॉज हैं. सो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हमने मूवीज में, सिनेमा में, OTT में ये लोअर कास्ट जो वर्ड हम यूज करते हैं उसको हमने चेंज किया, जो हम टर्मिनोलॉजीज बहुत सारी जो हम पहले के टाइम पे स्लैंग के जैसे यूज वो करते थे वो अब हमने चेंज किया. तो देयर सम शिफ्ट विच इज हैपेंड Inside cinema from that time to this time, and it's not because of the laws, it is because of the society, because laws to hamesha se wahi hain. To society mein thoda shift aa raha hai, and iski wajah se hamara cinema bhi dheere dheere change ho raha hai, and thoda sa cinema se hum inspired bhi hote hain. To the good kind of content which we see, it affects our mind. So hence we need to know how cinema mein casteism ya caste reflect kiya jata hai.
0: All right, so amazing. ऑन दिस नोट लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक छोटा सा, उसके बाद अपने शो को कंटिन्यू करेंगे. डॉक्टर आराध्रिका हमारे साथ मौजूद हैं और कास्ट को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एग्जैक्टली सिनेमा में कैसे उसको पोर्ट्रे किया जाता है. लेकिन ये यहाँ तक रुकती नहीं है बात सीधा संविधान तक जाती है. संविधान को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली संविधान और सिनेमा में क्या फर्क आ रहा है. विल टॉक अबाउट इट, बट फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ. फील गुड, फील लाइफ.
2: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए. डॉक्टर कहते हैं अगर ये स्त्राव छुपकूद करेगा तो मर जाएगा. क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
3: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है. ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं.

धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, स्पंदीबा तवारिश। यहां हमारा इंटरवल होता है, ये तो अंतरात, यानी कि वक्फा, मध्यांतर। यह इंटरवल हो सकता है 15 मिनट का है, या 15 घंटे का, या 15 महीने का, लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं, मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं, चाहिए।

0: वन्स अगेन वेलकम ब्याक मार्जी सागर शो चल रहा है साथ में विजय जय हिंद जय भारत रेडियो मार्गदर्शन 107.8 एफएम का बहुत स्पेशल शो है और आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कास्ट इन इंडियन सिनेमा और उसके लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर अरात्रिका। अगला प्रश्न मेरा आपसे रहने वाला है, संविधान में क्लियर ये लिखा हुआ है कि हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, ठीक है, चाहे जाति के आधार पर या रंग रूप के आधार पर, लेकिन अगर मैं सिनेमा की बात करूं तो क्या वहां पर एप्ट ऐसे दिखाया जाता है, उसका इट इज फॉलो किया जाता है या बिकॉज की लिबर्टी मिल जाती है तो कुछ भी वहां पर चलता है?
1: करेक्ट। सो दो चीजें हैं, ठीक है, विल टॉक अबाउट टू थिंग्स बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ और सिर्फ लॉ के पर्सपेक्टिव से नहीं, सिनेमा के पर्सपेक्टिव से भी। अगर हम सिनेमा की बात करें, प्योर सिनेमा की, तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो स्टोरीज हैं वो रियल लाइफ के ऊपर ही हों। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स टेक आरक्षण, आरक्षण मूवी देखी है आपने, 2011 की मूवी है, एंड जब वो रिलीज हुई तो जब भी कोई मूवी रिलीज होती है तो सर्टिफिकेशन के साथ रिलीज होती है, आपने देखा होगा बड़े पर्दे पे यू ऑब्ले के लिख के आता है कि फॉर अडल्ट और ये सारी चीज़ें, तो उसमें वैसे भी जो क्वेश्चनेबल सीन्स होते हैं पहले ही आपका सिनेमा बोर्ड बैठ के उसका सर्टिफिकेशन करता है, एंड जो नॉट रिक्वायर्ड सीन है या जो ऑफेंसिव

0: इन्होंने लगते हैं वो हटा दिया जाता है नाउ. अब इससे दो इश्यूज आते हैं. पहले के टाइम पे तो सिर्फ सिनेमा रिलीज होती थी तो सर्टिफिकेशन बोर्ड वहां पे अप्लाई होता था. अब ओटीटी भी आ गया है. ओटीटी तो सिनेमा बोर्ड के थ्रू नहीं आ रहा है, जो भी कंटेंट आपने बनाया आपने डाल दिया तो कोई चेक नहीं है. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि क्या हर बार जो लॉ कहता है क्या वही सिनेमा में दिखाते हैं, नहीं. ये तो आरक्षण मैंने आपको एक जनरल मूवी बता दी कि रिजर्वेशन के ऊपर एक मूवी है. एक मूवी आई थी जय भीम. I do not know if anyone have seen it or not.
1: No, I watched it.
0: But yeah. It was an amazing, amazing movie which actually talked about a real life story. Na, Tamil Nadu ke ek insaan the, jinko 1993 mein police ne custody mein liya tha for certain charges. Custodial torture ke baad unka death ho gaya. Police ne wo body shift kar di just to make sure ki kisi ko pata na chale ki they were involved in it. And for 13 years the case went on the court. ठीक है, एक रिट होती है जिसे हम कहते हैं हेबियस कॉर्पस, राइट, जो जिसका आपका इंग्लिश में मीनिंग होता है ब्रिंग द बॉडी, राइट, जिसमें आप कोर्ट में ये रिट फाइल करते हो कि हेबियस कॉर्पस के अंदर जो इंसान मिसिंग है आप उसे लेकर के आओ. एंड आफ्टर 13 इयर्स दे वॉन द केस. उनकी वाइफ दे शी वॉन द केस एंड पता चला कि ठीक है कस्टोडियल टॉर्चर की बात थी. और ये इसलिए हुआ था बिकॉज दिस पर्सन वॉज अ ट्राइबल पर्सन. ठीक है, तो कास्ट वॉज इन्वॉल्व इन दिस मूवी. नाउ वॉट हैपन्स इज जब आप जय भीम का ओरिजिनल केस पढ़ेंगे बिकॉज इट इज ऑलरेडी अवेलेबल टू जनरल पब्लिक. ठीक है, आप जय भीम का जब केस पढ़ेंगे और जय भीम का अगर आप मूवी देखेंगे तो दोनों में चेंजेस होते हैं. उसके पीछे का एक लॉजिकल रीजनिंग भी है जिसे हम एक शब्द में कहेंगे क्रिएटिविटी, राइट. तो फॉर द नेम ऑफ क्रिएटिविटी देर आर सर्टेन थिंग्स विच दे चेंज. तो एग्जैक्टली वैसा नहीं दिखाते. कई बार जैसे कोई इवेंट है उसको कोई इंसिडेंट हुआ किसी भी इंसान के साथ जो हमारा SC ST कम्युनिटी से है, टू मेक श्योर कि पीपल एम्पथाइज विद हिम और हर, तो कई बार उस चीज़ को आप और बड़ा करके दिखा देते हो कि सो दैट लॉट्स ऑफ पीपल कैन कनेक्ट विद इट. तो ये तो है कि जो हम सिनेमा में देख रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो सच्ची हो. चाहे आप उन मूवीज की भी बात वो कर लो जो एक्चुअल में सही इंसिडेंट्स पे बनी है. जैसे आपकी बहुत बार बायोपिक वगैरह बनती है, राइट, रियल पीपल के ऊपर बनती है, रियल स्टोरी के ऊपर बनती है, बट स्टिल देर आर सर्टेन फैक्ट्स विच दे चेंज इन द नेम ऑफ क्रिएटिविटी. MS धोनी को देख लीजिए आप. MS धोनी मूवी बनी थी, उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जो उन्होंने क्रिएटिविटी के नाम पर चेंज कर दिए. बिकॉज सिनेमा इज नॉट जस्ट अबाउट चेंजिंग सोसाइटी, इट इज ऑल्सो अबाउट अर्निंग मनी. सो दे नीड टू सी कि किन के साथ ज़्यादा कनेक्ट बैठाया जा सकता है. तो वो चीज़ भी सिनेमा में बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए हर बार जरूरी नहीं कि लॉ को एज इट इज दिखा दिया जाए.
1: डोंट यू थिंक कि कहीं ना कहीं अगर सिनेमा उसको, मतलब आई डोंट नो, आई माइट बी रॉन्ग, एक मूवी आई थी आर्टिकल 15 थी, आयुष्मान खुराना की, उसमें सिमिलर था कास्ट को लेकर के, बहुत बड़ा वो था. तो एक कास्ट का प्रॉपर नाम वहां पर लिया गया था. तो वो आके बोलता है कि हम छोटे हैं साहब क्योंकि हम उस जाति से आते हैं. तो जब मैंने वो डायलॉग देखा कि हम उस जाति से आते हैं, हम छोटे हैं, डोंट यू थिंक कि इट अफेक्ट्स आवर सोसाइटी इन अ वे कि हाँ ये चीज़ तो नॉर्मल है, फिल्मों में भी देखो दिखाई जा रही है. क्योंकि मैं और आप किताबें पढ़ के यहाँ बैठ के स्टूडियो में बात कर सकते हैं, हमें समझ में आती चीज़ें. पर आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार के किसी गाँव में जा करके देखोगे, वहाँ पर उनको वो चीज़ रियल लगेगी. It'll connect with it, don't you think so?
0: That is true. तो होता क्या है ना, हम इसे सिस्टम का नाम दे देते हैं. आर्टिकल 15 में एक छोटा सा सीन, आई डू नॉट नो हाउ मेनी ऑफ आर लिसनर्स विल रिमेम्बर इट. उसमें एक नया पुलिस वाला को होता है जो पानी लेने के लिए उतरता है और वो दुकानदार उससे कहता है कि अपर कास्ट की दुकान है. अभी भी आपने जैसे बोला कि सिनेमा में उन्होंने बोला आर्टिकल 15 में कि हम छोटी जाति से आते हैं. ये अपर कास्ट, लोअर कास्ट, अगर आप ये दो टर्म देखेंगे ना, लॉ में नहीं है. वी डू नॉट से इट अपर कास्ट, लोअर कास्ट. द मोमेंट वी आर सेइंग अपर कास्ट, वी आर ऑलरेडी प्रिज्यूमिंग देयर समथिंग कॉल्ड लोअर कास्ट. ये जब भी हम लोअर कास्ट कह रहे हैं तो हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि नहीं अपर कास्ट है. तो ये बाइफरकेशन हमने सोसाइटी में खुद किया है. और जो आपका कहना है कि नहीं मूवी में ऐसा दिखाया जाता है तो हम उसे नॉर्मलाइज कर देते हैं. अब होता क्या है, मूवी का जो पर्पस है वो ये है कि सोसाइटी में इस चीज़ की अवेयरनेस तो आए. बिकॉज ये नॉर्मल सी पुरानी की मूवीज की वजह से इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हमें अपने आसपास जो गलत चीजें हो रही होती हैं वो हमें नॉर्मल ही लगता है. आप बहुत बार देखेंगे दिस वर्ड, इवन आई एम अ लॉ प्रोफेसर, कई बार मेरे मुंह से भी निकल जाता है बिकॉज इट इज वेरी नॉर्मल. The Act says SCST Act, right? The Constitution says Article 14 से लेकर के आपकी सारी fundamental rights जितनी भी हैं, सब कहीं ना कहीं equality की बात करती हैं. कहीं पे भी word upper caste और lower caste नहीं है. तो ये word कहाँ से आए? Society से. सोसाइटी ने इस चीज़ को इतना नॉर्मलाइज कर दिया कि हमें लगता है कि जैसे एक एक छोटी सी इंसिडेंट बताना चाहूँगी मैं. हमसे जो ऊपर वाली जनरेशन है ना, एक जनरेशन ऊपर, हमारे पेरेंट्स वगैरह, आप कभी उनके मुंह से डिस्कशन सुनी है? दे से इट वेरी कैजुअली कि अरे बेटा ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, ये लोग, राइट? सो हमने इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि हमें ऐसा लगता है कि भाई ये तो बहुत ही नॉर्मलाइजेशन है. अब होता क्या है, सिनेमा को वही चीज़ दूर करनी है कि इसके बारे में बातें हों, इस चीज़ को पिन पॉइंट किया जाए. इवन आर्टिकल 15, इट वॉज क्रिटिसाइज, ऑल दो इट इज़ अ वेरी ग्रेट मूवी. आर्टिकल 15 आपने देखी है, बहुत अच्छी मूवी है. अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को टच किया जो कास्टिज्म के अंदर होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल मंदिर के अंदर एंट्री नहीं होना, सेम कुएं से पानी नहीं पीना, सेम बर्तन में नहीं खाना वो पीना, इवन सेम चेयर पे ना बैठना, राइट? तो बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज को जिसे हम सिस्टम का नाम दे देते हैं कि नहीं गांव में तो ऐसे वो मतलब होता है, इनके साथ तो ऐसे ही होता है. तो काफ़ी सारी चीज़ों को उसने टच किया, लेकिन इन दी एंड इट वॉज क्रिटिसाइज बाई दिस थिंग ओनली कि इन दी एंड जो हीरो को दिखाया गया है उसमें, ही हु इज़ द सेवियर ना, जिसको सेवियर दिखाया गया है, वो भी अपर कास्ट से आता है, ठीक है? सो उस चीज़ को भी, अब ये चीज़ अ पर्सन जिसने अपने पूरे लाइफ में प्रिविलेज ही देखा है ना, जैसे मैं कहती हूँ एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ही छोटी सी इशू है, इसमें क्या दिक्कत की बात है, ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं इशू को. और मुझे, मेरे यहाँ पे मेरी माँ एक चीज़ कहती है, हिंदी में एक मुहावरा है कि जाके पैर ना फटे बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई ना. तो जिसके पैर फटते नहीं है ना, वो फटे हुए पैरों के साथ जब कभी चलेगा नहीं ना, तो उसे वो पेन ही महसूस नहीं होता ना. एक मैन के ऊपर कितना फाइनेंशियल बर्डन है ये मैं यहाँ बैठ के नहीं बता सकती, समझ सकती हूँ, बहुत एजुकेशन ले ली शायद तो शायद समझ सकती हूँ, बट हाउ यू आर फीलिंग इट, हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग इट, दैट इज़ समथिंग विच आई कांट नो. एंड सेम अप्लाइज टू द कास्ट ऑल्सो. हमारे इंडिया में इतनी सादा कास्ट है, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर इतना ज़्यादा कास्टिसिज्म. तो एक, जैसे कि आपने कहा कि इस पर्टिकुलर कमरे में बैठ के इसके बारे में बात करना बहुत आसान है, बट हाउ डू दे फील, हाउ डू दे एक्सपीरियंस, इट्स समथिंग विच इज़ बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग. जिसने हमेशा से बचपन से लेकर के नौकरी तक और नौकरी में भी कास्टिसिज्म देखा है, वो मैं एज अ प्रिविलेज कास्ट, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ प्रिविलेज कास्ट, वो मैं समझ सकती हूँ लेकिन एक्सपीरियंस नहीं कर सकती. और वो मूवीज में भी कई बार ना ग्लोरीफाई करके दिखा दिया जाता है, विच टेक्निकली शुड नॉट बी देयर. लेकिन अब यही है कि मूवीज आर ऑल्सो कमर्शलाइज्ड, और जो मूवीज कमर्शलाइज होती नहीं है उन, वो बहुत जनता तक नहीं पहुंच पाती, राइट? जैसे हमारी मूवीज हैं, आपने देखी होगी सैराट, मराठी मूवी
1: हॉरर किलिंग,
0: हाँ
1: देखिए,
0: तो सैराट और एक आध और तमिल मूवीज हैं, राइट? दे आर वर्किंग अमेजिंग. वाई दे आर वर्किंग अमेजिंग? क्योंकि उनकी आउटरीच भले ही कम हो, बट उन्होंने जो कास्टिज्म को दिखाया है, मतलब हमने जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में कास्टिज्म को दिखाया कि अरे बेचारे, अरे ये नहीं कर सकते, इनके लिए एक सेवियर आएगा, हीरो आएगा, हीरोइन आएगी, ऐसा. ऑन दी अदर हैंड इफ यू सी मूवीज लाइक न्यूटन, राइट, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुई, इट डिड नॉट रीच लॉट्स ऑफ पीपल. वैसे आप सैराट देखोगे, सैराट का तो चलिए गाना फेमस हो गया, इस वजह से कुछ लोगों ने देख ली, बट मसान हुई, सैराट हुई, आप अगर ऐसी मूवीज देखेंगे जहाँ पे कास्ट को या फिर किसी एक कास्ट के इंसान को वीक नहीं दिखाया है, अपने अधिकारों को जानने वाला दिखाया है, अपने अधिकारों को पहचानने वाला दिखाया है और उस पर सवाल करने वाला दिखाया है, दैट इज़ द काइंड ऑफ सिनेमा विच शुड रीच टू मेजॉरिटी ऑफ पीपल, बट वो मेन स्ट्रीम में अभी तक नहीं आई.
1: हाँ, मेन स्ट्रीम के सामने चैलेंजेस हैं कि उनको पैसा कमाना है, एंड शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों की डिमांड भी वही है कि उनको भी वही देखना है कि एक सेवियर तो होना चाहिए ना, कोई तो ऐसा बाहुबली हो जो सबको मार देता है, तो वो है, वो सेवियर नहीं दिखाया जाएगा. जहाँ पर एक जात को चैलेंज कर देगा कोई इंसान, उसको सेवियर नहीं माना जाएगा. सो दैट इज अ बिट स्ट्रेंज, बट इट इज़ व्हाट इट इज. ऑलराइट, लेंगे म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे. हालांकि यहाँ पर मैं एक चीज़ और एड ऑन करना चाहूँगा, बीते दिनों एक रिक्शे वाले को मारा गया था, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, जस्ट बिकॉज वो एक सर्टेन कास्ट से आता था और दूसरी तरफ कुछ लड़के थे वो एक सर्टेन प्रिविलेज कास्ट से आते थे, और सिर्फ इसलिए कि वो एक प्रिविलेज कास्ट से आते थे और उनको माता पिता ने बचपन से बोला है कि तुम अपर कास्ट से हो, इसलिए उनको ये अधिकार मिल गया कि बाकी सब जो है लोअर कास्ट के उनको मारा जा सकता है, एंड दैट वाज स्ट्रेंज। फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील।

0: Once again, welcome back. अगर आपके पास कोई फीडबैक है मेरे लिए या डॉक्टर आरात्रिका के लिए तो 8010781078 इस नंबर तक अपनी बात जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल इसी नोट पर अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, आर्टिकल 15 को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, थोड़ा बता सकती हैं क्यों?
1: सो यूजुअली व्हेन मूवीज आर चैलेंज ना इन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो इसलिए चैलेंज नहीं की जाती हैं कि जो वल्नरेबल क्लास है वो ये कभी कंप्लेन नहीं करती है कि हमारी जो सिचुएशंस रही हैं, राइट, जो हमारे साथ इंसिडेंसेस रहे हैं वो अच्छे से दिखाए नहीं गए। वो मेजॉरिटी ऑफ टाइम इसीलिए चैलेंज होती हैं कोर्ट्स में, दैट एक पर्टिकुलर क्लास, एक पर्टिकुलर कास्ट को किसी टर्मिनोलॉजी से बोल दिया गया जिसकी वजह से वो ऑफेंस ले लेते हैं, राइट। एंड सेम हैपेंड विद आर्टिकल 15 आल्सो व्हेन इट वाज चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, बट द सुप्रीम कोर्ट इन रिटर्न सेड दैट टू सिचुएशंस हैपेंड, आरक्षण के साथ ये हुआ था कि कुछ स्टेट ने बैन कर दी, ठीक है, आर्टिकल 15 के साथ ये हुआ था कि उसकी रिलीज पे रोक लगाने की बात की गई थी, एंड द सुप्रीम कोर्ट सेड कि जो भी सर्टिफिकेशन है वो कमिटी बैठ के दे चुकी है, ठीक है, इट इज़ ऑलरेडी सर्टिफाइड, तो अब हमारा रोल इसमें कुछ नहीं है। और आरक्षण में ऑन दी अदर हैंड बिकॉज सर्टेन स्टेट्स बैंड इट कि हम अपने यहाँ पे आरक्षण मूवी नहीं रिलीज वो करेंगे बिकॉज ऑफ सो सो सो रीजंस, द सुप्रीम कोर्ट सेड यू कांट डू इट बिकॉज एक बार सर्टिफिकेशन हो गया इसका मतलब जो आपका सिनेमा का बोर्ड है उसने ऑथोराइज कर दिया है कि इसमें एज सच कुछ ऑफेंसिव नहीं है, जो ऐसे सीन्स होते हैं वो वहीं पर कट कर दिए जाते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज द रीज़न कि दोनों सिनेमा में अगर आप देखेंगे दोनों मूवीज़ में ये डिफरेंस था, एक जगह पहले से ही वो उन्होंने रोक दी थी कि हम नहीं दिखाएंगे और दूसरी जगह लोगों ने बोला था कि आप ऐसे, इवन विद पद्मावत इफ एनीवन रिमेंबर्स इट, इट वाज जस्ट अ स्मॉल सीन फॉर दीपिका पादुकोण, राइट। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन थी कि देयर वाज अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल, सर्टेन कास्ट पीपल, जिनको एक टर्म बोला जा रहा था जो आज के टाइम पे SC ST एक्ट के अंदर इट्स अ ऑफेंस, अगर आप वो टर्म किसी को कैजुअली भी बोलते हैं वो ऑफेंस है। पहले के टाइम पे जो हम शब्द स्लैंग्स के जैसे, गालियों के जैसे यूज़ करते थे, जो जाति के शब्द हम गालियों के जैसे यूज़ करते थे, वो आज के टाइम पे SC ST के अंदर नॉन बेलेबल ऑफेंस है अगर आप किसी को उस नाम से बुला देते हैं। सर्टेन कम्युनिटी पीपल थॉट दैट दिस इज़ ऑफेंसिव, नो वन पिन पॉइंटेड इट कि नहीं नहीं इस पर्टिकुलर चीज़ को आप और अच्छे से दिखा सकते थे, इसलिए बैन नहीं किया, सिर्फ इसलिए किया कि सर्टेन कास्ट के लोग को लगा कि नहीं नहीं इस टर्म का तो ऑफेंसिव मतलब होता है, प्लीज डू नॉट रिलीज इट, बट सुप्रीम कोर्ट ने विदाउट कट उसे रिलीज किया।
0: ऑलराइट एक पॉइंट यहाँ पर ये भी उठता है कि जो SC ST एट्रोसिटीज एक्ट है, ठीक है, उसमें क्या क्या कवर होता है, अगर सिंपल शब्दों में बात करूँ तो एग्जैक्टली क्या कवर्ड है उसमें?
1: सो आपने न्यूज में बहुत सारी ऐसी खबरें सुनी होंगी कि किसी को रिसेंटली, अभी कुछ महीने पहले की न्यूज़ है जहाँ पर रेलवे स्टेशन में एक इंसान ने दूसरे इंसान के ऊपर पी किया, राइट, यूरिनेट किया टेक्निकली स्पीकिंग, बिकॉज दैट पर्सन थॉट दैट ही वॉज इंटाइटल्ड टू डू इट। आफ्टर रीडिंग दैट न्यूज़ आई थॉट ही माइट बी ड्रंक, सबसे पहला एक नॉर्मल प्रूडेंट इंसान मुझे ऐसी लगेगा कि शायद नशे में होगा, पर वो नशा नहीं था, दैट वॉज एंटाइटलमेंट, उसको लगा कि वो कर सकता है और इसमें कुछ गलत नहीं है, उसने किया। तो अगर आप बहुत ही प्लेन लैंग्वेज में देखेंगे तो SC ST एक्ट जो जिस 1989 का एक्ट है, तो जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं, लेट्स प्रेज्यूम फॉर अ वाइल ऑफेंसेज, मैं आपको बताती हूँ कि आपने किसी इंसान को, जैसे हम बहुत ही प्लेन लैंग्वेज में पहले कुछ वर्ड्स यूज़ करते थे ना, जैसे चमार है, पासी है, ये सारे हम वर्ड्स यूज़ कर देते थे एक दूसरे को बुलाने में, इवन दीज वर्ड्स आर अ क्रिमिनल ऑफेंस इफ यू आर कॉलिंग समवन लाइक दैट बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज डेरोगेटरी। नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स, जैसे आप बिकॉज ऑफ सर्टेन कास्ट आप किसी को नेकेड करके घुमा रहे हो ना, आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि एक लोअर कास्ट का इंसान घोड़ी चढ़ के अपनी शादी में गया तो गांव वालों ने उसे नंगा करके जूते चप्पल की माला पहना के घुमाया, ये चीज़ें। किसी का लैंड आप ज़बरदस्ती डिस्पोज करके वो किसी और को दे दो क्योंकि वो एक वल्नरेबल कास्ट से है, ये आपको, आप किसी को ज़बरदस्ती कुछ ऐसा फीड करा रहे हो, खिला रहे हो जो एडिबल नहीं है, राइट। जैसे हम बहुत बार ऐसा वो वो करते हैं कि गौमूत्र पिला दी, गोबर खिला दिया, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट सुनने में आते हैं। मंदिर में ना जाने देना, कुएं से पानी ना पीने देना, ये सारे बहुत सारे जो नॉर्मल डेज में आप न्यूज़ सुन रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ SC ST एक्ट में कवर है। रिसेंटली 2015 और 18 में अमेंड भी हुआ है, मोर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट और सख्त पनिशमेंट प्लस नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में भी रखा गया है कि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग लाइक दिस। जैसे अब धीरे धीरे क्या है, पहले के टाइम पे आप बाइफरकेट कर लेते थे ना कि आप एजुकेशन नहीं दे रहे हो, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हो। अब लोग पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो कई बार क्या होता है नए नए ऑफेंस क्रिएट होते हैं। पहले के टाइम पे तो हम बस इतना ही कर पा रहे थे कि हम पानी नहीं पीने दे रहे थे, नहीं नहीं तुम इस कुएं से पानी नहीं पियोगे तो ठाकुर का कुआं है ना। अब और नए ऑफेंस आ रहे हैं कि आप एम्प्लॉयमेंट में भेदभाव कर रहे हो, आप उनको एम्प्लॉयमेंट में नहीं आने दे रहे हो। आप अपने आसपास देखो, आप जितने भी इंस्टीट्यूशंस में हैं आप अपने आसपास देखिए कास्ट की कितनी डाइवर्सिटी है। कई बार लोगों को इस वजह से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कास्ट के हैं। तो अब ये तरीके की ऑफेंसेस भी कवर होने लग गए हैं। तो जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ रही है, ठीक है, मैं कभी भी नहीं कहती इम्प्रूव कर रही है क्योंकि ये मेरा जजमेंट नहीं है, बट जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ रही है ऑफेंस की जो कैटेगरी है ना वो भी बदल रही है। सो धीरे धीरे मेजॉरिटी ऑफ ऑफेंसेज आर कवर्ड अंडर SC ST एक्ट। BNSS के अंदर जो कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता है उसके अंदर कोई सेपरेट उन्होंने नहीं रखा फॉर कास्ट, बिकॉज SC ST में ऑलरेडी कवर्ड है। आपका एक आर्टिकल 17 है जो अनटचेबिलिटी, जिसने पूरा अनटचेबिलिटी बैन करने के लिए बोला जो कॉन्स्टिट्यूशन का है। एक वो है जो डायरेक्टली आपका कास्ट से रिलेटेड लॉज हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आर्टिकल 17 एंड आपका SC ST एक्ट के अलावा भी आपका आर्टिकल 14 जिसकी आप बात कर रहे थे, 15 की रेस कास्ट सेक्स जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आपका 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ। उसके बाद 16 के नीचे आपका जो 17 वो अनटचेबिलिटी के लिए है, 18, 19, 20, 21 आपके एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में। तो ये फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में थे और हमेशा से थे, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन पुराना है। SC ST एक्ट तो आपका 1989 में आया, तो उसके होने के बावजूद भी सरकार को लगा कि नहीं ऑफेंस तो नहीं रुक रहे हैं तो उसको क्रिमिनलाइज करना पड़ेगा। ये तो चलो सरकार की जिम्मेदारी थी। इसीलिए जब हम लॉज देखते हैं ना तो लॉज भी दो कैटेगरी के हैं, व्हेन इट कम्स टू SC ST प्रोटेक्शन एक्ट और सिर्फ लॉज रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट। तो आप भी देखोगे कि लॉज का ना नेचर दो कैटेगरी में, एक तो वो लॉज जो प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में अभी हमने बात की अनटचेबिलिटी SC ST एक्ट, दूसरे वो लॉज और पॉलिसी जो वेलफेयर के बारे में बात करते हैं, राइट। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे जब हम कह रहे हैं लोअर कास्ट तो हम ये मान के चल रहे हैं ना कि हमसे नीचे हैं, तो उनको ऊपर कौन उठाएगा, सरकार, लॉज। तो हमारी जो कैटेगरी ऑफ लॉज है वो दो कैटेगरी में, एक प्रिवेंशन की बात वो करती है कि इनके खिलाफ जो एट्रोसिटीज हो रहे हैं उन्हें रोकना कैसे है, और दूसरे वेलफेयर लॉज जो ये कह रहे हैं कि हम क्या बेटर कर सकते हैं, जिसमें आपका आता है रिजर्वेशन, ठीक है, कि हम रिजर्वेशन दे सकते हैं एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में। बहुत ही छोटा सा इंसिडेंट है, जब भी हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं ना तो बच्चे हमेशा बिल्कुल रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए मैम, रिजर्वेशन क्यों हो रहा है, आपका जनरल पब्लिक बहुत सफ़र कर रही है। एंड आई स्टिल रिमेंबर, मेरे फादर हमेशा एक एग्जांपल देते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं, ही इज़ अ डॉक्टर, सो ही ऑलवेज सेज कि इवन व्हेन आई रिटायर आई विल बी अ डॉक्टर। मैं हमेशा बोला जाऊँगा कि डॉक्टर साहब जा रहे हैं, लेकिन एक जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का इंसान जब डॉक्टर के पद से रिटायर होता है ना उसको उसी पर्टिकुलर स्लैंग से बुलाया जाता है कि अरे वो जा रहा है। तो दिस इज़ द रियलिटी। हम कह सकते हैं कि अब कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज़ नहीं होती हैं। आप देखिए ऑनर किलिंग कास्ट बेस्ड है, ठीक है, आज के टाइम पे भी मैरिजेस को लेस जो हमारे संविधान ने चॉइस दिया है कि आप अपना पार्टनर खुद चुन सकते हैं एक उम्र के बाद, 18 लड़कियों के लिए 21 मैन के लिए, उसमें भी आप देखिए आपको अपने आसपास कितनी इंटरकास्ट मैरिजेस दिख रही हैं, लोग उसके लिए एक दूसरे को मारने को तैयार हैं। सो कास्ट कहीं ना कहीं इफेक्ट तो करती है ना, सबको ये लगता है कि देखो जो भगत सिंह ने काम किया ना बहुत अच्छा काम किया भगत सिंह ने, लेकिन भगत सिंह मेरे घर में नहीं होना चाहिए। सो एवरीवन इज़ रेडी टू टॉक अबाउट कास्ट कि नहीं नहीं ठीक है अब लोअर कास्ट के लोगों को हम लोअर कास्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है हम समझ रहे हैं कि एक खून है, एक खून सिर्फ तब तक है जब तक ब्लड डोनेशन की बात नहीं आए ना कि आपको ब्लड चाहिए, तब एक खून है। अगर आपको अपनी लड़की देनी होगी वो उनके यहाँ तब एक खून नहीं रहता है। सो ऊपर ऊपर एटलीस्ट सिनेमा ने ये हेल्प की है कि ऊपर ऊपर इसके ऊपर डिस्कशन होने स्टार्ट हो गए, नहीं तो पहले डिस्कशन ही नहीं थे. यू कैन नॉट टॉक अबाउट कास्ट अपने घर में बैठ के बहुत ही सिंपली कि नहीं नहीं आप ऐसा नहीं बोल सकते पापा, आप ऐसा नहीं बोल सकते मम्मी. वी कैन नॉट यूज टू डू दिस. अब धीरे धीरे सिनेमा की वजह से थोड़ा डिस्कशन स्टार्ट हुआ है, लोग बोल पा रहे हैं. लेकिन जो बेस लाइन है, जितने भी अगर आप एक्ट्स हैं आप देखिए ना, एससी एसटी एक्ट के अंदर कितनी कंप्लेंट्स फाइल होती हैं. मैं ये नहीं कह रही कि हर कंप्लेन बिल्कुल सही कंप्लेन है, कुछ ऐसी भी कंप्लेन होती हैं जो बाद में फ्रॉड निकल जाती हैं, बट एटलीस्ट लॉ है तो लोग अप्रोच कर पा रहे हैं. तो ऊपर ऊपर डिस्कशन तो हमारी सोसाइटी में स्टार्ट हो गया है. लेकिन आई गेस दैट इज़ अ डे जो अभी भी काफ़ी टाइम बाद आएगा जब मैं न्यूज़पेपर खोलूं और मुझे कम से कम एक हफ्ते तक कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज की कोई न्यूज़ ना मिले कि कोई ने किसी को इस चीज़ के लिए मारा कि उसने उसकी प्लेट से ले लिया या उसके कुएं से पानी पी लिया या वो लड़की किसी और कास्ट के इंसान के साथ भाग रही थी, लोअर कास्ट के साथ भाग रही थी, इसलिए हमने मार डाला. सो जिस दिन ये सफल हो जाएगा कि एक हफ्ते तक मुझे ऐसी न्यूज़ पढ़ने को ना मिले, तब मैं सोच सकती हूँ कि नहीं अब कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज के ऊपर मूवी बनानी बंद कर देनी चाहिए. बट टिल देन वी आर स्टिल हेयर टू डिस्कस एंड अवेयर पीपल.
0: सो इंटरेस्टिंग. और ये बहुत डीप है, इसको इतना आसान भी नहीं है समझ पाना और इतना मुश्किल भी नहीं है. बट मुझे लगता है कि इसको स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझेंगे कि पहले तो संविधान कुछ बोलता है, कानून कुछ बोलता है, एक सोसाइटल नॉर्म चलता है, सोसाइटी क्या बोलती है, फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये उठता है कि आपके घरों में कैसे बात की जाती है, कि आपके घरों में भी इस तरह के शब्दों का चयन किया जाता है. जैसे मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मैं जाता था अपने गांव, जो रिलेटिव्स थे हमारे उनके वहाँ पर, तो अगर मैं नहाया नहीं हूँ, लेट से नहाने में लेट हो गया हूँ, तो एक सर्टेन कास्ट का नाम लिया जाता था कि तू वो है क्या, नहा क्यों रहा तू. तो अब समझ में आता है कि क्या ग्रेविटी होती है उसकी, कि कितना सीड इन कर दिया गया है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में. इट्स लाइक अ नॉर्मल स्लैंग, ठीक वैसे ही जैसे गालियाँ होती हैं, ठीक है, कि बहन की, माँ की, इतना नॉर्मल हो गया है कि बच्चा बच्चा आपको देता हुआ दिखाई दे जाएगा. और फिर सिनेमा ने उसको और माशाल्लाह और नॉर्मलाइज कर दिया है, उसको और एग्जैजरेट करके उसमें सुर भी डाल दिया गया है. सो आई थिंक दैट्स हाउ दिस सिनेमा थिंग इज वर्किंग. बट थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग हियर, इट मींस अ लॉट टू अस. मुझे बहुत मजा आया पर्सनली और मैं उम्मीद कर रहा हूँ लिसनर्स को बहुत मजा आया होगा.
1: थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी. आई गेस डे टू डे लाइफ में ना वी यूजली फॉरगेट, जब हमारे ऐसे सेशन होते ना तब हमें रियलाइज होता है कि अच्छा आई ऑल्सो फील अबाउट दिस थिंग दैट डीपली ना. तो डे टू डे लाइफ में तो लाइफ निकलती रहती है, हम चलते रहते हैं, बट आई गेस दीज आर सम मीनिंगफुल डिस्कशंस जो लोग सुनना भी पसंद करते हैं और हमें भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि अच्छा ये हुआ, ये मैंने इस टाइम पर ये स्टोरी सुनी, आज मैंने ये पढ़ा. बिकॉज हम दिन भर पढ़ते रहते हैं, जैसे मैं लॉस बैकग्राउंड से हूँ, मैं दिन भर में कम से कम 50 ऐसी चीज़ें पढ़ती हूँ जो नहीं होनी चाहिए, देश में, विदेश में, हमारे घर में, दूसरे वाले पड़ोसी के घर में, जो नहीं होनी चाहिए. बट वो 50 चीज़ में से आई किस 5 से 6 चीज़ें हैं जिनके लिए मुझे लगता है कि नहीं मुझे बोलना चाहिए. क्यों लगता है, शायद एक्सपीरियंस है, ठीक है, कुछ सेट ऑफ चीज़ों के लिए आपका आवाज़ निकलती है. आई गेस कास्ट, जेंडर, क्लाइमेट चेंज, दीज आर सर्टेन थिंग्स विच वी शुड टॉक अबाउट. बिकॉज अगर अब नहीं, ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं ना जो अगली आने वाली जनरेशन को अफेक्ट करेंगी. ये देश कहाँ जाएगा, ये समाज कहाँ जाएगा, ये इन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है. अगर हम इन मुद्दों के ऊपर आज बात नहीं करेंगे तो फिर आगे आने वाली जनरेशन कैसे इस चीज़ को अनलर्न करेगी. राइट हमारे मॉम डैड की ज़िंदगी निकल गई, हमारी आधी ज़िंदगी निकल गई, अब जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है ये मेक श्योर करना है कि वो इन सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज ना करें, वो जो हमने सिखाया है वो समय से अनलर्न कर जाए. बिकॉज लर्निंग तो हमारी डे टू डे लाइफ में सागर इतनी होती है ना कि अब हमें सोचना पड़ रहा है कि लर्निंग बंद कर दें, अब अनलर्निंग का टाइम स्टार्ट हुआ है, अब हमें अनलर्निंग करनी कि ये तो हमने सीखा था, ये हमने गलत सीखा था, अब हमें सही दिशा पे चलना है. एंड जिस दिन हम अनलर्निंग शुरू कर देंगे ना, हमारी नेक्स्ट जनरेशन बहुत बहुत सिस्टमैटिक वे में ना चीज़ों को समझना शुरू कर देगी. तो आई गेस दैट इज इम्पॉर्टेंट.
0: Yeah, learn to unlearn things and that's how growth happens, that's how we evolve, that's how we grow. जो existing norms है आपके, आपको उनको question करना पड़ेगा और हटाना पड़ेगा कि ये सीखा है आपने, normalize आपके लिए, उसको वापस से रीडिफाइन करना पड़ेगा कि नॉर्मल नहीं हो सकता है. दैट्स हाउ, दैट्स द ओनली वे जिस तरीके से हम लोगों को स्कोप दे सकते हैं या बाकियों को साथ लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, दैट्स द ओनली वे. ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम.
1: थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, होप टू सी यू सून।
0: सी यू सून मैम। ऑलराइट दोस्तों, नाउ ऑन दिस नोट वक्त अपने शो को यहाँ पर कंक्लूड करने का। आई जस्ट होप आज आप इस टॉपिक को और अच्छे से, शायद और थोड़ा एक स्टेप आगे से समझ पाए हैं। नॉट जस्ट सिनेमा, जस्ट हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स इन आर सोसाइटी, हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स इन आर ब्रेन्स। उम्मीद कर रहा हूँ आपको पसंद आया होगा शो। अब चलता हूँ इसी नोट पर, फिर मुलाकात होगी फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।
2: ना इज्जत की चिंता ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन।
3: गुरुदेव यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए।
2: हाँ गुरुदेव। ना

महाराज पधारे, चिमटा चरस चिलम और चेले साथ साथ हैं सारे, कितने लेकर भी गाड़ी में खड़े शरीफ बेचारे।

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है।
1: तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के संग लेक वादा,
0: अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।

0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं आपके लिए लेकर आती हूं खास कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण का, यानी वी वेमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण की आज की कड़ी में हम जिनके साथ बैठे हैं वो है डायरेक्टर स्टडी बाय जनर, यानी वैंडी मेहरा जी। आज हमारा सौभाग्य है कि हम उनके साथ हैं और आज हम उनकी जर्नी को आप तक लेकर आने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने कभी सपना देखा होगा कि वो एक एस्टैब्लिश्ड डिजाइनर बने, एक ऐसी लेगेसी उनके पास हो, लेकिन कई बार शायद सपने पूरे नहीं हो पाए या हिम्मत नहीं हो पाई। लेकिन आज ये हिम्मत आपको मिलने वाली है क्योंकि इस कार्यक्रम में हम इनसे बात करने वाले हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है वैंडी जी।
1: थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।
0: वैंडी जी, इफ आई मे आस्क यू, आपके नजरिए में महिला सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट, व्हाट इज योर डेफिनेशन, हाउ डू यू डिफाइन इट?
1: आई थिंक वुमेन आर इनहेरेंटली स्ट्रांग, बिकॉज तभी तो नारी शिव शक्ति कहलाती है
0: जी,
1: बिकॉज वो हमारे अंदर हमारे ओरिजिनल संस्कार में, आई थिंक शक्ति इज द बिगेस्ट संस्कार, बिकॉज हम सब में सहन शक्ति, समाने की शक्ति, अगर हम वो आठ देवी की शक्तियों की भी बात करें, सो वो किसी भी मेल गॉड में कभी भी नहीं दर्शाई जाती, इट्स ऑलवेज इन द फीमेल वर्जन ऑफ द गॉडेस। सो वी ऑल दोज ओरिजिनल क्वालिटीज आर ऑलरेडी देयर इन अस, सो हम we don't need to work on that, they're all already there, we just need to be aware and emerge them.
0: Wendy ji, through eras we have seen a lot of challenges women have faced. Ek time tha women were not even born, bacche ko bhrun mein hi maar diya jata tha. Then I think we progressed, kuch mahilaon ne na sirf empowerment dikhai but we started growing up. Aaj ki stage mein we have choice of our jobs, we have choice of our careers.
1: Not for everybody.
0: Yes,
1: I would say it's a niche category of women today who majorly either it is the circumstances or the loving support of a family member so that they are able to achieve their dreams. Like I know in my case it was my husband's loving support always which gave me this platform. I know for a very dear colleague of mine working with me, it was the circumstances and whatever she was going through, so that she needed to just rise out of that, and today she is doing brilliantly well. So I guess it's a mix of both.
0: Yes,
1: it is, because humme ye shakti hai, so whatever the circumstances around us are, we need to make the right decisions aur humme apni jagah khud banani hai.
0: दोस्तों, वक्त है एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की। इस खूबसूरत सी कड़ी में हम आज बात कर रहे हैं वैंडी मेहरा जी से। वैंडी मेहरा जी जो कि डायरेक्टर हैं स्टडी बाई जनक की, और अपनी ये खूबसूरत सी जर्नी और कहानी आज हमें बता रही हैं। पंडित जी, अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं, तो आज के टाइम की जो विमेन हैं या महिलाएं हैं, क्या चैलेंज लगता है इन जनरल? मतलब लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, डिसीजंस खुद नहीं ले पाती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती हैं, या परिवार और जॉब इन दोनों के बीच में कहीं पिसके रह गई?
1: आई थिंक इन सबका कुछ हर एक परिवार में, हर एक वुमन में आई वुड से हिस्सा है। It is as per our upbringing, as per the circumstances, if the woman is married, as per the mahol in her house, the in-laws ka thinking, har ek cheez ka kuch to hai. Kaiyon ko, like jaise shuru mein jab meri shaadi hui, if I wasn't allowed to step out of the house or work. So you know, it is har ka nazariya ek tarah ka hoga, jiske accordingly hume adapt karke dheere dheere, aur jo cheez mujhe shuru se lagta hai, jo cheez pyar se jeeti ja sakti hai, wo ladke nahi jeeti ja sakti. Because mere liye to have, see my mother-in-law smile and be happy, जितना भी मैं काम कर लूँ, आई नो फ्रॉम माई हार्ट माई फैमिली इज माई प्रायोरिटी। सो टू गो दैट एक्स्ट्रा स्टेप आउट ऑफ शी इज माई प्रायोरिटी, कि उन्होंने कभी कुछ बोल दिया, कभी कुछ उनको चाहिए, वो मेरे लिए सबसे पहले करना है, बिकॉज आई नीड हर हैप्पी एंड स्टेबल टू बी एबल टू एट ईज एंड टू बी एबल टू पुट इन माई ऑल हियर। सो अ वुमन जस्ट नीड्स टू बैलेंस, नो इन हर माइंड, और अगर तुम एक घंटा उनके साथ हो और उसमें यू गिविंग दैम ऑल विच दे नीड, then what you're doing in the other 8 hours at work automatically balances it. It's not quantity, it's the quality you are giving to wherever you are. जहाँ भी हो, जिसमें भी हो, उसको अपना complete energy और complete unconditional love अगर तुम देते हो ना, काम में भी, तो without unconditional love the brand is never formed.
0: Yes.
1: तो तुम जहाँ हो उसको अपना सब कुछ दो, एंड ईगो तो होनी नहीं चाहिए मेरे लिए। ईगो जस्ट डजंट मैटर, इवन इफ आई एम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मेरे लिए माई क्लाइंट इज अ गॉड। मुझे खुद भी क्लाइंट को सैंडल्स पहनाने हैं, खुद भी सारे कपड़े टांगने हैं, इट डज नॉट मैटर। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, वन नीड्स टू लीड बाई एग्जाम्पल। ट्रायल रूम में भी अगर क्लाइंट को चेंज कराना है, इट इज ओके, एंड दैट इज द कल्चर विच वी इम्बाइब्ड इन ऑल आर ब्यूटिफुल टीम्स वी आर ब्लेस्ड विद। बिकॉज वन एवरी सीनियर नीड्स टू लीड बाई एग्जाम्पल एंड गाइड द जूनियर।
0: पंडित जी, आपके सशक्तिकरण की जर्नी की बात करेंगे, योर जर्नी ऑफ एम्पावरमेंट, मुझे बताइए एनी वन डिसीजन ऑफ एम्पावरमेंट दैट यू हैव टेकन एंड यू हैव नेवर रिग्रेटेड, एंड टुडे व्हेन यू लुक बैक यू आर एब्सोल्युटली हैप्पी दैट यस आई टुक दिस डिसीजन।
1: द डिसीजन टू वर्क आई वुड से, बिकॉज़ आई

ना और ये जो कहानी है इनकी इंस्पायरिंग कहानी, बिल्कुल जुड़े रहिए रेडियो वन अवरेष्टा 107.8 एफएम के साथ, क्योंकि इंस्पायरिंग सी कहानी अभी जारी है। फील गुड, फील लाइव।

0: सुना दी।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
2: कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानवरत्न 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानवरत्न 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। सशक्त महिलाओं से आपको मिलवाती है और आज इस कड़ी में हम जिनसे बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं। जी हाँ, फैशन के नाम का सबसे बड़ा नाम वैंडी मेरा, जो कि स्टडी बाई जनक की डायरेक्टर हैं। स्टडी बाई जनक एक खास स्टूडियो जो साउथ एक्स आप जब कभी भी जाते हैं, सो साउथ एक्स में एक बड़ा सा स्टोर अगर आपको दिखेगा, सो वो स्टोर जो है वो है वैंडी मेरा जी का। न सिर्फ अगर कहना चाहिए ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर और कॉरपोरेट वेयर में ये मास्टर करती हैं, लेकिन इन्होंने अपनी कला से मुझे कहना चाहिए सिर्फ हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी नाम कमाया है। वैंडी जी, महिलाओं के साथ ना एक सरनेम आता है और वो सरनेम है त्याग, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट। सो आई हैव ऑलवेज सेड वुमेन इज इक्वल टू
1: सी जो सर्कमस्टेंसेस है, जो करना है वो तो करना ही है ना।
0: yes.
1: अगर हम प्यार से कर लें वो बेटर है, उससे हम भी खुश अगला भी खुश।
0: exactly.
1: चूचू करके या क्रिप करके या सोच करके हम इनके लिए एहसान कर रहे हैं, इसलिए हम ये कर रहे हैं
0: जी।
1: हमें किसी को नहीं बदलना, बस खुद को बदलना है।
0: wow.
1: For me, it's always been, if I want anything changed, means I need to work more on myself.
0: wow.
1: When we change, the world changes. तो अगर हम प्यार से ही कर लें, जो यही सर्कमस्टांसेस है, सपोजिंग किसी को मेरे घर में कोई डिफिकल्ट है,
0: yes.
1: उसको कुछ चीज किसी प्रकार से चाहिए, rather than cribbing and you know rebelling, मैं भी कुड़कुड़ कर रही हूँ, why?
0: exactly.
1: Give in कर दो ना, give in कर दो, प्यार से कर दो, तो वो भी खुश, तुम भी खुश।
0: yes.
1: अपने आप को बदलते जाओ, बदलते जाओ, that's the easiest way. बट ऑफकोर्स स्वाभिमान और अभिमान में एक स्लाइट अंतर है।
0: yes.
1: स्वाभिमान हमें रखना है, अभिमान तो कभी करना ही नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: सो ह्यूमिलिटी आई फील इज द बेस्ट क्वालिटी एनीबडी कैन हैव।
0: महिलाओं को एक परेशानी सदियों से आ रही है, चाहे वो जमाना था जब महिलाएं पढ़ नहीं पाती थी, या ये जमाना है जहाँ उनके पास बहुत सारे डिसीजन लेने की अपॉर्चुनिटी है। जब कभी भी जिम्मेदारी की बात आती है और खासतौर पर घर की जिम्मेदारी की, महिलाओं को अपने प्रोफेशन का या अपने जॉब का त्याग करना होता है, सबसे पहली प्रायोरिटी ये कहा जाता है कि आपकी शादी हो गई है तो आपका परिवार, बच्चा हो गया तो आपका बच्चा, और घर में अगर एज्ड पेरेंट्स हैं या इन लॉज हैं तो आपको उनका ख्याल रखना है। क्या बैलेंस बनाया जा सकता है या त्याग ही जरूरी है?
1: ये इट इज अ फाइन लाइन। मे बी आई हैव बीन ब्लेस्ड इनफ कि अभी तक टच वुड माय मॉम इन लॉज क्वाइट एक्टिव एंड आई कॉल हर माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ इन माय लाइफ।
0: जी,
1: वो हैं। तो मैं शुरू से यू नो बच्चे जब स्कूल में भी पढ़ते थे, आई कुड एटलीस्ट सब फिजिकली आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, बट उनकी प्रेजेंस ही मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है। दैट्स व्हाई व्हेन आई सी यंगस्टर्स नाउ टॉकिंग अबाउट मूविंग आउट और बीइंग इंडिपेंडेंट, आई फील दे डोंट इवन नो व्हाट दे आर लूजिंग आउट ऑन। बट उनकी प्रेजेंस से ही तुम्हारा घर इतना सिक्योर रहता है कि यू कैन ईजिली लीव योर चिल्ड्रन, यू कैन लीव फॉर वर्क एवरी डे। सो इवन फॉर द यंग गर्ल्स हु आर वर्किंग फॉर मी, आई फील दे कैन join work because they know the mother is at home, there is someone there, right, to be able to manage and take care. So it's a give and a take. Jaise maine pehle bhi kaha, I feel pehle pyar se jeet lo and dheere dheere, kyunki tumne itna pyar diya hai, wo automatically they will respond and they automatically then just support you in all the decisions you take. अपना सपना क्यों छोड़ना, हमें भी करना है जो हमें करना है, हमें अचीव करना है, एंड देन दे स्टार्ट बिकमिंग सो हैप्पी विद वॉट एवर यू आर अचीविंग दैट इट बिकम्स अ सेंस ऑफ प्राइड फॉर देम। लाइक फॉर एग्जांपल माय फादर इन लॉ, जब मैंने कहा ना, जब मैंने पहले बोला पापा मुझे काम करना है, नहीं वो लाइक मैं दुकान बंद कर दूंगा, लड़की घर की बाहर नहीं जाएगी
0: जी।
1: जबकि पापा दादू दादी दे नेवर यूज्ड टू ड्राइव, आई वॉज दी ओनली गर्ल इन द एंटायर फैमिली who was the most educated and I used to drive. किसी को भी कहीं जाना होता था, it used to be me. यही लेकर जाएगी, यही करेगी, कोई घर में मेहमान भी आ रहे होते थे, इस मुझे आगे करते थे, यही टेबल लगाएगी, यही आगे होएगी, because you know then, but gradually करते करते then, when I did join work, I told you papa that time was like, you know, complacent, he didn't say anything. And for me, my Eureka movement was कि वो फिर धीरे धीरे वो मुझसे ही पूछने लग, अपना सारा काम, because papa तो factory हैंडल करते थे, हम फ्रंट एंड पे थे, पापा यूज टू हैंडल द फैक्ट्री, ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी अबाउट ऑल द वर्क, वांटेड एनीथिंग इन द फ्रंट एंड, एनीथिंग ही वांटेड डन, वो धीरे धीरे सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मुझे देने लग गए थे। सो दैट बिकेम माई ट्रू विनिंग पॉइंट, बिकॉज इन यू इसको बोल दिया तो वो तो काम हो ही जाएगा। सो दैट ट्रस्ट एंड द बॉन्ड विच वी बिल्ड, दैट वॉज ट्रूली माई मोस्ट प्रेशियस मोमेंट।
0: दोस्तों आज मुझे समझ में आ गया कि DDLJ में शाहरुख खान ने काजोल को भगाने के बारे में क्यों नहीं सोचा और उनके माँ बाप का दिल जीत कर उससे शादी करने के बारे में क्यों सोचा, क्योंकि अगर आप दिल जीत लेते हैं तो आप लंबे समय के लिए न सिर्फ क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर लेते हैं लेकिन एक ट्रस्ट और भरोसा आपके पास
1: है एंड यू ऑलवेज हैव योर फैमिली विद यू, क्योंकि मजा तो सबके साथ चलने में ही है ना, अकेले क्या जर्नी, किसको दिखाना क्या करना।
0: एग्जैक्टली एक और प्यारा सा गाना और आप जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं वैंडी मेहरा जी, जो कि डायरेक्टर हैं स्टडी बाई चनक की, और आज हम कर रहे हैं इनसे ढेर सारी बातें। वैंडी जी, एक बज वर्ड है आज के जमाने में जेंडर इक्वालिटी, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, आई मीन डू यू रियली फील कि ये जेंडर इक्वालिटी की जरूरत है? कुछ महिलाओं को आज भी इक्वालिटी नहीं मिल पा रही है, और अगर हाँ तो कैसे मिल सकती है?
1: Again, I feel it depends on individual relationships. It depends on, you know, the equation you have with your own partner. Touch wood, mine has been fair enough because we were both very young. I was 21, he was 22 when we got married. So it was literally we both grew up together, right? And hume ye isliye nahi problem hui because we somewhere grew up together. But yes, when I had first joined work, then because and few of my friends ne mujhe warn kiya tha ki tumhari itni achhi relationship hai, jab kaam ikatthe karoge na relationship bigad jayegi because wahan egos clash ho jati hain. Because women somewhere are more systematic, more organized, it's majorly in our personality. So few times we used to be having a board meeting or a full decision with the entire team in the factories. A few times if I would just give my suggestion in the beginning, between everybody, I would just say something. A few times my husband had snubbed me and I wasn't used to that, and ekdam se I was this thing. But then with time, I guess we learned when to draw the line. I learned where I just need to just let him be, and jo bhi baat karni hai fir wo baad mein one to one karna hai. So then you just grow, give each other mutual respect. Us time react nahi kare agar
0: ji,
1: life is anyway not about reacting but responding.
0: Yes,
1: so us time nahi react karna chahiye, baad mein alag jaakar one to one when you have a conversation, then things are resolved amicably. Us time to react karna hi nahi chahiye na, you have to just keep your patience, do deep breathing, because I am touch wood in gyan, so we are taught ki agla kuch trigger hoke kuch bol raha hai jo tumhare liye tumhe acha nahi lag raha, immediately your blessings from here just begin.
0: Oh wow,
1: you're a pure divine soul, you're a peaceful soul. So us time apne aap ko blessings emit karte karte karte yahan shant rakh lo, and then after a little time when the situation is calmer, then have a conversation.
0: दोस्तों, अगर हम सब ये कर लें तो आप सोचो जिंदगी के बहुत सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे लगता है खत्म ही हो जाएंगे।
2: एक और प्यारा सा गाना सुनाने वाली हूँ आपको, वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का। हालांकि सच बताऊं, इतनी मजेदार बातें सुनने को मिल रही है, इतनी इंस्पायरिंग सी स्टोरी वैंडी जी की है, लेकिन उसके बावजूद मुझे पता है भाई आपको एक प्यारा सा गाना सुनाना है। सो एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। और इस कड़ी में आज हम जिनसे बात कर रहे हैं वो है वैंडी मेरा, जो कि डायरेक्टर है स्टडी बाई जनक की। बहुत अच्छा लगा वैंडी जी आपसे बात करके। जाते जाते क्या खास मैसेज हमारे सभी लिसनर्स के लिए?
1: Like I said earlier, when we change, the world changes. हमें किसी को कभी नहीं बदलना, हमें बदलना है तो सिर्फ और सिर्फ स्वयं को। किसी भी रिलेशनशिप में आप थोड़ी सी प्रॉब्लम देख रहे हो, इसका मतलब तुम्हें उससे और भी आगे होना है। बिकॉज फॉर मी टचवुड, मैं ज्ञान में तो हूँ ही, आई एम फ्रॉम कुमारी एज अ शेफ, प्लस आई एम पार्ट ऑफ द शुक्राना फाउंडेशन ऑल्सो। सो उधर तो दे से इमिजिएटली किसी रिलेशनशिप में कुछ फील कर रहे हो ना, जो दूसरा बंदा है जिसके साथ तुम्हें किटपिट लग रही है या कुछ ठीक नहीं लग रहा, इमिजिएटली स्टार्ट राइटिंग ग्रैटिट्यूड्स। हर एक बंदे में कुछ अच्छा या कुछ गुड क्वालिटीज तो है ही है, कितनी भी तुम्हारी रिलेशनशिप बिगड़ गई हो तो उसकी जितनी भी गुड क्वालिटीज हैं, दिस इवन वर्क्स लाइक मैजिक। इवन वेयर अ कपल इज फॉलिंग आउट इन अ रिलेशनशिप, इट कैन बी अ मदर डॉटर, इट कैन बी अ मदर सन, अ फादर सन, जस्ट ऑपोजिट की जितनी भी अच्छी क्वालिटीज है, जस्ट स्टार्ट राइटिंग ग्रैटिट्यूड ऑन दोज quality, just keep writing and miracles happen.
0: Wow.
1: Because when we are cleaning our energy, अगर हम बाहर में गुस्सा देख रहे हैं इसका मतलब गुस्सा हमारे अंदर है, कहीं हम अपनी शैडो को देख रहे हैं। तो हर एक स्थिति में हमें सिर्फ और सिर्फ खुद को बदलना। उस बंदे के लिए तुम 10 अच्छी अच्छी चीज़ें लिख दो और दिल से थैंक यू करके लिखते ही जाओ, miracles happen. All really, it just changes. And depends on how big is the block you've created. जितना ग्रैटिट्यूड करते जाओगे उतना वो ब्लॉक अपने आप डिसॉल्व हो जाता है
0: क्या
1: और सब कुछ हील हो जाता है।
0: अगर हम जिंदगी को थोड़ा सा ठहर कर, भागते हुए नहीं लेकिन कहना चाहिए तसल्ली से देखे ना, तो जिंदगी बहुत खुश है।
1: कभी रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए, हमेशा उस टाइम चुप, एक चुप सौ सुख, बड़ों ने ऐसे ही नहीं बोला, उस टाइम चुप, देन रिस्पॉन्ड लेटर ऑन जस्ट विद अ क्वाइट चैट।
0: बहुत बहुत धन्यवाद गांधी जी, आज आपने अपना कीमती समय निकाला।

हमारे सभी लिस्नर से आपने बातचीत की। दोस्तों, महिला सशक्तिकरण के इस खूबसूरत से कार्यक्रम में फिलहाल आरजे भावना को दीजिए इजाजत, लेकिन कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा।
1: नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, जिसे लेकर के आता है रेडियो मानव रचना हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं किसी एक ऐसे मुद्दे पर जो जुड़ा हुआ है हमारे आपकी जिंदगी से, और उसी मुद्दे पर हमारा प्रयास रहता है कि हम इस प्रोग्राम के जरिए तलाशें नई सोच के साथ नई दिशाएं जो हमें लेकर के जाएं एक बेहतर भविष्य की ओर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रेडियो मानव रचना 107.8 FM का हमेशा प्रयास रहता है कि हम आपके जीवन को जितना बेहतर बना सकें, उसको और ज़्यादा खुशनुमा बना सकें। जितने भी प्रयास किए जा सकते हैं, हम रेडियो मानव रचना के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हमेशा उन प्रयासों पर काम करते रहते हैं। ऐसा ही एक प्रयास आज हम अपने कार्यक्रम में चर्चा करेंगे एक विषय पर जो जुड़ा हुआ है हमारे जीवन से, हमारी धन संपत्ति को लेकर के। दोस्तों, आम तौर पर जब कभी भी हम बात करते हैं पैसे की, तो वो अपने आप में एक कला है, यानी एक आर्ट है पैसा कमाना। लेकिन उसी पैसे को कैसे बढ़ाया जा सकता है या उसमें वृद्धि करने के तरीके कौन से होते हैं, वो अपने आप में एक साइंस है, एक टेक्निक है। और उसी टेक्निक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि हम अपनी तेज रफ्तार जिंदगी में कैसे बेहतर आय तो चाहते हैं, लेकिन उस धन को कैसी समझदारी से, कितनी समझदारी से हम उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। और इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी आज एक खास मेहमान सोनम पारिक, जो एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में रिसर्च और मार्केटिंग हेड हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे सोनम जी के साथ। सोनम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम में नई सोच नई दिशाएं में, वेलकम।
2: बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी।
1: सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। आपने अभी बताया कि एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में आप रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड हैं, तो वो क्या है कंपनी?
2: तो हमारी कंपनी है मेवेंस कैपिटल, वो बेसिकली नोएडा में बेस्ड आउट है। ये एक बुटीक वेल्थ एडवाइजरी फर्म है, तो हम यहाँ पे HNIs, अल्ट्रा HNIs, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के वेल्थ मैनेज करते हैं। तो किस तरीके से कहाँ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, किस तरीके से उनको उनका पूरा एक एसेट एलोकेशन होता है, उनका पूरा एक पोर्टफोलियो बनता है, तो इस हिसाब से ये हमारा जॉब प्रोफाइल होता है जो हम क्लाइंट्स के लिए करते हैं। मेरा काम ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में समझें, क्या मार्केट्स में स्ट्रैटेजीज चल रही हैं, क्या रिसर्च है, क्या ग्लोबल इन्वेस्टिंग में क्या चल रहा है, डोमेस्टिक में क्या चल रहा है, तो वो मेरा जॉब प्रोफाइल है यहाँ पे।
1: तो हम अगर हम सीधे सीधे मुद्दे पर आएं, यदि हम आज के विषय की बात करें, तो एक आम चर्चा में रहता है कि जब कभी भी हम अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई बात करते हैं या व्यापार को लेकर के या पैसे को लेकर के बात करते हैं, तो हम केवल बात करते हैं कि हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आप समझिए कि जो आपका वाला वेल्थ मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है, उसके बारे में एक चर्चा दिमाग में आती है कि आखिर वेल्थ मैनेजमेंट है क्या। मतलब हम पैसा कमाने की बात करते हैं, व्यापार कीजिए, जॉब कीजिए या कोई नया स्टार्टअप कीजिए, तो हर किसी में एक बात आती है कि हमने पैसा कमाया। लेकिन जब हम वेल्थ मैनेजमेंट वर्ड यूज करते हैं, तो एक्चुअली वेल्थ मैनेजमेंट है क्या? और दूसरी बात ये कि जब कभी भी वेल्थ मैनेजमेंट की बात आती है, तो हम आमतौर पर समझते हैं कि वेल्थ का सीधा सीधा संबंध होता है उन लोगों से जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, या हम जिनको आमतौर पर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अकूत संपत्ति के जो मालिक हैं, उन्हीं को केवल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इस बारे में आपकी क्या राय है?
2: नहीं नहीं नहीं, पहली बात तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के ज़माने में वेल्थ प्लानिंग हर एक बंदे के लिए उतनी ही ज़रूरी है। लोगों को ये लगता होगा, बट आई थिंक वो प्योरली गलत फहमी है। अगर वेल्थ प्लानिंग की बात करें तो सरल भाषा में ये है, आपका आज सुरक्षित करना और आपका आने वाले कल का लक्ष्य को प्राप्त करने का सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। तो आप वेल्थ प्लानिंग में आपका, जैसे आज अगर कोई नया बंदा अपनी जॉब शुरू कर रहा है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो छोटे छोटे SIPs करें, अपने इंश्योरेंस करें। कंपनीज होंगी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना सक्सेशन प्लानिंग करें, एस्टेट प्लानिंग करें। तो ये सब काम जो करना होता है, इसको टोटली वेल्थ मैनेजमेंट कहते हैं। एक टाइम पे शायद वेल्थ मैनेजमेंट चॉइस होती थी, लेकिन आज के ज़माने में मेरे नज़रे में तो वेल्थ मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है।
1: अच्छा, एक बात आप बताइए सोनम, आमतौर पर देखा है हमने बहुत सारा लोग कमाई भी करते हैं, उनके सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा सेटल्ड होते हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको एक स्ट्रेस रहता है, इकोनॉमिकल स्ट्रेस अगर आर्थिक तनाव की बात करें तो उसके पीछे का क्या कारण है?
2: ये देखो, एक वर्ड में अगर मैं बताना चाहूंगी संदीप जी, तो वो है डिसिप्लिन। आज आप किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट करिए, कहीं पे भी करिए, एक कॉमन चीज जो हर प्लेटफॉर्म पे रहेगी वो है डिसिप्लिन। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, लोगों को लगता है कि इनकम माइनस एक्सपेंस इज सेविंग्स, जबकि सबसे गलत है। इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। अगर ये लोग सॉर्ट कर लें कि हम पहले बचाएं और उस बचत में डिसिप्लिन फॉलो करते रहें, तो मुझे लगता है ओवर द टाइम ना, ये जो इनको भी तनाव हो रहा है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके या अपने अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को लेके, वो कहीं ना कहीं ओवर द टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, डिसिप्लिन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये क्विक मनी वाला अगर आपका बिहेवियर होगा तो आप वेल्थ नहीं बना पाएंगे। आप पैसे शायद बचा लेंगे, कुछ कमा लेंगे, लेकिन जब हम वेल्थ प्लानिंग की बात कर रहे हैं, उस चीज में सिर्फ और सिर्फ आपको डिसिप्लिन हेल्प करेगा।
1: तो कुल मिलाकर के बात यदि हम करें तो आर्थिक तनाव का जो मुख्य कारण है वो है केवल आपका नजरिया। जैसा कि आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि आमतौर पर हम जब सेविंग्स की बात करते हैं तो होती है कि हमारी इनकम और उसमें से जो खर्चे घटाने के बाद जो हमारे पास पैसा बचता है वो हमारी सेविंग है, लेकिन जो नजरिया है वो हमें बदलने की जरूरत है कि हम अपनी आमदनी में से पहले सेविंग्स को अलग करें अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, और बाकी बचे हुए पैसे को ही खर्च करें, अपनी जो खर्चों की जो भी फहरिस्त है उसको हम इतना मैनेज करके चलें कि हम उसमें ही उसको पूरा कर पाएं। तो बहुत खूबसूरत बात सोनम जी ने अभी हमें बताई है कि एक डिसिप्लिन जो होता है अपनी आय को लेकर के, वो रखना बहुत जरूरी है यदि आप अपनी वेल्थ को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस चर्चा को जारी रखेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं आपकी संपत्ति के मैनेजमेंट के बारे में, यानी वेल्थ मैनेजमेंट कैसे किया जाए। आप जो पसीना बहाकर आप मेहनत करके जो पैसा आप कमाते हैं

0: पे युवाओं को अपनाना चाहिए, या अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो कोई युवा यदि अपनी नौकरी की शुरुआत करता है अपने करियर की, तो बेसिकली उसको सबसे पहले करना क्या चाहिए?
1: देखिए, आज पढ़ लिख के इतनी मेहनत करके कोई जॉब शुरू करता है तो उसका पहला नजरिया तो यही होता है कि यार थोड़ा अपने पे खर्च कर लें, नई घड़ी ले लें, बाइक ले लें, गाड़ी ले लें, कहीं घूम आए। और जो मुझे लगता है ऑनेस्टली कहीं गलत नहीं है, आपने अपना एक करियर बिल्ड कर रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, लेकिन डिसिप्लिन जितना जल्दी शुरू हो जाता है ना उतना ही बेहतर रिजल्ट देता है। तो मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि थोड़ा सा ही सही आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, जो SIP होती है बेस्ट तरीका। तो आपने जो भी आप इनकम कमाते हो, हम टेक्निकली कहते हैं कि उसका 33-35% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बट प्रैक्टिकली देखें तो नया नया किसी ने अगर जॉब शुरू किया तो वो पॉसिबल नहीं होता। बट एक डिसिप्लिन लाने के लिए, एक फॉर्मेट बिल्ड करने के लिए कम से कम 20% से वो एक SIP शुरू कर दें, वो डिसिप्लिन आ जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे वो अपने इस डिसिप्लिन को, अपनी SIP अमाउंट को बढ़ाते रहेंगे।
0: तो कुल मिलाकर के बात यह है कि यदि आप कहीं से भी इनकम की शुरुआत करते हैं किसी भी एक नए वेतन के रूप में, तो कहीं ना कहीं आपको उसी समय से डिसिप्लिन होना चाहिए ताकि आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर्ड रह सके। और साथ ही साथ एक बात जो समझने वाली है, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास इतनी बिखरी हुई होती हैं कि वो हमेशा आकर्षित करती हैं, और ख़ासकर हमारे युवाओं को जो कहीं ना कहीं एक जो EMI का एक फंडा चल पड़ा है कि आप सेविंग्स में रेगुलर पेमेंट देने की बजाय आप कोशिश करते हैं कि आप भविष्य की आवश्यकता की चीज़ें भी करंट में खरीद लें और उसके ऊपर खर्चा करें, तो हमें बचने की ज़रूरत है उन सब बातों से। यदि मैं सीधे शब्दों में बात कहूं, जैसे मैंने पिछले भाग में आपसे बात की कि जो वेल्थ मैनेजमेंट है, क्या ये कॉन्सेप्ट केवल उन लोगों के लिए है कि बहुत सारा पैसा होता है? तो मैं उसी बात को एक दूसरे तरीके से कहना चाहता हूं कि यदि कोई युवा है, उसने अभी जॉब ज्वाइन की और वो अपना, जैसे कि आपने कहा कि 20% मिनिमम एक सेविंग करना चाहिए, तो मैं अगर इसको फिगर आउट करूँ कि यदि कोई व्यक्ति मात्र 5,000 रुपये महीने की सेविंग करता है और उसको निवेश करना चाहता है, तो क्या उसको निवेश शुरू करना चाहिए?
1: बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक जो हमारी इंस्टीट्यूशन है SEBI और AMFI, उनका ना पूरा कॉन्सेप्ट यही है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को लेके। आज SEBI ने एक मिनिमम 250 रुपये की भी SIP शुरू करवा दी है। उसका कॉन्सेप्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करें। तो 5,000 तो बहुत बड़ी रकम हो गई, आपको अगर 1,000 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट महीने दर महीने करना है तो भी आप कर सकते हो।
0: तो ये तो बात हुई SIP और म्यूचुअल फंड की। साथ ही साथ अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है, जब हम वेल्थ मैनेजमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको सीधा सीधा अगर हम लिंक करें इन्वेस्टमेंट से, हमने सेविंग की बात की कि ठीक है पहले हमें सेविंग करना चाहिए, बचे हुए पैसे को खर्च करें, लेकिन यदि हम उस सेविंग को इन्वेस्ट करने की बात करें, तो आप क्योंकि एक रिसर्च मार्केटिंग हेड हैं आप कंपनी की, तो आप बेहतर जानती होंगी कि क्या क्या हमारे पास उपाय हैं या क्या अवसर हमारे पास आज की डेट में अवेलेबल हैं। तो लोगों के मन में जो प्रश्न रहता है कि आखिर उनकी जो सेविंग है उसको इन्वेस्ट कहाँ पर करें, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं?
1: देखिए, मुझे लगता है कहाँ करें से पहले आपको जवाब देना पड़ेगा कैसे करें। ठीक है, आज क्या हो रहा है, आज के डेट में एक बंदे को अगर इन्वेस्टमेंट करनी है उसके किसी फैमिली मेंबर में, उसके किसी फ्रेंड में या जानकार में, अगर किसी ने एक कंपनी से या एक स्कीम से पैसा कमाया है तो वो भी उसी में डाल देते हैं। इनफैक्ट इसका मैं संदीप जी आपको बहुत बढ़िया उदाहरण देना चाहूँगी। तो आपने देखा होगा पिछले साल भर से हमने गोल्ड और सिल्वर में बहुत रैली देखी है कि प्राइस बहुत ही शॉर्ट अप हो चुके थे। तो म्यूचुअल फंड में गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है ETF। तो अगर आपको बाय करना है तो आप गोल्ड ETF या सिल्वर ETF बाय करते हैं। ये कैटेगरी अपने आप में महीने दर महीने 3-4 हज़ार करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाती थी। जनवरी में गोल्ड सबसे पीक पे था, ठीक है, उस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो 24,000 करोड़ की हुई है। आज डेट पे जनवरी से अभी तक अगर आप देखोगे तो गोल्ड और सिल्वर काफ़ी करेक्ट हो गए। गोल्ड तकरीबन 20-24% फॉल ले चुका है और सिल्वर भी लगभग उतना ही फॉल ले चुका है। अब उसका नतीजा क्या हुआ, पिछले महीने मई में उसी फंड में से 3,000 करोड़ निकल गए। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि क्योंकि किसी ने देखा कि यार गोल्ड में बहुत पहले इन्वेस्ट कर रखा हुआ था, जनवरी में बहुत रिटर्न मिल गए तो बंदों ने जान में इन्वेस्ट कर दिया।
0: तो यानी लोग टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की बजाय लोगों में, जिसको हम आमतौर पर आम भाषा में भेड़ चाल बोलते हैं, उस तरह का है कि लोग फॉलो करते हैं कि कोई क्या कर रहा है।

0: रिटर्न्स देखते हैं, जबकि वो इकलौता तरीका नहीं होता आपका इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए संदीप जी, तीन चीज़ें हर एक बंदे को समझना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। पहली चीज़ है आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। जब मैं रिस्क प्रोफाइल बोलती हूँ तो उसका मतलब ये है कि मार्केट्स में जो हम पिछले दो साल से देख भी रहे हैं, अगर रिटर्न नहीं आया तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? क्या आप शांति से बैठ के वेट करोगे, आप पैनिक करोगे या आप बेच दोगे? ऐसे करके ना बहुत क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हमारी कंपनी भी करती है, वो क्वेश्चंस का आप जवाब देते हो, उन जवाब से हमें पता चल जाता है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। दूसरी चीज़ जो हम करते हैं वो है इन्वेस्टमेंट होराइजन, कि मानो मैं कह रही हूँ मुझे यहाँ से एक साल के लिए पैसा रखना है, दो साल के लिए रखना है, पाँच साल के लिए रखना है, दस साल के लिए रखना है, तो दूसरी चीज़ आपको जाननी होगी कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है। तीसरी चीज़ आपका पर्पस क्या है। आज नए युवाओं के लिए शायद पर्पस होगा कि मुझे दो साल बाद एक यूरोप ट्रिप लेना है, चार साल बाद एक गाड़ी लेनी है, घर लेना है। मिडिल एज वालों के लिए होगा बच्चों की एडुकेशन या रिटायरमेंट प्लान। तो तीसरा सवाल होगा पर्पस, कि आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है। फिर जाके आता है कि आपको किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है। आज लोग गलती यही कर रहे हैं, वो शुरू ही नीचे से कर रहे हैं कि किस प्रोडक्ट में डालें, जबकि पहले समझना होगा ये तीन चीज़ों का जवाब। जब इन तीन चीज़ों का आपको जवाब मिल जाएंगे ना, तो आपका प्रोडक्ट अपने आप बन जाएगा, आपका एक पूरा एसेट एलोकेशन बन जाएगा कि उन तीन सवाल के हिसाब से आपको इक्विटी में कितना रखना है, डेट में कितना रखना है, ग्लोबल इन्वेस्टिंग में कितना रखना है और गोल्ड और सिल्वर में कितना रखना है।
1: मतलब अगर हम सीधी बात करें तो वेल्थ मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो एक्चुअली शुरू होता है, सबसे पहले आपको स्वयं को पहचानने की जरूरत है कि आपकी अपनी आवश्यकताएं हैं क्या। यदि हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आपकी अपनी जरूरतें क्या हैं, उन पैरामीटर्स पे कौन सी चीज फिट बैठती है, जब आप उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जवाब मिल जाएगा। और यदि इस प्रकार का जवाब ढूंढने में आप सक्षम नहीं हैं, वहीं पर काम शुरू होता है किसी वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट का।
0: करेक्ट, एकदम सही।
1: तो साथ ही इस चीज में एक और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि आमतौर पर आपने देखा होगा भारतीय गृहस्थी में महिलाओं का भी पूरा एक रोल रहता है, वो भी एक गृहस्थी जीवन बिताते हुए भी उनके पास अपनी एक कुछ सेविंग्स होती हैं, उनकी भी भागीदारी काफी हद तक हमारी जो अगर हम वेल्थ की बात करें तो उसमें होती है, तो उनको किस तरह से इस वेल्थ मैनेजमेंट का पार्ट बनना चाहिए या उनके लिए क्या स्कोप है वेल्थ मैनेजमेंट में?
0: सर देखिए, एक तो सबसे पहली बात, वुमेन इन्वेस्टर्स ने खूब तरक्की कर ली है इसमें। मैं भी कुछ दिन पहले एक डेटा देख रही थी, तो 2020 की बात है, कोविड के टाइम पे जो हमारे म्यूचुअल फंड का AUM है उसका तकरीबन 5-1 लाख करोड़ रुपए वुमेन इन्वेस्टर्स का होता था। दिसंबर 2025 में वो डेटा है 17.5 लाख करोड़ का। तो ये एक डेवलपमेंट हुआ है कि वुमेन इन्वेस्टर्स और पे और इन्वेस्ट करने लगी है। तो इसमें जो मुझे लगता है, ऑब्वियसली मैं नोटिस करती हूँ कि वुमेन बहुत क्लियर हैं, उनको कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं बनना है, उनको फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन चाहिए, हर एक डिसीजन का पार्ट बनना चाहते हैं। और उससे मैं ये कह रही हूँ, हो सकता है कई जगहों पे आप शायद गलत भी हो जाओ, बट उससे निराश नहीं होना चाहिए।
1: लेकिन एक बात है कि जो उनका दायरा है वो काफी, क्योंकि घरेलू महिला है तो काफी सीमित होता है, तो उनके लिए कौन से प्रोडक्ट या कौन से तरीके उपलब्ध हैं कि वो अपनी जमा की हुई जो सेविंग्स उनके पास रहती है उसको इन्वेस्ट करने के उनके पास कौन से सरलतम उपाय उपलब्ध होते हैं?
0: देखिए, हर एक इन्वेस्टमेंट उनके लिए ओपन है, ऐसा नहीं है। आज अगर वो हाउसवाइफ हैं, वो जॉब नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए सिक्योर्ड सेफ थोड़े से बेटर सेफ फंड्स होते हैं जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई जॉब करने वाले हैं तो वो उस, देखिए फंड्स आप अपेरेंटली सेव ही रहेंगे, आप वुमेन के ले लो, मेन के ले लो, हाँ, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में हर एक तरीके के प्लान्स हैं आपके पास। अगर आप कहते हो कि मुझे 6 महीने के लिए ही पैसा रखना है तो उस हिसाब से भी आप अपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे लगता है, एंड प्लस आपने अभी एक बात बोली कि वुमेन, क्योंकि यू नो ऑब्वियसली मेजर हाउस मेकर्स ही रही हैं, जो मुझे लगता है वो ये है, वुमेन का ना बहुत ही एक नेचुरल इंस्टिंक्ट आता है जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। कहीं ना कहीं उनका इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या सही है, क्या ये सही रहेगा, या अगर उसमें कुछ भी उनको ऊपर नीचे है, तो मुझे लगता है वो शायद कंपैरेटिवली जल्दी आइडेंटिफाई कर सकती है।
1: बट आज की रेट में ये तरीके बड़े साइंटिफिक हो गए हैं और वेल्थ मैनेजमेंट और बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करती है यदि हम उन तरीकों को अपनाते हैं। तो अभी इस चर्चा को जारी रखेंगे म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ में
2: घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम बात कर रहे हैं आपकी बचत को निवेश करने के फंडों को लेकर के, तौर तरीकों को लेकर के, जिसे हम आधुनिक रूप में अगर हम भाषा में नाम बोलें तो वेल्थ मैनेजमेंट का। और हमारे कुछ सवालों का आपको जवाब देने के लिए आई हुई है हमारे पास रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड सोनम पारिक, जो एक कंपनी में वेल्थ मैनेजमेंट पे ही अपनी सलाहों से बहुत से लोगों का पैसा बढ़ाने का या उनको ऐसे नए उपाय सुझाने का, वो साइंटिफिक तरीके समझाने का काम करती हैं कि जिससे उनका कमाया हुआ पैसा कम समय में ज़्यादा वृद्धि पा सके, यानी ज़्यादा बढ़ सके। तो सोनम, एक बात जो आमतौर पर जब कभी भी हम बात करते हैं फ्यूचर सिक्योर करने की, चाहे कोई युवा है या कोई गृहिणी है या कोई भी है, तो एक थॉट हर किसी के मन में आता है जब वो सेविंग करता है या निवेश करता है, तो दो तरीके दिमाग में चलते हैं। एक तो ये कि हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, आमतौर पर आपने देखा होगा, और एक दूसरा थॉट आता है जब वो अपने लिए बात करते हैं कि अपनी रिटायरमेंट के बाद उनका किस तरह से उस पैसे का यूज वो कर सकते हैं, या क्या बेहतर तरीके हैं जो रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक बेहतर रिटर्न दे पाएं या एक आरामदायक जिंदगी वो बिता पाएं रिटायरमेंट के बाद। तो आखिर यदि हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो कब रिटायरमेंट का जो थॉट है उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता होती है, या चाहे हम किसी वेतन परस्त व्यक्ति की बात करें या किसी बिजनेसमैन की, तो जो रिटायरमेंट की प्लानिंग है वो एग्जैक्टली कब शुरू की जानी चाहिए आपकी राय में?
1: ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि आप कहो कि मैंने इतने साल जॉब कर लिया उसके बाद मैं रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करूं। आप इनफैक्ट जॉब जब शुरू कर रहे हो, आपकी इनकम शुरू हुई है, आप तब से भी प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप तीन उन सवालों के जब जवाब देते हो तो तीसरा होता है आपका पर्पस। तो समझिए कि मैंने अभी अभी अपनी जॉब शुरू करी है और मैं कह रही हूँ कि यार मुझे 4 साल बाद घर लेना है, उसके बाद मेरा बट एक रिटायरमेंट प्लान भी मुझे करना है। तो कौन वेल्थ एडवाइजर क्या करते हैं, या जनरली लोगों को भी क्या करना चाहिए, आप एक एसेट एलोकेशन करोगे। उसका क्या मतलब हुआ है कि मेरी इनकम से मैं एक्स अमाउंट बचा सकती हूँ, तो वो एक्स अमाउंट के हिस्से बनेंगे कि एक हिस्सा मैंने रखा है अपने घर खरीदना है उसके लिए, एक हिस्सा मैंने रखा है रिटायरमेंट के लिए। अब क्योंकि मैंने अभी अभी करियर शुरू किया और मेरे रिटायरमेंट में बहुत लंबा टाइम है, तो मेरे लिए जो रिटायरमेंट के प्रोडक्ट्स होंगे वो अलग होंगे। वो शायद एक लॉन्ग टर्म होगा जिसमें मैं थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले पाऊंगी, थोड़ा स्ट्रांग इक्विटी होगा, तो उस हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट होगी। दूसरा आपका है कि आपको 4-5 साल बाद मुझे घर लेना है, वो पैसा उसमें जा रहा है, तो मैं उस फंड में लूंगी जो मुझे पता है कि 5 साल में एक एक्स अमाउंट बना के दे सके, ताकि आपके जो भी माइलस्टोन है उसको हम अचीव कर सके। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप जब आप चाहो आप अपना रिटायरमेंट शुरू करो। हाँ, परसेंटेज चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने अभी अभी शुरू किया है, मेरे जॉब मेरे रिटायर होने में टाइम है, तो अगर मैं समझो 100 रुपये बचा रही हूँ तो उसका मैं शायद सिर्फ 10 रुपये डालूंगी रिटायरमेंट में, 90 कहीं और डालूंगी। फिर धीरे धीरे जैसे मेरी इनकम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे मैं अपना एलोकेशन बढ़ाती रहूंगी।
0: तो यदि हम सरल शब्दों में बात करें तो रिटायरमेंट की जो भी योजना है वो किसी भी समय आप आरंभ कर सकते हैं, लेकिन वो योजना किस प्रकार की होगी, उसमें एलोकेशन ऑफ फंड्स होगा किस प्रकार से, वो डिपेंड करता है आपकी अपनी स्थिति के ऊपर कि आप किस स्थिति में हैं और आपकी फ्यूचर को लेकर के प्लानिंग क्या है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति की अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं। किसी के बच्चे फॉरेन एजुकेशन के बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं, कोई अपने लिए एक बहुत अच्छा बड़ा घर प्लान कर रहा होता है, या कोई बहुत आरामदायक जीवन जीना चाहता है रिटायरमेंट के बाद। तो यदि हम सरल शब्दों में बात करें तो आपकी आवश्यकताओं के, आपकी ज़रूरतों के या आपकी इच्छाओं के अनुरूप ही आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए, उसका कोई समय सुनिश्चित नहीं है। तो एक बात और जो वेल्थ मैनेजमेंट को लेकर के बात आती है दिमाग में जब कभी भी हम सोचते हैं, तो इतनी तरह के लुभावने विज्ञापन आते हैं तरह तरह की, म्यूचुअल फंड में कभी किसी में इन्वेस्टमेंट की बातें करती हैं, तो जो बातें हैं उन बातों में एक सबसे ज़्यादा जो आजकल पॉपुलर वर्ड है बहुत आमतौर पर, अभी आपने कई बार हमारी चर्चा में SIP का जिक्र किया म्यूचुअल फंड को लेकर के, तो म्यूचुअल फंड के बारे में आज के समय में सबसे बड़ा मिथ है क्या, मतलब लोगों के मन में जो शंकाएं रहती हैं उनमें क्या सबसे बड़ी जो मिथ है वो म्यूचुअल फंड को लेकर के क्या है?
1: मुझे लगता है सबसे बड़ा मिथ जो है लोगों को वो ये है कि म्यूचुअल फंड मतलब शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड मतलब इक्विटी, जबकि ऐसा नहीं है। आज अगर एक बंदा कहता है, क्लाइंट कहता है कि मुझे एक ही दिन के लिए पैसा रखना है, तो म्यूचुअल फंड में ओवरनाइट फंड्स होते हैं। कोई कहता है मुझे 7 से 10 दिन के लिए पैसा रखना है, तो उसके लिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कोई कहता है नहीं मुझे 2 से 3 महीने रखना है, तो उसके लिए लिक्विड फंड्स है, लिक्विड प्लस फंड्स है। कोई कहता है मुझे एक साल के लिए रखना है, तो उसके लिए आर्बिट्राज फंड्स हैं। तो लोगों का ये मिथ है कि म्यूचुअल फंड मतलब इक्विटी मतलब कभी भी गिर सकता है, वो बहुत गलत है। आज आपको जो कॉम्बिनेशन चाहिए आप उस कॉम्बिनेशन में म्यूचुअल फंड का एक्सेस ले सकते हैं। इक्विटी डेट चाहिए, इक्विटी कम डेट ज़्यादा चाहिए, वो हो सकता है। आपको चाहिए इक्विटी कम डेट कम बट उसमें थोड़े कमोडिटीज़ भी आ जाएँ तो वो भी हो सकता है। प्योर डेट चाहिए वो भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से लोगों को ये समझना होगा म्यूचुअल फंड सिर्फ और सिर्फ इक्विटी तक सीमित नहीं है, उसमें और भी ऑप्शंस हैं। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं।
0: यानी अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड अपने आप में एक बंच है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद उपलब्ध हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास हैं, और मैं जहां तक समझता हूं कि वहीं पर कहीं काम शुरू होता है एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट का।
1: करेक्ट।
0: तो दोस्तों इस चर्चा को जारी रखेंगे छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद, और जानेंगे कि आपके धन की वृद्धि साइंटिफिक तरीके से एक वेल्थ मैनेजमेंट के प्रोग्राम को अपना करके एक डिसिप्लिन्ड लाइफ के तरीके से किस प्रकार से की जा सकती है। तो जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ, और फिर हाजिर होते हैं इस चर्चा को जारी रखने के लिए।

0: वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका नई सोच नई दिशाएं में। और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल। और दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो है आपके पैसे से जुड़ा हुआ, यानी आपकी सेविंग्स को कैसे हम कम एफर्ट्स में ज़्यादा बढ़ा सकते हैं एक इन्वेस्टमेंट के जरिए। और उसके लिए ज़रूरत होती है हमें एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट की। और हमारे बीच आज हमारी खास मेहमान हैं जो रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड हैं एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में, सोनम पारिक। आज हमने सोनम से जाना कि किस प्रकार से आप अपनी जो सेविंग्स है, एक बहुत बड़ा उन्होंने एक मंत्र बताया कि आपको नज़रिया बदलने की आवश्यकता है कि आपको पहले अपनी इनकम में से सेविंग्स को अलग करना है, बाकी बचे हुए पैसे का इस्तेमाल करना है अपनी ज़रूरतों पर, ना कि ज़रूरतों के बाद बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आता है यदि आप अपने इस नज़रिए को बदलते हैं। और ख़ासकर इस मंत्र को अपनाने की आवश्यकता है हमारी जेन जी को, हमारे युवाओं को, ताकि आपका फ्यूचर बेहतर बन सके। तो सोनम, आज एक मुद्दा और जो आमतौर पर आप, जैसे पूरी चर्चा में हमने बात की, आखिर पैसा हमारा है, हमारे सामने बहुत सारे विज्ञापन, बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, क्यों हमें ज़रूरत है एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट की? मतलब हमारे पास ऑप्शंस हैं, पैसा हमारे पास है, हमें पता है कि किस पे कितनी रिटर्न आ रही है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो वो एक आम आदमी या कोई भी जो व्यक्ति एक बहुत अच्छे पद पर कहीं है या एक बड़ा व्यापार चला रहा है, तो उसे वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट आखिर चाहिए क्यों?
1: देखिए, सेम वजह है जिसके लिए लोगों को डॉक्टर चाहिए होता है, लॉयर चाहिए होता है, फिटनेस ट्रेनर चाहिए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए होता है। बेसिकली आपको एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल चाहिए जिसकी एक्सपर्टीज हो उस इंडस्ट्री में। आज करने को, आज तो एआई का ज़माना है, आप खुद इन्वेस्टमेंट कर सकते हो पूछ के। एंड वैसे भी आज के युवाओं में तो DIY चलता है, डू इट योरसेल्फ। लेकिन ये दोनों चीज़ों में जो रोल प्ले करेगा वो है आपके पास्ट रिटर्न्स, जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लोगे। एंड जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सिर्फ पास्ट रिटर्न पे नहीं होता है। आज क्या होता है कि वेल्थ एडवाइजर के पास ना एक्सेस होता है, वो फंड मैनेजर से बात करते हैं, वो उनकी रिसर्च टीम से बात करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी समझते हैं, उनके फ्यूचर प्लान समझते हैं, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि क्या ये स्ट्रैटेजी और ये प्लान मेरे क्लाइंट के लिए सूटेबल है कि नहीं। अगर है तब जाके वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं। तो जो आप खुद करते हो वो आप पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पे करते हो। एक वेल्थ एडवाइजर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे बनाता है वो प्रोफाइल। दूसरी चीज, आपका टाइम मैनेजमेंट। देखिए, आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट एक फुल टाइम जॉब है। अगर आपका अपना करियर है जिसमें आपको फुल टाइम देना पड़ता है, तो आप कभी भी इन्वेस्टमेंट के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक सेक्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, उस सेक्टर में एक कोई पर्टिकुलर कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो इन सब में बहुत टाइम जाता है। आज एक वेल्थ एडवाइजर का फुल फ्लेज्ड काम यही है। तो कहीं ना कहीं उनके उनकी हेल्प लेने से आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है। और तीसरा जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ वो ये है कि वेल्थ एडवाइजर आपके लिए एक इमोशनल सपोर्ट और बफर बन जाता है। आज हमने देखा है कि कोविड के वक्त, डीमोनेटाइजेशन के वक्त, काफ़ी लोगों ने पैनिक में पैसा बेच दिया, अपने फंड्स बेच दिए। यही अगर कोई वेल्थ एडवाइजर होता तो वो कहीं ना कहीं एक इमोशनल इंटेलिजेंस से या फिनेंशियल इंटेलिजेंस से आपको हैंडल कर लेता। एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसको हम हमारे इंडस्ट्री में 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, विच इज़ कंपाउंडिंग। जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता ना, वो ऐसे पैनिक सेलिंग में कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो आज अगर एक वेल्थ एडवाइजर होगा आपके पास तो वो आपको सही गाइडेंस दे पाएगा। तो दैट इज़ द रीज़न मुझे लगता है कि कोई भी स्टेज पे आप हो, आपने करियर शुरू किया है, आप कॉर्पोरेट हो, आप ग्रो कर चुके हो, आपको एक वेल्थ एडवाइजर बहुत काम आएगा आपका इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स या इन्वेस्टमेंट्स को आगे ले जाने के।
0: यानी अगर हम बात करें तो एक व्यापारी केवल अपने व्यापार से संबंधित सूचनाओं के बारे में जानकारी रखता है, या कोई, यदि हम किसी सैलरीड पर्सन की बात करें या प्रोफेशनल की बात करें, तो हर किसी का अपना एक क्षेत्र होता है। वहीं पर कहीं ना कहीं जो वेल्थ एडवाइजर है, जो वेल्थ मैनेजमेंट जो एक्सपर्ट हम बात करते हैं, उनका भी अपना एक क्षेत्र है। वो इसी क्षेत्र से संबंधित उत्पाद या आपके पैसे की जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पर आपको बेहतर रिटर्न दे पाएगी, तो उनके पास सोर्सेज ज़्यादा तरीके से होते हैं। और एक, जैसे हमने शुरू में बात की कार्यक्रम के शुरू में, कि पैसे को बढ़ाना अपने आप में एक विज्ञान है, कमाना एक कला हो सकता है लेकिन बढ़ाना विज्ञान है। तो उस विज्ञान के जो एक्सपर्ट हैं वो वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजर होते हैं। अच्छा, दूसरा एक बात, तो आमतौर पर जब कभी भी हम बात करते हैं सेविंग्स की, तो एक पहले तरीका होता था कि लोग थोड़े थोड़े पैसे बचा करके अपने पास घर में रख लेते थे, बैंकों में नहीं जमा कराते थे क्योंकि बैंकों में खाते नहीं होते थे। लेकिन व्यवस्था बदली तो लोगों ने बैंकों में जमा कराना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके मन में एक शंका हमेशा बनी रहती थी कि यदि हमें कभी जरूरत पड़ी इमरजेंसी के टाइम पे तो हमारा पैसा हमारे पास होना चाहिए। बैंकों की सर्विसेज ऐसी हो गई, कार्ड्स बन गए, डेबिट कार्ड बन गए, एटीएम बन गए कि आप कभी भी पैसा निकाल लो। लेकिन जैसे आज का आधुनिक युग आया, यदि हम वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें तो क्या वेल्थ मैनेजमेंट करके या पैसे को हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर इन्वेस्ट करके क्या ये सुविधा हमारे पास, एक आम आदमी के दिमाग में जो थॉट आता है कि यदि पैसे की इमरजेंसी में आकस्मिक कोई आवश्यकता पड़ती है तो क्या उसमें भी वही सुविधा उनको उपलब्ध होती है कि या इन्वेस्टमेंट के बाद वो फंस जाते हैं 3 महीने 6 महीने 1 साल के लिए कि उनको पैसा बीच में अगर जरूरत है तो मिलेगा या नहीं मिलेगा?
1: देखिए क्या होता है ना, हर फंड का अपना एक एग्जिट लोड बोलते हैं इसको, या लॉक इन पीरियड होता है। हर फंड के जो आप इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखोगे, जो फैक्ट शीट कहते हैं हम, उनमें डेटा हमेशा आता है। तो इक्विटी फंड्स होंगे जिसमें लॉक इन नहीं होगा। लॉक इन मतलब कि आपका पैसा आप निकाल सकते हो, साल भर से पहले अगर आप निकालते हो तो कोई चार्जेस लगते हैं। लेकिन जो मैं पहले बता रही थी कि जो 1 दिन 2 महीने 6 महीने के लिए फंड्स में पैसा रखता है उसमें कोई एग्जिट लोड नहीं होता, आप कभी भी निकाल सकते हो। मुझे लगता है जो सवाल आपने पूछा है ना, ये शायद आपके भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से आया होगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में, और म्यूचुअल फंड्स कह लो, वेल्थ कह लो, इंश्योरेंस कह लो, इनमें ना मिस सेलिंग बहुत होती है। तो क्योंकि आपने अगर किसी से बाय किया है और कोई टारगेट प्रेशर होगा या कोई भी वजह हो सकती है, उस वजह से जब आपको कोई प्रोडक्ट बेचने जाता है तो वो कहीं ना कहीं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है, क्योंकि उनको पता है कि आपको इतने टाइम में चाहिए होगा तो वो उस हिसाब से आपको जवाब देते हैं। लेकिन आप कभी भी कोई भी स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका एक वन पेज में आपको सब साफ दिख जाता है। तो कुछ फंड हैं जिसमें आपको जब चाहिए तब पैसा आएगा। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि एटीएम कार्ड जैसा नहीं होगा कि आपने आज चाहा और आज पैसा आ जाएगा। मिनिमम से मिनिमम जो है वो ये है कि आप आज रिडेम्पशन डालते हो तो अगले दिन आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। और एक आधी स्कीम में ऐसा होगा जहाँ आज रिडेम्पशन डालोगे तो 2 दिन बाद आएगा, बट ये मैक्सिमम है, इतने में आपका पैसा आ जाता है। हाँ, ये नहीं है कि आप चाहो कि तुरंत आए,
0: मतलब लिक्विडिटी जो है वो स्लो नहीं है, बहुत जल्दी आपको पैसा मिल जाता है। क्योंकि यदि आकस्मिक आवश्यकता की बात करें तो उतना फंड तो आप बैंक में भी रख सकते हैं। लेकिन एक सलाह वाली बात है कि यदि आपको पैसे में वृद्धि भी चाहिए और समय पर पैसा चाहिए तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास हैं।
1: देखिए आज ना क्लाइंट्स के लिए बहुत आसान हो गया इन्वेस्टमेंट करना। जैसे मैंने आपको बताया कि सेबी का माइंडसेट ही यही है कि इन्वेस्टर्स के लिए जितनी चीजें आसान बना सके। अब इट्स एवरीथिंग इज ऑन अ क्लिक, आप अपने ऐप के थ्रू बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो आज इन्वेस्टमेंट कन्वीनियंट बहुत हो गया है। जो पहले होता था कि आपको ब्रांच जाके चीजें करनी पड़ती थी, आज वो आपके क्लिक ऑफ अ बटन पे है। तो इन्वेस्टमेंट्स बहुत सरल हो गया है, तरीका बहुत सरल हो गया है
0: अगर हम डिजिटल युग की बात करें आज तो। बिल्कुल, तो दोस्तों इस चर्चा को जारी रखते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल। आज हम चर्चा कर रहे हैं वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर अपनी विशेष मेहमान सोनम पारिक के साथ। तो फिर हाजिर होते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं आपकी वेल्थ को बढ़ाने के उपायों के ऊपर एक वेल्थ एडवाइजर के साथ, जो हैं सोनम पारिक, जो एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, वेल्थ एडवाइजर हैं, रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड हैं कंपनी में। और वो आज हमें बता रही हैं कि आखिर वेल्थ मैनेजमेंट है क्या और वेल्थ एडवाइजर की या वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट की हमें ज़रूरत पड़ती क्यों है। सोनम, एक बात जो मैंने भी कार्यक्रम के पिछले हिस्से में भी कही थी कि पहले एक व्यवस्था थी कि लोग आमतौर पर जो सेविंग होती है, बचत होती है, उसको घर में रखते थे, पैसा संभाल के रख दिया। या बहुत सारे हमने किस्से ऐसे भी सुने हैं कि पैसे को घड़ों के अंदर बढ़ के दबा दिया, सोने के सिक्के दबा दिए, तो एक व्यवस्था चलती थी। लेकिन जब से बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ और अगर हम आज लेटेस्ट बात करें तो डिजिटल युग हमारा है, तो क्या ये जो व्यवस्था है वास्तव में वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजरी, जिस प्रकार की आप जो आपका व्यवसाय जो प्रोफेशन है, वो किस प्रकार से देखता है इस बात को कि हमें ये पैसा जो इन्वेस्ट करना है वो कैसे हमारी देश की इकोनॉमी में हेल्प करता है। मतलब अगर हम सेविंग्स की बात करें तो सेविंग तो आपने पैसा बचा करके अपने पास रख लिया तो वो भी सेविंग है, और वो आपने बैंक में अपने अकाउंट में रख लिया वो भी सेविंग है। लेकिन यदि हम डिफरेंट डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो कैसे हेल्प करता है हमारे देश की इकोनॉमी में।
1: देखिए, आपने जो कहा कि घर पे पैसा रखते हैं वो भी सेविंग है और जो बैंक में रखते हैं वो भी सेविंग है, एक्चुअली वो नहीं है। देखिए, सेविंग का मतलब ये नहीं है कि मैंने पैसा इकट्ठा कर लिया। सेविंग का मतलब बेसिकली यही है कि आगे चल के जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन जो हम कहते हैं, मेरा पैसा उसको बीट कर पाए। ठीक है, तो आज अगर सरल भाषा में बोलूँ तो इन्फ्लेशन अगर 3.5% 4% चल रही है तो मेरा पैसा एटलीस्ट उतना बढ़ना चाहिए, तब वो नॉर्मल पैसा कहलाया जाएगा, तब भी वो रिटर्न नहीं है। राइट, रिटर्न वो होगा जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद भी जो मैं पैसा कमा रही हूँ वो एक्स्ट्रा है,
0: जो उसकी ग्रोथ है वो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली थोड़ी ज्यादा हो।
1: एग्जैक्टली। अब आपने घर पे पैसा रखा, आपने साल 5 साल 6 साल रखा, उसने कोई रिटर्न नहीं दिया, लेकिन महंगाई तो बढ़ गई तो आपकी जो वैल्यू थी मनी की वो कम हो गई। और सेम हिसाब चलता है जो आपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा होगा, वो पैसा वैसे का वैसा ही है, जो ब्याज आता है थोड़ा बहुत वो आ गया, लेकिन इन्फ्लेशन उससे कई ज्यादा है। तो हुआ क्या, आपके जो पैसा है उसका वैल्यू कहीं ना कहीं कम हो गई, इसीलिए आप कहते हो कि आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो। देखिए, आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो ही इकोनॉमी चलेगी। राइट, ये पूरा एक सर्कल है। आप कंज्यूम करोगे तो कंजम्पशन बढ़ेगी हमारी देश की कंजम्पशन बढ़ेगी, तो जो कंपनियां वो प्रोडक्ट बनाती हैं वो चलेंगी तब हमारा मार्केट चलेगा तो लोगों को रिटर्न मिलेगा। तो ये पूरा एक विशेष सर्कल है। अगर आपने कंज्यूम ही नहीं किया, आपने स्पेंडिंग नहीं करी, आपने पैसे बचाए नहीं, तो वो इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। बट थैंक्स टू डीमोनेटाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन, आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा अपने अकाउंट में रख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है।
0: तो अगर हम सीधी सीधी बात करें तो बचत करना अपने आप में पैसे को अपने पास रखना नहीं है, जब तक कि आप उसका इन्वेस्टमेंट ना कर दें। यानी हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे हम बैंक की बात करें या अदर जो कंपनीज हैं जो इस तरह का काम करती हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं या डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स में पैसा इन्वाइट करती हैं लोगों का, जब तक उसमें पैसा जा कर के इकोनॉमी में ना जाए तब तक हम उसको एक तरह की सेविंग्स ना माने, ये हमारा एक थॉट होना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात आपने कही और समझने की बात है कि नजरिया हमें बदलना जरूर पड़ेगा कि हम आम तौर पर जो एक मिथ पाल के रखते हैं दिमाग में कि जो पैसे बचेंगे उनको हम इन्वेस्ट करेंगे, जबकि हमें सोचना ये चाहिए कि जो पैसा हमारे पास बचे उसे खर्च करना है, यानी पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देनी है। तो एक बहुत बड़ा थॉट आज के इस प्रोग्राम में, इस चर्चा में निकल के आया है। तो सोनम, एक बात और मैं जो जानना चाहता हूँ, यदि हम एक समअप करें इस सारी बात को, जिस प्रकार के विचार आपने हमारे सामने रखे, तो निश्चित रूप से एक वेल्थ एडवाइजर या एक वेल्थ मैनेजमेंट जो एक्सपर्ट होता है वही ऐसे थॉट रख सकता है जिस प्रकार से आपने हमें चीज़ें समझाई कि क्यों एक वेल्थ एडवाइजर की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि हम कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर के जाएं, तो हमारे जो लिसनर्स हैं रेडियो मानव रचना के, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहती हैं?
1: देखिए, आज हर कोई, हमारी गवर्नमेंट, हमारे फंड मैनेजर्स इंडिया ग्रोथ स्टोरी की बात कर रहे हैं, जो कि सही भी है। ये ग्रोथ स्टोरी का पार्ट आप तभी बन पाएंगे जब आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। आपको ये समझना है, हर एक आपके लिसनर्स को, कि आप किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से, किसी भी अमाउंट से इस इन्वेस्टमेंट जर्नी का पार्ट बनिए। आप सोचिए आप क्या कर सकते हैं, आप कितना पैसा बचा सकते हैं, कितने टाइम के लिए रख सकते हैं, वो कितनी भी छोटी से छोटी अमाउंट हो, लेकिन इस इंडस्ट्री का, इस इन्वेस्टमेंट जर्नी का एक फ्लेवर लीजिए। जब आप फ्लेवर लेंगे, जब आप पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आने लगेगी, काफ़ी आपका पर्सपेक्टिव खुलेगा, काफ़ी आप चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो मेरे आपके लिसनर्स से बस यही रिक्वेस्ट है कि आइडेंटिफाई करिए आपकी वेल्थ जर्नी क्या है, बट प्लीज़ डू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी किसी भी फॉर्म में। आप एक एडवाइज़र के साथ करना चाहते हो वो भी चलेगा, आप इंडिपेंडेंटली करना चाहते हो वो भी चलेगा, बट ट्राई टू रीड मोर, आप सही जगहों से इंफॉर्मेशन लीजिए एंड उस हिसाब से फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करिए।
0: क्योंकि आमतौर पर हमने देखा जितनी भी स्कीम्स आती हैं उसके बाद फिर एक लाइन आ जाती है कि जोखिम और मार्केट,
1: सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क।
0: तो उन सब चीजों के बारे में यदि कोई राय कहीं से मिल सकती है तो आपको निश्चित रूप से एक वेल्थ एडवाइजर ही दे सकता है। तो आज के कार्यक्रम में दोस्तों हमने जाना कि आखिर कमाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस कमाई में से कुछ बचत करके उसको निवेश करना, और साथ ही साथ यदि आप उस निवेश पर एक बेहतर रिटर्न चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि वो निवेश कहीं ना कहीं आपके उन सपनों को पूरा करे, जो सपने मन में लेकर के आपने वो निवेश किया या वो बचत की है, तो आपको एक बेहतर वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट या वेल्थ एडवाइजर की ज़रूरत पड़ती है, जो अपनी जो एक्सपर्टीज है उसका फ़ायदा आपकी वेल्थ को बढ़ाने में दे सके। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि आपके पास पैसे का वॉल्यूम कुछ भी है, आपकी बचत का आकार कुछ भी है, लेकिन आप भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन सकते हैं, आप भी वेल्थ मैनेजमेंट का ही हिस्सा बन सकते हैं। उसमें कोई भी आकार या कोई समय बिल्कुल नहीं होता। हालाँकि जो भी प्रोग्राम आपको चूज करना है, किसी भी चीज़ में आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो वो आपकी स्थिति के ऊपर, आपके पैसे के आकार के ऊपर कि आपकी बचत कितनी है, आपकी आयु कितनी है या आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उसके ऊपर निर्भर करती है। तो आज इन सभी सवालों के हमने जवाब जानने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपके बहुत सारे जो मन में प्रश्न हैं वो कहीं ना कहीं उनके जवाब आपको आज मिले होंगे। और इस चर्चा ने आज हमें ये भी समझाया कि धन केवल कमाने की नहीं बल्कि उसे सही दिशा देने की भी आवश्यकता है, यानी केवल पैसा कमाना पर्याप्त नहीं है बल्कि उसका इन्वेस्टमेंट भी सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इसी संदेश के साथ आपसे लेते हैं आज्ञा और अगले प्रोग्राम में एक नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तो सोनम, आज आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच
1: फॉर कॉलिंग मी।
0: तो दोस्तों इस प्रोग्राम में आज इतना ही, अगले प्रोग्राम में एक नए मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए संदीप सिंगल को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे। संतुलित बनाएंगे।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ, और आज की कहानी है अंतिम अध्याय, जिसे लिखा है उषा वधवा ने।

0: बेहद फर्क था गांव और शहर के जीवन में, लेकिन गांव का स्कूल 10वीं कक्षा तक ही था। उस साल मामा जब माँ से राखी बंधवाने आए तो बोले,
1: बहुत समझदार है तुम्हारा बेटा, इसे मेरे साथ शहर भेज दो, पढ़ लेकर कुछ बन जाएगा तो मुझे इस बात की संतुष्टि होगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाया।
0: ये मेरा सौभाग्य ही था कि मुझे जितने अच्छे मामा मिले थे उतनी ही अच्छी मामी भी थी, जिन्होंने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया और अपने ही बच्चों जैसा प्यार भी दिया। मामा ने मेरा दाखिला उसी स्कूल में करवा दिया जिसमें उनके अपने बेटे उपेंद्र ने उसी साल 12वीं पास की थी। कहां गांव का दो कमरों वाला स्कूल जिसमें ना तो टीचर्स रोज आते थे और ना ही बैठने की पूरी व्यवस्था थी, और कहां शहर का नामी स्कूल जिसमें अगर फीस ज्यादा थी तो सुविधाएं भी पूरी थी, रोज पढ़ाई, हवादार बड़े बड़े कमरे और लंबा चौड़ा खेल का मैदान। मेरे नंबर अच्छे होने के कारण मुझे दाखिला तो मिल गया था, लेकिन मैं थोड़ा घबराया हुआ भी था। शुरू में उपेंद्र ने मेरा खुले दिल से स्वागत किया। दो बहनों का अकेला भाई, मुझ में उसे अपना एक संगी मिल गया। उम्र में भी तो 2 साल का ही अंतर था। वो मेरे जीवन का सखा, गाइड, सब कुछ बन गया। मैं उसे मन की अपनी हर बात कहता और हर बात पर उससे सलाह लेता। पढ़ाई में उपेंद्र का खास ध्यान नहीं था, शायद उसे अपने पिता का जमा जमाया व्यापार नजर आ रहा था। लेकिन मामा मामी चाहते थे कि व्यापार में आने से पहले उपेंद्र अच्छे से पढ़ लिख ले। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी भी अच्छी शिक्षा दिलवाने के बाद ही की थी। लेकिन उपेंद्र को मोटिवेट करने के लिए जब भी मामा मामी मेरी लगन और मेहनत का उदाहरण रखते तो उसके चेहरे पर ईर्ष्या की एक लहर दौड़ जाती। 12वीं में नंबर कमाने के कारण किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने की संभावना नहीं थी, सो मामा ने एक प्राइवेट कॉलेज में उपेंद्र का MBA में दाखिला करवा दिया। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो यूं लगता है जैसे ये जीवन भी एक लंबी कहानी ही तो है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग कहानी, अपने अलग अलग सुख दुख। गांव के जीवन के अपने अध्याय को समाप्त कर शहरी जीवन में ढलने को मैं कोशिश कर रहा था, पर ये सब इतना आसान भी तो ना था। मामा मेरी इस कठिनाई को समझते थे कि अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद इस नए माहौल में असहज महसूस कर रहा हूँ और अपने दोस्तों की हंसी का पात्र भी बनता हूँ। जब तक उपेंद्र स्कूल में था तब तक बाकी लड़कों को थोड़ा डर रहता था, पर उपेंद्र और उसके साथी सब स्कूल पास कर चुके थे। मामा की एक परिचित की बेटी थी अमृता, जो उसी स्कूल में पढ़ती थी। वो मुझसे 2 साल जूनियर थी। उसी माहौल में ढली होने के कारण आत्मविश्वास था उसमें। मामा ने मेरी जिम्मेदारी उसी को सौंप दी। वो आधी छुट्टी के वक्त और वैसे भी कभी कभी मुझसे बात करने आ जाती। कह सकते हैं कि मुझे तिनके का सहारा मिल गया था और इससे मेरे दोस्तों का मेरा मजाक उड़ाना भी कम हो गया था। मैं भी धीरे धीरे अपने पांव जमाने लगा। स्कूल में तो अमृता से मुलाकात होती ही, लेकिन परिवार में अच्छी दोस्ती होने के कारण बाकी अफसरों पर भी मेरी मुलाकात हो जाती। बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी वो। यूं तो कम बोलती थी लेकिन मेरी परेशानी और मन की बात का सहज अनुमान लगा लेती। मैं उसकी माँ से भी कई बार मिला था। वो बहुत प्यार से मेरा आवभगत करती। साल यूं ही बीतते रहे और मैं स्कूल पास करके कॉलेज भी पहुंच गया। मुझे जिंदगी अब अच्छी लगने लगी थी क्योंकि अमृता अच्छी लग रही थी, क्योंकि अमृत

बाकी लड़कों से कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई में मेहनत कर मैं कितने भी अच्छे नंबर पालूं, तब भी था तो मैं अनपढ़ ही। गांव से लाकर शहर में रोप दिया गया एक पौधा। मेरे बातचीत करने का सलीका, मेरा एटिकेट और सामान्य ज्ञान उन लोगों के मुकाबले उतना अच्छा नहीं था जो शहरी माहौल में पले पड़े थे, जिन्होंने अच्छे स्कूल में शिक्षा पाई थी। और इश्क छुपाना कठिन है, तो उसका इजहार कर पाना भी आसान नहीं होता। लेकिन प्यार मौन और अनकहा रहकर भी उतना ही सच्चा हो सकता है और शब्दों में बिना बंधे भी व्यक्त हो जाता है। अमृता तो मन की बात समझ लेने में यूं भी माहिर थी, बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो। बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो। हमारे जीवन में नसीब का कितना हाथ है, ये बहस का विषय हो सकता है। लेकिन हाथ की लकीरों में लिखा रहता हो या फिर माथे की नियति अपना खेल दिखाती जरूर है। ग्रेजुएशन के बाद मुझे देहरादून की मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिल गया। छुट्टियों में माँ से मिलने गांव तो जाता ही, साल के बीच एक दो चक्कर मेरठ मामा के घर भी लगा आता और अमृता से भी मिला था। अमृता की माँ को हमारी दोस्ती की जानकारी भी थी और ये रिश्ता स्वीकार भी था। ट्रेनिंग पूरी करके लेफ्टिनेंट बना ही था कि मामा जी का लेटर मिला, जिसमें उपेंद्र की शादी की सूचना थी। न्योता भी साथ में था। उपेंद्र की शादी अमृता से हो रही थी। मैं हैरान रह गया। अभी ही तो मेरा करियर बना था और समय आया था कि मैं उसे प्रपोज कर सकूं। वैसे भी इससे पहले किस बूते पर उसके पेरेंट्स से बात करता। पर क्या अमृता भी यही चाहती थी? इसी सवाल का जवाब पाने मैं मेरठ जा पहुंचा। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं मामा के घर ना जाकर सीधा अमृता के घर गया। घर में उसकी माँ अकेली थी और अमृता मामी के साथ शादी की खरीदारी करने बाजार गई हुई थी। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चाय का प्याला पकड़ाते ही उन्होंने खुद ही बात छेड़ी। दरअसल मेरे मामा और अमृता के पापा एक ही क्लब के मेंबर थे। वहीं पर मामा जी ने अमृता के पापा से कहा कि उपेंद्र उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। अमृता के पापा को प्रस्ताव पसंद आ गया। जाना पहचाना, पढ़ा लिखा परिवार, अच्छा बिजनेस और भला क्या चाहिए था उन्हें। उन्होंने फौरन हामी भर दी। अमृता की माँ ने समझाने की बहुत कोशिश की कि एक बार अमृता से जरूर बात कर लेनी चाहिए, लेकिन अमृता के पापा उनमें से थे जो खुद को ही सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति समझते। ऐसे लोग सलाह मशवरा नहीं करते, सिर्फ फैसला सुनाते हैं, जिसे मानना जरूरी हो जाता है। और उनके अपने विचार से अमृता के लिए इससे बेहतर रिश्ता और क्या हो सकता था। ये जानकर कि शादी का प्रस्ताव खुद उपेंद्र की तरफ से आया है, मुझे बहुत हैरानी हुई और चोट भी लगी। मामा मामी न सही, उपेंद्र तो भली भांति मेरे इस प्यार से परिचित था। मैं अपनी हर परेशानी उससे बांटता था। वैसे ही अमृता के बारे में मैंने हर बात उसे बताई थी। कभी वो मजाक में कहता, तुमने तो आते ही सबसे अच्छी लड़की पटा ली, और कभी अनजाने में व्यंग करता, अरे कि तुम जैसे मिट्टी के माधव को अमृता जैसी समझदार लड़की कैसे पसंद करती है, ये मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। शादी में जाना तो लाजमी था, सो गया, पर केवल बारात में, और फिर छुट्टी ना होने का बहाना बनाकर लौट आया। बहुत खुश थे मामा मामी और उनसे कोई गिला नहीं थी मुझे। इसमें कोई शक नहीं था कि वहां पर अमृता खुश रहेगी। मामा मामी बहुत अच्छे थे, संपन्न घर था, और उपेंद्र भी जरूर मन ही मन उसे चाहता रहा होगा, तभी तो शादी का प्रस्ताव रखा। और क्या चाहिए खुशियों के लिए। तहे दिल से अमृता की खुशियों की कामना कर मैं लौट आया और मान लिया कि मेरी कहानी यहाँ खत्म हो चुकी है। लेकिन हर कहानी का अंत तो होता ही है ना। लगता है मेरी कहानी का अंत लिखना अभी बाकी है। शायद लड़कियों में जीवन से समझौता करने की शक्ति हम लड़कों से ज्यादा होती है। खैर मुझ में नहीं थी,

0: और ज्यादा मैं मामा के घर जाने से कतराता रहा। कई साल बीत गए, उपेंद्र का बेटा हुआ और वो 4 साल का भी हो गया, पर मैं उस घर में जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। माँ से पता चला कि उपेंद्र का बेटा शिवम बहुत बीमार है और डॉक्टरों ने उसे ब्लड कैंसर बतलाया है। मेरी आंखों के सामने अमृता का उदास चेहरा दिन भर घूमता रहता। एक माँ के लिए अपने बच्चे के दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता। अमृता की खोई हुई खुशी लौटाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, पर मैं वहां जाकर उसे सहारा देने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा था। बस प्रार्थना कर सकता था और वो कर भी रहा था। सबकी मिली जुली दुआओं का ही असर था कि आगे टेस्ट कराने पर उसे ब्लड कैंसर की वो किस्म निकली जो गंभीर होते हुए भी लाइलाज नहीं थी। अब उसका इलाज संभव हो चुका था। करीब 3.5 साल तक चलने वाला कैंसर सेल खत्म करने के लिए दवाइयां इतनी स्ट्रॉन्ग दी जाती थी कि मरीज का स्वस्थ खून भी प्रभावित होता है। मरीज को कई बार बाहरी ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। एक मुश्किल ये भी थी कि शिवम का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो बहुत कम लोगों का होता है, और डॉक्टरों की राय में खून ब्लड बैंक से ना लेकर किसी स्वस्थ और युवा व्यक्ति का ही दिया जाना चाहिए। उपेंद्र का अपना ब्लड ग्रुप वही था, लेकिन इतने कम अंतराल से दिया जाना था कि एक ही आदमी से बार बार ब्लड नहीं लिया जा सकता था। मुझे पता चलते ही मैंने अपना ब्लड देने की ठानी, क्योंकि मेरा भी वही ब्लड ग्रुप था। मैंने फौरन फोन पर ही उपेंद्र से बात की और विश्वास दिलाया जितनी बार भी आवश्यकता होगी अपना ब्लड दूंगा। यूं हम बारी बारी शिवम को ब्लड देने लगे। उपेंद्र मुझे निश्चित तारीख बता देता और मैं उसी दिन सीधे अस्पताल पहुंच जाता। इस बीमारी में मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है और उसे इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ सकता है। उसे सबसे अलग रखा जाता है। केवल एक ही व्यक्ति नहा धोकर उसे साफ सफाई का ध्यान रखते हुए उसके पास बैठ सकता है। अमृता अंदर कमरे में बेटे के संग रहती और मेरी मुलाकात बाहर सिर्फ उपेंद्र से होती। उसके बाद मैं घर जाकर मामा मामी से मिलकर लौट आता। तीसरी बार जब मैं ब्लड देने गया तो शिवम की सेहत में काफी सुधार था। हालांकि दवाइयां अभी लंबे समय तक चलनी थी। डॉक्टर संतुष्ट थे कि खतरा टल गया है और फिलहाल और ब्लड देने की जरूरत नहीं है। हमेशा की तरह अमृता अंदर कमरे में शिवम के पास थी। लौटते समय मैंने उपेंद्र को आश्वस्त किया कि कोई भी जरूरत पड़ने पर मुझे बता दे, मैं तुरंत आ जाऊंगा। उपेंद्र ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर कहा,
1: मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने हमारे बुझते चिराग को फिर से रोशन करने में बहुत मदद की है।
0: मैं कैसे कहता उससे कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अमृता के लिए किया है। मेरे लिए आज भी अमृता की खुशियां सबसे ऊपर है। अब तो मेरी कहानी का अंत भी लिखा जा चुका था, निश्चय के साथ कि अपने अतीत में अब कभी नहीं झांकूंगा। मैंने अमृता के संग जिंदगी गुजारने का सपना देखा था जो पूरा नहीं हुआ। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनका प्यार परवान चढ़ता है, लेकिन जिनका नाकामयाब रह जाता है, दास्तां तो उनकी भी लिखी होती होगी ना। और सबसे बड़ी बात ये कि प्यार में कामयाब ना हो पाने का मतलब ये कतई नहीं है कि उनके निष्ठा में कोई कमी रह गई थी। एक बात और, कहा जाता है कि कच्ची उम्र का प्यार महज एक आकर्षण होता है। मुझे तो याद भी नहीं आता कि मैंने कभी हाथ बढ़ाकर अमृता को छूने की कोशिश भी की हो। सच तो ये है कि किशोरावस्था और यौवन की दहलीज पर खड़ा वो समय जब दुनिया की और उसके स्वार्थ से अभी वास्ता नहीं पड़ा होता, बस उसी समय का प्यार ही वास्तविक प्यार होता है, निश्चल और निर्मल। और ऐसा जीवन में सिर्फ एक ही बार हो सकता है। सूखी धरती पर बारिश की पहली फुहार महसूस की है कभी? किस तरह महक उठती है कुंवारी धरती इस पहले मिलन से। बाद में कितना भी बरस ले, जलमय हो जाए, पृथ्वी पर वो सौंधी महक फिर नहीं उठते कभी। ठीक वैसा ही होता है कच्ची उम्र का वो पहला प्यार।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मैं हूं दीक्षा आपके साथ और प्रोग्राम ग्रीन ग्रह में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसा कार्यक्रम जिसका उद्देश्य है अपने पर्यावरण, अपनी इस पृथ्वी का ख्याल रखना, उसके खोए हुए अस्तित्व को वापस पहचान दिलाना। खोया हुआ अस्तित्व मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जिन इलाकों में आप और हम रहते हैं, कहलाने को वो दिल्ली NCR के सबसे आगे बढ़ते हुए इलाके हैं, जहां पर महंगी गाड़ियां, बड़ी इमारतें और बड़ी चौड़ी सड़कें और एक्सप्रेसवेज दिख जाते हैं। लेकिन इनके पीछे की एक सूरत होती है जो आपके और हमारे घरों से हर रोज बाहर निकलता हुआ कूड़ा होता है, वो कूड़ा जो धीरे धीरे धीरे धीरे इकट्ठा होता है। हर सुबह लगभग 7 से 11 बजे के बीच हमारे घर एक कूड़ा इकट्ठा करने वाला व्यक्ति आता है, जो घरों से कूड़ा इकट्ठा करके लेके जाता है और अपनी एक गाड़ी में डाल देता है। सभी के घर का अमूमन यही एक रूटीन होता है। लेकिन इस कूड़े को आगे जाकर क्या किया जाता है? आपको लगता होगा कि ये कूड़ा यूं ही डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है या इसे सेग्रीगेट किया जाता है, यानी इसको अलग अलग किया जाता है। पर अगर आप कूड़ा अलग अलग करके नहीं दे रहे हैं तो ये कूड़ा एक बड़े पहाड़ का रूप ले लेता है। वो पहाड़ जो आपको दिल्ली में भी दिखा, वो पहाड़ जो आपको फरीदाबाद से गुड़गांव जाते हुए बंदवाड़ी के रूप में भी दिखा। बहुत सारे लोगों को दूर से ये पहले अरावली की पहाड़ी ही दिखती थी, लेकिन जब पास जाते थे तो एक अजीब सी स्मेल आती थी। ऊपर चील मंडराती हुई दिखती थी और बड़े बड़े ट्रक इसके ऊपर चल रहे होते थे जो कूड़ा फेंकने के लिए जाते थे। हाल ही में बंदवाड़ी के इस लैंडफिल को बंद कर दिया गया है, लेकिन सन 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी और यहां पर हर रोज हजारों टन कूड़ा पूरे फरीदाबाद शहर का पहुंचता है। मैं आज बंदवाड़ी के बारे में बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम ग्रीन ग्रह का उद्देश्य ही यही है कि हम वेस्ट को सेग्रीगेट करके सही तरीके से डिस्पोज करने का कुछ माध्यम जाने, कुछ तरीका जाने और अपने इस शहर को थोड़ा सा बेहतर रूप दें। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन का, साथ ही इको क्लब का और PTC फाइनेंस लिमिटेड का, जो हमारे इस कार्यक्रम की श्रृंखला में हमारा साथ दे रहे हैं। अगर बंदवाड़ी की बात की जाए तो बंदवाड़ी शुरुआत से ही एक लैंडफिल नहीं था, ये एक अच्छा खासा गांव था जो फरीदाबाद और गुरुग्राम के बॉर्डर से मिलता है। अरावली की पहाड़ियों में एक बहुत ही अच्छा सा गांव रहा है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव अरावली हिल्स में बसा हुआ गांव रहा है, जहां पर बहुत सालों से लोग बसते चले आए हैं। 2008 में इसे लैंडफिल म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए बनाया गया। यहां पर शहर भर का कूड़ा जो है वो नीचे दबाया जाएगा। 1200 टन वेस्ट पर डे यहां पर आने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता चला गया। 2000 से 2200 टन हर रोज यहां पर लोड पहुंचने लगा, यानी अपनी क्षमता से लगभग डबल। धीरे धीरे धीरे धीरे ये इतना ऊंचा हो गया कि ये कूड़े का पहाड़ बन गया, एक ऐसा पहाड़ जिसके आसपास रहने वाले लोगों के घरों में माहौल रहने लायक ही नहीं रहा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी बंदवाड़ी गांव में रहते हैं, जिनके घर गंदगी की स्मेल 24 घंटे आती है, जिनके घरों में पानी दूषित आता है, क्योंकि धीरे धीरे ये जो लैंडफिल का इतना बोझ है ये जमीन के नीचे भी जा रहा है। खासतौर पर जब बारिश होती है तो यही कूड़ा रिस कर अपनी गंदगी, अपने केमिकल्स जमीन के नीचे डाल रहा है और फिर जो ग्राउंड वाटर है वो उसकी वजह से खराब होता चला जा रहा है। सो टॉक्सिसिटी यहां पर बहुत ज्यादा महसूस होती है, चाहे आप हवा की बात करें चाहे आप पानी की बात करें। बहुत सारे लोगों को अपनी दुकानें, अपना कारोबार चलाने में दिक्कत आ रही है क्योंकि दुकानों में लोग आना नहीं चाहते सामान खरीदने। घरों में लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि कोई भी माता पिता अपनी बेटी को एक ऐसे ससुराल में या ऐसे घर में जिंदगी बिताने के लिए नहीं भेजना चाहता है जहां पर हवा पानी पूर्ण रूप से दूषित हो और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां फैलने की कगार पर हो। इतना ही नहीं, इस लैंडफिल में बहुत ज्यादा आगजनी की घटनाएं भी होने लगी और ये बहुत कॉमन सी बात होती है। जहां पर जरूरत से ज्यादा कूड़ा होगा वहां पर आग लगना बहुत आसान होगा क्योंकि मीथेन गैस यहां से जनरेट होती है। जो भी वेस्ट डिकम्पोज होता है उससे मीथेन गैस जनरेट होती है जो आग पकड़ने में बहुत सक्षम होती है। इसके साथ साथ अगर आप बात करें तो टॉक्सिक लिक्विड जिसको लीचेट कहते हैं वो यहां पर बहुत आसानी से पहुंच रहा है ग्राउंड वाटर में, जो मैंने अभी जिक्र किया। इसकी वजह से घरों में पानी गुलाबी आ रहा है। आपको लग रहा होगा गुलाबी पानी तो अच्छा होता है ना। अक्सर गुलाबी या फिर ऐसा रंग बहुत अच्छा माना जाता है तो शायद अच्छी चीज हो, लेकिन ये जहरीला पानी होता है और ये पानी किसी के लिए भी खराब होगा। अरावली इकोसिस्टम, वाइल्ड लाइफ और बायोडायवर्सिटी सब कुछ इससे दांव पर लगे थे। हाल ही में कुछ नए फैसले आए और नए फैसलों की वजह से लोगों ने धरना देना शुरू किया एमसीएफ के ऑफिस में। अब यह जानकारी मैं आपको इसलिए देना चाहती हूं क्योंकि इस लैंडफिल को बंद करने का फैसला लिया गया, बंदवाड़ी लैंडफिल को बंद करने का फैसला लिया गया, लेकिन इसकी जगह जो दूसरी जगह चिन्हित की गई वो रही फरीदाबाद के ही प्रतापगढ़ इलाके की, जहां पर दूसरा बंदवाड़ी बनने जा रहा था। लोगों ने बहुत ज्यादा धरना प्रदर्शन किया, एमसीएफ कमिश्नर सामने आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले 6 महीने में इस प्लांट को भी बंद कर दिया जाएगा, यानी प्रतापगढ़ लैंडफिल को रोक दिया जाएगा, इसकी जगह शहर में या शहर से बाहर कोई ऐसी जगह चिन्हित की जाएगी, कोई ऐसी जगह ढूंढी जाएगी कूड़े को डिस्पोज करने के लिए जहां पर आबादी ना रहती। अब ऐसा फैसला क्यों लिया गया? क्योंकि प्रतापगढ़ के आसपास रहने वाले लोगों के घरों में वही चीजें हो रही थी जो कभी बंदवाड़ी में हो रही थी, यानी घरों में बदबू आ रही थी, इतनी ज्यादा आ रही थी कि वो 24 घंटे अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर रहे थे, उनको दरवाजे खोलने या कूलर चलाने पर अंदर बैठना भी मुश्किल हो रहा था। दूषित पानी के डर से, काला या ऐसा लाल पानी आने के डर से भी लोग बहुत ज्यादा घबराहट में थे। साथ ही वही बात, दुकानों पर बैठना मुश्किल हो रहा था, बिजनेस ठप हो रहा था। क्यों ठप हो रहा था? क्योंकि 24 घंटे अगर आपके आसपास कूड़े की स्मेल आती रहेगी तो आप अपने बिजनेस में, अपनी दुकान में, अपने कारोबार में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। आप अगर अपनी दुकान चलाते हैं तो आप वहां खुद नहीं बैठ पाएंगे तो ग्राहक कैसे आएगा। इन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी। हर रोज शहर भर में से 1200 टन के करीब कूड़ा निकलता है। हर रोज फरीदाबाद से इतना कूड़ा जब एक जगह पर इकट्ठा होने लग जाएगा, खासतौर पर से बरसात के मौसम में, तो दिक्कतें डबल ट्रिपल हो जाती हैं। ऐसे में लोगों ने धरना दिया, पर एमसीएफ कमिश्नर सामने आए और आकर उन्होंने आश्वासन दिया कि इसे बंद कर दिया जाएगा, अगले 6 महीने में कोई नया रास्ता निकाला जाएगा। आप तक ये सारी जानकारी मैंने इसलिए पहुंचाई क्योंकि आपके और हमारे घर में से हर रोज कूड़ा निकलता है। अब इस कूड़े के निकलने का पर्पस होता है घर की सफाई, क्योंकि हर गंदी चीज को आप घर में नहीं रख सकते, पर आप एक काम कर सकते हैं, इन्हें अलग अलग कर सकते हैं। दिन भर में खाने पीने का वेस्ट बहुत ज्यादा होता है, जैसे हमारे घर में सब्जियां बनती हैं तो उनके छिलके होते हैं, जैसे आपके घर में अगर कोई खाना बच गया है, रात का खाना है या एक दिन पहले का खाना है, तो आप उसको यूं ही फेंक देते हैं जानवरों के लिए। लेकिन अगर आप इन सब खाने पीने की चीजों को बिना किसी प्लास्टिक या फिर किसी और मटेरियल के जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, उससे अलग कर एक अलग थैली में रखेंगे या एक अलग डब्बे में रखेंगे, तो ये आगे जाकर आपको मैन्योर यानी ऑर्गेनिक खाद बनाने में मदद करेगा। दूसरे डब्बे में यानी दूसरे कूड़ेदान में आपको वो कूड़ा डालना है जो कि इजीली रिसाइकल हो सकता है। अब अगर आपको लग रहा है कि रोज रिसाइकल का मटेरियल इकट्ठा नहीं कर सकते, तो भारत में एक बहुत अच्छी चीज होती है, आपके घरों के आसपास कबाड़ी वाले घूमते हैं जो आपकी मदद करते हैं आपके घर को साफ रखने में। जिस तरीके से आप अपनी रद्दी सेल करते हैं, यानी पुराने न्यूज़पेपर, किताबें, कागज या फिर गत्ते, उसी तरीके से आप ये दूध की थैलियां, जिनको आप आसानी से हर रोज एक बार अच्छे से पानी और साबुन से धो के फिर इकट्ठा करके और महीने में एक बार उसी कबाड़ी वाले को रिसाइकलिंग के लिए दे सकते हैं, बशर्ते ये एकदम बदबू रहित होनी चाहिए, यानी इनमें किसी तरीके की स्मेल नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज आप कर सकते हैं, सारे महीने भर के प्लास्टिक के कंटेनर, बॉटल्स या फिर जो भी आपके पास डब्बे आए हैं, उन्हें भी साफ सुथरा करके कबाड़ी वाले को यानी रद्दी वाले को दे दीजिए, जो अक्सर हम करते भी आए हैं, लेकिन इसको थोड़ा और सुचारू रूप से करें। इसके साथ साथ तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है हैजार्डस मटेरियल, यानी आप जिस तरीके की मेडिकल चीजों का उपयोग करते हैं उसको आपने कलेक्ट करना है और अपने गार्बेज वाले को अलग से पैक करके देना है, जिसके बैग्स आपको केमिस्ट की दुकान पर मिल जाएंगे, हैजार्डस जिन पे लिखा होता है या मेडिकल वेस्ट लिखा होता है, नहीं तो आप किसी भी थैली में डालकर उस जो आपके गार्बेज को कलेक्ट करने आता है उस व्यक्ति को दे सकती हैं, ये बताकर कि इसमें इंजेक्शंस या दवाइयां या फिर मेडिकल वेस्ट है, चाहे उसमें आप सैनिटरी पैड्स या फिर डायपर्स भी ऐड कर सकते हैं, वो भी मेडिकल वेस्ट में ही आते हैं, क्योंकि जब ये कूड़े में जाते हैं तो ये किसी भी तरीके से रिसाइकल या डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं। सो ये भी मेडिकल वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, जिसको आपको बताना ज़रूरी होता है। तो ये अगर दो तीन चीज़ें हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में कर लेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी और आसपास के एरिया को सुरक्षित रखने में हम मदद करेंगे। लेकिन वापस उसी जगह पहुंचती हूँ जहाँ पर मैंने शुरुआत करी थी, कूड़े को सेग्रीगेट करने की। और आपसे ये कहा था कि आप घर पर बैठे खाद बना सकते हैं। अभी इसका प्रोसेस क्या होता है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा सा डब्बा लेना है प्लास्टिक का, आप चाहें तो टेराकोटा या मिट्टी का भी ले सकते हैं बर्तन। अगर प्लास्टिक का ले रहे हैं तो उसके चारों तरफ थोड़े छेद कर दीजिए, यानी नीचे से ऊपर तक गोलाई में छेद करते जाइए छोटे छोटे, और उस छेद की वजह से उसमें एयर आएगी और जाएगी। जितना भी कूड़ा आप इकट्ठा कर रहे हैं हर रोज का उसमें डालते रहिए। इस कंटेनर को आप अपनी बालकनी में, अपने गार्डन में, अपनी छत पे कहीं भी रख सकते हैं। इसको कवर कर लीजिए, इसमें ढेर सारे गत्ते के टुकड़े डाल दीजिए या फिर न्यूज़पेपर फाड़ के डाल दीजिए जो एक्स्ट्रा आपके पास हैं, और थोड़ी सी छाछ, जी हाँ, जो हमारे घरों में अक्सर इस्तेमाल होती है, वो छाछ डाल दीजिए, लगभग एक कटोरी या आधा ग्लास जितनी। धीरे धीरे इसको थोड़ा सा चलाते भी रहिए, यानी कभी कभी इसको हिला लीजिए। इसमें अपने आप फर्मेंटेशन होगी और थोड़े समय बाद आप इसमें देखेंगे कि धीरे धीरे मैन्योर बननी शुरू हो जाएगी। ये बहुत सिंपल सा तरीका होता है घर बैठे अपने पौधों को ऑर्गेनिक खाद देने का। अगर आपके घर में इतने पौधे नहीं हैं तो आप अपनी सोसाइटी में या फिर आसपास के बढ़िया गार्डन्स में भी ये सप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने बिजनेस मॉडल्स भी बना लिए हैं इस चीज़ को लेकर। सो आप भी ये काम कर सकते हैं। और इसमें अगर आप ड्राई लीव्स यानी पतझड़ के मौसम में इतने सारे सूखे पत्ते होते हैं, अगर आप वो भी इकट्ठा करके डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, ताकि पत्तों को जलाकर पर्यावरण को दोबारा दूषित करने की आवश्यकता ना पड़े। उम्मीद है ये सारी बातों से आपको काफी जानकारी मिल गई होगी। लेकिन अब एक छोटे से नाटक के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा ये कूड़ा सेग्रीगेट यानी कूड़ा अलग अलग करना कितना आवश्यक है, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये कितना मुश्किल हो जाता है हर एक इंसान के लिए जो आपके घर से कूड़ा इकट्ठा करके जा रहा है या जो आगे जाकर इसे डिस्पोज करने वाला है या लैंडफिल्स तक पहुंचाने वाला है, ये उनके लिए कितना हानिकारक और जानलेवा है। तो छोटी सी कोशिश से हम कुछ बेहतर प्रयास कर सकते हैं। आइए इस रेडियो नाटिका के माध्यम से जानते हैं।
1: क्या हुआ तारा बेटा, आज सोना नहीं है क्या?
2: पापा मुझे नींद नहीं आ रही।
1: क्यों, ऐसा क्या हुआ आज हमारी गुड़िया को?
2: मुझे ना डर लग रहा है। आज वाणी मैम ने हमें बताया कि हम लोगों ने अगर ध्यान नहीं दिया तो ये दुनिया हमारी वजह से खत्म हो जाएगी।
1: ऐसा क्यों बोला उन्होंने?
3: पूरी बात बताओ बेटा।
2: मम्मा, आज ना मैम ने हमें क्लास में वेस्ट मैनेजमेंट सिखाया, तो मैम ने सबसे पूछा कि आपके घर में कितने डस्टबिन हैं? तो सबने बोला एक, बस व्यान ने बोला कि उसके घर में तीन डस्टबिन हैं। तो फिर मैम बोलती कि जिनके घर में एक डस्टबिन है उन्हें तीन डस्टबिन रखने होंगे घर में, अगर वो एनवायरमेंट बचाना चाहते हैं तो।
1: ये क्या बात हुई बेटा, ये सब फैंसी बातें हैं, आप सो जाओ। हम लोग बिल्कुल एनवायरमेंट खराब नहीं कर रहे, हम तो सारा वेस्ट भी डस्टबिन में डालते हैं। और स्निग्धा, तुम कल इसके स्कूल जाके कंप्लेंट करना, अपने बच्चों को डराने के लिए थोड़ी भेजते हैं हम, ये सब क्या सिखा रहे हैं वो।
3: बेटा ऐसा कुछ नहीं है, कल मैं आपके साथ स्कूल जाके मैम से बात करूंगी, बिल्कुल मत डरो और अभी सो जाओ।
2: ठीक है मम्मा, गुड नाइट।
4: दीदी कूड़ा दे दो।
3: हाँ भैया, अभी लाती हूँ। आपके पैर में क्या हुआ राजू भैया, ये चोट कैसे लगी?
4: दीदी अब क्या बताऊँ, मैं तो सबको समझा समझा के थक गया हूँ। सब लोग वो एक ही बैग में सारा कचरा इकट्ठा करके दे देते हैं। वो वान्या दीदी है ना, वो 150 दूसरे माले वाली, उनके घर में कोई पार्टी हुई होगी तो उन्होंने वो कांच की सारी बोतलें और बाकी सारा सामान एक ही बैग में डाल दिया, और जब मैं उसे उठा रहा था तो बैग मेरे पैर के नीचे आ गया। उसमें कांच के टूटे हुए टुकड़े थे, बस वो उसी से कट गया जी, 12 टांके लगे हैं।
3: ओ गॉड राजू भैया, तो आप रेस्ट करो ना कुछ दिन।
4: नहीं दीदी मैं ठीक हूँ, और अगर मैं आराम करूँगा तो बच्चों की फीस, उनका खाना, किराया, ये सब कौन करेगा?
3: मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ आपकी?
4: दीदी बस एक निवेदन है आपसे, अब गीला कचरा, सूखा कचरा और कांच वाला कचरा ये सब अलग अलग बैग में रख दिया करो अगर हो सके तो। लेके मैं ही जाऊंगा, बस फिर मुझे पता होगा कि किस कचरे को कैसे उठाना है और कहाँ रखना है।
5: Come in. Oh, hi, Mrs. Arora.
3: Hello, ma'am.
5: आज कैसे आना हुआ आपका? तारा का तो सब ठीक चल रहा है।
3: वो एक्चुअली कल रात को तारा बहुत डरी हुई थी, वो सो भी नहीं पा रही थी और बता रही थी कि वाणी मैम ने स्कूल में उसे बोला है कि अगर आपके घर में बस एक ही डस्टबिन है तो आप गलत कर रहे हो।
5: अच्छा, ऐसा बोला वाणी ने? मैं वाणी को बुलाती हूँ, आप उससे खुद बात कर लीजिए। वाणी, कम टू माई ऑफिस, कम इन।
6: गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मिसेज अरोड़ा।
7: गुड आफ्टरनून
5: वाणी। मिसेस अरोड़ा इज कंसर्न अबाउट तारा, शी इज सेइंग कि तारा कल रात सो नहीं पाई बिकॉज आपने कुछ बोला होगा उसे अबाउट द डस्टबिन।
6: ओह यस, आई रिमेम्बर, कल हम वेस्ट सेग्रीगेशन के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने तारा को स्पेशली नहीं पूरी क्लास को बोला था कि वेस्ट अगर हम सेग्रीगेट नहीं करेंगे तो हमारे प्लैनेट को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचेगा।
3: बट मैम वो बहुत डर गई थी, उसे लग रहा है कि अकेली वो रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के पीछे।
6: आई एम सॉरी मिसेज अरोड़ा अगर तारा को ऐसा लगा, बट मैंने अकेले तारा को नहीं पूरी क्लास को समझाया था। तारा या कोई भी एक बच्चा या उसकी फैमिली अकेले बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट इस प्लैनेट को हील करने में हेल्प एक एक इंसान कर सकता है। प्लैनेट कोई एक दिन में खराब नहीं होता, ना ही एक दिन में ठीक हो जाएगा, बट हमारी हर दिन की हैबिट्स, हर दिन का एटीट्यूड ये डिसाइड करता है कि आने वाली जनरेशंस की लाइफ कैसी होगी यहाँ पर।
3: पर सिर्फ अलग डस्टबिन रखने से इतना क्या फर्क पड़ता है?
6: बहुत फर्क पड़ता है। मान लीजिए आपने बचा हुआ खाना, प्लास्टिक की बॉटल्स, खराब सब्जियां, ई वेस्ट और टूटा हुआ ग्लास सब एक ही बैग में डाल दिया। अब जो गीला कचरा है वो बाकी सारे वेस्ट को भी गंदा कर देगा। प्लास्टिक रिसाइकल हो सकती थी बट अब नहीं हो पाएगी। पेपर भी रिसाइकल हो सकता था लेकिन गीला होने की वजह से वो भी खराब हो जाएगा। ई वेस्ट भी सेम जगह पर फेंका जाएगा जहां ये सब फेंका जाएगा और उसकी वजह से पूरे लैंडफिल में आग लग सकती है। और सबसे डेंजरस, टूटा हुआ कांच अगर किसी वेस्ट कलेक्टर को पता ही ना हो कि उसके बैग में ग्लास है तो उसके हाथ या पैर कट सकते हैं, कोई जानवर उसे खा सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। हम लोग घर के अंदर सिर्फ 2 मिनट बचाने के चक्कर में सब कुछ एक ही बैग में डालकर फेंक देते हैं और खुश हो जाते हैं कि हमारा घर साफ हो गया, बट एक्चुअली किसी ना किसी को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। या तो वेस्ट कलेक्ट करने वाले भैया, या सेग्रीगेट करने वाले भैया, या कोई जानवर। तो बस इसीलिए हम बच्चों को सिखाते हैं ग्रीन बिन गीला कचरा, ब्लू बिन सूखा कचरा, और अगर घर में ग्लास या शार्प वेस्ट हो तो उसे अलग पैक करके क्लियरली बता कर देना चाहिए। ये सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी है जो रोज हमारा कचरा उठाते हैं।
3: आप बोल तो बिल्कुल ठीक रही हैं। आज सुबह ही मुझे पता लगा कि हमारे वेस्ट कलेक्टर के पैर में 12 स्टिचेस लगे हैं क्योंकि किसी के वेस्ट बैग में ग्लास की टूटी हुई बॉटल्स रखी हुई थी।
6: ये पहली बार नहीं हुआ होगा और शायद आखिरी बार भी नहीं होगा। जब तक हम बदलेंगे नहीं तब तक ये ठीक नहीं हो पाएगा।
3: थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक तारा का डरना बिल्कुल ठीक था, उसके डर को दूर करने के लिए मुझे स्कूल नहीं आना चाहिए था, मुझे मार्केट जाना चाहिए था अलग अलग डस्टबिन खरीदने के लिए।
1: हेलो, कोई है?
8: पापा आ गए।
1: ए, मेरी प्रिंसेस, ये क्या है? स्निग्धा, तुम्हें तो स्कूल भेजा था बात करने के लिए, तो ये 3-3 डस्टबिन कब आ गए?
3: हाँ भाई, मैं स्कूल गई थी शायद बहुत सालों के बाद, आज कुछ सीख कर निकली स्कूल से। ये एक्सपेंस नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी तारा के फ्यूचर के लिए, बाकी आने वाली जनरेशन के लिए भी।
1: मतलब तुम स्कूल से सीधा डस्टबिन लेके आ गई?
3: अरे डस्टबिन नहीं, समझदारी लेके आई हूँ। तुम्हें पता है आज सुबह राजू भैया आए थे, उनके पैर में 12 स्टिचेस लगे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने टूटा हुआ ग्लास बाकी कचरे के साथ एक ही बैग में डाल दिया था और हमें लगता है हम सिर्फ डस्टबिन में कचरा डाल रहे हैं। असल में हम किसी और की जिंदगी ना बहुत मुश्किल बना देते हैं।
1: ऐसा क्या? मुझे लगता था ये सब तो बस फैंसी बातें होती हैं।
2: पापा, अब हमारा घर भी एनवायरनमेंट बचाएगा ना?
1: हाँ मेरा बच्चा, अब तारा का घर भी एनवायरनमेंट बचाएगा।
2: ये अब मेरे दोस्त के घर की तरह हमारे घर में भी 3 डस्टबिन हैं।
4: दीदी, कूड़ा।
3: हाँ राजू भैया, ये लीजिए, गीला अलग, सूखा अलग और ग्लास इस बॉक्स में। ध्यान से लेके जाना।
4: अरे अरे, आज तो मेरा काम आधा आसान हो गया। थैंक यू दीदी, काश सब लोग ऐसे ही करने लगे।
1: अरे एक दिन जरूर करेंगे, शुरुआत किसी ना किसी घर से तो होगी।
7: अगर हर घर सिर्फ अपना कचरा अलग करने की जिम्मेदारी उठा ले तो सिर्फ कचरा अलग नहीं होगा बल्कि हमारी दुनिया भी बहुत अलग होगी। गीला अलग, सूखा अलग, कांच और हानिकारक अलग, सिर्फ 3 कूड़ेदान और 1 सुनहरा कल।
3: तो दोस्तों, उम्मीद है इस रेडियो नाटिका के माध्यम से आपने अपने घर में कूड़े को सेग्रीगेट यानी सही तरीके से कूड़ा निस्तारण के बारे में जानकारी अवश्य ग्रहण कर ली होगी। छोटी छोटी कोशिशों से बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल होती है और अब जहां AQI 400 के पार पहुंचता है, पानी का TDS बढ़ता चला जाता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है, हर खाने की पीने की चीजों में प्रदूषण या फिर दवाइयां और केमिकल मिलने लग गए हैं, वहां पर जरूरी है कि हम अपने पर्यावरण के लिए छोटी सी कोशिश जरूर करें, क्योंकि जब ये छोटी छोटी कोशिशें मिलेंगी तो बड़े बड़े बदलाव आएंगे। इसलिए अगली बार अपने घर में कूड़ा देते वक्त ध्यान रखिएगा कि गीला कूड़ा अलग रखें, सूखा अलग रखें और मेडिकल वेस्ट अलग रखें। कार्यक्रम ग्रीन ग्रह में हमारा सपोर्ट करने के लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन, इको क्लब व PTC फाइनेंस लिमिटेड का। अब कार्यक्रम ग्रीन ग्रह में अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। धन्यवाद और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। फील गुड, फील लाइव। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM है दीक्षा आपके साथ, और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा कार्यक्रम जो जुड़ा हुआ है हम सभी की जिंदगियों से। ईश्वर ने हमें जीवन दिया, लेकिन इस जीवन में कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं जब हमारे शरीर के कुछ अंग सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं, और तब हमें जरूरत पड़ती है उस ऐसे एक डोनर की जो हमारी मदद करता है स्वयं ईश्वरी रूप बन के। ऐसे ही खास कार्यक्रम को आपके बीच लेकर आता है ऑर्गन इंडिया और रेडियो मानव रचना 107.8। और इस कार्यक्रम का नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। आइए जानते हैं कुछ बहुमूल्य बातें अंग दान से जुड़ी हुई।

0: आप सभी सुनने वालों को ऑर्गन इंडिया की तरफ से नमस्कार। मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। आज हम आपका स्वागत करते हैं ऑर्गन इंडिया के इस बेहद खास कार्यक्रम में, जीवन एक अनमोल उपहार, जिसमें हम अंग दान के बारे में बात करेंगे। ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क यानी कि ऑर्गन इंडिया की पहल साल 2013 में पराशर फाउंडेशन ने की थी, जो दिल्ली की एक गैर सरकारी सामाजिक संस्था है। अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम अंगदान, देहदान और उतक दान के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम ऑर्गन फेलियर या अंगों के खराब होने की गंभीर समस्या से पीड़ित मरीजों को, जिनके पास ऑर्गन ट्रांसप्लांट या अंग प्रत्यारोपण के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, उन्हें सही जानकारी देते हैं और वो अपने उत्तम इलाज के लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, ये सब बताते हैं। अगर आप में से किसी को भी अंग दान और देह दान के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जा सकते हैं या हमारे टोल फ्री नंबर 1-800-120-3648 के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी सहायता करके हमें बेहद खुशी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज हमारे साथ है डॉक्टर गीतिका वशिष्ठ, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर ऑर्गन इंडिया की। ओवर टू यू डॉक्टर गीतिका।
1: नमस्कार, आज के शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है मिसेस कनिका जैन, जो कि इस बात का प्रतीक है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी व्यक्ति सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं और खासकर महिलाएं माँ भी बन सकती हैं। कनिका जी, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद डॉक्टर गीतिका, आपने मुझे इस शो पे बुलाया। सबसे पहले इस शो को सुनने वाले सभी लोगों को, खासकर वो लोग जो किडनी या और कोई भी अंग के ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं या उससे गुजर रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारी हिम्मत, बहुत सारी अच्छी ऊर्जा कि आपकी जिंदगी बहुत अच्छी रहे। डॉक्टर गीतिका, मेरा जो ये जर्नी थी, ये शुरू हुई थी किडनी से रिलेटेड, गुर्दे से रिलेटेड लगभग 13-14 साल पहले, जबकि मेरे शादी के तुरंत बाद ही मुझे ये बताया गया था कि आपकी दोनों किडनीज खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, कारण वो नहीं ढूंढ पाए डॉक्टर्स, उन्हें ज़्यादा पता नहीं चला, पर ये था कि अब कुछ साल, 2-4 साल आप दवाइयों पर रहिए और उसके बाद आपको आपका ट्रांसप्लांट करना ज़रूरी है। वो तो तय है कि ट्रांसप्लांट तो होगा ही होगा। मैं लगभग 8 साल दवाइयों पे रही हूँ। इस दौरान अच्छी बात ये हुई है डॉक्टर गीतिका कि मैंने सामान्य जीवन जिया है। मैं एक प्रोफेशनल हूँ ह्यूमन रिसोर्सेज में, मैंने कॉर्पोरेट्स में भी, कंसल्टिंग में भी बहुत साल काम किया है, ट्रैवल किया है। मेरी शादीशुदा जिंदगी भी सामान्य रही है हर तरह से, परंतु जो एक परेशानी थी या एक दुख कहना चाहिए मेरा और मेरे हस्बैंड का, वो था कि मेरी इस किडनी की कंडीशन की वजह से, इस किडनी की परेशानी की वजह से मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि आप गर्भवती नहीं हो सकती, या रादर आपको गर्भवती नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान किडनीज पर बहुत प्रभाव पड़ता है, और क्योंकि आपकी किडनीज अब ठीक नहीं है, दोनों ही खराब है, तो आपको गर्भवती नहीं होना चाहिए। आप समझ सकते हैं डॉक्टर गीतिका कि मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए ये बहुत बहुत दुख की बात थी। मुझे याद है मैं शायद महीनों बहुत रोई हूँ ये सोच सोच के कि मैं कभी माँ बन ही नहीं सकती। धीरे धीरे, जैसा कि सब करते हैं, उस चीज़ को हम मान लेते हैं, अपने जीवन जीते रहते हैं, और इसी तरह से हमारा जो जीवन है वो 8 साल मेरा इन दवाइयों पर चलता रहा। जैसा कि पहले से ही डॉक्टर्स ने तो खैर 2-3 साल कहा था, बट फिर भी 8 साल तक चला दवाइयों पे। उसके बाद मेरा डायलिसिस पे मुझे डाला गया, क्योंकि बिल्कुल ही एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि सब खत्म था, कि मतलब अब दवाइयां भी नहीं कर सकती, ट्रांसप्लांट तो अब करना ही पड़ेगा। लेकिन उससे पहले लगभग 1 साल तक मुझे डायलिसिस पे डाला गया। उसके लिए गर्दन में कैथेटर्स लगे, हाथ में एक पहली बार फिस्टुला बनाया, वो फेल हो गया, दूसरी बार जब कैथेटर्स डाले, लंग इन्फेक्शन हो गया। मतलब इस तरह के, जैसे कि नॉर्मल जो चुनौतियां होती हैं वो रही, इस 8 साल के दौरान और डायलिसिस के दौरान ना सिर्फ शारीरिक तौर पर मानसिक तौर पर भी बहुत परेशानियां रही, क्योंकि बहुत अंदर से एक बड़ी ऐसा लगा कि मैं शायद पूर्ण रूप से अपने आप को पूर्ण रूप से महसूस नहीं कर पाती थी कि मैं एक औरत हूँ, एक बीवी हूँ, क्योंकि जैसा कि शायद सभी औरतें ऐसा महसूस करती होंगी कि माँ बनना बहुत बड़ी बात है और जीवन अधूरा सा लगता है जब हम माँ नहीं बन पाते हैं। तो मेरे लिए वो 8 साल मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत कठिन रहे। शारीरिक रूप से तो क्या देखिए रहे, क्योंकि इतनी जब हम दवाइयाँ खाते हैं तो उसका हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता ही है, बट मानसिक और भावनात्मक रूप से मेंटली और इमोशनली थोड़ा कठिन रहा मेरे लिए।
1: तो जब आपको ये बताया गया कि आपको अभी फिलहाल के लिए माँ नहीं बनना चाहिए, गर्भ धारण करने से आपको परेशानियां हो सकती हैं, तो आपके परिवार का इस पर क्या प्रभाव पड़ा?
2: दो बातें हुई। अच्छी बात तो ये हुई कि मैं बहुत बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया इतने सालों में। आज शादी के 14-15 साल बाद तक भी, शुरू में ही जबकि डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आप माँ नहीं बन सकती हैं, वो दिन आज का दिन मेरे हस्बैंड ने, मेरे पति ने मेरा हाथ थामे रखा है, मुझे गले लगाए रखा है। तो अच्छी बात ये रही है कि मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत बहुत साथ दिया है, ठीक है। उसके साथ साथ मेरे माँ बाप ने, मेरे भाई भाभी ने, इन चारों ने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ क्योंकि मैं ऐसे बहुत से औरतों को जानती हूँ जिनके परिवार ने उनका साथ नहीं दिया, बट मैं भगवान की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे परिवार ने, खासतौर पे मेरे पति ने मेरा बहुत साथ दिया है। ये तो पहली बात हुई जो अच्छी हुई। इसके अलावा बुरा तो नहीं कहना चाहिए, बट शायद जो इतनी अच्छी नहीं रही, देखिए बाकी के जो परिवार में लोग थे और जो समाज के जो लोग थे, उन्होंने मेरे लिए थोड़ा परेशानियाँ करी, मानो जैसे मुझे नीचा दिखा रहे हों या मुझे हीन दृष्टि से देख रहे हों कि माँ नहीं बन सकती, ओहो बड़ा दुख हुआ सुन के। तो उस तरह का जब मुझे लोगों से प्रतिक्रिया मिलती थी तो बहुत दुख होता था, और शायद मुझे मानसिक और भावनात्मक दुख जो रहे हैं वो शायद

0: उस समाज और बाकी परिवारजनों के उस प्रतिक्रिया से ज्यादा रहे।
1: कनिका जी, हमें ये बात बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं तो हम बात कर रहे हैं कनिका जी से, जो हमें अपनी किडनी ट्रांसप्लांट की जर्नी के बारे में बता रही हैं और बता रही हैं कि कैसे किडनी प्रत्यारोपण के बाद उनके जीवन में एक नया बदलाव आया। कनिका जी, तो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद किस तरह से और क्या परिवर्तन आपके जीवन में आया?
0: डॉक्टर कितिका, सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये आपके श्रोताओं से को बताना चाहूँगी कि ट्रांसप्लांट के समय, ट्रांसप्लांट से तुरंत पहले मैं लगभग एक साल तक डायलिसिस पे थी। अब डायलिसिस पे क्या होता है कि दो तरह से होता है कि एक तो आपको गर्दन में कैथेटर डाल देते हैं या फिर आपके हाथ पैरों में कहीं पर फिस्टुला बना देते हैं। तो इवन दो मैं काफ़ी खुशनसीब रही हूँ, लकी रही हूँ कि मुझे अच्छे डॉक्टर्स मिले, लेकिन परेशानियाँ भी आई। देखिए, जीवन है तो उसमें अच्छा बुरा सुख दुख सभी आता है, ठीक है। मेरा एक फिस्टुला भी फेल हुआ तो और परेशानी हुई, गर्दन में मुझे कैथेटर डाल दिया तो उससे मुझे लंग इन्फेक्शन हो गया और मैं बिस्तर पे काफ़ी महीनों तक रही, जिसकी वजह से जो ट्रांसप्लांट से पहले हमारे बहुत सारे टेस्ट्स किए जाते हैं ये देखने के लिए कि अब आप पूरा ट्रांसप्लांट कोई भी किसी भी अंग का, सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट ही नहीं, किसी भी अंग का आप ट्रांसप्लांट कराते हैं तो पूरे टेस्ट किए जाते हैं कि आप सही हैं। तो उसमें काफ़ी देरी हो गई, क्योंकि जब तक मैं पूरे 100% ठीक नहीं हूँ तब तक वो ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते थे। तो उसमें मुझे शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से बहुत परेशानी हुई। सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये रही, जो लोगों को चुनौती आती है उनके जीवन में वो ये होती है कि उन्हें डोनर नहीं मिलता। डोनर मतलब जो आपको अपनी किडनी या आपका कोई भी जो आपको अंग चाहिए ट्रांसप्लांट के लिए वो आपको वो दे। मेरी खुशनसीबी ये रही कि शुरू से ही ऐसा, मानिए भगवान ने शायद तय किया था हमारे लिए कि मेरे पापा ने मुझे अपनी किडनी देनी थी और मेरे पापा ने मुझे अपनी किडनी दी। उनकी उम्र लगभग 60 के करीब थी उस समय। मेरे ट्रांसप्लांट को आज 6 साल हो चुके हैं और उस समय उनकी उम्र लगभग 60 के करीब थी, मेरी 33 के करीब थी। हमारे सारे टेस्ट अच्छे होते गए, कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं आई। दूसरी जो चुनौती ज़्यादातर लोगों को आती है वो पैसे की आती है, क्योंकि ये बहुत महंगा वो हो जाता है, क्योंकि सिर्फ ट्रांसप्लांट के ही पैकेज का खर्चा नहीं होता कि 2-4 लाख का पैकेज है, उससे पहले बहुत से टेस्ट के खर्चे होते हैं, दवाइयों के होते हैं, उस दौरान के जब आप उस समय 10 दिन हॉस्पिटल में हैं उसके होते हैं, उसके बाद के होते हैं। फिर से भगवान की दया से मेरे पति ने मेरा बहुत साथ दिया है और उन्होंने मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी, हर चीज़ अच्छे से अच्छा मेरे लिए उन्होंने करवाया और उन्होंने वो किया। तीसरी अच्छी चीज़ जो मेरे साथ रही, जो फिर कई खास तौर पे महिलाओं के साथ परेशानी या चुनौती होती है, कि उन्हें अपने हस्बैंड का, अपने पति का सपोर्ट नहीं मिलता, उनका साथ नहीं मिलता। तो सबसे पहली बात ऑफ कोर्स ये कि मेरे पति ने मेरा बहुत साथ दिया है, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी और भगवान की कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। अबल तो मैं बहुत स्ट्रांग रही हूँ, बहुत मैं मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से बहुत दृढ़ हूँ, फिर भी कई बार होता था कि मैं उदास हो जाती थी, तब मेरे पति मेरा हाथ थाम के बोलते थे नहीं तुमने करना है। तो इन तीन चीज़ों के उस पे जो मेनली चुनौतियाँ आती हैं, मेरे साथ भगवान ने बहुत अच्छा किया है। ट्रांसप्लांट बहुत अच्छे से हो गया था। देखिए, हर व्यक्ति का या हर औरत का शरीर यूनिक है, अलग है, तो हम ट्रांसप्लांट के तुरंत बाद से ही बहुत दवाइयाँ दी जाती हैं, हर तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, स्टेरॉइड्स, मतलब बहुत तरह की, और उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगर वो कुछ अच्छा कर रही हैं वो दवाइयाँ हमारे शरीर में, तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, वो कुछ बुरा भी करती हैं। तो उस तरह से ट्रांसप्लांट के बाद हर एक के अलग अलग इफ़ेक्ट होते हैं। मेरे साथ भी रहे कि जैसे ना मेरा जो वज़न है बहुत बढ़ गया था, लगभग 15-20 kg बढ़ गया था। मेरे बाल बहुत बुरी तरह से झड़े हैं, मतलब आज की डेट, और क्योंकि ये दवाइयाँ हमें जीवन भर खानी हैं तो आज की डेट में 6 साल बाद भी मैं 80-90% 80-90% तक अपने सर के बाल खो चुकी हूँ। लेकिन सबके साथ अलग अलग होता है, ये चुनौतियाँ आती हैं, रहती हैं। ये है कि हम जब पूर्ण रूप से उस तस्वीर को देखते हैं अपने जीवन की, तो पाते हैं कि मेरे को इस ट्रांसप्लांट के बाद बहुत खुशियाँ मिली हैं। मेरी ज़िंदगी जो में जो बदलाव आया है, जो ट्रांसफॉर्मेशन

0: अपने खाने पीने का, सफाई का, धूल मिट्टी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने बहुत ही दृढ़ता से, बहुत डिसिप्लिन के साथ अपनी लाइफ को, और स्पेशली अपने उस पहले एक साल के जो ट्रांसप्लांट के बाद था, वो किया है कि कहीं आप बाहर आ जा नहीं सकते, हर जगह कुछ भी आप ऐसे खा पी नहीं सकते। आज भी 6 साल बाद भी मैं सड़क पे बीकानेर पे खड़े होकर ऐसे गोलगप्पे नहीं खा सकती, पापड़ी चाट नहीं खा सकती, क्योंकि वो चीज़ अब मेरे लिए नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की छोटी बड़ी परेशानियां होती हैं, बट ट्रांसफॉर्म जो लाइफ हुई है, इतना प्यार जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने खुद के लिए महसूस किया है, अपने पति से महसूस किया है, और इस वजह से आज मैं माँ बन पाई हूँ, वो मेरा जो सबसे बड़ा, मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया है, वो जो सिर्फ उम्मीद नहीं, वो उम्मीद पूरी हुई है, वो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने किडनी ट्रांसप्लांट की वजह से, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हुई है। तो आज मैं बहुत खुशी के साथ आपको ये बता सकती हूँ कि 1.25 साल पहले जो है मेरा बेटा हुआ। मैंने बहुत नॉर्मली कंसीव किया, मेरी प्रेगनेंसी में भी कोई खास बहुत बड़े कोई उतार चढ़ाव नहीं थे, तो मेरे लिए ये बहुत बहुत बड़ी बात है। मेरी जो ज़िंदगी की जो काया पलट हुई है, मेरे मेरी सोच की, मेरे बर्ताव की, मेरे जीवन के देखने के जो मेरे नज़रिए की जो काया पलट हुई है, वो एक्चुअली मेरी किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हुई है।
1: सो हमारे श्रोताओं को ये तो समझ आ ही रहा होगा कि माँ बनने का जो एक सुखद एहसास है और जो आपका एक अनुभव रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है, शांतिपूर्वक रहा है। तो आप उसके बारे में कुछ और बताना चाहें और क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे श्रोताओं को?
0: सबसे पहले तो ये कि मैं अपने परिवार की, अपने पापा की जिन्होंने मुझे किडनी दी, मेरी मम्मी की जिन्होंने मेरा, शायद इस उम्र में भी मेरे को अपनी शायद गोदी में ही खिला के मेरा ध्यान किया, मेरे हस्बैंड की, मेरे भाई भाभी की, मेरे परिवार की। क्योंकि देखिए डॉक्टर गीतिका, डॉक्टर्स जो होते हैं ना, वो सिर्फ एक हद तक हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक है, वो हमें दवाइयाँ दे सकते हैं, टेस्ट करवा के बता सकते हैं कि ये परेशानी है, आप ये खा लीजिए, ये कर लीजिए, लेकिन जब तक हम खुद अंदर से आत्मदृढ़ नहीं हैं, हम अपने अंदर आत्मविश्वास जब तक हम नहीं रखेंगे, तब तक डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे, दवाइयाँ भी कुछ नहीं कर पाएंगी। सबसे पहला तो ये कि इस अनुभव के बाद मेरे अंदर का, ऑफकोर्स आत्मविश्वास तो पहले से ही बहुत था, मेरी दृढ़ता पहले से ही बहुत थी, इसके बाद बढ़ गई। माँ बनने के बाद अब मुझे बहुत, एक औरत होने के नाते अब मुझे पूर्ण महसूस होता है। वीर ने हमारी ज़िंदगी में आके, मेरे जीवन में आके माँ बनने का सुख दिया। संदेश मैं उन सब लोगों को ये कहना चाहूँगी जो शायद किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे शायद ट्रांसप्लांट उन्हें कराना पड़े, मन में हो सकता है डर, वो मेरे भी था, तो उनको मैं ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले अपने ऊपर आत्मविश्वास रखिए, अपने डॉक्टर पर विश्वास रखिए। मैं बहुत बहुत बहुत खुशनसीब रही हूँ कि मेरा ट्रांसप्लांट से लेके अब तक पिछले 6 सालों में डॉक्टर सौरभ पोखरियाल जो ये मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका में नेफ्रोलॉजी हेड हैं, उन्होंने मेरा ध्यान किया है, उनकी मैंने उन पर इतना विश्वास किया है, उनसे पूछे बिना मैं आज तक भी कोई दवाई नहीं मुँह में डालती हूँ। मैं अपना इतना डिसिप्लिन तरीके से अपना ध्यान रखती हूँ और उनकी कहीं एक एक बात मानती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ये भी होता है कि डॉक्टर हमें कुछ भी कह देते हैं, हम उस बात को हवा में उड़ा देते हैं, हम उनकी बात नहीं मानते हैं, तो हमें उस चीज़ की इज्जत रखनी चाहिए। तो अपने डॉक्टर पर विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ बहुत फूल ही फूल हैं, गुलाब का फूल है तो नीचे कांटे भी होंगे। ट्रांसप्लांट में अगर खुशियाँ हैं तो साथ में परेशानियाँ भी हैं, दर्द भी है, लेकिन अपने आप पे, भगवान पे विश्वास रख के आप वो कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अगर मैं 38 की उम्र में भी ट्रांसप्लांट के बाद माँ बन सकती हूँ, तो मैं भी तो एक सामान्य साधारण औरत हूँ, तो अगर मैं कर सकती हूँ तो हर कोई कर सकता है। तो पहला संदेश उनके लिए जो डर रहे हैं, उनके लिए जो शायद ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं लेकिन जूझ रहे हैं, अपने पे विश्वास रखिए, ये एक फेज है, निकल जाएगा जीवन का। और मैं दूसरा संदेश आप सभी सुनने वालों को, सभी श्रोताओं से ये हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग, अगर हो सके तो आपके लिए अपने अंग दान का संकल्प लें। आप ये जानते नहीं हैं कि आपके जाने के बाद, आपके इस संकल्प लेने से आपके

0: अंग जिसको भी मिलेंगे आप कितने लोगों की जीवन में खुशियां लाएंगे। मेरे जैसी कोई औरत माँ बन पाएगी, किसी बच्चे को वो वापस अपने माँ बाप को देख पाएगा। आप उनका चाहे लिवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे हार्ट हो, जो भी अंग आपका उनको मिलेगा, ठीक है, किसी माँ को खुशी मिलेगी, कोई बच्चा अपनी माँ के साथ वापस जुड़ सकेगा। आप ये सोच भी नहीं सकते कि आपका ऐसा संकल्प ले लेने से आप कितने जीवन को, कितनी जिंदगियों को खुशियाँ देंगे, उन्हें जीने की उम्मीद देंगे। क्योंकि मेरे जीवन में माँ बनने की जो खुशी आई है, उम्मीद आई है, वो तो मेरे किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ही आई है। तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती करती हूँ कि हो सके तो अपने अंग दान का संकल्प लें, ताकि आपके जाने के बाद आपके परिवारजन उसको पूरा कर सकें और आपके थ्रू बहुत से लोगों के जीवन में खुशियाँ आ सकें।
1: कानिका जी, आपने ये बिल्कुल सही कहा, और पूरा ये वार्तालाप जो हम कर रहे हैं उसका हम लोग ये चाहते हैं कि लोगों के बीच ये संदेश जाए कि अंगदान करना चाहिए। इससे एक व्यक्ति मरने के बाद कम से कम 8 जिंदगियां बचा सकता है, और उस 8 जिंदगी से जुड़ी हुई अनेक जिंदगियां, उनमें सब में खुशहाली ला सकता है। आज हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
1: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपकी कहानी, आपका सफर जान के बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि वीर बड़ा होके आपके आपके साहस की बातें करें, और ऑल द बेस्ट, आपका जीवन खुशनुमा रहे। धन्यवाद।
0: धन्यवाद, थैंक यू।
2: जैसे कि आप सभी जान गए हैं कि अंगदान एक बेहद खूबसूरत विरासत है, जिसके जरिए हम मृत्यु में भी 8 लोगों की जिंदगी खुशनुमा बना सकते हैं। मैं आप सभी सुनने वालों को बता दूं कि अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.organindia.org विजिट कर सकते हैं, या आप हमें हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-120-3648 पर फोन कर सकते हैं। व्हाट्सएप करने के लिए नंबर नोट डाउन कर लीजिए 9650952810, या फिर आप हमें info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं, और कॉल करना चाहें तो इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, जो है 0114183832। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर एक फॉर्म भरकर अनेक जिंदगियों को आशा की किरण दिखा सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद अपने परिवार के लोगों को जरूर बताइएगा और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दीजिएगा। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और सर्टिफिकेट भेजा जाएगा, जिसे आप सबको दिखाइए और दूसरों को प्रेरित भी करिए। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होने की आशा करती हूँ। हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।
3: तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत सी बातें जानी अंगदान से जुड़ी हुई। ऑर्गन इंडिया के सौजन्य से कार्यक्रम हम आपके बीच लाए। रेडियो मानव रचना 107.8 की इस कोशिश में अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं और अपनी राय और अपने कुछ खास विचार हमारे समक्ष रखना चाहते हैं तो हमें मैसेज या कॉल करें 8010781078, या फिर हमारे इंटरनेट रेडियो रेडियो मानव रचना के माध्यम से आप डाउनलोड करके भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं, और जिस भी व्यक्ति के साथ आप शेयर करना चाहें, दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी शेयर कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जीवन एक अनमोल उपहार, इसकी अहमियत को समझिए और अपना ख्याल रखिए। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें। www.organindia.org पर जाकर अपना फॉर्म भरें और अपना ऑर्गन डोनर कार्ड प्राप्त करें। अंगदान, जीवन दान।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM, Feel Good, Feel Life।
2: हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी स्नेहा, और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। जी हाँ, एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर हम करते हैं उन लोगों की बातें जिन्होंने अपनी मेहनत, अपने हौसले और अपनी लगन से सफलता की एक नई मिसाल को कायम किया है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों की हम लाइफ की जर्नी लेकर आते हैं आपके लिए, ताकि आप भी अपनी लाइफ में उनसे इंस्पायर हो सके और साथ ही मोटिवेट हो सके कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। पता है कभी कभी क्या होता है हमारी लाइफ में, जब हम किसी की स्टोरी सुनते हैं, किसी के बारे में जानते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर सामने वाला इंसान अगर अपनी लाइफ में इतना कुछ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। पता है क्या होता है, कभी कभी ना हम अपनी लाइफ में ना उम्मीदें छोड़ देते हैं, या फिर कहे तो एक बार अगर हार मान जाते हैं तो उसके बाद हम ना सोचते हैं कि शायद अब हमसे होगा ही नहीं। पर मैं आपको बता दूं, ये प्रोग्राम है ही इसलिए ताकि हम आपको ना मोटिवेट कर सकें, हम आपको बता सकें कि सक्सेस की जो मंत्राज हैं जिसे आप फॉलो करके ना आप भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सक्सेस आज के टाइम में हर किसी को चाहिए। हर कोई चाहता है कि मैं सक्सेस बनूं, पर आपको मैं एक और चीज़ बता देती हूं कि सक्सेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मुझे नाम मिल गया, मुझे फेम मिल गया, मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो मैं सक्सेस हो गया या फिर हो गई। पर नहीं, मैं आपको सही बताऊं, सक्सेस के असली मायने वही होते हैं जहां पर आप खुद तो सक्सेस होते हैं पर साथ ही आप लोगों को भी अपने साथ लेकर चलते हैं, जहां पर आप अपनी सक्सेस के बदौलत लोगों की मदद करते हैं, उनके काम आते हैं, साथ ही आप हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए भी कुछ करते हैं, तो असली सक्सेस का मतलब वही कहलाता है। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं आपके लिए बहुत सारी जर्नी, और आज भी इसी जर्नी के साथ मैं आपके पास आ गई हूँ दोबारा से। जी हाँ, और आज हम करने वाले हैं जिनकी बात, वो मुझे पता है आप सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी उनका नाम सुना जाता है। जी हाँ, बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस का नाम, जिनका नाम मैं आपको बताने वाली हूँ, पर अभी लूंगी मैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। इस ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आज हम किसकी जर्नी की बात करने वाले हैं, किसकी जर्नी के साथ आज हम चलने वाले हैं। पर उससे पहले सुनिए बहुत ही प्यार सा गाना, सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर हम लोगों की बात करते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने हौसले से और अपनी सफलता की लगन से एक नई मिसाल को कायम किया है। और आज भी हमारी कहानी एक ऐसी ही शख्सियत की है जिन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। और आज हम बात कर रहे हैं एक एक्ट्रेस की, एक प्रोड्यूसर की, एंटरप्रेन्योर की और ग्लोबल आइकन की, यानी कि जिसकी आज हम बात करने वाले हैं वो है प्रियंका चोपड़ा। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा की आज जर्नी के साथ हम चलने वाले हैं। दोस्तों, जब हम प्रियंका चोपड़ा का नाम सुनते हैं ना तो हमारे जहन में एक रेड कार्पेट इवेंट होता है और बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर और फिर हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स की तस्वीरें उभर कर आती है। लेकिन हर सफलता के पीछे एक सफर भी होता है और प्रियंका चोपड़ा का सफर भी उन चुनौतियों, मेहनत और निरंतर सीखने की कहानी है। प्रियंका चोपड़ा का जन्म 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर में हुआ था। उनके माता पिता डॉक्टर अशोक चोपड़ा और डॉक्टर मधु चोपड़ा इंडियन आर्मी में डॉक्टर्स थे। आर्मी बैकग्राउंड होने की वजह से उनके परिवार को अक्सर अलग अलग शहरों में रहना पड़ता था। प्रियंका ने बचपन में बरेली, लखनऊ, पुणे और दिल्ली जैसे शहरों में पढ़ाई की है। बार बार स्कूल और शहर बदलने के कारण उन्होंने हर बार लोगों के बीच खुद को एडजस्ट करना पड़ता था। लेकिन शायद यही वजह थी कि बचपन से ही उनके अंदर अडेप्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। ये क्वालिटी आगे चलकर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बनी। कुछ समय के लिए प्रियंका पढ़ाई के लिए अमेरिका भी गई थी। वहाँ उन्होंने नए कल्चर और नए एनवायरनमेंट को देखा, लेकिन हर नई जगह की तरह वहाँ भी उन्हें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे कि इन अनुभव ने उन्हें और ज़्यादा मजबूत बना दिया और ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखना भी सिखाया। दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा की कहानी हमें ये बताती है कि सफलता की बुनियाद बचपन में ही तैयार होने लगती है। हर नया अनुभव, हर नई चुनौती और हर नई जगह हमें कुछ न कुछ जरूर सिखाती है। प्रियंका ने भी हर परिस्थिति को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और खुद को बेहतर बनाती गई। और बस यही था उनकी जिंदगी का सबसे पहला सक्सेस मंत्रा, यानी कि हर बदलाव को एक मौके की तरह देखिए, क्योंकि कभी कभी वही बदलाव आपको मंजिल तक पहुंचा देते हैं। वक्त हो गया है अभी एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आता है आपके लिए आपके सक्सेस होने के मंत्रास। और आज हम बात कर रहे हैं इस जर्नी में प्रियंका चोपड़ा की। दोस्तों, पिछले सेगमेंट में हमने प्रियंका चोपड़ा के बचपन और उनके शुरुआती जीवन के बारे में जाना। हमने देखा कि कैसे अलग अलग शहरों और देशों में रहने के अनुभव ने उनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस और अडेप्टिबिलिटी को मजबूत बना दिया। लेकिन अब उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उन्हें पूरी दुनिया के सामने लाने वाला था। दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा ने कभी सोचा नहीं था कि वो ब्यूटी पेजेंट की दुनिया में इतनी बड़ी पहचान बना लेंगी। कहा जाता है कि उनकी मां ने उनकी कुछ तस्वीरें फेमिना मिस इंडिया कंपटीशन के लिए भेजी थी। ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन इसी कदम ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। साल 2000 में प्रियंका ने फेमिना मिस इंडिया कंपटीशन में भाग लिया। देश भर से आई टैलेंटेड और कॉन्फिडेंट कंटेस्टेंट के बीच अपनी जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन प्रियंका ने अपनी पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस और कॉन्फिडेंस के दम पर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उनकी मेहनत रंग लाई और वो मिस इंडिया पेजेंट के टॉप विनर में शामिल भी हुई और इसके बाद उन्हें भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, यानी कि मिस वर्ल्ड 2000 कंपटीशन में। सोचिए दोस्तों, सिर्फ 18 साल की एक यंग लड़की जो पूरे देश की उम्मीदों को लेकर इंटरनेशनल स्टेज पर खड़ी हो, ये किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़े प्रेशर हो सकता है, लेकिन प्रियंका ने इस प्रेशर को अपनी ताकत बना लिया। दिसंबर 2000 में लंदन में आयोजित मिस वर्ल्ड कंपटीशन में प्रियंका चोपड़ा ने दुनिया भर के कंटेस्टेंट्स को पीछे छोड़ते हुए मिस वर्ल्ड 2000 का खिताब अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ वो दुनिया भर में पहचानी जाने लगी। भारत के लिए भी ये एक गर्व का पल था। लेकिन दोस्तों, इस जीत के पीछे इस

सिर्फ खूबसूरती ही नहीं थी, इसके पीछे था कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, तैयारी और खुद पर भरोसा। प्रियंका ने साबित कर दिया कि असली पहचान सिर्फ बाहरी रूप से नहीं बल्कि व्यक्तित्व और सोच से बनती है। यहाँ से हमें प्रियंका चोपड़ा का दूसरा सक्सेस मंत्रा मिलता है कि जब जिंदगी आपको एक मौका दे तो उसे पूरी तैयारी और पूरे विश्वास के साथ अपनाइए। कभी कभी एक मौका ही आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर हम बात करते हैं सक्सेस होने की, और आज इस सक्सेस मंत्रा की जर्नी में हम चल रहे हैं प्रियंका चोपड़ा के साथ। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा की जर्नी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे प्रियंका चोपड़ा ने सिर्फ 18 साल की उम्र में मिस वर्ल्ड 2000 का खिताब जीतकर पूरे देश का नाम रोशन किया। लेकिन दोस्तों, एक टाइटल जीतने और उसके बाद उस सफलता को बराबर रखना दोनों अलग बातें होती हैं। प्रियंका के लिए असली चुनौतियां अब शुरू होने वाली थी। मिस वर्ल्ड बनने के बाद प्रियंका चोपड़ा के पास कई नए अवसर आए। इस दौरान उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की तरफ अपने कदम बढ़ाए। उनकी शुरुआती फिल्मों में साउथ इंडियन सिनेमा के प्रोजेक्ट भी शामिल रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना इतना आसान नहीं था। फिल्म इंडस्ट्री में पहले से कई स्टेब्लिश्ड और मजबूत लोग थे और हर साल नए चेहरे भी आ रहे थे। ऐसे में किसी नए कलाकार के लिए अपनी अलग जगह बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। प्रियंका को भी कई बार क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों को लगता था कि ब्यूटी पेजेंट विनर सिर्फ ग्लैमर तक ही सीमित रहते हैं और एक्टिंग में ज्यादा सफल नहीं हो पाते, लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने इन बातों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने लगातार मेहनत की, एक्टिंग को सीखा और नए रोल के साथ खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की। धीरे धीरे उनकी मेहनत नजर भी आने लगी। फिर आया साल 2003। साल 2003 में आई फिल्म अंदाज ने उन्हें पहली बड़ी सफलता दी। इस फिल्म में उनके काम को काफी सराहा गया और उन्हें अवार्ड्स भी मिले। इसके बाद मुझसे शादी करोगी, एतराज और कई अन्य फिल्मों में उनके करियर को मजबूती दी। खास बात तो ये थी कि प्रियंका सिर्फ ग्लैमरस रोल तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने हर तरह के किरदार निभाने की कोशिश की और अपनी पहचान को साबित किया। दोस्तों, सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, बल्कि प्रियंका चोपड़ा की जर्नी हमें बताती है कि पहली जीत के बाद भी लगातार मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो मिस वर्ल्ड जीतने के बाद रुक जाती तो शायद आज उनका नाम दुनिया के सबसे सफल एंटरटेनर में शामिल ना होता। यहाँ से हमें प्रियंका चोपड़ा की जर्नी से तीसरा सक्सेस मिलता है, और वो ये है कि सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक कंटिन्यूस जर्नी है। हर अचीवमेंट के बाद खुद को और बेहतर बनाने की और असली ग्रोथ को हासिल करने की। वक्त हो गया है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। सक्सेस मंत्रा में आज हम चल रहे हैं प्रियंका चोपड़ा की जर्नी के साथ। पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआती संघर्षों का सामना किया और धीरे धीरे इंडस्ट्री में अपनी जगह बनानी शुरू की। लेकिन एक अच्छी एक्ट्रेस और एक सुपरस्टार में फर्क होता है। सुपरस्टार वही बनता है जो नए चैलेंजेस लेने से नहीं डरता, और प्रियंका चोपड़ा ने भी कुछ ऐसा ही किया। दोस्तों, जब कई एक्टर्स एक ही तरह के रोल्स करके अपनी सेफ इमेज बनाए रखना पसंद करते थे, तब प्रियंका ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने ऐसे किरदार निभाने शुरू किए जो चैलेंजिंग भी थे और रिस्क भरे भी। उनका मानना था कि अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है। फिर आया साल 2008। साल 2008 में आई फिल्म फैशन उनके करियर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। इस फिल्म में उन्होंने एक स्ट्रगलिंग मॉडल का किरदार निभाया जिसमें सक्सेस, फेलियर, प्रेशर और कमबैक की कहानी दिखाई गई थी। प्रियंका ने इस रोल को इतनी ईमानदारी के साथ निभाया कि दर्शक और क्रिटिक्स दोनों ही उनके फैन हो गए। इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला था। इसके बाद कमी ने सात खून माफ, बर्फी और मैरी कॉम जैसी फिल्मों में उनकी एक्टिंग की रेंज को और ज्यादा मजबूती से सबके सामने रखा। खासकर मैरी कॉम में उन्होंने ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर की भूमिका निभाई और उसके लिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की तैयारी भी की। ये दिखाता है कि वो हर रोल को सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह लेती थी। प्रियंका की खास बात तो ये थी कि वो हर फिल्म के साथ कुछ नया करने की कोशिश करती थी। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे या फिल्म चलेगी या नहीं। उनका फोकस हमेशा अपने काम को बेहतर बनाना था। इसी सोच ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे सफल और सम्मानित एक्ट्रेस में शामिल कर दिया। दोस्तों, जिंदगी में ना कई बार हमें भी ऐसे ही फैसले लेने पड़ते हैं जहाँ पर रिस्क होता है, लेकिन अगर हम डर की वजह से नए मुकामों को छोड़ दें तो शायद हम भी अपनी असली क्षमता को कभी नहीं जान पाएंगे। प्रियंका चोपड़ा का चौथा सक्सेस मंत्र है कि ग्रोथ तब शुरू होती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का साहस करते हैं। रिस्क के बिना बड़ी सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। और इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हुस्नी हूं आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम चल रहे हैं प्रियंका चोपड़ा की जर्नी के साथ। अब तक हमने प्रियंका चोपड़ा की जर्नी के कई अहम पड़ाव देखे हैं। एक छोटे शहर की लड़की ने मिस इंडिया बनने तक का सफर तय किया, बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना और फिर चैलेंजिंग रोल्स के जरिए सुपरस्टार के रूप में उभरना। लेकिन प्रियंका चोपड़ा की सोच हमेशा बड़ी रही। जब उन्होंने बॉलीवुड में सब कुछ हासिल कर लिया था, तब उन्होंने एक और बड़ा सपना देखने की हिम्मत की कि हॉलीवुड में अपनी पहचान बनाएं। वो भी कैसे? दोस्तों, किसी नए देश, नए इंडस्ट्री और नए ऑडियंस के बीच खुद को एस्टेब्लिश करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आप पहले ही अपने देश में एक सक्सेसफुल स्टार हो। लेकिन प्रियंका ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनके लिए सीखने और आगे बढ़ने की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा भी बन गई। उनके करियर का एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो था

अमेरिकन टेलीविजन सीरीज क्वांटिको। इस सीरीज में प्रियंका ने लीड रोल निभाया और फिर पहली साउथ एशियन एक्ट्रेस में से एक बनी जिन्होंने अमेरिकन टेलीविजन पर इतना बड़ा लीड रोल प्ले किया। क्वांटिको की सफलता के बाद दुनिया भर के दर्शकों ने प्रियंका चोपड़ा को एक नए रूप में भी देखा। उनकी एक्टिंग, उनके कॉन्फिडेंस और स्क्रीन प्रेजेंस ने इंटरनेशनल ऑडियंस को भी प्रभावित किया। इसके बाद उन्होंने हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया और कई बड़े ग्लोबल इवेंट्स का हिस्सा भी बनी। लेकिन इसमें सबसे खास बात तो ये थी कि ग्लोबल सक्सेस मिलने के बाद भी प्रियंका ने अपनी भारतीय पहचान को कभी नहीं छोड़ा। वो हर मंच पर अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों पर गर्व करती हुई नजर आई। इसी वजह से वो सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं है बल्कि भारत की एक ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव भी बन गई। दोस्तों, अक्सर लोग अपने सपनों की सीमा खुद तय कर लेते हैं, लेकिन प्रियंका चोपड़ा की कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आप अपनी मंजिल किसी एक शहर या फिर किसी एक देश या फिर किसी एक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रखते। यहाँ से हमें प्रियंका चोपड़ा की लाइफ से पांचवा सक्सेस मंत्र मिलता है, वो है कि सपने हमेशा बड़े देखिए। जब आप अपनी सोच की सीमा बढ़ा देते हैं तब आप अपनी संभावनाओं की असली ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। और इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। सुनी बहुत ही प्यार सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। दोस्तों, पिछले सेगमेंट में हमने जाना कि कैसे प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का सफर तय किया, खुद को एक ग्लोबल आइकन के रूप में स्थापित भी किया। लेकिन दोस्तों, असली सफलता सिर्फ नाम, शोहरत या फिर अवार्ड्स तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि असली सफलता तब होती है जब आप अपनी पहचान और अपने प्रभाव का इस्तेमाल दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करते हैं। प्रियंका चोपड़ा की कहानी का ये पहलू भी उतना ही प्रेरणादायक है। एक्टिंग के साथ साथ प्रियंका ने बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में भी अपने कदम मजबूती से बनाए रखे। उन्होंने कई बिजनेस वेंचर्स और ब्रांड के साथ काम भी किया। ये साबित किया कि एक कलाकार सिर्फ एक फील्ड तक सीमित नहीं होता है, बल्कि उनकी सोच हमेशा नई चीजें सीखने और नए अवसर तलाशने की राह देखते रहते हैं। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा ने प्रोड्यूसर के रूप में भी काम किया। उनकी प्रोडक्शन हाउस ने ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया है जो मीनिंगफुल स्टोरीज को सामने लेकर आते हैं। ये दिखाता है कि उनका फोकस सिर्फ कॉमर्शियल सक्सेस पर नहीं, बल्कि क्वालिटी कंटेंट और नए टैलेंट को मौका देने पर भी रहा है। दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा एक सक्सेसफुल ऑथर भी है। उनकी बुक दुनिया भर में काफी चर्चा में रही है। इस किताब में उन्होंने अपनी जिंदगी के अनुभव, संघर्ष और सफलता और साथ ही सीखों को खुलकर साझा किया है। इससे ये भी पता चलता है कि हर सफलता व्यक्ति के पीछे एक इंसान होता है जो लगातार सीखता रहता है और इवॉल्व करता रहता है अपने आप को। लेकिन उनके काम का सबसे प्रेरणादायक पहलू है कि उनके सोशल कॉजेस के प्रति समर्पण। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा ने सालों से यूनिसेफ के साथ जुड़ी रही हैं और उन्होंने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों के लिए आवाज उठाती रही हैं। उन्होंने कई सामाजिक मुद्दों पर भी खुलकर अपनी बात रखी है और अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए किया है। दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा की जर्नी हमें ये सिखाती है कि सफलता का असली मतलब सिर्फ खुद को आगे बढ़ाना नहीं होता है, बल्कि दूसरों को भी साथ लेकर चलना होता है। जब आप अपनी उपलब्धियों का इस्तेमाल समाज के हित में करते हैं, तब आपकी सफलता और भी ज्यादा मायने रखने लग जाती है। यहाँ हमें प्रियंका चोपड़ा की लाइफ से, उनकी जर्नी से हमें एक और छठा सक्सेस मंत्रा मिलता है कि अपनी सफलता को सिर्फ अपने तक ही सीमित मत रखिए, बल्कि उसे दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी लाने के लिए इस्तेमाल करिए, एक जरिया बन जाइए। वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हुस्ती हूँ आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज के इस खास सफर में हमने प्रियंका चोपड़ा की जिंदगी के अहम पड़ाव देखे हैं। एक आर्मी फैमिली में जन्मी एक लड़की जो बचपन में अलग अलग शहरों में रही, फिर मिस वर्ल्ड बनी, बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई, हॉलीवुड तक पहुंची और आज दुनिया की सबसे पहचानी जाने वाली भारतीय हस्तियों में से एक बन गई। लेकिन दोस्तों, हर सफलता की कहानी के पीछे कुछ ऐसे सबक भी होते हैं जो हम सबको अपनी लाइफ में काम आ सकते हैं। प्रियंका चोपड़ा का पहला सक्सेस मंत्र है कि कभी भी अपने सपनों को मत छोड़िए या उसे छोटा मत समझिए, उसके ऊपर हमेशा काम करते रहिए। दूसरा सक्सेस मंत्र है, बदलाव से मत डरिए। जी हाँ, लाइफ में जब तक चेंजेस नहीं आएंगे, हम अपने आप को उसके साथ कैसे ढाल पाएंगे और या उसके साथ कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए जब चैलेंजेस आते हैं या कोई बदलाव आता है तो सोचिए कि कुछ हमारे भले के लिए ही हो रहा है। तीसरा है, खुद पर विश्वास रखिए। जी हाँ, विश्वास खुद पर रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना भी बहुत जरूरी है। चाहे आप कोई बड़े बिजनेसमैन बन गए हो या कोई पेजेंट क्यों ना हो, बॉलीवुड के स्टार क्यों ना हो, हॉलीवुड के स्टार क्यों ना हो, हर जगह पर कंपटीशन था, लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को किसी से कम नहीं समझा और हमेशा अपने एक कॉन्फिडेंस के साथ

ये उतना मायने नहीं रखता, बल्कि मायने रखता है आपका विजन, आपकी मेहनत और आपका हौसला। अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं और सीखना कभी नहीं छोड़ते तो दुनिया की कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं है। और इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ मैं आरजे स्नेहा ले रही हूँ आपसे इजाजत। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी एक और नई शख्सियत की कहानी के साथ, जिनकी जिंदगी से हमें सफलता का एक नया मंत्र मिलेगा। तब तक के लिए बड़े सपने देखते रहिए, उनके लिए मेहनत कीजिए और अपने आप पर भरोसा रखिए। और जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8, फील गुड फील लाइफ।
1: हेलो एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पे। दोस्तों, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम लेके आई हूँ मैं कैफे क्लासिक्स। और आपको पता है कि कैफे क्लासिक्स में आपको गाने तो सुनाते ही हैं, साथ ही आपका एंटरटेनमेंट के साथ ही हम आपको कुछ कुछ जानकारी भी देते हैं। और दोस्तों, आज मैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो शख्सियत है एक उर्दू शायर, प्रसिद्ध गीतकार भी रहे हैं और एक प्रगतिशील आंदोलन के एक हिस्सेदार भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उर्दू की शायरी और उर्दू को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करी। दोस्तों, हम सभी ने उनका नाम सुना है और उनके लिखे हुए गीत हम सब ने सुने हैं। बात करिए दोस्तों मैं आज आपसे मजरू सुल्तानपुरी की, जिनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1919 को और 24 मई 2000 में वो हमारे बीच से चले गए। तो एक बहुत ही खास शख्सियत और बेहतरीन शायरों में उनका नाम गिना जाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा कैफे क्लासिक्स का ये सफ़र मजरू सुल्तानपुरी जी के नाम ले रही हूँ। पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद आई विल बी राइट बैक। स्टे ट्यून टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

वेलकम बैक रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम पे। दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और आज इस शो में मैं आपसे बात कर रही हूँ एक प्रसिद्ध उर्दू शायर मजरू सुल्तानपुरी की। दोस्तों हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गीतकार भी रहे हैं और ये उर्दू के बहुत बड़े शायर रहे हैं। उर्दू साहित्य जगत में भी इन्होंने अपना बहुत अच्छा खासा नाम कमाया और बॉलीवुड में एक गीतकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए देश, समाज और साहित्य को एक नई दिशा देने का काम किया। दोस्तों देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में सेमिनारों में इन्होंने हमेशा हिस्सा लिया और उर्दू को एक नया मुकाम दिया। तो देखिए दोस्तों कितनी एक ऊंची शख्सियत। आइए चलते हैं इनकी ज़िंदगी के कुछ और हिस्सों पर। इनकी जन्म स्थली थी सुल्तानपुर और इसलिए इन अपने नाम के आगे सुल्तानपुरी लगाते हैं। दोस्तों मजरू सुल्तानपुरी ने 50 से ज़्यादा सालों तक हिंदी फिल्मों के लिए गीत लिखे। आज़ादी मिलने से 2 साल पहले वे एक मुशायरे में हिस्सा लेने मुंबई आए थे तथा उस समय के मशहूर फिल्म निर्माता कारदार ने उन्हें अपनी नई फिल्म शहनशाह के लिए गीत लिखने को कहा। उनका चुनाव एक प्रतियोगिता द्वारा कराया गया था और इस फिल्म के गायक थे कुंदन लाल सहगल और गीत जो था वो बहुत ही फेमस था, गम दिए मुश्किल और जब दिल ही टूट गया। हम सभी जानते हैं कि गाना आज तक फेमस है। तो ये सभी गाने जो हैं ये उस वक्त जो है मजरू सुल्तानपुरी जी के लिखे में, जिसको गाया कुंदन लाल सहगल जी ने, और गाने आज तक हमारे दिल में बसे हुए हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सफ़र मजरू सुल्तानपुरी जी के नाम, सुनेंगे हम इनके द्वारा लिखे हुए गीत और चर्चा करेंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में। ले रही हूँ यहाँ पर छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगी। आप भी कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील

मैं हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा

वेलकम बैक रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम पे दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और आज का हमारा ये शो समर्पित है मशहूर उर्दू शायर और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी को। दोस्तों, अब मैं आपको एक बात खास बता दूं कि मजरू सुल्तानपुरी ये इनका ओरिजिनल नाम नहीं था। जी हाँ, इनका नाम था असरार उल हसन खान। तो मजरू इन्होंने अपना नाम रखा और सुल्तानपुरी क्योंकि ये सुल्तानपुर के जन्मे थे इसलिए इन्होंने अपने नाम के आगे अपना प्रदेश का नाम लगाया और नाम बन गया मजरू सुल्तानपुरी। दोस्तों, हिंदी भारतीय जगत के ये उर्दू कवि और हिंदी भाषा फिल्म उद्योग के ये गीतकार रहे। 1950 और 60 के दशक में इन्होंने भारतीय सिनेमा में प्रमुख संगीत शक्तियों में से इनका नाम आता है और बहुत सारे गाने इन्होंने जो हैं लिखे, जिसमें जो दोस्ती फिल्म के गाने बहुत ज़्यादा फेमस हुए, जिसमें गाना आया चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, बहुत ही खूबसूरत गाना है। इसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ गीतकार का भी पुरस्कार मिला। 1980 और 1990 के दशक में इन्होंने अधिकांश काम आनंद मिलन के साथ किया और उल्लेखनीय जिसमें सहयोग है कयामत से कयामत तक और लाल दुपट्टा मलमल का। जी हाँ, मजरू सुल्तानपुरी ही थे कयामत से कयामत तक के गानों के पीछे। और जतिन ललित के लिए जो जीता वही सिकंदर के गाने और पहली फिल्म यारा दिलदारा, इन मूवीज़ के गाने भी मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखे। तो बहुत ही इनका सुंदर लिखाई इन द सेंस जो ये लिखते थे, बहुत ही सुंदर गीत थे। हम सभी जानते हैं कि जो जीता वही सिकंदर के जो गाने हैं वो किस तरीके से हमारी ज़िंदगी में एक मोटिवेशन पैदा करते हैं। हालाँकि मूवी का प्लॉट खुद भी बहुत अच्छा था, बहुत ही मोटिवेटिंग था, लेकिन एक मूवी में जान डालने का जो काम होता है ना वो गाने करते हैं। और गाने के अगर लिरिक्स अच्छे हों फिर तो सोने पे सुहागा। और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं मजरू सुल्तानपुरी जी को। तो दोस्तों, बात हो गई बहुत सारी इनकी बॉलीवुड के काम की, आइए अब चलेंगे इनके थोड़ा सा प्रारंभिक जीवन में, इनके चाइल्डहुड और एजुकेशन की तरफ, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बात। आई एम हेयर ओनली, आप भी ट्यून रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। मोना डार्लिंग, तुम्हें क्या चाहिए?

वेलकम बैक रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पे दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स। मैं आपसे बात कर रही हूँ आज एक ऐसे उर्दू शायर की और बॉलीवुड के गीतकार की जिन्होंने हमें बहुत से सुंदर सुंदर गाने लिख कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, असरार उल हसन खान उर्फ मजरू सुल्तानपुरी। जी हाँ दोस्तों, इनका जन्म सुल्तानपुर में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। इनके पिता 1919 और 1920 के टाइम पर पुलिस विभाग में तैनात थे। इन्होंने मजरू सुल्तानपुरी जी को कोई खास अंग्रेजी शिक्षा नहीं दी है और इनकी शुरुआती शिक्षा मदरसे में हुई। उसके बाद इन्होंने 7 साल का अरबी और फारसी लैंग्वेज का इन्होंने कोर्स भी किया और इनके पिताजी का जो ध्यान था ना, वो मेन कोर्स पढ़ाई से थोड़ा हटकर था, वो इनको धार्मिक पढ़ाई ज़्यादा कराना चाहते थे। और उसके बाद इन्होंने लखनऊ के तकमील उत तिब कॉलेज ऑफ यूनानी मेडिसिन में इन्होंने दाखिला ले लिया। वे एक संघर्षशील हाकिम भी थे शुरुआती टाइम में, लेकिन मुशायरे ये अपने साथ साथ उनमें ये जो पार्टिसिपेट करते रहते थे। और एक बार वहाँ पर इनको गज़ल मजबूरी में सुनानी पड़ी। गज़ल जो है श्रोताओं को बहुत ज़्यादा पसंद आई और इन्होंने अपनी नई नवेली प्रैक्टिस, मेडिकल प्रैक्टिस को छोड़ने का फैसला करा और इन्होंने गंभीरता से लिखना शुरू कर दिया। और जल्द ही ये मुशायरों में इन्होंने अपना अग्रणी स्थान जो है टॉप लेवल पे अपना नाम जो है इन्होंने अपना बना लिया। और फिर हर मुशायरे में इनको बुलाया गया। हालांकि हम इनको ज़्यादा शायर के रूप में तो इन्होंने जब काम किया उस काम से हम इनको नहीं पहचानते हैं, हम ज़्यादा इनको इनके फिल्मों में जो एक गीतकार के रूप में है हम उससे इनको ज़्यादा पहचानते हैं। तो दोस्तों बातें हो गई हैं ढेर सारी और मुझे पता है कि हम सब इनके लिखे हुए गाने सुनने के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहे हैं और मैं भी। तो आइए लेते हैं यहाँ पे छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं तुरंत वापस आऊँगी और थोड़ा सा इनके राजनीतिक झुकाव और इनकी फिल्मों के बारे में और बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं बात कर रही थी आपसे मजरू सुल्तानपुरी की, जो कि शुरुआती दौर में एक उर्दू शायर थे। दोस्तों 1945 में मजरू साहब सिद्दीकी इंस्टीट्यूट के एक मुशायरे में भाग लेने के लिए मुंबई आ गए। यहाँ उनकी गजलें और शायरी श्रोताओं को बहुत पसंद आई। प्रभावित श्रोताओं में एक फिल्म निर्माता बैठे हुए थे, उन्होंने इनके जो फिल्म में जो उनका राइटिंग सुनी कि ये तो बहुत बढ़िया लिखते हैं, तो उन्होंने जिगर मुरादाबादी से संपर्क किया और उन्होंने आगे मजरू सुल्तानपुरी से लिंक बनाया। हालांकि उस वक्त मजरू सुल्तानपुरी जी ने फिल्मों के लिए लिखने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस टाइम पर फिल्म में काम करना या फिल्म से जुड़ना एक अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि ये एक कमाई का बहुत अच्छा जरिया होगा और इनको अपने परिवार का पालन पोषण करने में मदद मिलेगी, तो ये सोचकर इन्होंने राइटिंग स्टार्ट कर दी और कारदार साहब इनको संगीतकार नौशाद साहब के पास ले गए और एक युवा लेखक के रूप में इनका वहाँ परिचय कराया और उन्होंने उनको एक धुन दी, यानी कि धुन पहले बन चुकी है, लिखा गाना नहीं गया अभी, पहले धुन बनी और धुन इनको दे दी गई कि इस धुन पर आप जो है अपना एक गाना लिखो। और फिर उस धुन पर उन्होंने खूब खूबसूरत गीत लिखा और उसके बाद 1947 में एक नाटक था डोली, उसके लिए इन्होंने गीत लिखे और 1948 में अंजुमन मूवी आई, फिर 1953 में बाज मूवी आई गुरुदत्त साहब की और फिर मजरू सुल्तानपुरी ने अनिल विश्वास, नौशाद, गुलाम मोहम्मद, मदन मोहन, ओपी नैयर, रोशन साहब, सलिल चौधरी, चित्रगुप्त, एन दत्ता, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, सभी टॉप म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, ये बात आप और मैं दोनों जानते हैं। इन सब के लिए गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी ने, तो क्यों ना हम इनके कुछ गाने और सुने और फिर इनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे कुछ और भी। आइए लेते हैं अभी छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे हम थोड़ी सी और मजरू सुल्तानपुरी जी के बारे में। तब तक के लिए एक छोटा म्यूजिकल ब्रेक, आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानो रचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में कैफे क्लासिक्स। और आज का ये सफ़र है मजरू सुल्तानपुरी के नाम पर, एक बहुत ही अच्छे उर्दू और हिंदी शायर, एक बहुत ही सफल गीतकार जिन्होंने कई दशकों तक हमको बहुत सुंदर सुंदर गाने लिख कर दिए। टॉप डायरेक्टर्स के साथ ये जुड़े और इनके लिखे हुए गानों को एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ सिंगर्स ने गाया और फिर इनको मिले ढेर सारे पुरस्कार। जी हाँ, कई बार इनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और 1993 में इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से हमारी देश की सरकार ने इनको सम्मानित किया। ये जो पुरस्कार होते हैं हम सभी जानते हैं, एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है और ये जो पुरस्कार है ये इनको मिला। और मजरू सुल्तानपुरी जी, थोड़ा सा दुख की बात है कि ये लंग्स की एक बीमारी से पीड़ित थे, निमोनिया इनको हो गया था और अपने आखिरी दौर में ये बीमार है और 24 मई 2000 को मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के समय इनकी उम्र थी 80 वर्ष की। तो इनको मैं श्रद्धांजलि देती हूँ रेडियो मानव रचना के प्लेटफॉर्म से, सैल्यूट करती हूँ और हाथ जोड़ के उनको नमन करती हूँ, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत है कि अगर ये ना होते तो वो गाने कहाँ से आते जो सिंगर्स ने गा दिए। तो जो लिख के अगर बढ़िया गाने बढ़िया शब्द देते फिर तो फिर क्या ही बात है। तो मजरू सुल्तानपुरी जी को शत शत नमन। और मेरे ये शो का था अंतिम चरण, यहाँ से मैं आपसे ले रही हूँ विदा और मिलते हैं आपसे अगले शो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, सायोनारा। मैं जा रही हूँ, आपने कहीं नहीं जाना। जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

0: Hi, I'm Digmanshu Dhulia. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM. Feel good, feel live.
1: Aaja tujhe bhi main kara doon ta man che pe disco.
2: Well, hello, good evening, namaskar, sat shri akal, ram ram, jai mata di, assalamu alaikum doston, main hu RJ Sagar aaya hu lekar ke show Satyamev Jayate, jai hind, jai bharat. Ye show Radio Manav Rachna 107.8 FM ke ek keh sakte ho bahut khas pehal hai. Reason being, you should know about the law and legal framework जो हमारी country में operate किया जाता है. Why it matters? Because as a citizen of this country, we should know कि कानून क्या बोलता है किस particular domain को लेकर के. आज का शो होगा इसी डोमेन में, बट थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसे पॉइंट को टच करने वाले हैं जो अमूमन हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा रहा है, और वो है भारतीय सिनेमा. लेकिन सिनेमा को भी आप इतना ब्रॉडर व्यू में नहीं देख सकते हैं, उसमें भी कुछ कुछ फ्लॉज हैं जो हमें फिगर आउट करने पड़ेंगे. और इसके लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर अरात्रिका. डॉक्टर अरात्रिका इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर विद स्कूल ऑफ लॉ एट मानव रचना यूनिवर्सिटी. तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले स्वागत करते हैं. हाय डॉक्टर रात्रिका, आपका स्वागत है.
3: थैंक यू सो मच सागर फॉर इनवाइटिंग मी अगेन. एंड आई गेस वी आर गोना टॉक अबाउट टुडे हाउ कास्ट हैज इन्फ्लुएंस्ड इंडियन सिनेमा, एंड टेक्निकली स्पीकिंग कैसे इंडियन सिनेमा ने कास्ट को इन्फ्लुएंस किया है या सोसाइटी को इन्फ्लुएंस्ड वो किया है थ्रू कास्ट. दिस इज समथिंग विच वी आर गोना डिस्कस टुडे.
2: या डेफिनेटली वी गोना टॉक अबाउट कास्ट इन इंडियन सिनेमा. बट मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट इट? आई मीन व्हाई डज इट इवन मैटर? क्यों बात करनी चाहिए इस टॉपिक की?
3: सो टेक्निकली स्पीकिंग आई विल स्टार्ट. हम जब छोटे रहते हैं ना, तो हम अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं ना. नॉर्मलाइजेशन हमारा वहीं से स्टार्ट होता है. लड़कियों के लंबे बाल, ये हमें किसी ने, किसी एजुकेशन सिस्टम ने नहीं सिखाया, किसी ने वो हमें नहीं बताया कि दैट्स हाउ इट हैज़ टू बी. जो नॉर्मलसी की डेफिनेशन है वो हम अपने आसपास की चीज़ों से ही देखते हैं और सीखते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस दैट सर्टेन थिंग्स तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कवर हो जाते हैं कि चलो आपके करिकुलम में आ गया, आपको पढ़ा दिया गया. कुछ चीज़ें हम अपनी सोसाइटी से सीखते हैं. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आजकल तो, बिकॉज OTT इज़ अवेलेबल टू एवरीवन, राइट? पहले के टाइम पे तो चलो बहुत कम सिनेमाज होते थे, बहुत ही कम आपके पास टेलीविजन्स होते थे. आपके टाइम पे OTT इज़ अवेलेबल टू एवरीवन. सो इट बिकम्स अ क्वेश्चन कि व्हेन इट कम्स टू कास्ट, राइट, फ्रॉम वेयर वी आर लर्निंग. हर इंसान कास्ट के बारे में लॉ स्कूल जाकर के नहीं सीख रहा है. एवरीवन इज नॉट कमिंग टू मानव रचना स्कूल ऑफ लॉ कि नहीं आओ कास्ट के बारे में सीखते हैं. सो हाउ दे आर लर्निंग? सो वी नीड टू नो कि रूट कॉज कहाँ है, कहाँ से लोग कास्ट के बारे में सीख रहे हैं. अब आपको ये पता चल जाता है कि भाई सोर्स क्या है. अब आप सोर्स को वेरीफाई तो करोगे, बिकॉज बहुत सारा OTT कंटेंट तो ऐसे ही है, इट इज़ अवेलेबल टू ऑल. सो यू कांट फिल्टर इट आउट व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग. सो देर आर लॉट्स ऑफ कंटेंट जो हमें लग रहा है सही है, हम कंज्यूम कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस, बिकॉज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है या फिर अवेलेबल है सिनेमा में. तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसके बारे में लॉ क्या कहता है, क्या हम जो TV पे या बड़े पर्दे पे या OTT पे देख रहे हैं क्या वो सही है, और हम उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और उससे कास्ट के बारे में जान रहे हैं. सो एज अ नॉर्मल पर्सन ऑल्सो यू शुड नो कि वाई कास्ट मैटर्स एट ऑल, लॉ का कास्ट के बारे में क्या कहना है. सो टुडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट द सेम.
2: ओके, सो वंडरफुल. बट यहीं पर एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि यू बीइंग अ लॉ प्रोफेसर, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक?
3: सो फॉर द एंटायर ऑफ माय लाइफ, हमें जब से हम लॉ स्कूल में हमने एडमिशन लिया ना, तब से हमसे एक ही सवाल पूछा जाता है, लॉ क्यों, लॉ क्यों करना चाहते हो? हम भी वी बिकेम प्रोफेसर्स, वी आस्क स्टूडेंट द सेम, लॉ क्यों करना है? कहीं ना कहीं एवरी सिंगल टाइम व्हेन वी आर वेरी यंग, वी यूज टू से दैट यू नो वी नीड टू चेंज द सोसाइटी, वी नीड टू बी अ गुड पर्सन, बेटर ह्यूमन बीइंग. धीरे धीरे जब हम इस प्रोफेशन में आगे बढ़े, तो हमें रियलाइज हुआ कि बिफोर बिकमिंग एनी वन ऑफ दीज, द फर्स्ट थिंग ऑफ अ लॉ स्टूडेंट और लॉ प्रोफेसर और अ पर्सन हु इज प्रैक्टिसिंग लॉ शुड बी अवेयरनेस, राइट? हमें लोगों को बताना है कि भाई ये इशू हैं, ये नॉर्मलसी की परिभाषा से अलग हैं, हमें उन्हें बताना है. सेकेंडली, मेरा पर्टिकुलर इंटरेस्ट इस वजह से कास्ट में है बिकॉज आई डील विथ वल्नरेबल क्लास इन जनरल. सो वेमेन, जेंडर, कास्ट, ये मेरे स्पेशलाइजेशन है. मुझे इनके बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम ये सारे इशूज़ देखते हैं, और अंटिल अनलेस मुझे इस इशू की खुद नॉलेज नहीं है, तो मैं उस इशू को रिजॉल्व कैसे करूँगी? सो इसलिए फॉर मी, बिकॉज लॉ में तो बहुत सारे आपके स्ट्रीम्स हैं, वाई स्पेसिफिकली कास्ट? बिकॉज ये डेली बेसिस पे हमारे आसपास बहुत देखने को मिलता है. आप कभी भी एक न्यूज़पेपर उठाइए, अब तो बहुत ही कम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यूजुअली पीपल टेक देयर न्यूज़ फ्रॉम इंस्टाग्राम एंड अदर सोर्सेज, बट आप किसी भी दिन न्यूज़पेपर उठाइए और पूरा न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई सा भी न्यूज़पेपर, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो रीजनल न्यूज़पेपर है, आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए, ऐसा न्यूज़पेपर बहुत ही कम देखने को मिलता है जहाँ पे एक रिपोर्ट कास्टिज्म के ऊपर, कास्ट बेस्ड वायलेंस के ऊपर या सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर ना हो. मतलब इट्स अ वेरी यूजुअल थिंग, राइट? एंड इतनी यूजुअल थिंग के बारे में अगर हम बात नहीं कर रहे हैं, सो देयर समथिंग रॉन्ग विद अस. सो ये इतना कॉमन है, फिर भी इसके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है, बातचीत नहीं होती है, लोग सेम सिस्टम में चलते चले आ रहे हैं ये कहते हुए कि ये सिस्टम है. ठीक है, जैसे आप मूवीज़ वगैरह में भी देखेंगे, हमने आई गेस वी हैव स्टार्टेड सीइंग मूवीज़ बहुत पहले से ना, तो पहले की मूवीज़ में और अब की मूवीज़ में OTT पे जो कंटेंट है और जो मूवीज़ हैं, बहुत बदलाव हुआ है. कास्ट को ही डिफरेंटली दिखाया जाता था पहले, अब डिफरेंटली कास्ट को दिखाया जा रहा है. फॉर एन एग्जाम्पल, पहले के टाइम पर अगर आप देखो तो हीरोज़ और एक्ट्रेसेस वे सपोज टू बी फ्रॉम अर्बन क्लास ना, कोई ऐसा सरनेम नहीं लगाते थे, बट हमेशा वेल स्पोकन, अच्छे से बोलना, अच्छे से बर्ताव, वेल ड्रेस्ड, हमेशा से अर्बन वो दिखाया गया है. कभी भी कास्ट को इतना अर्बनाइजेशन में नहीं दिखाया गया. इफ विल सी कि कोई इंसान है जो लोअर कास्ट आपको दिखाना है, यू विल नेवर सी अ लोअर कास्ट पर्सन इन अर्लियर मूवीज टू बी वेल स्पोकन, वेल ड्रेस्ड, वेल एजुकेटेड, नेवर. बट आज के टाइम पे हम देख रहे हैं, बिकॉज नॉट इन मेन स्ट्रीम बॉलीवुड, अब तो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड ने भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, बिकॉज लॉज के लिए, राइट्स के लिए लोग बोलने लग गए हैं. बट पहले की मूवीज में आप देखेंगे, कभी भी आपको आप दिखा दो कि कहीं पे भी लोअर कास्ट इंसान को बहुत रिच दिखाया गया हो, वेल स्पोकन दिखाया गया हो, वेल ड्रेस दिखाया गया हो, नहीं दिखाया गया. अब मेरा कंसर्न ये है कि आज के टाइम पे ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है? इज इट समथिंग विच वी हैव चेंज? बिकॉज लॉज तब के टाइम पे भी सेम थे, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आज का तो बना नहीं है, SC/ST एक्ट भी आज 2026 में नहीं बना है. 1900 के डॉक्यूमेंट्स हैं, 1900 के लॉज हैं. सो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हमने मूवीज़ में, सिनेमा में, OTT में ये लोअर कास्ट जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उसको हमने चेंज किया, जो हम टर्मिनोलॉजीज बहुत सारी जो हम पहले के टाइम पे स्लैंग के जैसे यूज़ वो करते थे वो अब हमने चेंज किया. तो देयर सम शिफ्ट विच इज़ हैपेंड इनसाइड सिनेमा फ्रॉम दैट टाइम टू दिस टाइम, एंड इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द लॉज, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज लॉज तो हमेशा से वही हैं. तो सोसाइटी में थोड़ा शिफ्ट आ रहा है, एंड इसकी वजह से हमारा सिनेमा भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, एंड थोड़ा सा सिनेमा से हम इंस्पायर भी होते हैं. तो द गुड काइंड ऑफ कंटेंट विच वी सी, इट अफेक्ट्स अवर माइंड. सो हेंस वी नीड टू नो हाउ सिनेमा में कास्टिसिज्म या कास्ट रिफ्लेक्ट किया जाता है.
2: All right. So amazing. ऑन दिस नोट लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक छोटा सा, उसके बाद अपने शो को कंटिन्यू करेंगे. डॉक्टर आराध्या हमारे साथ मौजूद हैं और कास्ट को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, एग्जैक्टली सिनेमा में कैसे उसको पोर्ट्रे किया जाता है. लेकिन ये यहाँ तक रुकती नहीं है बात, बात सीधा संविधान तक जाती है. संविधान को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, एग्जैक्टली संविधान और सिनेमा में क्या फर्क आ रहा है, विल टॉक अबाउट इट. बट फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, फील गुड फील लाइव.
4: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए. डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह छुपकूद करेगा तो मर जाएगा. क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
5: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है. ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं.

बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, स्पंदीबा तवारिश। यहां हमारा इंटरवल होता है, ये तो अंतरक्त यानी कि वक्फा मध्यांतर। यह इंटरवल हो सकता है 15 मिनट का है, या 15 घंटे का, या 15 महीने का, लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं, मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं,

0: वन्स अगेन वेलकम ब्याक मार्जी सागर शो चल रहा है सत्यमेव जयते जय हिंद जय भारत रेडियो वैष्णव मंदिर 7.8 एफएम का बहुत स्पेशल शो है और आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कास्ट इन इंडियन सिनेमा और उसके लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर अरात्रिका। अगला प्रश्न मेरा आपसे रहने वाला है, संविधान में क्लियर ये लिखा हुआ है कि हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, ठीक है, चाहे जाति के आधार पर या रंग रूप के आधार पर, लेकिन अगर मैं सिनेमा की बात करूं तो क्या वहां पर एप्ट ऐसे दिखाया जाता है, उसका इट इज फॉलो किया जाता है या बिकॉज की लिबर्टी मिल जाती है तो कुछ भी वहां पर चलता है?
1: करेक्ट। सो दो चीजें हैं, ठीक है, विल टॉक अबाउट टू थिंग्स बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ और सिर्फ लॉ के पर्सपेक्टिव से नहीं, सिनेमा के पर्सपेक्टिव से भी। अगर हम सिनेमा की बात करें, प्योर सिनेमा की, तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो स्टोरीज हैं वो रियल लाइफ के ऊपर ही हों। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल लेट्स टेक आरक्षण, आरक्षण मूवी देखी है आपने, 2011 की मूवी है एंड जब वो रिलीज़ हुई, तो जब भी कोई मूवी रिलीज़ होती है तो सर्टिफिकेशन के साथ रिलीज होती है, आपने देखा होगा बड़े पर्दे पे यू ऑब्लिक ए लिख के आता है कि फॉर अडल्ट और ये सारी चीज़ें, तो उसमें वैसे भी जो क्वेश्चनेबल सीन्स होते हैं पहले ही आपका सिनेमा बोर्ड बैठ के उसका सर्टिफिकेशन करता है एंड जो नॉट रिक्वायर्ड सीन है या जो ऑफेंसिव सीन होने लगते हैं वो हटा दिया जाता है। नाउ अब इससे दो इश्यूज आते हैं, पहले के टाइम पे तो सिर्फ सिनेमा रिलीज होती थी तो सर्टिफिकेशन बोर्ड वहाँ पे अप्लाई होता था, अब OTT भी आ गया है, OTT तो सिनेमा बोर्ड के थ्रू नहीं आ रहा है, जो भी कंटेंट आपने बनाया आपने डाल दिया तो कोई चेक नहीं है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि क्या हर बार जो लॉ कहता है क्या वही सिनेमा में दिखाते हैं, नहीं। ये तो आरक्षण मैंने आपको एक जनरल मूवी बता दी कि रिजर्वेशन के ऊपर एक मूवी है, एक मूवी आई थी जय भीम, आई डो नॉट नो इफ एनीवन हैव सीन इट और नॉट, बट इट वॉज एन अमेजिंग मूवी विच एक्चुअली टॉक्ड अबाउट अ रियल लाइफ स्टोरी ना, तमिलनाडु के एक इंसान थे जिनको 1993 में पुलिस ने कस्टडी में लिया था फॉर सर्टेन चार्जेस, कस्टोडियल टॉर्चर के बाद उनका डेथ हो गया, पुलिस ने वो बॉडी शिफ्ट कर दी जस्ट टू मेक श्योर कि किसी को पता ना चले कि दे वेर इन्वॉल्व इन इट, एंड फॉर 13 years द केस वेंट ऑन द कोर्ट, ठीक है, एक रिट होती है जिसे हम कहते हैं हेबियस कॉर्पस, राइट, जो जिसका आपका इंग्लिश में मीनिंग होता है ब्रिंग द बॉडी, राइट, जिसमें आप कोर्ट में ये रिट फाइल करते हो कि हेबियस कॉर्पस के अंदर जो इंसान मिसिंग है आप उसे लेकर के आओ, एंड आफ्टर 13 years दे वॉन द केस, उनकी वाइफ दे शी वॉन द केस एंड पता चला कि ठीक है कस्टोडियल टॉर्चर की बात थी, और ये इसलिए हुआ था बिकॉज दिस पर्सन वॉज अ ट्राइबल पर्सन, ठीक है, तो कास्ट वॉज इन्वॉल्व इन दिस मूवी। नाउ वॉट हैपन्स इज जब आप जय भीम का ओरिजिनल केस पढ़ेंगे बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल टू जनरल पब्लिक, ठीक है, आप जय भीम का जब केस पढ़ेंगे और जय भीम का अगर आप मूवी देखेंगे तो दोनों में चेंजेस होते हैं, उसके पीछे का एक लॉजिकल रीजनिंग भी है जिसे हम एक शब्द में कहेंगे क्रिएटिविटी, राइट, तो फॉर द नेम ऑफ क्रिएटिविटी देर आर सर्टेन थिंग्स विच दे चेंज, तो एग्जैक्टली वैसा नहीं दिखाते, कई बार जैसे कोई इवेंट है उसको कोई इंसिडेंट हुआ किसी भी इंसान के साथ जो हमारा SC ST कम्युनिटी से है, टू मेक श्योर कि पीपल एम्पथाइज विद हिम और हर, तो कई बार उस चीज़ को आप और बड़ा करके दिखा देते हो कि सो दैट लॉट्स ऑफ पीपल कैन कनेक्ट विद इट, तो ये तो है कि जो हम सिनेमा में देख रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सच्ची हो, चाहे आप उन मूवीज़ की भी बात वो कर लो जो एक्चुअल में सही इंसिडेंट्स पे बनी है, जैसे आपकी बहुत बार बायोपिक वगैरह बनती है, राइट, रियल पीपल के ऊपर बनती है, रियल स्टोरी के ऊपर बनती है, बट स्टिल देर आर सर्टेन फैक्ट्स विच दे चेंज इन द नेम ऑफ क्रिएटिविटी। MS धोनी को देख लीजिए आप, MS धोनी मूवी बनी थी उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जो उन्होंने क्रिएटिविटी के नाम पे चेंज कर दिए, बिकॉज सिनेमा इज़ नॉट जस्ट अबाउट चेंजिंग सोसाइटी, इट इज़ ऑल्सो अबाउट अर्निंग मनी, सो दे नीड टू सी कि किन के साथ ज़्यादा कनेक्ट बैठाया जा सकता है, तो वो चीज भी सिनेमा में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर बार जरूरी नहीं कि लॉ को एज इट इज दिखा दिया जाए।
0: डोंट यू थिंक कि कहीं ना कहीं अगर सिनेमा उसको मतलब आई डोंट नो आई माइट बी रॉन्ग, एक मूवी आई थी आर्टिकल 15 थी, हाँ, आयुष्मान खुराना की, उसमें सिमिलर था कास्ट को लेकर के, बहुत बड़ा वो था, तो एक कास्ट का प्रॉपर नाम वहां पर लिया गया था, तो वो आके बोलता है कि हम छोटे हैं साहब क्योंकि हम उस जाति से आते हैं, तो जब मैंने वो डायलॉग देखा कि हम उस जाति से आते हैं, हम छोटे हैं, डोंट यू थिंक कि इट अफेक्ट्स आवर सोसाइटी इन अ वे कि हाँ ये चीज़ तो नॉर्मल है, फिल्मों में भी देखो दिखाई जा रही है, क्योंकि मैं और आप किताबें पढ़ के यहाँ बैठ के स्टूडियो में बात कर सकते हैं, हमें समझ में आती है चीज़ें, पर आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार के किसी गाँव में जा करके देखोगे वहाँ पर उनको वो चीज़ रियल लगेगी, कनेक्ट विद इट, डोंट यू थिंक सो?
1: दैट इज ट्रू. तो होता क्या है ना, हम इसे सिस्टम का नाम दे देते हैं. आर्टिकल 15 में एक छोटा सा सीन, आई डू नॉट नो हाउ मेनी ऑफ आर लिसनर्स विल रिमेम्बर इट. उसमें एक नया पुलिस वाला होता है जो पानी लेने के लिए उतरता है, और वो दुकानदार उससे कहता है कि अपर कास्ट की दुकान है. अभी भी आपने जैसे बोला कि सिनेमा में उन्होंने बोला आर्टिकल 15 में कि हम छोटी जाति से आते हैं. ये अपर कास्ट लोअर कास्ट, अगर आप ये दो टर्म देखेंगे ना, लॉ में नहीं है. वी डू नॉट से इट अपर कास्ट लोअर कास्ट. द मोमेंट वी आर सेइंग अपर कास्ट, वी आर ऑलरेडी प्रिज्यूमिंग देयर समथिंग कॉल्ड लोअर कास्ट. या जब भी हम लोअर कास्ट कह रहे हैं तो हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि नहीं अपर कास्ट है. तो ये बाइफरकेशन हमने सोसाइटी में खुद किया है. और जो आपका कहना है कि नहीं मूवी में ऐसा दिखाया जाता है तो हम उसे नॉर्मलाइज कर देते हैं. अब होता क्या है, मूवी का जो पर्पस है वो ये है कि सोसाइटी में इस चीज़ की अवेयरनेस तो आए, बिकॉज ये नॉर्मल सी पुरानी की मूवीज की वजह से इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हमें अपने आसपास जो गलत चीज़ें हो रही होती हैं वो हमें नॉर्मल ही लगता है. आप बहुत बार देखेंगे दिस वर्ड, इवन आई एम अ लॉ प्रोफेसर, कई बार मेरे मुंह से भी निकल जाता है, बिकॉज इट इज़ वेरी नॉर्मल. द एक्ट सेज SC ST एक्ट, राइट? द कॉन्स्टिट्यूशन सेज आर्टिकल 14 से लेकर के आपकी सारी फंडामेंटल राइट्स जितनी भी हैं सब कहीं ना कहीं इक्वालिटी की बात करती हैं. कहीं पे भी वर्ड अपर कास्ट और लोअर कास्ट नहीं है. तो ये वर्ड कहाँ से आए? सोसाइटी से. सोसाइटी ने इस चीज़ को इतना नॉर्मलाइज कर दिया कि हमें लगता है कि जैसे एक छोटी सी इंसिडेंट बताना चाहूँगी मैं. हमसे जो ऊपर वाली जनरेशन है ना, एक जनरेशन ऊपर, हमारे पेरेंट्स वगैरह, आप कभी उनके मुंह से डिस्कशन सुनी है? दे से इट वेरी कैजुअली कि अरे बेटा ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, ये लोग, राइट? सो हमने इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि हमें ऐसा लगता है कि भाई ये तो बहुत ही नॉर्मलाइजेशन है. अब होता क्या है, सिनेमा को वही चीज़ दूर करनी है कि इसके बारे में बातें हों, इस चीज़ को पिन पॉइंट किया जाए. इवन आर्टिकल 15, इट वॉज क्रिटिसाइज, ऑल दो इट इज़ अ वेरी ग्रेट मूवी. आर्टिकल 15 आपने देखी है, बहुत अच्छी मूवी है. अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बहुत सारे मुद्दों को टच किया जो कास्टिज्म के अंदर होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल मंदिर के अंदर एंट्री नहीं होना, सेम कुएं से पानी नहीं पीना, सेम बर्तन में नहीं खाना वो पीना, इवन सेम चेयर पे ना बैठना, राइट? तो बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज को जिसे हम सिस्टम का नाम दे देते हैं कि नहीं गांव में तो ऐसे वो मतलब होता है, इनके साथ तो ऐसे ही होता है. तो काफ़ी सारी चीज़ों को उसने टच किया, लेकिन इन दी एंड इट वॉज क्रिटिसाइज बाई दिस थिंग ओनली कि इन दी एंड जो हीरो को दिखाया गया है उसमें, ही हु इज़ द सेवियर ना, जिसको सेवियर दिखाया गया है, वो भी अपर कास्ट से आता है, ठीक है? सो उस चीज़ को भी अब ये चीज़ अ पर्सन जिसने अपने पूरे लाइफ में प्रिविलेज ही देखा है ना, जैसे मैं कहती हूँ एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ही छोटी सी इशू है, इसमें क्या दिक्कत की बात है, ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं इशू को. और मुझे मेरे यहाँ पे मेरी माँ एक चीज़ कहती है, हिंदी में एक मुहावरा है कि जाके पैर ना फटे बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई ना. तो जिसके पैर फटते नहीं है ना, वो फटे हुए पैरों के साथ जब कभी चलेगा नहीं ना, तो उसे वो पेन ही महसूस नहीं होता ना. एक मैन के ऊपर कितना फाइनेंशियल बर्डन है ये मैं यहाँ बैठ के नहीं बता सकती. समझ सकती हूँ, बहुत एजुकेशन ले ली शायद तो शायद समझ सकती हूँ, बट हाउ यू आर फीलिंग इट, हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग इट, दैट इज़ समथिंग विच आई कांट नो. एंड सेम अप्लाइज टू द कास्ट ऑल्सो. हमारे इंडिया में इतनी सादा कास्ट है, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर इतना ज़्यादा कास्टिसिज्म. तो एक जैसे कि आपने कहा कि इस पर्टिकुलर कमरे में बैठ के इसके बारे में बात करना बहुत आसान है, बट हाउ डू दे फील, हाउ डू दे एक्सपीरियंस, इट्स समथिंग विच इज़ बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग. जिसने हमेशा से बचपन से लेकर के नौकरी तक और नौकरी में भी कास्टिसिज्म देखा है, वो मैं एज अ प्रिविलेज कास्ट, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ प्रिविलेज कास्ट, वो मैं समझ सकती हूँ लेकिन एक्सपीरियंस नहीं कर सकती. और वो मूवीज में भी कई बार ना ग्लोरीफाई करके दिखा दिया जाता है, विच टेक्निकली शुड नॉट बी देयर. लेकिन अब यही है कि मूवीज आर ऑल्सो कमर्शलाइज, और जो मूवीज कमर्शलाइज होती नहीं है उन वो बहुत जनता तक नहीं पहुंच पाती, राइट? जैसे हमारी मूवीज हैं, आपने देखी होगी सैराट, मराठी मूवी
0: हॉरर किलिंग,
1: हाँ
0: देखिए.
1: तो सैराट और एक आध और तमिल मूवीज हैं, राइट? दे आर वर्किंग अमेजिंग. वाई दे आर वर्किंग अमेजिंग? क्योंकि उनकी आउटरीच भले ही कम हो, बट उन्होंने जो कास्टिज्म को दिखाया है, मतलब हमने जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में कास्टिज्म को दिखाया कि अरे बेचारे, अरे ये नहीं कर सकते, इनके लिए एक सेवियर आएगा, हीरो आएगा, हीरोइन आएगी, ऐसा. ऑन दी अदर हैंड इफ यू सी मूवीज लाइक न्यूटन, राइट, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुई, इट डिड नॉट रीच लॉट्स ऑफ पीपल. वैसे आप सैराट देखोगे, सैराट का तो चलिए गाना फेमस हो गया, इस वजह से कुछ लोगों ने देख ली, बट मसान हुई, सैराट हुई, आप अगर ऐसी मूवीज देखेंगे जहाँ पे कास्ट को या फिर किसी एक कास्ट के इंसान को वीक नहीं दिखाया है, अपने अधिकारों को जानने वाला दिखाया है, अपने अधिकारों को पहचानने वाला दिखाया है और उस पर सवाल करने वाला दिखाया है, दैट इज़ द काइंड ऑफ सिनेमा विच शुड रीच टू मेजॉरिटी ऑफ पीपल, बट वो मेन स्ट्रीम में अभी तक नहीं आई.
0: हाँ, मेन स्ट्रीम के सामने चैलेंजेस हैं कि उनको पैसा कमाना है, एंड शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों की डिमांड भी वही है कि उनको भी वही देखना है कि एक सेवियर तो होना चाहिए ना, कोई तो ऐसा बाहुबली हो जो सबको मार देता है. तो वो है, वो सेवियर नहीं दिखाया जाएगा जहाँ पर एक जात को चैलेंज कर देगा कोई इंसान, उसको सेवियर नहीं माना जाएगा. सो दैट इज अ बिट स्ट्रेंज, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. ऑलराइट, लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे. हालांकि यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा, बीते दिनों एक रिक्शे वाले को मारा गया था, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, जस्ट बिकॉज वो एक सर्टेन कास्ट से आता था और दूसरी तरफ कुछ लड़के थे वो एक सर्टेन प्रिविलेज कास्ट से आते थे, और सिर्फ इसलिए कि वो एक प्रिविलेज कास्ट से आते थे और उनको माता पिता ने बचपन से बोला है कि तुम अपर कास्ट से हो, इसलिए उनको ये अधिकार मिल गया कि बाकी सब जो है लोअर कास्ट के उनको मारा जा सकता है, एंड दैट वाज स्ट्रेंज. फिलहाल लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे. स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील.

0: Once again, welcome back. अगर आपके पास कोई फीडबैक है मेरे लिए या डॉक्टर आरात्रिका के लिए तो 8010781078 इस नंबर तक अपनी बात जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल इसी नोट पर अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, आर्टिकल 15 को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, थोड़ा बता सकते हैं क्यों?
1: सो यूजुअली व्हेन मूवीज आर चैलेंज ना इन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो इसलिए चैलेंज नहीं की जाती हैं कि जो वल्नरेबल क्लास है वो ये कभी कंप्लेन नहीं करती है कि हमारी जो सिचुएशंस रही हैं, राइट, जो हमारे साथ इंसिडेंसेस रहे हैं वो अच्छे से दिखाए नहीं गए। वो मेजॉरिटी ऑफ टाइम इसीलिए चैलेंज होती हैं कोर्ट्स में, दैट एक पर्टिकुलर क्लास, एक पर्टिकुलर कास्ट को किसी टर्मिनोलॉजी से बोल दिया गया जिसकी वजह से वो ऑफेंस ले लेते हैं, राइट। एंड सेम हैपेंड विद आर्टिकल 15 आल्सो व्हेन इट वाज चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, बट द सुप्रीम कोर्ट इन रिटर्न सेड दैट टू सिचुएशंस हैपेंड। आरक्षण के साथ ये हुआ था कि कुछ स्टेट ने बैन कर दी, ठीक है। आर्टिकल 15 के साथ ये हुआ था कि उसकी रिलीज पे रोक लगाने की बात की गई थी, एंड द सुप्रीम कोर्ट सेड कि जो भी सर्टिफिकेशन है वो कमिटी बैठ के दे चुकी है, ठीक है, इट इज़ ऑलरेडी सर्टिफाइड। तो अब हमारा रोल इसमें कुछ नहीं है। और आरक्षण में ऑन दी अदर हैंड बिकॉज सर्टेन स्टेट्स बैंड इट कि हम अपने यहाँ पे आरक्षण मूवी नहीं रिलीज वो करेंगे बिकॉज ऑफ सो सो सो रीजंस, द सुप्रीम कोर्ट सेड यू कांट डू इट बिकॉज एक बार सर्टिफिकेशन हो गया इसका मतलब जो आपका सिनेमा का बोर्ड है उसने ऑथोराइज कर दिया है कि इसमें एज सच कुछ ऑफेंसिव नहीं है, जो ऐसे सीन्स होते हैं वो वहीं पर कट कर दिए जाते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज द रीज़न कि दोनों सिनेमा में अगर आप देखेंगे दोनों मूवीज़ में ये डिफरेंस था, एक जगह पहले से ही वो उन्होंने रोक दी थी कि हम नहीं दिखाएंगे और दूसरी जगह लोगों ने बोला था कि आप ऐसे, इवन विद पद्मावत इफ एनीवन रिमेंबर्स इट, इट वाज जस्ट अ स्मॉल सीन फॉर दीपिका पादुकोण, राइट। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन थी कि देयर

0: अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल, सर्टेन कास्ट पीपल, जिनको एक टर्म बोला जा रहा था जो आज के टाइम पे SC ST एक्ट के अंदर इट्स अ ऑफेंस. अगर आप वो टर्म किसी को कैजुअली भी बोलते हैं वो ऑफेंस है. पहले के टाइम पे जो हम शब्द स्लैंग्स के जैसे, गालियों के जैसे यूज़ करते थे, जो जाति के शब्द हम गालियों के जैसे यूज़ करते थे, वो आज के टाइम पे SC ST के अंदर नॉन वेलेबल ऑफेंस है. अगर आप किसी को उस नाम से बुला देते हैं, सर्टेन कम्युनिटी पीपल थॉट दैट दिस इज ऑफेंसिव. नो वन पिन पॉइंटेड इट कि नहीं नहीं इस पर्टिकुलर चीज़ को आप और अच्छे से दिखा सकते थे, इसलिए बैन नहीं किया. सिर्फ इसलिए किया कि सर्टेन कास्ट के लोग को लगा कि नहीं नहीं इस टर्म का तो ऑफेंसिव मतलब होता है, प्लीज़ डू नॉट रिलीज इट. बट सुप्रीम कोर्ट ने विदाउट कट उसे रिलीज किया.
1: ऑलराइट. एक पॉइंट यहाँ पर ये भी उठता है कि जो SC ST एट्रोसिटीज एक्ट है, ठीक है, उसमें क्या क्या कवर होता है? अगर सिंपल शब्दों में बात करूँ तो एग्जैक्टली क्या कवर्ड है उसमें?
0: सो आपने न्यूज़ में बहुत सारी ऐसी खबरें सुनी होंगी कि किसी को रिसेंटली, अभी कुछ महीने पहले की न्यूज़ है, जहाँ पर रेलवे स्टेशन में एक इंसान ने दूसरे इंसान के ऊपर पी किया, राइट, यूरिनेट किया टेक्निकली स्पीकिंग, बिकॉज दैट पर्सन थॉट दैट ही वॉज इंटाइटल टू डू इट. आफ्टर रीडिंग दैट न्यूज़ आई थॉट ही माइट बी ड्रंक. सबसे पहला एक नॉर्मल प्रूडेंट इंसान मुझे ऐसी लगेगा कि शायद नशे में होगा, बट वो नशा नहीं था, दैट वॉज इंटाइटलमेंट. उसको लगा कि वो कर सकता है और इसमें कुछ गलत नहीं है, उसने किया. तो अगर आप बहुत ही प्लेन लैंग्वेज में देखेंगे तो SC ST एक्ट जो जिस 1989 का एक्ट है, तो जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं, लेट्स प्रेज्यूम फॉर अ वाइल ऑफेंसेस, मैं आपको बताती हूँ कि आपने किसी इंसान को, जैसे हम बहुत ही प्लेन लैंग्वेज में पहले कुछ वर्ड्स यूज़ करते थे ना, जैसे चमार है, पासी है, ये सारे हम वर्ड्स यूज़ कर देते थे एक दूसरे को बुलाने में. इवन दीज वर्ड्स आर अ क्रिमिनल ऑफेंस इफ यू आर कॉलिंग समवन लाइक दैट, बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज डेरोगेटरी. नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स, जैसे आप बिकॉज ऑफ सर्टेन कास्ट आप किसी को नेकेड करके घुमा रहे हो ना. आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि एक लोअर कास्ट का इंसान घोड़ी चढ़ के अपनी शादी में गया तो गांव वालों ने उसे नंगा करके जूते चप्पल की माला पहना के घुमाया. ये चीज़ें, किसी का लैंड आप ज़बरदस्ती डिस्पोज करके वो किसी और को दे दो क्योंकि वो एक वल्नरेबल कास्ट से है, ये आपको, आप किसी को ज़बरदस्ती कुछ ऐसा फीड करा रहे हो, खिला रहे हो जो एडिबल नहीं है, राइट. जैसे हम बहुत बार ऐसा वो करते हैं कि गौमूत्र पिला दी, गोबर खिला दिया, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट सुनने में आते हैं. मंदिर में ना जाने देना, कुएं से पानी ना पीने देना, ये सारे बहुत सारे जो नॉर्मल डेज में आप न्यूज़ सुन रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ SC ST एक्ट में कवर है. रिसेंटली 2015 और 18 में अमेंड भी हुआ है, मोर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट और सख्त पनिशमेंट प्लस नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में भी रखा गया है कि इफ यू आर डूइंग समथिंग लाइक दिस. जैसे अब धीरे धीरे क्या है, पहले के टाइम पे आप बाइफरकेट कर लेते थे ना कि आप एजुकेशन नहीं दे रहे हो उनको, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हो. अब लोग पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो कई बार क्या होता है नए नए ऑफेंस क्रिएट होते हैं. पहले के टाइम पे तो हम बस इतना ही कर पा रहे थे कि हम पानी नहीं पीने दे रहे थे, नहीं नहीं तुम इस कुएं से पानी नहीं पियोगे तो ठाकुर का कुआं है ना. अब और नए ऑफेंस आ रहे हैं कि आप एम्प्लॉयमेंट में भेदभाव कर रहे हो, आप उनको एम्प्लॉयमेंट में नहीं आने दे रहे हो. आप अपने आसपास देखो, आप जितने भी इंस्टीट्यूशंस में हैं आप अपने आसपास देखिए कास्ट की कितनी डाइवर्सिटी है. कई बार लोगों को इस वजह से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कास्ट के हैं. तो अब ये तरीके की ऑफेंसेस भी कवर होने लग गए हैं. तो जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ रही है, ठीक है, मैं कभी भी नहीं कहती इम्प्रूव कर रही है क्योंकि ये मेरा जजमेंट नहीं है, बट जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ रही है ऑफेंस की जो कैटेगरी है ना वो भी बदल रही है. सो धीरे धीरे मेजॉरिटी ऑफ ऑफेंसेज आर कवर्ड अंडर SC ST एक्ट. BNSS के अंदर जो कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता है उसके अंदर कोई सेपरेट उन्होंने नहीं रखा फॉर कास्ट, बिकॉज SC ST में ऑलरेडी कवर्ड है. आपका एक आर्टिकल 17 है जो अनटचेबिलिटी, जिसने पूरा अनटचेबिलिटी बैन करने के लिए बोला जो कॉन्स्टिट्यूशन का है. एक वो है जो डायरेक्टली आपका कास्ट से रिलेटेड लॉज हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आर्टिकल 17 एंड आपका SC ST एक्ट के अलावा भी आपका आर्टिकल 14 जिसकी आप बात कर रहे थे, 15 की रेस, कास्ट, सेक्स, जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आपका 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ. उसके बाद 16 के नीचे आपका जो 17 वो अनटचेबिलिटी के लिए है, 18, 19, 20, 21 आपके एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में, तो ये फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में थे और हमेशा से थे, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन पुराना है, SC ST एक्ट तो आपका 1989 में आया। तो उसके होने के बावजूद भी सरकार को लगा कि नई ऑफेंस तो नहीं रुक रहे हैं, तो उसको क्रिमिनलाइज करना पड़ेगा। ये तो चलो सरकार की जिम्मेदारी थी। इसीलिए जब हम लॉज देखते हैं ना, तो लॉज भी दो कैटेगरी के हैं, व्हेन इट कम्स टू SC ST प्रोटेक्शन एक्ट और सिर्फ लॉज रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट। तो आप भी देखोगे कि लॉज का ना नेचर दो कैटेगरी में, एक तो वो लॉज जो प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में अभी हमने बात की, अनटचेबिलिटी SC ST एक्ट, दूसरे वो लॉज और पॉलिसी जो वेलफेयर के बारे में बात करते हैं, राइट। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे, जब हम कह रहे हैं लोअर कास्ट, तो हम ये मान के चल रहे हैं ना कि हमसे नीचे हैं, तो उनको ऊपर कौन उठाएगा? सरकार, लॉज। तो हमारी जो कैटेगरी ऑफ लॉज है वो दो कैटेगरी में, एक प्रिवेंशन की बात वो करती है कि इनके खिलाफ जो एट्रोसिटीज हो रहे हैं उन्हें रोकना कैसे है, और दूसरे वेलफेयर लॉज जो ये कह रहे हैं कि हम क्या बेटर कर सकते हैं, जिसमें आपका आता है रिजर्वेशन, ठीक है, कि हम रिजर्वेशन दे सकते हैं एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में। बहुत ही छोटा सा इंसिडेंट है, जब भी हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं ना, तो बच्चे हमेशा बिल्कुल रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए मैम, रिजर्वेशन क्यों हो रहा है आपका, जनरल पब्लिक बहुत सफ़र कर रही है। एंड आई स्टिल रिमेंबर, मेरे फादर हमेशा एक एग्जांपल देते हैं, वो हमेशा ये कहते, ही इज़ अ डॉक्टर, सो ही ऑलवेज सेज कि इवन व्हेन आई रिटायर आई विल बी अ डॉक्टर, मैं हमेशा बोला जाऊँगा कि डॉक्टर साहब जा रहे हैं। लेकिन एक जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का इंसान जब डॉक्टर के पद से रिटायर होता है ना, उसको उसी पर्टिकुलर स्लैंग से बुलाया जाता है कि अरे वो जा रहा है। तो दिस इज़ द रियलिटी। हम कह सकते हैं कि अब कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज़ नहीं होती हैं। आप देखिए, ऑनर किलिंग कास्ट बेस्ड है, ठीक है, आज के टाइम पे भी मैरिजेस को लेस, जो हमारे संविधान ने चॉइस दिया है कि आप अपना पार्टनर खुद चुन सकते हैं एक उम्र के बाद, 18 लड़कियों के लिए 21 मैन के लिए, उसमें भी आप देखिए आपको अपने आसपास कितनी इंटरकास्ट मैरिजेस दिख रही हैं, लोग उसके लिए एक दूसरे को मारने को तैयार हैं। सो कास्ट कहीं ना कहीं इफेक्ट तो करती है ना, सबको ये लगता है कि देखो जो भगत सिंह ने काम किया ना, बहुत अच्छा काम किया भगत सिंह ने, लेकिन भगत सिंह मेरे घर में नहीं होना चाहिए। सो एवरीवन इज़ रेडी टू टॉक अबाउट कास्ट कि नहीं नहीं ठीक है, अब लोअर कास्ट के लोगों को हम लोअर कास्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है हम समझ रहे हैं कि एक खून है। एक खून सिर्फ तब तक है जब तक ब्लड डोनेशन की बात नहीं आए ना, कि आपको ब्लड चाहिए तब एक खून है। अगर आपको अपनी लड़की देनी होगी वो उनके यहाँ, तब एक खून नहीं रहता है। सो ऊपर एटलीस्ट सिनेमा ने ये हेल्प की है कि ऊपर इसके ऊपर डिस्कशन होने स्टार्ट हो गए, नहीं तो पहले डिस्कशन ही नहीं थे। यू कैन नॉट टॉक अबाउट कास्ट अपने घर में बैठ के बहुत ही सिंपली कि नहीं नहीं आप ऐसा नहीं बोल सकते पापा, आप ऐसा नहीं बोल सकते मम्मी, वी कैन नॉट यूज टू डू दिस। अब धीरे धीरे सिनेमा की वजह से थोड़ा डिस्कशन स्टार्ट हुआ है, लोग बोल पा रहे हैं, लेकिन जो बेसलाइन है, जितने भी अगर आप एक्ट्स हैं आप देखिए ना, SC ST एक्ट के अंदर कितनी कंप्लेंट्स फाइल होती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हर कंप्लेन बिल्कुल सही कंप्लेन है, कुछ ऐसी भी कंप्लेन होती हैं जो बाद में फ्रॉड निकल जाती हैं, बट एटलीस्ट लॉ है तो लोग अप्रोच कर पा रहे हैं। तो ऊपर डिस्कशन तो हमारी सोसाइटी में स्टार्ट हो गया है, लेकिन आई गेस दैट इज़ अ डे जो अभी भी काफ़ी टाइम बाद आएगा जब मैं न्यूज़पेपर खोलूं और मुझे कम से कम एक हफ्ते तक कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज की कोई न्यूज़ ना मिले, कि कोई ने किसी को इस चीज़ के लिए मारा कि उसने उसकी प्लेट से ले लिया या उसके कुएं से पानी पी लिया, या वो लड़की किसी और कास्ट के इंसान के साथ भाग रही थी, लोअर कास्ट के साथ भाग रही थी, इसलिए हमने मार डाला। सो जिस दिन ये सफल हो जाएगा कि एक हफ्ते तक मुझे ऐसी न्यूज़ पढ़ने को ना मिले, तब मैं सोच सकती हूँ कि नहीं अब कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज के ऊपर मूवी बनानी बंद कर देनी चाहिए। बट टिल देन वी आर स्टिल हेयर टू डिस्कस एंड अवेयर पीपल।
1: सो इंटरेस्टिंग, और ये बहुत डीप है, इसको इतना आसान भी नहीं है समझ पाना और इतना मुश्किल भी नहीं है, बट मुझे लगता है कि इसको स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझेंगे कि पहले तो संविधान कुछ बोलता है, कानून कुछ बोलता है, एक सोसाइटल नॉर्म चलता है, सोसाइटी क्या बोलती है, फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये उठता है कि आपके घरों में कैसे बात की जाती है, कि आपके घरों में भी इस तरह के शब्दों का चयन किया जाता है। जैसे मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मैं जाता था अपने गांव, जो रिलेटिव्स थे हमारे उनके वहाँ पर, तो अगर मैं नहाया नहीं हूँ, लेट से नहाने में लेट हो गया हूँ, तो एक सर्टेन कास्ट का नाम लिया जाता था कि तू वो है क्या, नहा क्यों रहा तू। तो अब समझ में आता है कि क्या ग्रेविटी होती है उसकी, कि कितना सीड इन कर दिया गया है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। इट्स लाइक अ नॉर्मल स्लैंग, ठीक वैसे ही जैसे गालियाँ होती हैं, ठीक है, कि बहन की, माँ की, इतना नॉर्मल हो गया है कि बच्चा बच्चा आपको देता हुआ दिखाई दे जाएगा, और फिर सिनेमा ने उसको और माशाल्लाह और नॉर्मलाइज कर दिया है, उसको और एग्जैजरेट करके उसमें सुर भी डाल दिया गया है. सो आई थिंक दैट्स हाउ दिस सिनेमा थिंग इज वर्किंग. बट थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग हियर, इट मींस अ लॉट टू अस. मुझे बहुत मजा आया पर्सनली, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ लिसनर्स को बहुत मजा आया होगा.
0: थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी. आई गेस डे टू डे लाइफ में ना वी यूजली फॉरगेट, जब हमारे ऐसे सेशन होते ना तब हमें रियलाइज होता है कि अच्छा आई ऑल्सो फील अबाउट दिस थिंग दैट डीपली ना. तो डे टू डे लाइफ में तो लाइफ निकलती रहती है, हम चलते रहते हैं, बट आई गेस दीज आर सम मीनिंगफुल डिस्कशंस जो लोग सुनना भी पसंद करते हैं और हमें भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि अच्छा ये हुआ, ये मैंने इस टाइम पर ये स्टोरी सुनी, आज मैंने ये पढ़ा. बिकॉज हम दिन भर पढ़ते रहते हैं, जैसे मैं लॉस बैकग्राउंड से हूँ, मैं दिन भर में कम से कम 50 ऐसी चीज़ें पढ़ती हूँ जो नहीं होनी चाहिए, देश में, विदेश में, हमारे घर में, दूसरे वाले पड़ोसी के घर में, जो नहीं होनी चाहिए. बट वो 50 चीज़ में से आई किस 5 से 6 चीज़ें हैं जिनके लिए मुझे लगता है कि नहीं मुझे बोलना चाहिए. क्यों लगता है? शायद एक्सपीरियंस है, ठीक है, कुछ सेट ऑफ चीज़ों के लिए आपका आवाज़ निकलती है. आई गेस कास्ट, जेंडर, क्लाइमेट चेंज, दीज आर सर्टेन थिंग्स विच वी शुड टॉक अबाउट. बिकॉज अगर अब नहीं, ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं ना जो अगली आने वाली जनरेशन को अफेक्ट करेंगी. ये देश कहाँ जाएगा, ये समाज कहाँ जाएगा, ये इन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है. अगर हम इन मुद्दों के ऊपर आज बात नहीं करेंगे तो फिर आगे आने वाली जनरेशन कैसे इस चीज़ को अनलर्न करेगी? राइट हमारे मॉम डैड की ज़िंदगी निकल गई, हमारी आधी ज़िंदगी निकल गई, अब जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है ये मेक श्योर करना है कि वो इन सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज ना करें, वो जो हमने सिखाया है वो समय से अनलर्न कर जाए. बिकॉज लर्निंग तो हमारी डे टू डे लाइफ में सागर इतनी होती है ना कि अब हमें सोचना पड़ रहा है कि लर्निंग बंद कर दें, अब अनलर्निंग का टाइम स्टार्ट हुआ है, अब हमें अनलर्निंग करनी कि ये तो हमने सीखा था, ये हमने गलत सीखा था, अब हमें सही दिशा पे चलना है. एंड जिस दिन हम अनलर्निंग शुरू कर देंगे ना, हमारी नेक्स्ट जनरेशन बहुत बहुत सिस्टमैटिक वे में ना चीज़ों को समझना शुरू कर देगी. तो आई गेस दैट इज इम्पॉर्टेंट.
1: Yeah, learn to unlearn things, and that's how growth happens. That's how we evolve. That's how we grow. जो existing norms है आपके, आपको उनको question करना पड़ेगा और हटाना पड़ेगा कि ये सीखा है आपने, normalize आपके लिए, उसको वापस से redefine करना पड़ेगा कि normal नहीं हो सकता है. That's how. That's the only way जिस तरीके से हम लोगों को scope दे सकते हैं या बाकियों को साथ लेकर के आगे बढ़ सकते हैं. That's the only way. All right. Thank you so much, ma'am.
0: Thank you so much for calling me. Hope to see you soon.
1: See you soon, ma'am. All right, दोस्तों, now on this note, वक्त अपनी शो को यहाँ पर conclude करने का. I just hope आज आप इस topic को और अच्छे से, शायद और थोड़ा एक step आगे से समझ पाए हैं. Not just cinema, just how exactly it works in our society, how exactly it works in our brains. उम्मीद कर रहा हूँ आपको पसंद आया होगा शो. अब चलता हूँ इसी नोट पर, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो. लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए. खैरियत से रहिए. This is RJ Sagar signing off.
2: ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन.
3: गुरुदेव, यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए.
2: हाँ गुरुदेव, ना

la la

सारे, चिमटा चरक चिलम और चेले साथ साथ हैं सारे।

0: अरे अरे अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में। कूड़ेदान में
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
3: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर मैं आपके लिए लेकर आती हूं खास कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण का, यानी वी वेमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण की आज की कड़ी में हम जिनके साथ बैठे हैं वो है डायरेक्टर स्टडी बाय जनर, यानी वैंडी मेहरा जी। आज हमारा सौभाग्य है कि हम उनके साथ हैं और आज हम उनकी जर्नी को आप तक लेकर आने वाले हैं। अच्छी बात यह है कि ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने कभी सपना देखा होगा कि वो एक एस्टैब्लिश्ड डिजाइनर बने, एक ऐसी लेगेसी उनके पास हो, लेकिन कई बार शायद सपने पूरे नहीं हो पाए या हिम्मत नहीं हो पाई। लेकिन आज ये हिम्मत आपको मिलने वाली है क्योंकि इस कार्यक्रम में हम इनसे बात करने वाले हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है वैंडी जी।
4: थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।
3: वैंडी जी, इफ आई मे आस्क यू, आपके नजरिए में महिला सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट, व्हाट इज योर डेफिनेशन, हाउ डू यू डिफाइन इट?
4: आई थिंक वुमेन आर इनहेरेंटली स्ट्रांग, बिकॉज तभी तो नारी शिव शक्ति कहलाती है
3: जी,
4: बिकॉज वो हमारे अंदर हमारे ओरिजिनल संस्कार में, आई थिंक शक्ति इज द बिगेस्ट संस्कार, बिकॉज हम सब में सहन शक्ति, समाने की शक्ति, अगर हम वो आठ देवी की शक्तियों की भी बात करें, सो वो किसी भी मेल गॉड में कभी भी नहीं दर्शाई जाती, इट्स ऑलवेज इन द फीमेल वर्जन ऑफ द गॉडेस। सो वी ऑल दोज ओरिजिनल क्वालिटीज आर ऑलरेडी देयर इन अस, सो हम We don't need to work on that. They're all already there. We just need to be aware and emerge them.
3: Wendy ji, through eras, we have seen a lot of challenges women have faced. Ek time tha, women were not even born. Bachche ko bhrun mein hi maar diya jata tha. Then, I think we progressed. Kuch mahilaon ne na sirf empowerment dikhai, but we started growing up. Aaj ki stage mein, we have choice of our jobs. We have choice of our careers.
4: Not for everybody.
3: Yes,
4: I would say it's a niche category of women today who majorly either it is the circumstances or the loving support of a family member so that they are able to achieve their dreams. Like I know in my case, it was my husband's loving support always which gave me this platform. I know for a very dear colleague of mine working with me, it was the circumstances and whatever she was going through so that she needed to just rise out of that, and today she's doing brilliantly well. So I guess it's a mix of both. It is because humme ye shakti hai, so whatever the circumstances around us are, we need to make the right decisions aur humme apni jagah khud banani hai.
5: दोस्तों, वक्त है एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, लेकिन आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की। इस खूबसूरत सी कड़ी में हम आज बात कर रहे हैं वैंडी मेहरा जी से। वैंडी मेहरा जी जो कि डायरेक्टर हैं स्टडी बाई जनक की, और अपनी ये खूबसूरत सी जर्नी और कहानी आज हमें बता रही हैं। पंडित जी, अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं, तो आज के टाइम की जो विमेन हैं या महिलाएं हैं, क्या चैलेंज लगता है इन जनरल? मतलब लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, डिसीजंस खुद नहीं ले पाती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती हैं, या परिवार और जॉब इन दोनों के बीच में कहीं पिसके रह गई?
1: आई थिंक इन सबका कुछ हर एक परिवार में, हर एक वुमन में आई वुड से हिस्सा है। It is as per our upbringing, as per the circumstances, if the woman is married, as per the माहौल इन हर हाउस, द इन लॉज का थिंकिंग, हर एक चीज़ का कुछ तो है। कईयों को लाइक जैसे शुरू में जब मेरी शादी हुई, आई वॉज इन अलाउड टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस और वर्क, सो यू नो इट इज़ हर का नज़रिया एक तरह का होगा, जिसके अकॉर्डिंगली हमें अडेप्ट करके धीरे धीरे, और जो चीज़ मुझे शुरू से लगता है जो चीज़ प्यार से जीती जा सकती है वो लड़के नहीं जीती जा सकती। बिकॉज मेरे लिए टू हैव सी माई मदर इन लॉ स्माइल एंड बी हैप्पी, जितना भी मैं काम कर लूँ, आई नो फ्रॉम माई हार्ट माई फैमिली इज माई प्रायोरिटी। सो टू गो दैट एक्स्ट्रा स्टेप आउट ऑफ शी इज माई प्रायोरिटी, कि उन्होंने कभी कुछ बोल दिया, कभी कुछ उनको चाहिए, वो मेरे लिए सबसे पहले करना है, बिकॉज आई नीड हर हैप्पी एंड स्टेबल टू बी एबल टू एट ईज एंड टू बी एबल टू पुट इन माई ऑल हियर। सो अ वुमन जस्ट नीड्स टू बैलेंस, नो इन हर माइंड, और अगर तुम एक घंटा उनके साथ हो और उसमें यू गिविंग दैम ऑल विच दे नीड, then what you're doing in the other 8 hours at work automatically balances it. It's not quantity, it's the quality you are giving to wherever you are. जहाँ भी हो, जिसमें भी हो, उसको अपना complete energy और complete unconditional love अगर तुम देते हो ना, काम में भी, तो without unconditional love the brand is never formed.
0: Yes.
1: तो तुम जहाँ हो उसको अपना सब कुछ दो, एंड ईगो तो होनी नहीं चाहिए। मेरे लिए ईगो जस्ट डजेंट मैटर, इवन इफ आई एम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मेरे लिए माई क्लाइंट इज अ गॉड। मुझे खुद भी क्लाइंट को सैंडल्स पहनाने हैं, खुद भी सारे कपड़े टांगने, इट डज नॉट मैटर। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, वन नीड्स टू लीड बाय एग्जांपल। ट्रायल रूम में भी अगर क्लाइंट को चेंज कराना है, इट इज़ ओके, एंड दैट इज द कल्चर विच वी इम्बाइब्ड इन ऑल आर ब्यूटिफुल टीम्स वी आर ब्लेस्ड विद। बिकॉज वन एवरी सीनियर नीड्स टू लीड बाय एग्जांपल एंड गाइड द जूनियर।
0: पंडित जी, आपके सशक्तिकरण की जर्नी की बात करेंगे, योर जर्नी ऑफ एम्पावरमेंट, मुझे बताइए एनी वन डिसीजन ऑफ एम्पावरमेंट दैट यू हैव टेकन एंड यू हैव नेवर रिग्रेटेड, एंड टुडे व्हेन यू लुक बैक यू आर एब्सोल्युटली हैप्पी दैट यस आई टुक दिस डिसीजन।
1: द डिसीजन टू वर्क आई वुड से, बिकॉज आई ऑलवेज हैड द फायर। जब शादी हुई थी तब भी मुझे था, 21 साल में भी मुझे यही था, मुझे काम करना है। ऑफ कोर्स आई हैड टू वेट फॉर 10 इयर्स बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस, बट देन दैट्स वन डिसीजन which I was eventually able to recognize, which I've never regretted. I love my work and I so enjoy being and creating and being in this line. When any client is wearing something for their function and they are so happy and they share pictures, ya wo bolte hain hame itne sare compliments mile, that is the true gratitude and happiness which we all get.
0: दोस्तों, एक और खूबसूरत सा गाना और ये जो कहानी है, इनकी इंस्पायरिंग कहानी, बिल्कुल जुड़े रहिए रेडियो 107.8 FM के साथ, क्योंकि इंस्पायरिंग सी कहानी अभी जारी है। फील गुड, फील लाइव।

0: सुना दी।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
2: कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
1: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
2: ये तो रोज निकलता होगा।
1: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
2: 9 बरस लंबी थी ना।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। सशक्त महिलाओं से आपको मिलवाती हूं और आज इस कड़ी में हम जिनसे बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं। जी हाँ, फैशन के नाम का सबसे बड़ा नाम वैंडी मेरा, जो कि स्टडी बाई जनक की डायरेक्टर हैं। स्टडी बाई जनक एक खास स्टूडियो जो साउथ एक्स आप जब कभी भी जाते हैं, सो साउथ एक्स में एक बड़ा सा स्टोर अगर आपको दिखेगा, सो वो स्टोर जो है वो है वैंडी मेहरा जी का। न सिर्फ अगर कहना चाहिए ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर और कॉरपोरेट वेयर में ये मास्टर करती हैं, लेकिन इन्होंने अपनी कला से मुझे कहना चाहिए सिर्फ हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी नाम कमाया है। वैंडी जी, महिलाओं के साथ ना एक सरनेम आता है और वो सरनेम है त्याग, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट। सो आई ऑलवेज सेड वुमेन इज इक्वल टू
1: सी, जो सर्कमस्टेंसेस है, जो करना है वो तो करना ही है ना।
0: yes.
1: अगर हम प्यार से कर लें वो बेटर है, उससे हम भी खुश अगला भी खुश।
0: exactly.
1: चूचू करके या क्रिप करके या सोच करके हम इनके लिए एहसान कर रहे हैं, इसलिए हम ये कर रहे हैं
0: जी।
1: हमें किसी को नहीं बदलना, बस खुद को बदलना है।
0: वाओ,
1: फॉर मी इट्स ऑलवेज बीन If I want anything changed, means I need to work more on myself.
0: Wow.
1: When we change, the world changes. तो अगर हम प्यार से ही कर लें, जो यही circumstances है, supposing किसी को मेरे घर में कोई difficult है, उसको कुछ चीज़ किसी प्रकार से चाहिए, rather than cribbing and you know rebelling, मैं भी कुड़कुड़ कर रही हूँ, why?
0: Exactly.
1: Given कर दो ना, given कर दो, प्यार से कर दो, तो वो भी खुश, तुम भी खुश।
0: Yes.
1: अपने आप को बदलते जाओ, that's the easiest way. But of course, स्वाभिमान और अभिमान में एक स्लाइट अंतर है।
0: yes.
1: स्वाभिमान हमें रखना है, अभिमान तो कभी करना ही नहीं है। सो ह्यूमिलिटी आई फील इज द बेस्ट क्वालिटी एनीबडी कैन हैव।
0: महिलाओं को एक परेशानी सदियों से आ रही है, चाहे वो जमाना था जब महिलाएं पढ़ नहीं पाती थी, या ये जमाना है जहाँ उनके पास बहुत सारे डिसीजन लेने की अपॉर्चुनिटी है। जब कभी भी जिम्मेदारी की बात आती है और खास तौर पर घर की जिम्मेदारी की, महिलाओं को अपने प्रोफेशन का या अपने जॉब का त्याग करना होता है, सबसे पहली प्रायोरिटी ये कहा जाता है कि आपकी शादी हो गई है तो आपका परिवार, बच्चा हो गया है तो आपका बच्चा, और घर में अगर एज्ड पेरेंट्स हैं या इन लॉज हैं तो आपको उनका ख्याल रखना है। क्या बैलेंस बनाया जा सकता है या त्याग ही जरूरी है?
1: ये इट इज अ फाइन लाइन। मे बी आई हैव बीन ब्लेस्ड इनफ कि अभी तक टच वुड माय मॉम इन लॉज क्वाइट active and I call her my biggest strength in my life.
0: जी.
1: वो है तो मैं शुरू से you know, बच्चे जब स्कूल में भी पढ़ते थे, I could at least सब physically I don't want her to do anything, but उनकी presence ही मेरे लिए सबसे बड़ा support है.
0: जी.
1: That's why when I see youngsters now talking about moving out or being independent, I feel they don't even know what they're losing out
0: yes.
1: on. बड़ों की प्रेजेंस से ही तुम्हारा घर इतना सिक्योर रहता है कि यू कैन ईजिली लीव योर चिल्ड्रन, यू कैन लीव फॉर वर्क एवरी डे। So even for the young girls who are working for me, I feel they can join work because they know the mother is at home. There is someone there, right, to be able to manage and take care. So it's a give and a take. जैसे मैंने पहले भी कहा, I feel पहले प्यार से जीत लो and धीरे धीरे, क्योंकि तुमने इतना प्यार दिया है, वो automatically they will respond and they automatically then just support you in all the decisions you take. अपना सपना क्यों छोड़ना, हमें भी करना है जो हमें करना, हमें अचीव करना है, एंड देन दे स्टार्ट बिकमिंग सो हैप्पी विद व्हाटएवर यू आर अचीविंग दैट इट बिकम्स अ सेंस ऑफ प्राइड फॉर देम। लाइक फॉर एग्जांपल माय फादर इन लॉ, जब मैंने कहा ना, जब मैंने पहले बोला पापा मुझे काम करना है, एंड ही वाज लाइक मैं दुकान बंद कर दूंगा, लड़की घर की बाहर नहीं जाएगी।
0: जी.
1: जबकि पापा दादू दादी दे नेवर यूज्ड टू ड्राइव, आई वॉज द ओनली गर्ल इन द एंटायर फैमिली who was the most educated and I used to drive. किसी को भी कहीं जाना होता था, it used to be me.
0: Yes.
1: यही लेकर जाएगी, यही करेगी, कोई घर में मेहमान भी आ रहे होते थे, इस मुझे आके करते थे, यही टेबल लगाएगी, यही आगे होएगी, because you know then,
0: yes.
1: but gradually करते करते then, when I did join work, I told you, Papa that time was like, you know, complacent, he didn't say anything. And for me, my Eureka movement was कि वो फिर धीरे धीरे वो मुझसे ही पूछने लग, अपना सारा काम, because Papa तो factory हैंडल करते थे, हम फ्रंट एंड पे थे, पापा यूज टू हैंडल द फैक्ट्री, ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी अबाउट ऑल द वर्क, वांटेड एनीथिंग इन द फ्रंट एंड एनीथिंग ही वांटेड डन, वो धीरे धीरे सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मुझे देने लग गए थे, सो दैट बिकेम माई ट्रू विनिंग पॉइंट, बिकॉज इन यू इसको बोल दिया तो वो तो काम हो ही जाएगा, सो दैट ट्रस्ट एंड द बॉन्ड विच वी बिल्ड, दैट वॉज ट्रूली माई मोस्ट प्रेशियस मोमेंट।
0: दोस्तों आज मुझे समझ में आ गया कि DDLJ में शाहरुख खान ने काजोल को भगाने के बारे में क्यों नहीं सोचा और उनके माँ बाप का दिल जीत कर उससे शादी करने के बारे में क्यों सोचा, क्योंकि अगर आप दिल जीत लेते हैं तो आप लंबे समय के लिए न सिर्फ क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर लेते हैं लेकिन एक ट्रस्ट और भरोसा आपके पास
1: सपोर्ट एंड यू ऑलवेज हैव योर फैमिली विद यू, क्योंकि मजा तो सबके साथ चलने में ही है ना, अकेले क्या जर्नी, किसको दिखाना क्या करना।
0: एग्जैक्टली एक और प्यारा सा गाना और आप जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं वैंडी मेहरा जी, जो कि डायरेक्टर हैं स्टडी बाय चाणक्य, और आज हम कर रहे हैं इनसे ढेर सारी बातें।
1: वैंडी जी, एक बज वर्ड है आज के जमाने में जेंडर इक्वालिटी, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है? आई मीन, डू यू रियली फील कि ये जेंडर इक्वालिटी की जरूरत है? कुछ महिलाओं को आज भी इक्वालिटी नहीं मिल पा रही है, और अगर हाँ तो कैसे मिल सकती है?
2: Again, I feel it depends on individual relationships. It depends on, you know, the equation you have with your own partner. Touch wood, mine has been fair enough because we were both very young. I was 21, he was 22 when we got married. So it was literally we both grew up together, right? And हमें ये इसलिए नहीं problem हुई because we somewhere grew up together. But yes, when I had first joined work, then because and few of my friends ने मुझे warn किया था कि तुम्हारी इतनी अच्छी relationship है, जब काम इकट्ठे करोगे ना relationship बिगड़ जाएगी because वहाँ egos clash हो जाती हैं. Because women somewhere are more systematic, more organized. It's majorly in our personality. So few times we used to be having a board meeting or a full decision with the entire team in the factories. A few times if I would just give my suggestion in the beginning, between everybody, I would just say something. A few times my husband had snapped me and I wasn't used to that, and ekdam se I was this thing. But then with time, I guess we learned when to draw the line. I learned where I just need to just let him be. And jo bhi baat karni hai, fir wo baat mein one-to-one karna hai. So then you just grow, give each other mutual respect. Us time react nahi kare agar. Life is anyway not about reacting but responding.
1: Yes.
2: So us time nahi react karna chahiye. Baad mein alag jaakar one-to-one when you have a conversation, then things are resolved amicably. उस टाइम तो रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए ना. यू हैव टू जस्ट कीप योर पेशेंस, डू डीप ब्रीदिंग, बिकॉज आई एम टच वुड इन ज्ञान. सो वी आर टॉट कि अगला कुछ ट्रिगर होके कुछ बोल रहा है जो तुम्हारे को लिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, इमिजिएटली योर ब्लेसिंग्स फ्रॉम हियर जस्ट बिगिन. योर प्योर डिवाइन सोल, योर पीसफुल सोल. सो उस टाइम अपने आप को ब्लेसिंग्स इमिट करते करते करते यहाँ शांत रख लो, एंड देन आफ्टर अ लिटिल टाइम when the situation is calmer, then have a conversation.
1: दोस्तों, अगर हम सब ये कर लें तो आप सोचो जिंदगी के बहुत सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे लगता है खत्म ही हो जाएंगी.
0: एक और प्यारा सा गाना सुनाने वाली हूँ आपको, वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का. हालांकि सच बताऊं, इतनी मजेदार बातें सुनने को मिल रही हैं, इतनी इंस्पायरिंग सी स्टोरी वैंडी जी की है, लेकिन उसके बावजूद मुझे पता है भाई आपको एक प्यारा सा गाना सुनाना है. सो एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ. Feel good, feel love.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। और इस कड़ी में आज हम जिनसे बात कर रहे हैं वो है वैंडी मेरा, जो कि डायरेक्टर है स्टडी बाई जनक की। बहुत अच्छा लगा वैंडी जी आपसे बात करके। जाते जाते क्या खास मैसेज हमारे सभी लिसनर्स के लिए?
1: Like I said earlier, when we change, the world changes. हमें किसी को कभी नहीं बदलना, हमें बदलना है तो सिर्फ और सिर्फ स्वयं को। किसी भी रिलेशनशिप में आप थोड़ी सी प्रॉब्लम देख रहे हो, इसका मतलब तुम्हें उससे और भी आगे होना है। बिकॉज फॉर मी टचवुड, मैं ज्ञान में तो हूँ ही, आई एम फ्रॉम कुमारी एज अ शेफ, प्लस आई एम पार्ट ऑफ द शुक्राना फाउंडेशन ऑल्सो। सो उधर तो दे से इमिजिएटली किसी रिलेशनशिप में कुछ फील कर रहे हो ना, जो दूसरा बंदा है जिसके साथ तुम्हें किटपिट लग रही है या कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इमिजिएटली स्टार्ट राइटिंग ग्रैटिट्यूड्स। हर एक बंदे में कुछ अच्छा या कुछ गुड क्वालिटीज तो है ही है, कितनी भी तुम्हारी रिलेशनशिप बिगड़ गई हो तो उसकी जितनी भी गुड क्वालिटीज हैं, दिस इवन वर्क्स लाइक मैजिक। इवन वेयर अ कपल इज फॉलिंग आउट इन अ रिलेशनशिप, इट कैन बी अ मदर डॉटर, इट कैन बी अ मदर सन, अ फादर सन, जस्ट ऑपोजिट की जितनी भी अच्छी क्वालिटीज है, जस्ट स्टार्ट राइटिंग ग्रैटिट्यूड ऑन दोज, just keep writing and miracles happen.
0: Wow.
1: Because when we are cleaning our energy, अगर हम बाहर में गुस्सा देख रहे हैं इसका मतलब गुस्सा हमारे अंदर है, कहीं हम अपनी शैडो को देख रहे हैं। तो हर एक स्थिति में हमें सिर्फ और सिर्फ खुद को बदलना। उस बंदे के लिए तुम 10 अच्छी अच्छी चीज़ें लिख दो और दिल से थैंक यू करके लिखते ही जाओ, miracles happen. All really, it just changes. And depends on how big is the block you've created. जितना ग्रैटिट्यूड करते जाओगे उतना वो ब्लॉक अपने आप डिसॉल्व हो जाता है और सब कुछ हील हो जाता है।
0: अगर हम जिंदगी को थोड़ा सा ठहर कर, भागते हुए नहीं लेकिन कहना चाहिए तसल्ली से देखे ना, तो जिंदगी बहुत

0: नमस्कार, मैं हूँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा और आप सुन रहे हैं 107.8 मानव रचना।
1: नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, जिसे लेकर के आता है रेडियो मानव रचना हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं किसी एक ऐसे मुद्दे पर जो जुड़ा हुआ है हमारे आपकी जिंदगी से, और उसी मुद्दे पर हमारा प्रयास रहता है कि हम इस प्रोग्राम के जरिए तलाशें नई सोच के साथ नई दिशाएं जो हमें लेकर के जाएं एक बेहतर भविष्य की ओर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रेडियो मानव रचना 107.8 FM का हमेशा प्रयास रहता है कि हम आपके जीवन को जितना बेहतर बना सकें, उसको और ज़्यादा खुशनुमा बना सकें। जितने भी प्रयास किए जा सकते हैं, हम रेडियो मानव रचना के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हमेशा उन प्रयासों पर काम करते रहते हैं। ऐसा ही एक प्रयास आज हम अपने कार्यक्रम में एक चर्चा करेंगे एक विषय पर जो जुड़ा हुआ है हमारे जीवन से, हमारी धन संपत्ति को लेकर के। दोस्तों, आम तौर पर जब कभी भी हम बात करते हैं पैसे की, तो वो अपने आप में एक कला है, यानी एक आर्ट है पैसा कमाना। लेकिन उसी पैसे को कैसे बढ़ाया जा सकता है या उसमें वृद्धि करने के तरीके कौन से होते हैं, वो अपने आप में एक साइंस है, एक टेक्निक है। और उसी टेक्निक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि हम अपनी तेज रफ्तार जिंदगी में कैसे बेहतर आय तो चाहते हैं, लेकिन उस धन को कैसी समझदारी से, कितनी समझदारी से हम उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। और इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी आज एक खास मेहमान सोनम पारिक, जो एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में रिसर्च और मार्केटिंग हेड हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे सोनम जी के साथ। सोनम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम में नई सोच नई दिशाएं में, वेलकम।
2: बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी।
1: सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। आपने अभी बताया कि एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में आप रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड हैं, तो वो क्या है कंपनी?
2: तो हमारी कंपनी है मेवेंस कैपिटल, वो बेसिकली नोएडा में बेस्ड आउट है। ये एक बुटीक वेल्थ एडवाइजरी फर्म है, तो हम यहाँ पे HNIs, अल्ट्रा HNIs, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के वेल्थ मैनेज करते हैं। तो किस तरीके से कहाँ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, किस तरीके से उनको उनका पूरा एक एसेट एलोकेशन होता है, उनका पूरा एक पोर्टफोलियो बनता है, तो इस हिसाब से ये हमारा जॉब प्रोफाइल होता है जो हम क्लाइंट्स के लिए करते हैं। मेरा काम ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में समझें, क्या मार्केट्स में स्ट्रैटेजीज चल रही हैं, क्या रिसर्च है, क्या ग्लोबल इन्वेस्टिंग में क्या चल रहा है, डोमेस्टिक में क्या चल रहा है, तो वो मेरा जॉब प्रोफाइल है यहाँ पे।
1: तो हम अगर हम सीधे सीधे मुद्दे पर आएं, यदि हम आज के विषय की बात करें, तो एक आम चर्चा में रहता है कि जब कभी भी हम अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई बात करते हैं या व्यापार को लेकर के या पैसे को लेकर के बात करते हैं, तो हम केवल बात करते हैं कि हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आप समझिए कि जो आपका वाला वेल्थ मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है, उसके बारे में एक चर्चा दिमाग में आती है कि आखिर वेल्थ मैनेजमेंट है क्या। मतलब हम पैसा कमाने की बात करते हैं, व्यापार कीजिए, जॉब कीजिए या कोई नया स्टार्टअप कीजिए, तो हर किसी में एक बात आती है कि हमने पैसा कमाया। लेकिन जब हम वेल्थ मैनेजमेंट वर्ड यूज करते हैं, तो एक्चुअली वेल्थ मैनेजमेंट है क्या? और दूसरी बात ये कि जब कभी भी वेल्थ मैनेजमेंट की बात आती है, तो हम आम तौर पर समझते हैं कि वेल्थ का सीधा सीधा संबंध होता है उन लोगों से जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, या हम जिनको आमतौर पर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अकूत संपत्ति के जो मालिक हैं, उन्हीं को केवल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इस बारे में आपकी क्या राय है?
2: नहीं, पहली बात तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के ज़माने में वेल्थ प्लानिंग हर एक बंदे के लिए उतनी ही ज़रूरी है। लोगों को ये लगता होगा, बट आई थिंक वो प्योरली गलत फहमी है। अगर वेल्थ प्लानिंग की बात करें तो सरल भाषा में ये है, आपका आज सुरक्षित करना और आपका आने वाले कल का लक्ष्य को प्राप्त करने का सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। तो आप वेल्थ प्लानिंग में आपका, जैसे आज अगर कोई नया बंदा अपनी जॉब शुरू कर रहा है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो छोटे छोटे SIPs करें, अपने इंश्योरेंस करें। कंपनीज होंगी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना सक्सेशन प्लानिंग करें, एस्टेट प्लानिंग करें। तो ये सब काम जो करना होता है, इसको टोटली वेल्थ मैनेजमेंट कहते हैं। एक टाइम पे शायद वेल्थ मैनेजमेंट चॉइस होती थी, लेकिन आज के ज़माने में मेरे नज़रे में तो वेल्थ मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है।
1: अच्छा, एक बात आप बताइए सोनम, आमतौर पर देखा है हमने बहुत सारा लोग कमाई भी करते हैं, उनके सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा सेटल्ड होते हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको एक स्ट्रेस रहता है, इकोनॉमिकल स्ट्रेस अगर आर्थिक तनाव की बात करें, तो उसके पीछे का क्या कारण है?
2: ये देखो, एक वर्ड में अगर मैं बताना चाहूँगी संदीप जी, तो वो है डिसिप्लिन। आज आप किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट करिए, कहीं पर भी करिए, एक कॉमन चीज जो हर प्लेटफॉर्म पे रहेगी वो है डिसिप्लिन। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, लोगों को लगता है कि इनकम माइनस एक्सपेंस इज सेविंग्स, जबकि सबसे गलत है। इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। अगर ये लोग सॉर्ट कर लें कि हम पहले बचाएं और उस बचत में डिसिप्लिन फॉलो करते रहें, तो मुझे लगता है ओवर द टाइम ना ये जिनको भी तनाव हो रहा है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके या अपने अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को लेके, वो कहीं ना कहीं ओवर द टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, डिसिप्लिन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये क्विक मनी वाला अगर आप आपका बिहेवियर होगा तो आप वेल्थ नहीं बना पाएंगे। आप पैसे शायद बचा लेंगे, कुछ कमा लेंगे, लेकिन जब हम वेल्थ प्लानिंग की बात कर रहे हैं उस चीज में सिर्फ और सिर्फ आपको डिसिप्लिन हेल्प करेगा।
1: तो कुल मिलाकर के बात यदि हम करें तो आर्थिक तनाव का जो मुख्य कारण है वो है केवल आपका नजरिया। जैसा कि आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि आमतौर पर हम जब सेविंग्स की बात करते हैं तो होती है कि हमारी इनकम और उसमें से जो खर्चे घटाने के बाद जो हमारे पास पैसा बचता है वो हमारी सेविंग है। लेकिन जो नजरिया है वो हमें बदलने की जरूरत है कि हम अपनी आमदनी में से पहले सेविंग्स को अलग करें अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, और बाकी बचे हुए पैसे को ही खर्च करें। अपनी जो खर्चों की जो भी फहरिस्त है उसको हम इतना मैनेज करके चलें कि हम उसमें ही उसको पूरा कर पाएं। तो बहुत खूबसूरत बात सोनम जी ने अभी हमें बताई है कि एक डिसिप्लिन जो होता है अपनी आय को लेकर के वो रखना बहुत जरूरी है यदि आप अपनी वेल्थ को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों इस चर्चा को जारी रखेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं आपकी संपत्ति के मैनेजमेंट के बारे में, यानी वेल्थ मैनेजमेंट कैसे किया जाए। आप जो पसीना बहाकर मेहनत करके जो पैसा आप कमाते हैं, उसको वृद्धि करने के, उसको बढ़ाने के कौन से उपाय आप अपना सकते हैं, और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट सोनम पारिक, जो एक बड़ी कंपनी में रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड हैं। आज हमने सोनम जी से चर्चा की है आपकी मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में, और कुछ और सवालों के बारे में उनसे जानेंगे और जानकारी लेंगे। तो सोनम, आप एक बात बताइए, यदि कोई युवा, यानी हम जेन जी की बात करते हैं, यंगस्टर्स जॉब करते हैं, तो आमतौर पर देखा जाता है कि जब वो जॉब ज्वाइन करते हैं तो उनको शायद बचत से ज़्यादा कहीं ना कहीं ख्याल रहता है अपनी करंट की जो ज़रूरतें हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने का। तो क्या नज़रिया उस समय पे युवाओं को अपनाना चाहिए, या अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो कोई युवा यदि अपनी नौकरी की शुरुआत करता है अपने करियर की, तो बेसिकली उसको सबसे पहले करना क्या चाहिए?
1: देखिए, आज पढ़ लिख के इतनी मेहनत करके कोई जॉब शुरू करता है तो उसका पहला नज़रिया तो यही होता है कि यार थोड़ा अपने पे खर्च कर लें, नई घड़ी ले लें, बाइक ले लें, गाड़ी ले लें, कहीं घूम आए। और जो मुझे लगता है ऑनेस्टली कहीं गलत नहीं है, आपने अपना एक करियर बिल्ड कर रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, लेकिन डिसिप्लिन जितना जल्दी शुरू हो जाता है ना, उतना ही बेहतर रिजल्ट देता है। तो मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि थोड़ा सा ही सही आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, जो SIP होती है, बेस्ट तरीका। तो आपने जो भी आप इनकम कमाते हो, हम टेक्निकली कहते हैं कि उसका 33-35% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बट प्रैक्टिकली देखें तो नया नया किसी ने अगर जॉब शुरू किया तो वो पॉसिबल नहीं होता। बट एक डिसिप्लिन लाने के लिए, एक फॉर्मेट बिल्ड करने के लिए कम से कम 20% से वो एक SIP शुरू कर दें, वो डिसिप्लिन आ जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे वो अपने इस डिसिप्लिन को, अपनी SIP अमाउंट को बढ़ाते रहेंगे।
0: तो कुल मिलाकर के बात यह है कि यदि आप कहीं से भी इनकम की शुरुआत करते हैं किसी भी एक नए वेतन के रूप में, तो कहीं ना कहीं आपको उसी समय से डिसिप्लिन होना चाहिए ताकि आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर्ड रह सके। और साथ ही साथ एक बात जो समझने वाली है, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास इतनी बिखरी हुई होती हैं कि वो हमेशा आकर्षित करती हैं, और ख़ासकर हमारे युवाओं को, जो कहीं ना कहीं एक जो EMI का एक फंडा चल पड़ा है कि आप सेविंग्स में रेगुलर पेमेंट देने की बजाय आप कोशिश करते हैं कि आप भविष्य की आवश्यकता की चीज़ें भी करंट में खरीद लें और उसके ऊपर खर्चा करें। तो हमें बचने की ज़रूरत है उन सब बातों से। यदि मैं सीधे शब्दों में बात कहूं, जैसे मैंने पिछले भाग में आपसे बात की कि जो वेल्थ मैनेजमेंट है, क्या ये कॉन्सेप्ट केवल उन लोगों के लिए है कि बहुत सारा पैसा होता है? तो मैं उसी बात को एक दूसरे तरीके से कहना चाहता हूं कि यदि कोई युवा है, उसने अभी जॉब ज्वाइन की और वो अपना, जैसे कि आपने कहा कि 20% मिनिमम एक सेविंग करना चाहिए, तो मैं अगर इसको फिगर आउट करूँ कि यदि कोई व्यक्ति मात्र 5,000 रुपये महीने की सेविंग करता है और उसको निवेश करना चाहता है, तो क्या उसको निवेश शुरू करना चाहिए?
1: बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक जो हमारी इंस्टीट्यूशन है SEBI और AMFI, उनका ना पूरा कॉन्सेप्ट यही है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को लेके। आज SEBI ने एक मिनिमम 250 रुपये की भी SIP शुरू करवा दी है। उसका कॉन्सेप्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करें। तो 5,000 तो बहुत बड़ी रकम हो गई, आपको अगर 1,000 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट महीने दर महीने करना है तो भी आप कर सकते हो।
0: तो ये तो बात हुई SIP और म्यूचुअल फंड की। साथ ही साथ अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है, जब हम वेल्थ मैनेजमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको सीधा सीधा अगर हम लिंक करें इन्वेस्टमेंट से, हमने सेविंग की बात की कि ठीक है पहले हमें सेविंग करना चाहिए, बचे हुए पैसे को खर्च करें, लेकिन यदि हम उस सेविंग को इन्वेस्ट करने की बात करें, तो आप क्योंकि एक रिसर्च मार्केटिंग हेड हैं आप कंपनी की, तो आप बेहतर जानती होंगी कि क्या क्या हमारे पास उपाय हैं या क्या अवसर हमारे पास आज की डेट में अवेलेबल हैं। तो लोगों के मन में जो प्रश्न रहता है कि आखिर उनकी जो सेविंग है उसको इन्वेस्ट कहाँ पर करें, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
1: देखिए, मुझे लगता है कहाँ करें से पहले आपको जवाब देना पड़ेगा कैसे करें। ठीक है, आज क्या हो रहा है, आज के डेट में एक बंदे को अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके किसी फैमिली मेंबर में, उसके किसी फ्रेंड में या जानकार में, अगर किसी ने एक कंपनी से या एक स्कीम से पैसा कमाया है तो वो भी उसी में डाल देते हैं। इनफैक्ट इसका मैं संदीप जी आपको बहुत बढ़िया उदाहरण देना चाहूँगी। तो आपने देखा होगा पिछले साल भर से हमने गोल्ड और सिल्वर में बहुत रैली देखी है कि प्राइस बहुत ही शॉर्टअप हो चुके थे। तो म्यूचुअल फंड में गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है ETF। तो अगर आपको बाय करना है तो आप गोल्ड ETF या सिल्वर ETF बाय करते हैं। ये कैटेगरी अपने आप में महीने दर महीने 3-4 हजार करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाती थी। जनवरी में गोल्ड सबसे पीक पे था, ठीक है। उस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो 24 हजार करोड़ की हुई।

0: आज डेट पे जनवरी से अभी तक अगर आप देखोगे तो गोल्ड और सिल्वर काफी करेक्ट हो गए। गोल्ड तकरीबन 20-24% फॉल ले चुका है और सिल्वर भी लगभग उतना ही फॉल ले चुका है। अब उसका नतीजा क्या हुआ, पिछले महीने मई में उसी फंड में से 3,000 करोड़ निकल गए। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि क्योंकि किसी ने देखा कि यार गोल्ड में बहुत पहले इन्वेस्ट कर रखा हुआ था, जनवरी में बहुत रिटर्न मिल गए तो बंदों ने जान में इन्वेस्ट कर दिया।
1: तो यानी लोग टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की बजाय लोगों में, जिसको हम आमतौर पर आम भाषा में भेड़ चाल बोलते हैं, उस तरह का है कि लोग फॉलो करते हैं कि कोई क्या कर रहा है,
0: पास्ट रिटर्न्स देखते हैं, जबकि वो इकलौता तरीका नहीं होता आपका इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए संदीप जी, तीन चीजें हर एक बंदे को समझना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। पहली चीज है आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। जब मैं रिस्क प्रोफाइल बोलती हूँ तो उसका मतलब ये है कि मार्केट्स में जो हम पिछले 2 साल से देख भी रहे हैं, अगर रिटर्न नहीं आया तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? क्या आप शांति से बैठ के वेट करोगे, आप पैनिक करोगे या आप बेच दोगे? ऐसे करके ना बहुत क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हमारी कंपनी भी करती है, वो क्वेश्चंस का आप जवाब देते हो, उन जवाब से हमें पता चल जाता है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। दूसरी चीज जो हम करते हैं वो है इन्वेस्टमेंट होराइजन, कि मानो मैं कह रही हूँ मुझे यहाँ से 1 साल के लिए पैसा रखना है, 2 साल के लिए रखना है, 5 साल के लिए रखना है, 10 साल के लिए रखना है, तो दूसरी चीज आपको जाननी होगी कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है। तीसरी चीज आपका पर्पस क्या है। आज नए युवाओं के लिए शायद पर्पस होगा कि मुझे 2 साल बाद एक यूरोप ट्रिप लेना है, 4 साल बाद एक गाड़ी लेनी है, घर लेना है। मिडिल एज वालों के लिए होगा बच्चों की एडुकेशन या रिटायरमेंट प्लान। तो तीसरा सवाल होगा पर्पस, कि आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है। फिर जाके आता है कि आपको किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है। आज लोग गलती यही कर रहे हैं, वो शुरू ही नीचे से कर रहे हैं कि किस प्रोडक्ट में डालें, जबकि पहले समझना होगा ये तीन चीजों का जवाब। जब इन तीन चीजों का आपको जवाब मिल जाएंगे ना, तो आपका प्रोडक्ट अपने आप बन जाएगा, आपका एक पूरा एसेट एलोकेशन बन जाएगा कि उन तीन सवाल के हिसाब से आपको इक्विटी में कितना रखना है, डेट में कितना रखना है, ग्लोबल इन्वेस्टिंग में कितना रखना है और गोल्ड और सिल्वर में कितना रखना है।
1: मतलब अगर हम सीधी बात करें तो वेल्थ मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो एक्चुअली शुरू होता है, सबसे पहले आपको स्वयं को पहचानने की जरूरत है कि आपकी अपनी आवश्यकताएं हैं क्या। यदि हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आपकी अपनी जरूरतें क्या हैं, उन पैरामीटर्स पे कौन सी चीज फिट बैठती है। जब आप उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जवाब मिल जाएगा। और यदि इस प्रकार का जवाब ढूंढने में आप सक्षम नहीं हैं, वहीं पर काम शुरू होता है किसी वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट का।
0: करेक्ट, एकदम सही।
1: तो साथ ही इस चीज में एक और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि आमतौर पर आपने देखा होगा भारतीय गृहस्थी में महिलाओं का भी पूरा एक रोल रहता है, वो भी एक गृहस्थी जीवन बिताते हुए भी उनके पास अपनी एक कुछ सेविंग्स होती हैं, उनकी भी भागीदारी काफी हद तक हमारी जो अगर हम वेल्थ की बात करें तो उसमें होती है। तो उनको किस तरह से इस वेल्थ मैनेजमेंट का पार्ट बनना चाहिए या उनके लिए क्या स्कोप है वेल्थ मैनेजमेंट में?
0: सर देखिए, एक तो सबसे पहली बात, वुमेन इन्वेस्टर्स ने खूब तरक्की कर ली है इसमें। मैं भी कुछ दिन पहले एक डेटा देख रही थी, तो 2020 की बात है, कोविड के टाइम पे जो हमारे म्यूचुअल फंड का AUM है उसका तकरीबन 5-1 लाख करोड़ रुपए वुमेन इन्वेस्टर्स का होता था। दिसंबर 2025 में वो डेटा है 17.5 लाख करोड़ का। तो ये एक डेवलपमेंट हुआ है कि वुमेन इन्वेस्टर्स और पे और इन्वेस्ट करने लगी है। तो इसमें जो मुझे लगता है, ऑब्वियसली मैं नोटिस करती हूँ कि वुमेन बहुत क्लियर हैं, उनको कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं बनना है, उनको फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन चाहिए, हर एक डिसीजन का पार्ट बनना चाहते हैं। और उससे मैं ये कह रही हूँ, हो सकता है कई जगहों पे आप शायद गलत भी हो जाओ, बट उससे निराश नहीं होना चाहिए।
1: लेकिन एक बात है कि जो उनका दायरा है वो काफी, क्योंकि घरेलू महिला है तो काफी सीमित होता है, तो उनके लिए कौन से प्रोडक्ट या कौन से तरीके उपलब्ध हैं कि वो अपनी जमा की हुई जो सेविंग्स उनके पास रहती है उसको इन्वेस्ट करने के उनके पास कौन से सरलतम उपाय उपलब्ध होते हैं?
0: देखिए, हर एक इन्वेस्टमेंट उनके लिए ओपन है, ऐसा नहीं है। आज अगर वो हाउसवाइफ हैं, वो जॉब नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए सिक्योर्ड सेफ थोड़े से बेटर सेफ फंड्स होते हैं जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई जॉब करने वाले हैं तो वो उस, देखिए फंड्स आप अपेरेंटली सेव ही रहेंगे, आप वुमेन के ले लो, मेन के ले लो, हाँ, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में हर एक तरीके के प्लान्स हैं आपके पास। अगर आप कहते हो कि मुझे 6 महीने के लिए ही पैसा रखना है तो उस हिसाब से भी आप अपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे लगता है, एंड प्लस आपने अभी एक बात बोली कि वुमेन क्योंकि यू नो ऑब्वियसली मेजर हाउस मेकर्स ही रही हैं, जो मुझे लगता है वो ये है, विमेन का ना बहुत ही एक नेचुरल इंस्टिंक्ट आता है जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं. कहीं ना कहीं उनका इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या सही है, क्या ये सही रहेगा, या अगर उसमें कुछ भी उनको ऊपर नीचे है तो मुझे लगता है वो शायद कंपैरेटिवली जल्दी आइडेंटिफाई कर सकती है.
1: बट आज की रेट में ये तरीके बड़े साइंटिफिक हो गए हैं और वेल्थ मैनेजमेंट और बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करती है यदि हम उन तरीकों को अपनाते हैं. तो अभी इस चर्चा को जारी रखेंगे म्यूजिकल ब्रेक के बाद. सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ.
2: घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम बात कर रहे हैं आपकी बचत को निवेश करने के फंडों को लेकर के, तौर तरीकों को लेकर के, जिसे हम आधुनिक रूप में अगर हम भाषा में नाम बोलें तो वेल्थ मैनेजमेंट का। और हमारे कुछ सवालों का आपको जवाब देने के लिए आई हुई है हमारे पास रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड सोनम पारिक, जो एक कंपनी में वेल्थ मैनेजमेंट पे ही अपनी सलाहों से बहुत से लोगों का पैसा बढ़ाने का या उनको ऐसे नए उपाय सुझाने का, वो साइंटिफिक तरीके से समझाने का काम करती हैं कि जिससे उनका कमाया हुआ पैसा कम समय में ज़्यादा वृद्धि पा सके, यानी ज़्यादा बढ़ सके। तो सोनम, एक बात जो आम तौर पे जब कभी भी हम बात करते हैं फ्यूचर सिक्योर करने की, चाहे कोई युवा है या कोई गृहिणी है या कोई भी है, तो एक थॉट हर किसी के मन में आता है जब वो सेविंग करता है या निवेश करता है, तो दो तरीके दिमाग में चलते हैं। एक तो ये कि हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, आमतौर पर आपने देखा होगा, और एक दूसरा थॉट आता है जब वो अपने लिए बात करते हैं कि अपनी रिटायरमेंट के बाद उनका किस तरह से उस पैसे का यूज वो कर सकते हैं, या क्या बेहतर तरीके हैं जो रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक बेहतर रिटर्न दे पाएं या एक आरामदायक जिंदगी वो बिता पाएं रिटायरमेंट के बाद। तो आखिर यदि हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो कब रिटायरमेंट का जो थॉट है उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता होती है, या चाहे हम किसी वेतन परस्त व्यक्ति की बात करें या किसी बिजनेसमैन की, तो जो रिटायरमेंट की प्लानिंग है वो एग्जैक्टली कब शुरू की जानी चाहिए आपकी राय में?
1: ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि आप कहो कि मैंने इतने साल जॉब कर लिया उसके बाद मैं रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करूं। आप इनफैक्ट जॉब जब शुरू कर रहे हो, आपकी इनकम शुरू हुई है, आप तब से भी प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप तीन उन सवालों के जब जवाब देते हो, तो तीसरा होता है आपका पर्पस। तो समझिए कि मैंने अभी अभी अपनी जॉब शुरू करी है और मैं कह रही हूँ कि यार मुझे 4 साल बाद घर लेना है, उसके बाद मेरा बट एक रिटायरमेंट प्लान भी मुझे करना है। तो कौन वेल्थ एडवाइजर क्या करते हैं, या जनरली लोगों को भी क्या करना चाहिए, आप एक एसेट एलोकेशन करोगे। उसका क्या मतलब हुआ है कि मेरी इनकम से मैं एक्स अमाउंट बचा सकती हूँ, तो वो एक्स अमाउंट के हिस्से बनेंगे कि एक हिस्सा मैंने रखा है अपने घर खरीदना है उसके लिए, एक हिस्सा मैंने रखा है रिटायरमेंट के लिए। अब क्योंकि मैंने अभी अभी करियर शुरू किया और मेरे रिटायरमेंट में बहुत लंबा टाइम है, तो मेरे लिए जो रिटायरमेंट के प्रोडक्ट्स होंगे वो अलग होंगे। वो शायद एक लॉन्ग टर्म होगा जिसमें मैं थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले पाऊंगी, थोड़ा स्ट्रांग इक्विटी होगा, तो उस हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट होगी। दूसरा आपका है कि आपको 4-5 साल बाद मुझे घर लेना है, वो पैसा उसमें जा रहा है, तो मैं उस फंड में लूंगी जो मुझे पता है कि 5 साल में एक एक्स अमाउंट बना के दे सके, ताकि आपके जो भी माइलस्टोन है उसको हम अचीव कर सके। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप जब आप चाहो आप अपना रिटायरमेंट शुरू करो। हाँ, परसेंटेज चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने अभी अभी शुरू किया है, मेरे जॉब मेरे रिटायर होने में टाइम है, तो अगर मैं समझो 100 रुपये बचा रही हूँ तो उसका मैं शायद सिर्फ 10 रुपये डालूंगी रिटायरमेंट में, 90 कहीं और डालूंगी। फिर धीरे धीरे जैसे मेरी इनकम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे मैं अपना एलोकेशन बढ़ाती रहूंगी।
0: तो यदि हम सरल शब्दों में बात करें तो रिटायरमेंट की जो भी योजना है वो किसी भी समय आप आरंभ कर सकते हैं, लेकिन वो योजना किस प्रकार की होगी, उसमें एलोकेशन ऑफ फंड्स होगा किस प्रकार से, वो डिपेंड करता है आपकी अपनी स्थिति के ऊपर कि आप किस स्थिति में हैं और आपकी फ्यूचर को लेकर के प्लानिंग क्या है। क्योंकि हर किसी व्यक्ति की अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं, किसी के बच्चे फॉरेन एजुकेशन के बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं, कोई अपने लिए एक बहुत अच्छा बड़ा घर प्लान कर रहा होता है, या कोई बहुत आरामदायक जीवन जीना चाहता है रिटायरमेंट के बाद। तो यदि हम सरल शब्दों में बात करें तो आपकी आवश्यकताओं के, आपकी ज़रूरतों के या आपकी इच्छाओं के अनुरूप ही आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए, उसका कोई समय सुनिश्चित नहीं है। तो एक बात और जो वेल्थ मैनेजमेंट को लेकर के बात आती है दिमाग में जब कभी भी हम सोचते हैं, तो इतनी तरह के लुभावने विज्ञापन आते हैं तरह तरह की, म्यूचुअल फंड में कभी किसी में इन्वेस्टमेंट की बातें करती हैं, तो जो बातें हैं उन बातों में एक सबसे ज़्यादा जो आजकल पॉपुलर वर्ड है बहुत आमतौर पर, अभी आपने कई बार हमारी चर्चा में SIP का जिक्र किया म्यूचुअल फंड को लेकर के, तो म्यूचुअल फंड के बारे में आज के समय में सबसे बड़ा मिथ है क्या, मतलब लोगों के मन में जो शंकाएं रहती हैं उनमें क्या सबसे बड़ी जो मिथ है वो म्यूचुअल फंड को लेकर के क्या है?
1: मुझे लगता है सबसे बड़ा मिथ जो है लोगों को वो ये है कि म्यूचुअल फंड मतलब शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड मतलब इक्विटी, जबकि ऐसा नहीं है। आज अगर एक बंदा कहता है, क्लाइंट कहता है कि मुझे एक ही दिन के लिए पैसा रखना है, तो म्यूचुअल फंड में ओवरनाइट फंड्स होते हैं। कोई कहता है मुझे 7 से 10 दिन के लिए पैसा रखना है, तो उसके लिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कोई कहता है नहीं मुझे 2 से 3 महीने रखना है, तो उसके लिए लिक्विड फंड्स है, लिक्विड प्लस फंड्स है। कोई कहता है मुझे एक साल के लिए रखना है, तो उसके लिए आर्बिट्राज फंड्स हैं। तो लोगों का ये मिथ है कि म्यूचुअल फंड मतलब इक्विटी मतलब कभी भी गिर सकता है, वो बहुत गलत है। आज आपको जो कॉम्बिनेशन चाहिए आप उस कॉम्बिनेशन में म्यूचुअल फंड का एक्सेस ले सकते हैं। इक्विटी डेट चाहिए, इक्विटी कम डेट ज़्यादा चाहिए, वो हो सकता है। आपको चाहिए इक्विटी कम डेट कम बट उसमें थोड़े कमोडिटीज़ भी आ जाए तो वो भी हो सकता है। प्योर डेट चाहिए, वो भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से लोगों को ये समझना होगा म्यूचुअल फंड सिर्फ और सिर्फ इक्विटी तक सीमित नहीं है, उसमें और भी ऑप्शंस हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं।
0: यानी अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड अपने आप में एक बंच है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद उपलब्ध हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास हैं, और मैं जहां तक समझता हूं कि वहीं पर कहीं काम शुरू होता है एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट का।
1: करेक्ट।
0: तो दोस्तों इस चर्चा को जारी रखेंगे छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद और जानेंगे कि आपके धन की वृद्धि साइंटिफिक तरीके से एक वेल्थ मैनेजमेंट के प्रोग्राम को अपना करके एक डिसिप्लिन लाइफ के तरीके से किस प्रकार से की जा सकती है। तो जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ और फिर हाजिर होते हैं इस चर्चा को जारी रखें।

0: वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका नई सोच नई दिशाएं में। और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल। और दोस्तों आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो है आपके पैसे से जुड़ा हुआ, यानी आपकी सेविंग्स को कैसे हम कम एफर्ट्स में ज़्यादा बढ़ा सकते हैं एक इन्वेस्टमेंट के जरिए। और उसके लिए ज़रूरत होती है हमें एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट की। और हमारे बीच आज हमारी खास मेहमान हैं जो रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड हैं एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में, सोनम पारिक। आज हमने सोनम से जाना कि किस प्रकार से आप अपनी जो सेविंग्स है, एक बहुत बड़ा उन्होंने एक मंत्र बताया कि आपको नज़रिया बदलने की आवश्यकता है कि आपको पहले अपनी इनकम में से सेविंग्स को अलग करना है, बाकी बचे हुए पैसे का इस्तेमाल करना है अपनी ज़रूरतों पर, ना कि ज़रूरतों के बाद बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में आता है यदि आप अपने इस नज़रिए को बदलते हैं। और ख़ासकर इस मंत्र को अपनाने की आवश्यकता है हमारी जेन जी को, हमारे युवाओं को, ताकि आपका फ्यूचर बेहतर बन सके। तो सोनम, आज एक मुद्दा और जो आमतौर पर आप जैसे पूरी चर्चा में हमने बात की, आखिर पैसा हमारा है, हमारे सामने बहुत सारे विज्ञापन, बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, क्यों हमें ज़रूरत है एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट की? मतलब हमारे पास ऑप्शंस हैं, पैसा हमारे पास है, हमें पता है कि किस पे कितनी रिटर्न आ रही है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो वो एक आम आदमी या कोई भी जो व्यक्ति एक बहुत अच्छे पद पर कहीं है या एक बड़ा व्यापार चला रहा है, तो उसे वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट आखिर चाहिए क्यों?
1: देखिए, सेम वजह है जिसके लिए लोगों को डॉक्टर चाहिए होता है, लॉयर चाहिए होता है, फिटनेस ट्रेनर चाहिए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए होता है। बेसिकली आपको एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल चाहिए जिसकी एक्सपर्टीज हो उस इंडस्ट्री में। आज करने को, आज तो एआई का ज़माना है, आप खुद इन्वेस्टमेंट कर सकते हो पूछ के। एंड वैसे भी आज के युवाओं में तो DIY चलता है, डू इट योरसेल्फ। लेकिन ये दोनों चीज़ों में जो रोल प्ले करेगा वो है आपके पास्ट रिटर्न्स, जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लोगे। एंड जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सिर्फ पास्ट रिटर्न पे नहीं होता है। आज क्या होता है कि वेल्थ एडवाइजर के पास ना एक्सेस होता है, वो फंड मैनेजर से बात करते हैं, वो उनकी रिसर्च टीम से बात करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी समझते हैं, उनके फ्यूचर प्लान समझते हैं, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि क्या ये स्ट्रैटेजी और ये प्लान मेरे क्लाइंट के लिए सूटेबल है कि नहीं। अगर है तब जाके वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं। तो जो आप खुद करते हो वो आप पास रिटर्न्स के बेसिस पे करते हो। एक वेल्थ एडवाइजर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे बनाता है वो प्रोफाइल। दूसरी चीज़, आपका टाइम मैनेजमेंट। देखिए, आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट एक फुल टाइम जॉब है। अगर आपका अपना करियर है जिसमें आपको फुल टाइम देना पड़ता है, तो आप कभी भी इन्वेस्टमेंट के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक सेक्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, उस सेक्टर में एक कोई पर्टिकुलर कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो इन सब में बहुत टाइम जाता है। आज एक वेल्थ एडवाइजर का फुल फ्लेज्ड काम यही है। तो कहीं ना कहीं उनके उनकी हेल्प लेने से आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है। और तीसरा जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ वो ये है कि वेल्थ एडवाइजर आपके लिए एक इमोशनल सपोर्ट और बफर बन जाता है। आज हमने देखा है कि कोविड के वक्त, डीमोनेटाइजेशन के वक्त, काफ़ी लोगों ने पैनिक में पैसा बेच दिया, अपने फंड्स बेच दिए। यही अगर कोई वेल्थ एडवाइजर होता तो वो कहीं ना कहीं एक इमोशनल इंटेलिजेंस से या फिनेंशियल इंटेलिजेंस से आपको हैंडल कर लेता। एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसको हम हमारे इंडस्ट्री में 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, विच इज़ कंपाउंडिंग। जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है ना, वो ऐसे पैनिक सेलिंग में कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो आज अगर एक वेल्थ एडवाइजर होगा आपके पास तो वो आपको सही गाइडेंस दे पाएगा। तो दैट इज़ द रीज़न मुझे लगता है कि कोई भी स्टेज पे आप हो, आपने करियर शुरू किया है, आप कॉर्पोरेट हो, आप ग्रो कर चुके हो, आपको एक वेल्थ एडवाइजर बहुत काम आएगा आपका इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स या इन्वेस्टमेंट्स को आगे ले जाने के।
0: यानी अगर हम बात करें तो एक व्यापारी केवल अपने व्यापार से संबंधित सूचनाओं के बारे में जानकारी रखता है, या कोई, यदि हम किसी सैलरीड पर्सन की बात करें या प्रोफेशनल की बात करें, तो हर किसी का अपना एक क्षेत्र होता है। वहीं पर कहीं ना कहीं जो वेल्थ एडवाइजर है, जो वेल्थ मैनेजमेंट जो एक्सपर्ट हम बात करते हैं, उनका भी अपना एक क्षेत्र है। वो इसी क्षेत्र से संबंधित उत्पाद या आपके पैसे की जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पर आपको बेहतर रिटर्न दे पाएगी, तो उनके पास सोर्सेज ज़्यादा तरीके से होते हैं। और एक, जैसे हमने शुरू में बात की कार्यक्रम के शुरू में, कि पैसे को बढ़ाना अपने आप में एक विज्ञान है, कमाना एक कला हो सकता है लेकिन बढ़ाना विज्ञान है। तो उस विज्ञान के जो एक्सपर्ट हैं वो वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजर होते हैं। अच्छा, दूसरा एक बात, तो आम तौर पर जब कभी भी हम बात करते हैं सेविंग्स की, तो एक पहले तरीका होता था कि लोग थोड़े थोड़े पैसे बचा करके अपने पास घर में रख लेते थे, बैंकों में नहीं जमा कराते थे क्योंकि बैंकों में खाते नहीं होते थे। लेकिन व्यवस्था बदली तो लोगों ने बैंकों में जमा कराना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके मन में एक शंका हमेशा बनी रहती थी कि यदि हमें कभी जरूरत पड़ी इमरजेंसी के टाइम पे तो हमारा पैसा हमारे पास होना चाहिए। बैंकों की सर्विसेज ऐसी हो गई, कार्ड्स बन गए, डेबिट कार्ड बन गए, एटीएम बन गए कि आप कभी भी पैसा निकाल लो। लेकिन जैसे आज का आधुनिक युग आया, यदि हम वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें तो क्या वेल्थ मैनेजमेंट करके या पैसे को हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर इन्वेस्ट करके क्या ये सुविधा हमारे पास एक आम आदमी के दिमाग में जो थॉट आता है कि यदि पैसे की इमरजेंसी में आकस्मिक कोई आवश्यकता पड़ती है तो क्या उसमें भी वही सुविधा उनको उपलब्ध होती है कि या इन्वेस्टमेंट के बाद वो फंस जाते हैं 3 महीने 6 महीने 1 साल के लिए कि उनको पैसा बीच में अगर जरूरत है तो मिलेगा या नहीं मिलेगा?
1: देखिए क्या होता है ना, हर फंड का अपना एक एग्जिट लोड बोलते हैं इसको या लॉक इन पीरियड होता है। हर फंड के जो आप इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखोगे या जो फैक्ट शीट कहते हैं हम, उनमें डेटा हमेशा आता है। तो इक्विटी फंड्स होंगे जिसमें लॉक इन नहीं होगा। लॉक इन मतलब कि आपका पैसा आप निकाल सकते हो, साल भर से पहले अगर आप निकालते हो तो कोई चार्जेस लगते हैं। लेकिन जो मैं पहले बता रही थी कि जो 1 दिन 2 महीने 6 महीने के लिए फंड्स में पैसा रखता है उसमें कोई एग्जिट लोड नहीं होता, आप कभी भी निकाल सकते हो। मुझे लगता है जो सवाल आपने पूछा है ना, ये शायद आपके भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से आया होगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में और म्यूचुअल फंड्स कह लो, वेल्थ कह लो, इंश्योरेंस कह लो, इनमें ना मिस सेलिंग बहुत होती है। तो क्योंकि आपने अगर किसी से बाय किया है और कोई टारगेट प्रेशर होगा या कोई भी वजह हो सकती है, उस वजह से जब आपको कोई प्रोडक्ट बेचने जाता है तो वो कहीं ना कहीं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है, क्योंकि उनको पता है कि आपको इतने टाइम में चाहिए होगा तो वो उस हिसाब से आपको जवाब देते हैं। लेकिन आप कभी भी कोई भी स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका एक 1 पेज में आपको सब साफ दिख जाता है। तो कुछ फंड है जिसमें आपको जब चाहिए तब पैसा आएगा। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि एटीएम कार्ड जैसा नहीं होगा कि आपने आज चाहा और आज पैसा आ जाएगा। मिनिमम से मिनिमम जो है वो ये है कि आप आज रिडेम्पशन डालते हो तो अगले दिन आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। और एक आधी स्कीम में ऐसा होगा जहाँ आज रिडेम्पशन डालोगे तो 2 दिन बाद आएगा, बट ये मैक्सिमम है, इतने में आपका पैसा आ जाता है। हाँ, ये नहीं है कि आप चाहो कि तुरंत आए,
0: मतलब लिक्विडिटी जो है वो स्लो नहीं है, बहुत जल्दी आपको पैसा मिल जाता है। क्योंकि यदि आकस्मिक आवश्यकता की बात करें तो उतना फंड तो आप बैंक में भी रख सकते हैं। लेकिन एक सलाह वाली बात है कि यदि आपको पैसे में वृद्धि भी चाहिए और समय पर पैसा चाहिए तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास हैं।
1: देखिए आज ना क्लाइंट्स के लिए बहुत आसान हो गया इन्वेस्टमेंट करना। जैसे मैंने आपको बताया कि सेबी का माइंडसेट ही यही है कि इन्वेस्टर्स के लिए जितनी चीजें आसान बना सके। अब इट्स एवरीथिंग इज ऑन अ क्लिक, आप अपने ऐप के थ्रू बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो आज इन्वेस्टमेंट कन्वीनियंट बहुत हो गया है। जो पहले होता था कि आपको ब्रांच जाके चीजें करनी पड़ती थी, आज वो आपके क्लिक ऑफ अ बटन पे है। तो इन्वेस्टमेंट्स बहुत सरल हो गया है, तरीका बहुत सरल हो गया है
0: अगर हम डिजिटल युग की बात करें आज तो। बिल्कुल, तो दोस्तों इस चर्चा को जारी रखते हैं इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल। आज हम चर्चा कर रहे हैं वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर अपनी विशेष मेहमान सोनम पारिक के साथ। तो फिर हाजिर होते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं आपकी वेल्थ को बढ़ाने के उपायों के ऊपर एक वेल्थ एडवाइजर के साथ, जो हैं सोनम पारिक, जो एक वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, वेल्थ एडवाइजर हैं, रिसर्च एंड मार्केटिंग हेड है कंपनी में। और वो आज हमें बता रही हैं कि आखिर वेल्थ मैनेजमेंट है क्या और वेल्थ एडवाइजर की या वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट की हमें ज़रूरत पड़ती क्यों है। सोनम, एक बात जो मैंने भी कार्यक्रम के पिछले हिस्से में भी कही थी कि पहले एक व्यवस्था थी कि लोग आमतौर पर जो सेविंग होती है, बचत होती है, उसको घर में रखते थे, पैसा संभाल के रख दिया। या बहुत सारे हमने किस्से ऐसे भी सुने हैं कि पैसे को घड़ों के अंदर बढ़ के दबा दिया, सोने के सिक्के दबा दिए, तो एक व्यवस्था चलती थी। लेकिन जब से बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ और अगर हम आज लेटेस्ट बात करें तो डिजिटल युग हमारा है, तो क्या ये जो व्यवस्था है वास्तव में वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजरी, जिस प्रकार की आप जो आपका व्यवसाय जो प्रोफेशन है, वो किस प्रकार से देखता है इस बात को कि हमें ये पैसा जो इन्वेस्ट करना है वो कैसे हमारी देश की इकोनॉमी में हेल्प करता है। मतलब अगर हम सेविंग्स की बात करें तो सेविंग तो आपने पैसा बचा करके अपने पास रख लिया तो वो भी सेविंग है, और वो आपने बैंक में अपने अकाउंट में रख लिया वो भी सेविंग है। लेकिन यदि हम डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो कैसे हेल्प करता है हमारे देश की इकोनॉमी में।
1: देखिए, आपने जो कहा कि घर पे पैसा रखते हैं वो भी सेविंग है और जो बैंक में रखते हैं वो भी सेविंग है, एक्चुअली वो नहीं है। देखिए, सेविंग का मतलब ये नहीं है कि मैंने पैसा इकट्ठा कर लिया। सेविंग का मतलब बेसिकली यही है कि आगे चल के जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन जो हम कहते हैं, मेरा पैसा उसको बीट कर पाए। ठीक है, तो आज अगर सरल भाषा में बोलूँ तो इन्फ्लेशन अगर 3.5% 4% चल रही है तो मेरा पैसा एटलीस्ट उतना बढ़ना चाहिए, तब वो नॉर्मल पैसा कहलाया जाएगा, तब भी वो रिटर्न नहीं है। राइट, रिटर्न वो होगा जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद भी जो मैं पैसा कमा रही हूँ वो एक्स्ट्रा है,
0: जो उसकी ग्रोथ है वो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली थोड़ी ज्यादा हो।
1: एग्जैक्टली। अब आपने घर पे पैसा रखा, आपने साल 5 साल 6 साल रखा, उसने कोई रिटर्न नहीं दिया, लेकिन महंगाई तो बढ़ गई तो आपकी जो वैल्यू थी मनी की वो कम हो गई। और सेम हिसाब चलता है जो आपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा होगा, वो पैसा वैसे का वैसा ही है, जो ब्याज आता है थोड़ा बहुत वो आ गया, लेकिन इन्फ्लेशन उससे कई ज्यादा है। तो हुआ क्या, आपके जो पैसा है उसका वैल्यू कहीं ना कहीं कम हो गई, इसीलिए आप कहते हो कि आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो। देखिए, आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो ही इकोनॉमी चलेगी। राइट, ये पूरा एक सर्कल है। आप कंज्यूम करोगे तो कंजम्पशन बढ़ेगी हमारी देश की कंजम्पशन बढ़ेगी, तो जो कंपनियां वो प्रोडक्ट बनाती हैं वो चलेंगी तब हमारा मार्केट चलेगा तो लोगों को रिटर्न मिलेगा। तो ये पूरा एक विशेष सर्कल है। अगर आपने कंज्यूम ही नहीं किया

0: होगा, जब तक उसमें पैसा जा कर के इकोनॉमी में ना जाए तब तक हम उसको एक तरह की सेविंग्स ना माने, ये हमारा एक थॉट होना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात आपने कही और समझने की बात है कि नजरिया हमें बदलना जरूर पड़ेगा कि हम आम तौर पर जो एक मिथ पाल के रखते हैं दिमाग में कि जो पैसे बचेंगे उनको हम इन्वेस्ट करेंगे, जबकि हमें सोचना ये चाहिए कि जो पैसा हमारे पास बचे उसे खर्च करना है, यानी पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देनी है। तो एक बहुत बड़ा थॉट आज के इस प्रोग्राम में, इस चर्चा में निकल के आया है। तो सोनम, एक बात और मैं जो जानना चाहता हूँ, यदि हम एक समअप करें इस सारी बात को, जिस प्रकार के विचार आपने हमारे सामने रखे, तो निश्चित रूप से एक वेल्थ एडवाइजर या एक वेल्थ मैनेजमेंट जो एक्सपर्ट होता है वही ऐसे थॉट रख सकता है जिस प्रकार से आपने हमें चीज़ें समझाई कि क्यों एक वेल्थ एडवाइजर की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि हम कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर के जाएं तो हमारे जो लिसनर्स हैं रेडियो मनोरंजना के, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहती हैं?
1: देखिए, आज हर कोई, हमारी गवर्नमेंट, हमारे फंड मैनेजर्स इंडिया ग्रोथ स्टोरी की बात कर रहे हैं, जो कि सही भी है। ये ग्रोथ स्टोरी का पार्ट आप तभी बन पाएंगे जब आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। आपको ये समझना है, हर एक आपके लिसनर्स को, कि आप किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से, किसी भी अमाउंट से इस इन्वेस्टमेंट जर्नी का पार्ट बनिए। आप सोचिए आप क्या कर सकते हैं, आप कितना पैसा बचा सकते हैं, कितने टाइम के लिए रख सकते हैं, को कितनी भी छोटी से छोटी अमाउंट हो, लेकिन इस इंडस्ट्री का, इस इन्वेस्टमेंट जर्नी का एक फ्लेवर लीजिए। जब आप फ्लेवर लेंगे, जब आप पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आने लगेगी, काफ़ी आपका पर्सपेक्टिव खुलेगा, काफ़ी आप चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो मेरे आपके लिसनर्स से बस यही रिक्वेस्ट है कि आइडेंटिफाई करिए आपकी वेल्थ जर्नी क्या है, बट प्लीज़ डू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी किसी भी फॉर्म में। आप एक एडवाइज़र के साथ करना चाहते हो वो भी चलेगा, आप इंडिपेंडेंटली करना चाहते हो वो भी चलेगा, बट ट्राई टू रीड मोर, आप सही जगहों से इंफॉर्मेशन लीजिए एंड उस हिसाब से फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करिए।
0: क्योंकि आमतौर पर हमने देखा जितनी भी स्कीम्स आती हैं उसके बाद फिर एक लाइन आ जाती है कि जोखिम और मार्केट,
1: सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क।
0: तो उन सब चीजों के बारे में यदि कोई राय कहीं से मिल सकती है तो आपको निश्चित रूप से एक वेल्थ एडवाइजर ही दे सकता है। तो आज के कार्यक्रम में दोस्तों हमने जाना कि आखिर कमाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस कमाई में से कुछ बचत करके उसको निवेश करना, और साथ ही साथ यदि आप उस निवेश पर एक बेहतर रिटर्न चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि वो निवेश कहीं ना कहीं आपके उन सपनों को पूरा करे, जो सपने मन में लेकर के आपने वो निवेश किया या वो बचत की है, तो आपको एक बेहतर वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट या वेल्थ एडवाइजर की ज़रूरत पड़ती है, जो अपनी अपनी जो एक्सपर्टीज़ है उसका फ़ायदा आपकी वेल्थ को बढ़ाने में दे सके। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि आपके पास पैसे का वॉल्यूम कुछ भी है, आपकी बचत का आकार कुछ भी है, लेकिन आप भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन सकते हैं, आप भी वेल्थ मैनेजमेंट का ही हिस्सा बन सकते हैं। उसमें कोई भी आकार या कोई समय बिल्कुल नहीं होता। हालाँकि जो भी प्रोग्राम आपको चूज़ करना है, किसी भी चीज़ में आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो वो आपकी स्थिति के ऊपर, आपके पैसे के आकार के ऊपर कि आप बचत कितनी है, आपकी आयु कितनी है, या आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं उसके ऊपर निर्भर करती है। तो आज इन सभी सवालों के हमने जवाब जानने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपके बहुत सारे जो मन में प्रश्न हैं वो कहीं ना कहीं उनके जवाब आपको आज मिले होंगे। और इस चर्चा ने आज हमें ये भी समझाया कि धन केवल कमाने की नहीं बल्कि उसे सही दिशा देने की भी आवश्यकता है, यानी केवल पैसा कमाना पर्याप्त नहीं है बल्कि उसका इन्वेस्टमेंट भी सही तरीके से करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, इसी संदेश के साथ आपसे लेते हैं आज्ञा और अगले प्रोग्राम में एक नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तो सोनम, आज आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच
1: फॉर कॉलिंग मी हियर।
0: तो दोस्तों, इस प्रोग्राम में आज इतना ही। अगले प्रोग्राम में एक नए मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए संदीप सिंगल को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: ए सुन रुबिया, प्यार हो गया
1: सच,
0: प्यार हो गया क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ। और आज की कहानी है अंतिम अध्याय, जिसे लिखा है उषा वधवा ने।

0: बेहद फर्क था गांव और शहर के जीवन में, लेकिन गांव का स्कूल 10वीं कक्षा तक ही था। उस साल मामा जब माँ से राखी बंधवाने आए तो बोले,
1: बहुत समझदार है तुम्हारा बेटा, इसे मेरे साथ शहर भेज दो। पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो मुझे इस बात की संतुष्टि होगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाया।
0: ये मेरा सौभाग्य ही था कि मुझे जितने अच्छे मामा मिले थे उतनी ही अच्छी मामी भी थी, जिन्होंने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया और अपने ही बच्चों जैसा प्यार भी दिया। मामा ने मेरा दाखिला उसी स्कूल में करवा दिया जिसमें उनके अपने बेटे उपेंद्र ने उसी साल 12वीं पास की थी। कहां गांव का दो कमरों वाला स्कूल, जिसमें ना तो टीचर्स रोज आती थी और ना ही बैठने की पूरी व्यवस्था थी, और कहां शहर का नामी स्कूल जिसमें अगर फीस ज्यादा थी तो सुविधाएं भी पूरी थी, रोज पढ़ाई, हवादार बड़े बड़े कमरे और लंबा चौड़ा खेल का मैदान। मेरे नंबर अच्छे होने के कारण मुझे दाखिला तो मिल गया था, लेकिन मैं थोड़ा घबराया हुआ भी था। शुरू में उपेंद्र ने मेरा खुले दिल से स्वागत किया। दो बहनों का अकेला भाई, मुझ में उसे अपना एक संगी मिल गया। उम्र में भी तो 2 साल का ही अंतर था। वो मेरे जीवन का सखा, गाइड, सब कुछ बन गया। मैं उसे मन की अपनी हर बात कहता और हर बात पर उससे सलाह लेता। पढ़ाई में उपेंद्र का खास ध्यान नहीं था, शायद उसे अपने पिता का जमा जमाया व्यापार नजर आ रहा था। लेकिन मामा मामी चाहते थे कि व्यापार में आने से पहले उपेंद्र अच्छे से पढ़ लिख ले। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी भी अच्छी शिक्षा दिलवाने के बाद ही की थी। लेकिन उपेंद्र को मोटिवेट करने के लिए जब भी मामा मामी मेरी लगन और मेहनत का उदाहरण रखते तो उसके चेहरे पर ईर्ष्या की एक लहर दौड़ जाती। 12वीं में नंबर कमाने के कारण किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलने की संभावना नहीं थी, सो मामा ने एक प्राइवेट कॉलेज में उपेंद्र का MBA में दाखिला करवा दिया। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो यूं लगता है जैसे ये जीवन भी एक लंबी कहानी ही तो है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग कहानी, अपने अलग अलग सुख दुख। गांव के जीवन के अपने अध्याय को समाप्त कर शहरी जीवन में ढलने को मैं कोशिश कर रहा था, पर ये सब इतना आसान भी तो ना था। मामा मेरी इस कठिनाई को समझते थे कि अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद इस नए माहौल में असहज महसूस कर रहा हूँ और अपने दोस्तों की हंसी का पात्र भी बनता हूँ। जब तक उपेंद्र स्कूल में था तब तक बाकी लड़कों को थोड़ा डर रहता था, पर उपेंद्र और उसके साथी सब स्कूल पास कर चुके थे। मामा की एक परिचित की बेटी थी अमृता, जो उसी स्कूल में पढ़ती थी। वो मुझसे 2 साल जूनियर थी। उसी माहौल में ढली होने के कारण आत्मविश्वास था उसमें। मामा ने मेरी जिम्मेदारी उसी को सौंप दी। वो आधी छुट्टी के वक्त और वैसे भी कभी कभी मुझसे बात करने आ जाती। कह सकते हैं कि मुझे तिनके का सहारा मिल गया था और इससे मेरे दोस्तों का मेरा मजाक उड़ाना भी कम हो गया था। मैं भी धीरे धीरे अपने पांव जमाने लगा। स्कूल में तो अमृता से मुलाकात होती है, लेकिन परिवार में अच्छी दोस्ती होने के कारण बाकी अफसरों पर भी मेरी मुलाकात हो जाती। बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी वो। यूं तो कम बोलती थी, लेकिन मेरी परेशानी और मन की बात का सहज अनुमान लगा लेती। मैं उसकी माँ से भी कई बार मिला था। वो बहुत प्यार से मेरा आवभगत करती। साल यूं ही बीतते रहे और मैं स्कूल पास करके कॉलेज भी पहुंच गया। मुझे जिंदगी अब अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि अमृता अच्छी लग रही थी, क्योंकि अमृता अब अच्छी लगने लगी थी। बिना किसी आहट, बिना मेरे जाने ना जाने कब वो मेरे दिल में समा गई। ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे और भूल से ये मान बैठा था कि जीवन का ये अध्याय हमेशा यूं ही चलता रहेगा। प्यार हमारी कमजोरी भी बन सकता है और ताकत भी। मैंने अपने प्यार को अपना रोल मॉडल बना लिया। मैं जानता था कि उसे पाने के लिए मुझे बाकी लड़कों से कई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाई में मेहनत कर मैं कितने भी अच्छे नंबर पालूं, तब भी था तो मैं अनपढ़ ही। गांव से लाकर शहर में रोप दिया गया एक पौधा। मेरे बातचीत करने का सलीका, मेरा एटिकेट और सामान्य ज्ञान उन लोगों के मुकाबले उतना अच्छा नहीं था जो शहरी माहौल में पले पड़े थे, जिन्होंने अच्छे स्कूल में शिक्षा पाई थी। और इश्क छुपाना कठिन है तो उसका इजहार कर पाना भी आसान नहीं होता, लेकिन प्यार मौन और अनकहा रहकर भी उतना ही सच्चा हो सकता है और शब्दों में बिना बंधे भी व्यक्त हो जाता है। अमृता तो मन की बात समझ लेने में यूं भी माहिर थी, बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो, बाद में जो कुछ हुआ वो उसके बस में नहीं था। हमने अपने प्यार का इजहार शब्दों में किया होता तो भी क्या कर लेती वो। हमारे जीवन में नसीब का कितना हाथ है ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन हाथ की लकीरों में लिखा रहता हो या फिर माथे की नियति अपना खेल दिखाती जरूर है। ग्रेजुएशन के बाद मुझे देहरादून की मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिल गया। छुट्टियों में माँ से मिलने गांव तो जाता ही, साल के बीच एक दो चक्कर मेरठ मामा के घर भी लगा आता और अमृता से भी मिला था। अमृता की माँ को हमारी दोस्ती की जानकारी भी थी और ये रिश्ता स्वीकार भी था। ट्रेनिंग पूरी करके लेफ्टिनेंट बना ही था कि मामा जी का लेटर मिला, जिसमें उपेंद्र की शादी की सूचना थी। न्योता भी साथ में था। उपेंद्र की शादी अमृता से हो रही थी। मैं हैरान रह गया। अभी ही तो मेरा करियर बना था और समय आया था कि मैं उसे प्रपोज कर सकूं। वैसे भी इससे पहले किस बूते पर उसके पेरेंट्स से बात करता, पर क्या अमृता भी यही चाहती थी? इसी सवाल का जवाब पाने मैं मेरठ जा पहुंचा। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं मामा के घर ना जाकर सीधा अमृता के घर गया। घर में उसकी माँ अकेली थी और अमृता मामी के साथ शादी की खरीदारी करने बाजार गई हुई थी। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चाय का प्याला पकड़ाते ही उन्होंने खुद ही बात छेड़ी। दरअसल मेरे मामा और अमृता के पापा एक ही क्लब के मेंबर थे। वहीं पर मामा जी ने अमृता के पापा से कहा कि उपेंद्र उनकी बेटी से शादी करना चाहता है। अमृता के पापा को प्रस्ताव पसंद आ गया। जाना पहचाना, पढ़ा लिखा परिवार, अच्छा बिजनेस और भला क्या चाहिए था उन्हें। उन्होंने फौरन हामी भर दी। अमृता की माँ ने समझाने की बहुत कोशिश की कि एक बार अमृता से जरूर बात कर लेनी चाहिए, लेकिन अमृता के पापा उनमें से थे जो खुद को ही सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति समझते। ऐसे लोग सलाह मशवरा नहीं करते, सिर्फ फैसला सुनाते हैं, जिसे मानना जरूरी हो जाता है। और उनके अपने विचार से अमृता के लिए इससे बेहतर रिश्ता और क्या हो सकता था। ये जानकर कि शादी का प्रस्ताव खुद उपेंद्र की तरफ से आया है, मुझे बहुत हैरानी हुई और चोट भी लगी। मामा मामी ना सही, उपेंद्र तो भली भांति मेरे इस प्यार से परिचित था। मैं अपनी हर परेशानी उससे बांटता था। वैसे ही अमृता के बारे में मैंने हर बात उसे बताई थी। कभी वो मजाक में कहता, तुमने तो आते ही सबसे अच्छी लड़की पटा ली, और कभी अनजाने में व्यंग करता, अरे कि तुम जैसे मिट्टी के माधव को अमृता जैसी समझदार लड़की कैसे पसंद करती है, ये मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। शादी में जाना तो लाजमी था, सो गया, पर केवल बारात में, और फिर छुट्टी ना होने का बहाना बनाकर लौट आया। बहुत खुश थी मामा मामी और उनसे कोई गिला नहीं थी मुझे। इसमें कोई शक नहीं था कि वहां पर अमृता खुश रहेगी। मामा मामी बहुत अच्छे थे, संपन्न घर था, और उपेंद्र भी जरूर मन ही मन उसे चाहता रहा होगा, तभी तो शादी का प्रस्ताव रखा। और क्या चाहिए खुशियों के लिए। तहे दिल से अमृता की खुशियों की कामना कर मैं लौट आया और मान लिया कि मेरी कहानी यहाँ खत्म हो चुकी है। लेकिन हर कहानी का अंत तो होता ही है ना। लगता है मेरी कहानी का अंत लिखना अभी बाकी है। शायद लड़कियों में जीवन से समझौता करने की शक्ति हम लड़कों से ज्यादा होती है। खैर मुझ में नहीं थी, और ज्यादा मैं मामा के घर जाने से कतराता रहा। कई साल बीत गए, उपेंद्र का बेटा हुआ, और वो 4 साल का भी हो गया, पर मैं उस घर में जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। माँ से पता चला कि उपेंद्र का बेटा शिवम बहुत बीमार है और डॉक्टरों ने उसे ब्लड कैंसर बतलाया है। मेरी आंखों के सामने अमृता का उदास चेहरा दिन भर घूमता रहता। एक माँ के लिए अपने बच्चे के दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकता। अमृता की खोई हुई खुशी लौटाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, पर मैं वहां जाकर उसे सहारा देने का साहस भी नहीं जुटा पा रहा था। बस प्रार्थना कर सकता था और वो कर भी रहा था। सबकी मिली जुली दुआओं का ही असर था कि आगे टेस्ट कराने पर उसे ब्लड कैंसर की वो किस्म निकली जो गंभीर होते हुए भी लाइलाज नहीं थी। अब उसका इलाज संभव हो चुका था। करीब 3.5 साल तक चलने वाला कैंसर सेल खत्म करने के लिए दवाइयां इतनी स्ट्रॉन्ग दी जाती थी कि मरीज का स्वस्थ खून भी प्रभावित होता है। मरीज को कई बार बाहरी ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। एक मुश्किल ये भी थी कि शिवम का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो बहुत कम लोगों का होता है, और डॉक्टरों की राय में खून ब्लड बैंक से ना लेकर किसी स्वस्थ और युवा व्यक्ति का ही दिया जाना चाहिए। उपेंद्र का अपना ब्लड ग्रुप वही था, लेकिन इतने कम अंतराल से दिया जाना था कि एक ही आदमी से बार बार ब्लड नहीं लिया जा सकता था। मुझे पता चलते ही मैंने अपना ब्लड देने की ठानी, क्योंकि मेरा भी वही ब्लड ग्रुप था। मैंने फौरन फोन पर ही उपेंद्र से बात की और विश्वास दिलाया जितनी बार भी आवश्यकता होगी अपना ब्लड दूंगा। यूं हम बारी बारी शिवम को ब्लड देने लगे। उपेंद्र मुझे निश्चित तारीख बता देता और मैं उसी दिन सीधे अस्पताल पहुंच जाता। इस बीमारी में मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है और उसे इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ सकता है। उसे सबसे अलग रखा जाता है। केवल एक ही व्यक्ति नहा धोकर उसे साफ सफाई का ध्यान रखते हुए उसके पास बैठ सकता है। अमृता अंदर कमरे में बेटे के संग रहती और मेरी मुलाकात बाहर सिर्फ उपेंद्र से होती। उसके बाद मैं घर जाकर मामा मामी से मिलकर लौट आता। तीसरी बार जब मैं ब्लड देने गया तो शिवम की सेहत में काफी सुधार था। हालांकि दवाइयां अभी लंबे समय तक चलनी थी। डॉक्टर संतुष्ट थे कि खतरा टल गया है और फिलहाल और ब्लड देने की जरूरत नहीं है। हमेशा की तरह अमृता अंदर कमरे में शिवम के पास थी। लौटते समय मैंने उपेंद्र को आश्वस्त किया कि कोई भी जरूरत पड़ने पर मुझे बता दे, मैं तुरंत आ जाऊंगा। उपेंद्र ने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर कहा,
2: मैं तुम्हारा

0: एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने हमारे बुझते चिराग को फिर से रोशन करने में बहुत मदद की है।
1: मैं कैसे कहता उससे कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अमृता के लिए किया है। मेरे लिए आज भी अमृता की खुशियां सबसे ऊपर है। अब तो मेरी कहानी का अंत भी लिखा जा चुका था, निश्चय के साथ कि अपने अतीत में अब कभी नहीं झांकूंगा। मैंने अमृता के संग जिंदगी गुजारने का सपना देखा था जो पूरा नहीं हुआ। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनका प्यार परवान चढ़ता है, लेकिन जिनका नाकामयाब रह जाता है। दास्तां तो उनकी भी लिखी होती होगी ना। और सबसे बड़ी बात ये कि प्यार में कामयाब ना हो पाने का मतलब ये कतई नहीं है कि उनके निष्ठा में कोई कमी रह गई थी। एक बात और, कहा जाता है कि कच्ची उम्र का प्यार महज एक आकर्षण होता है। मुझे तो याद भी नहीं आता कि मैंने कभी हाथ बढ़ाकर अमृता को छूने की कोशिश भी की हो। सच तो ये है कि किशोरावस्था और यौवन की दहलीज पर खड़ा वो समय जब दुनिया की ओर उसके स्वार्थ से अभी वास्ता नहीं पड़ा होता, बस उसी समय का प्यार ही वास्तविक प्यार होता है, निश्चल और निर्मल। और ऐसा जीवन में सिर्फ एक ही बार हो सकता है। सूखी धरती पर बारिश की पहली फुहार महसूस की है कभी? किस तरह महक उठती है कुंवारी धरती इस पहले मिलन से। बाद में कितना भी बरस ले, जलमय हो जाए पृथ्वी पर, वो सौंधी महक फिर नहीं उठती कभी। ठीक वैसा ही होता है कच्ची उम्र का वो पहला प्यार।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानव रचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।
2: हो रही है फोर्थ पॉइंट, अगेन बोलूंगा सस्टेनेबिलिटी फोकस किया जा रहा है। अब जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी उतना ही ज्यादा वो यूएसपी बनती चली जाएगी। जो कंपनी जितना ज्यादा सस्टेनेबल मॉडल लेकर आएगी उतना ही ज्यादा तरक्की करने वाली है लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो, क्योंकि लोग अब पूछने लगे हैं लिटरली। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है सरकार का सपोर्ट एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स। देखिए सरकार के बिना कुछ नहीं हो पाता है। अगर कोई भी इंडस्ट्री ग्रो कर पाती है तो उसके पीछे बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सरकार का होता है, सरकार मुहिम चलाती है। जैसे ब्रॉडर व्यू से अगर देखा जाए तो इंडिया में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए सरकार के द्वारा, लाइक डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन सब ने मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम यहाँ पर तैयार किया जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप्स हुए यहाँ पर, स्टार्ट हुए, लोगों ने भी उनको एक्सेप्ट किया, अपने दिलों में जगह दी और डिमांड बढ़ती चली गई। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिनकी वजह से ये इंडस्ट्रीज ग्रो होती हैं और फैशन टेक भी उसी का एक रिजल्ट है कि यहां पर इतना तेजी से ग्रो हो रही है। उम्मीद कर रहा हूं यू गॉट द पॉइंट। तो हमने आपको अभी 5 ऐसे ड्राइविंग फैक्टर्स के बारे में बताया, ग्रोइंग ई कॉमर्स पेनिट्रेशन, राइजिंग इंटरनेट एंड स्मार्टफोन यूजेज, टेक सेवी मिलेनियल्स एंड जेन ज़ी, फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नमेंट सपोर्ट एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स। नाउ विद दिस नोट हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे और बताएंगे आपको कुछ चीजें जो जुड़ी हुई हैं फैशन टेक से। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लिट।

वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको गाने पसंद आए और हमारे शो को आप पसंद कर रहे हैं, और ये भी उम्मीद कर रहा हूँ साथ साथ कि आज की जो इंडस्ट्री हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर फैशन टेक, जिसमें हमारी आज की कंपनी डील करती है, उसको आप समझ पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है उतना फेमिलियर आपको करा दें इस एक इंडस्ट्री से। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, अगर कोई नया प्लेयर आना चाहता है इस मार्केट में तो कैसे आ सकता है? मतलब देखिए, वो टोटली आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस होने वाला है, बट स्टिल जितना हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, जितनी रिसर्चेज हम कर पाते हैं, उनके आधार पर कुछ पर्टिकुलर ऐसी स्ट्रेटजीज हम आपको बता सकते हैं जिस हिसाब से आप चल सकते हैं, मतलब एक बार देखा जा सकता है। पहली रहेगी, अपनी नीश आपको आइडेंटिफाई करनी होगी। ऑल्दो फैशन टेक बहुत एक ब्रॉड कैटेगरी है, उसमें भी आपको पर्टिकुलर एक नीश सेट करनी होगी कि किस तरह का फैशन आप ऑफर करना चाहते हैं और कौन आपका टारगेट कस्टमर रहेगा। सेकंड जो स्ट्रेटजी हो सकती है, दैट इज लेवरेज टेक्नोलॉजी, क्योंकि ऑलरेडी हमें डिस्कस कर रहे हैं कि टेक बेस्ड इंडस्ट्री है और उसमें सारी कंपनीज कोशिश कर रही हैं जितना हो सकता है उतना अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस बना पाए। लाइक AI में इन्वेस्ट करते हैं, AR में इन्वेस्ट करते हैं, VR में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे एक यूनिक सर्विस, एक यूनिक प्रोडक्ट अपने कस्टमर तक पहुंचा पाए, डिलीवर कर पाए और कस्टमर को कन्विंस कर पाए कि आप यहां से खरीद सकते हैं, VR द बेस्ट। तो ये आपको करना होगा, एक बार देखा जा सकता है। थर्ड स्ट्रेटजी रह सकती है फोकस ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल है लगभग हर एक इंडस्ट्री में, क्योंकि कस्टमर इज द गॉड। अगर कस्टमर खुश है आपके प्रोडक्ट से तो वापस आएगा, बाकी लोगों को भी रेकमेंड करेगा और इस तरीके से कंपनी ग्रो करेगी। अगर कस्टमर खुश नहीं है, आपको उसकी खुशी से फर्क नहीं पड़ता, तो शायद प्रॉब्लम होगी आपके लिए, आपको चीजों को हमेशा ऑल्टर करना होगा। इसलिए हमेशा कस्टमर एक्सपीरियंस को अपनी प्रायोरिटी बनाकर चलिएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी आपकी हो सकती है कोलैबोरेट विद टेक स्टार्टअप्स। अब देखिए, समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई इंसान स्टार्ट करना चाहता है, फैशन का सेंस है, समझते हैं फैशन को, लोगों की डिमांड को समझते हैं, क्या नई चीजें आने वाली है फ्यूचर में वो देख पाते हैं, बट टेक में हाथ थोड़ा सा तंग रह जाता है। तो ऐसे में आप जो बाकी टेक स्टार्टअप्स हैं जो कटिंग एज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं हमें, उनके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू कैन जस्ट एंटर अ मार्केट जो ऑलरेडी काफी ग्रो कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी हो सकती है बिल्ड एन ओमनी चैनल प्रेजेंस, मतलब एक ऐसी आपको प्रेजेंस अपनी बनानी होगी जहां पर आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही चैनल्स पर केटर कर पाए अपने कस्टमर्स को। अगर ऑनलाइन कोई आना चाहता है उसके लिए भी आपके पास अच्छी सर्विस हो, ऑफलाइन भी आपको बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी होगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है लेंसकार्ट, स्टोर्स भी काफी अच्छे हैं और आप ऑनलाइन अगर जाते हैं तो आपको उनके पोर्टल पे भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो सबसे ट्रेंडिंग अभी है, जो आज हम लगभग हर एक सेगमेंट में देख पा रहे हैं, दैट इज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ये आपको फॉलो करना होगा क्योंकि अल्टीमेटली जो एनवायरमेंटल कॉन्शियस कंज्यूमर्स हैं वो आपकी तरफ जरूर आएंगे और वो काफी लॉयल रहने वाले हैं आपके साथ अगर आप ये वाली प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। देन इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग, उसमें आपको खुद को एंगेज करना होगा, लाइक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सोशल मीडिया कंटेंट आपको बनाना होगा ताकि आप एक ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंच पाए। देन उसके बाद अंडरस्टैंड लोकल प्रेफरेंसेस, आपको ये भी समझना होगा कि इंडिया में भी बहुत सारे रीजन्स हैं और हर रीजन में किस तरह का टेस्ट लोग पसंद करते हैं। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फेस्टिवल्स, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बहुत ही जनरलाइज कर देते हैं चीजों को, लाइक नॉर्थ इंडिया का कपड़ों पहनने का तरीका अलग होता है ट्रेडिशनल क्लोथ्स की अगर बात करें, और वहीं पर साउथ इंडिया का बिल्कुल अलग होगा। तो इस तरीके से हमें समझना होगा कि किस एरिया में किस चीज की प्रेफरेंस है और रूट्स क्या बोलती है, कैसे हम उनके ट्रेडिशनल फैशन को आज के जो हमारा फैब्रिक है, आज का जो हमारा फैशन है, उसके साथ अलाइन करके उन्हें दिखा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो अगर आप फॉलो करते हैं या कोई भी ऐसा नया प्लेयर फॉलो करता है तो उसकी काफी हेल्प होने वाली है इस एक मार्केट में खुद को एस्टेब्लिश करने में, आप ट्राई कर सकते हैं। नाउ विद दिस नोट हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद बात करेंगे आज की कंपनी की फाइनली।

वेलकम बैक, मैं हूं सागर। उम्मीद कर रहा हूं इंडस्ट्री को आप समझ पाए हैं अभी तक। चलिए फिलहाल आगे लेकर चलेंगे अपने शो को। फाइनली आज की कंपनी की बात करेंगे। तो हमारी आज की कंपनी का नाम है स्टाइल क्रैकर। स्टाइल क्रैकर एक इंडियन फैशन टेक स्टार्टअप है। ये कंपनी ऑपरेट करती है इन द पर्सनल स्टाइलिंग एंड क्यूरेटेड फैशन कॉमर्स स्पेस। तो कपड़े बेचने की जगह जैसे टिपिकल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स करते हैं, ये कंपनी करती है ये कि आपके स्टाइल को एज अ सर्विस बेचती है। सो बेसिकली दिस कंपनी इज हेल्पिंग पीपल इन कैरिंग देमसेल्व्स इन अ बेटर वे। ठीक है, जहाँ पर आपको आउटफिट के आइडियाज, आपकी पर्सनैलिटी, आपके बॉडी टाइप, आपके लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए आपकी आप कह सकते हैं कि एक स्टाइलिस्ट आपको मिल रही है जो डिजिटली ऑपरेट कर रही है। हाउ इट स्टार्टेड, सो ये 2013 में कंपनी लॉन्च हुई। ये उस टाइम की बात हो रही है जब इंडिया में ई कॉमर्स जो है वो ग्रो कर रहा था, बट फैशन डिस्कवरी अभी भी एक ब्रोकन स्टेट में था। पीपल हैड ऑप्शंस बट या तो बहुत ज्यादा चॉइसेस थी, उनमें गाइडेंस नहीं थी और पर्सनलाइजेशन तो बिल्कुल नहीं था। तो वहां पर इस कंपनी को नजर आया कि यार ये बहुत एक गैप है, इस गैप को फिल करते हैं। तो दैट वॉज द कोर आइडिया बिहाइंड दिस कंपनी, बिहाइंड स्टार्टिंग दिस कंपनी विच इज स्टाइल क्रैकर। आई होप यहां तक आप समझ पाए हैं। लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

सुबह पे जिस तरह शाम का

लगाकर अपने पाप छुपाए, उसको मान मिले जग में जो बेईमान।

वेलकम बैक। आई जस्ट होप आपको ये म्यूजिकल वाइब पसंद आई। ऑन दिस नोट शो को आगे बढ़ाएंगे। तो कंपनी स्टार्ट हुई 2013 में, यहाँ तक हम जान चुके हैं। ओवरव्यू आपको मिल चुका है कि कंपनी एग्जैक्टली कपड़े नहीं बेचती है, कंपनी एक सर्विस बेचती है। सर्विस है आपके कपड़ों को कैसे कैरी करना है और किस तरह का स्टाइल आपके ऊपर सूट करेगा। कंपनी के पीछे का जो आइडिया था वो बहुत सिंपल था बट बहुत शार्प था। लोगों को कपड़े नहीं चाहिए खाली, लोगों को अच्छा दिखना है वो चाहिए। और इन दो चीजों में फर्क होता है। खाली कपड़े एक अलग पैरामीटर है, लेकिन क्या जच रहा है उनके ऊपर, क्या सूट कर रहा है, क्या चीजें वो पहन सकते हैं, वो एक बहुत अलग एक जर्नी हो जाती है, एक अलग वो पॉइंट हो जाता है। तो यहां पर जो फाउंडर्स हैं इस कंपनी के, उन्हें ये बात समझ में आई कि मोस्ट ऑफ इंडियंस आर नॉट फैशन एक्सपर्ट्स। ठीक है, स्टाइलिंग इंटिमिडेटिंग है, डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा क्योटिक होता है हमारा, मतलब व्हाट शुड आई वेयर, ठीक है, व्हाट शुड आई बाय, दुकान पे खड़े होकर के सोच रहे होते हैं, 50 थॉट्स होते हैं, यहां से खरीदूं, वहां से खरीदूं, ये खरीदूं ना खरीदूं, पार्टी में जा रहे हैं क्या पहने, वो एक बहुत बड़ी आप कह सकते हो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन चलती है और वो अभी भी है। तो ये जो चीज है पर्टिकुलर, ये इस कंपनी को समझ में आई और उन्होंने सोचा कपड़े तो सब बेच रहे हैं, लेट सेल समथिंग जो कपड़ों के साथ नहीं मिल रही है लेकिन जरूरत है। और अच्छा दिखना ही एक मेन पर्पज होता है। बस कपड़े हम लोग खरीद लेते हैं, कपड़े मिलने को हर जगह पर मिल जाएंगे, लेकिन स्टाइल कैसे वो कोई बताता है, ये एक फिनोमेना है। मतलब एक जोक भी चलता है कि बाकी सबको आप पसंद आओ या ना आओ, लेकिन दुकान वाले जो भैया हैं जिनके कपड़ों की दुकान है, वहां पर आप हीरो, वहां सिंपल है, वहां पर जाने के बाद आपको ये सुनने को मिलेगा अरे भैया हीरो लग रहे हो। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप ये भी है कि वहां पर अगर कोई आपको बता दे कि आपका बॉडी टाइप ऐसा है, आपके ऊपर ये सूट करेगा, इस तरह के कपड़े आप पहनिए, तो वो एक चीज ना मतलब बहुत पर्सनलाइज हो जाती है। और बार बार बार बार आप उसी शॉप के ऊपर, उसी शॉपकीपर के पास आप जाना प्रेफर भी करेंगे, रीजन बीइंग उसने आपकी हेल्प करी है स्टाइलिंग करने में। दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। और यही कोर आइडिया था, और इसी कोर आइडिया को लेकर की कंपनी इतनी बड़ी बन गई है। मतलब ये सोचिए कि सिंपल सा आइडिया है, लेकिन उसके बलबूते पर एक पूरा बिजनेस खड़ा करना इज अ डिफरेंट थिंग। दैट्स व्हाट दिस कंपनी हैज डन, स्टाइल क्रैकर। लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक, मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। स्टाइल क्रैकर हमारी आज की कंपनी है, फैशन टेक में डील करती है। लेट्स टॉक अबाउट फाउंडर्स ऑफ दिस कंपनी। पहला नाम है डेनियल फ्रैंकलिन, दूसरा नाम है आंचल सैनी। डेनियल फ्रैंकलिन जो है फैशन एंड स्टाइलिंग में इनका बैकग्राउंड रहा है, वेरियस मीडिया एंड फैशन इकोसिस्टम में इन्होंने काम किया है, कंज्यूमर स्टाइलिंग साइकोलॉजी की अच्छी खासी समझ रखते हैं। इसके बाद आंचल सैनी इज द सेकंड नेम। सो एजुकेशन इनकी रही है बैबसन कॉलेज से, जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाना जाता है। इनका एक्सपीरियंस रहा है बिजनेस स्ट्रेटजी एंड स्टार्टअप्स में, ठीक है, ऑपरेशंस को हैंडल करती हैं, स्केलिंग को हैंडल करती हैं, बिजनेस ग्रोथ को हैंडल करती हैं। ये दो जब लोग मिलके आए तो डेनियल लेकर के आए क्रिएटिविटी एंड फैशन इंस्टिंक्ट, आंचल लेकर के आए बिजनेस एंड एग्जीक्यूशन, एंड दैट्स हाउ दे मेड दिस कंपनी, एंड दैट्स हाउ दिस कंपनी इज स्टिल हेल्पिंग अस। नाउ व्हाट आर द यूएसपीज ऑफ स्टाइल क्रैकर? तो कंपनी की सबसे बड़ी यूएसपी तो यही है कि ये आपका एक पर्सनल स्टाइलिश के तौर पे काम करता है। मतलब यहाँ पर बहुत सारी आपको चीज़ें मिल जाती हैं, स्टाइल बॉक्स आपके घर पर ही क्यूरेटेड आउटफिट्स आपको पहुँचा दिए जाएंगे। तो कपड़े नहीं बेच रहे हैं, स्टाइल बेच रहे हैं, बट उनके साथ साथ जो आपके ऊपर सूट करेगा, जिस कलर थीम की आपको ज़रूरत है, जो भी आपका ओकेजन है, उसके हिसाब से आपके घर पर आउटफिट आ जाएगा। सेकेंड आ जाएगा पर्सनल स्टाइलिस्ट, ह्यूमन प्लस टेक ब्लेंड। थर्ड यूएसपी है कंपनी रिकमेंडेशन, मतलब आपकी प्रोफाइल को देख करके आपको यहाँ पर रिकमेंडेशन मिलता है पर्सनलाइज, मतलब आपकी कन्फ्यूजन को दूर किया जाता है, एंड दैट इज द एग्जैक्टली थिंग जो ये कंपनी कर रही है। दैट्स हाउ ये कंपनी ग्रो भी कर रही है, यही कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। मतलब ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला होती है कि आप किसी को बता पाओ कि क्या तुम्हारे ऊपर सूट करेगा क्या नहीं। अगर कोई बार बार आपको बता दे आपके ऊपर इस तरह का हेयर स्टाइल सूट करेगा, ये करा लीजिए क्योंकि आपका फेस कट ऐसा है, इस तरह के बाल रखिए, यहाँ पर रखिए, ऐसे काम करिए, सो यू गॉट लव दैट बार्बर। देन की ड्राइवर्स ऑफ दिस कंपनी आर पर्सनलाइजेशन इंजन, ठीक है, आपको एक डाटा मिलता है, उसके साथ साथ ह्यूमन स्टाइलिस्ट मिलता है, दो मिलाकर के आपको एक सर्विस दे रहे हैं जिसकी वजह से आपको एक आउटफिट रेकमेंड हो रहा है, एंड दैट्स हाउ ये कंपनी ग्रो भी कर रही है, आपको पसंद भी आ रही है। सेकंड, कंटेंट प्लस कॉमर्स इंटेग्रेशन। ये खाली सेल नहीं कर रहे हैं, ये स्टाइलिंग के ऊपर एजुकेट कर रहे हैं लोगों को। टीयर टू एंड टीयर थ्री एक्सपेंशन पोटेंशियल, ठीक है, बहुत बड़ा इंसाइट है। नॉन मेट्रो सिटीज जो ऑडियंस है उन्हें फैशन गाइडेंस की जरूरत है मोर देन मेट्रो सिटीज, बट वहाँ पर सर्विसेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर ये कंपनी पहुँच रही है। प्लस B2B स्टाइलिंग सॉल्यूशंस हैं, कॉर्पोरेट स्टाइलिंग, इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन, ब्रांड पार्टनरशिप, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इस कंपनी को ग्रो करने में हेल्प कर रही है। की ड्राइवर्स, आई होप इट हेल्प्स। फिलहाल लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक, मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आज हमने यहां पर बात करी है अपने इस शो में एक ऐसी कंपनी की जिन्होंने कपड़े नहीं बेचे, उन्होंने स्टाइल बेचा और आपकी जो बॉडी टाइप है उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये बताया कि क्या आपके ऊपर सूट करेगा। कंपनी का नाम है स्टाइल क्रैकर। कंपनी को स्टार्ट किया आचल सैनी एंड डैनियल फ्रैंकलिन ने। दो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। हमने यहाँ पर बात करी कंपनी के ओवरव्यू की, हमने बात करी इंडस्ट्री की, हमने बात करी कंपनी की यूएसपी की, हमने बात करी कंपनी के की ड्राइवर्स की। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इस कंपनी में अलग लेकर के आई। और पर्टिकुलर कुछ चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प करती हैं इनसाइट्स की अगर आप बात करेंगे। इंडियंस डजंट लैक फैशन, इंडियंस लैक्स कॉन्फिडेंस यू कैन से। कोई भी चीज़ अगर डिसाइड करनी हो, डिसीजन में ही हम लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं। टू मैनी चॉइसेस मतलब नो परचेज। तो यहाँ पर क्यूरेशन लेवल पर इन्होंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ठीक है, हाइब्रिड मॉडल विंस। तो प्योर टेक भी काम नहीं करता है, प्योर ह्यूमन भी आप कह सकते हैं स्केल अप नहीं कर सकता है। दोनों को मर्ज कर दिया गया। दैट्स हाउ दे वर एबल टू बिल्ड दिस प्लेटफॉर्म, आप कह सकते हैं हाइब्रिड प्लेटफॉर्म है। एक फैशन इज इमोशनल नॉट लॉजिकल। You are not buying clothes, you are buying confidence, identity, social validation, and that's what this company is selling. So all in all, this company is helping people in getting rid of confusions, gaining confidence, and giving them personal recommendations. This is our today's case study. And आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा हमारा आज का शो 8010781078 पर। वक्त है अपने शो के यहाँ पर खत्म करने का। आशा करता हूँ मजा आया होगा आपको। चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर एक और शो। अब मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। दिस इज आरजे सागर साइनिंग आउट।

संतों की वाणी सुनने या पढ़ने से मन या मस्तिष्क का तनाव दूर होता है। असंतों के कलाम की यह विशेषता नहीं होती। कृपया बताएं कि इसका कारण क्या है। पूछा है फारूक खान ने। पहली बात, संतों की वाणी सिर्फ वाणी नहीं, वाणी ही हो तो खोल ही है, भीतर कुछ सार नहीं। शब्द ही है, भीतर कुछ सार नहीं। संतों की वाणी वाणी से कुछ ज्यादा है। वाणी तो केवल सहारा है उसे देने का, जो और किसी ढंग से दिया नहीं जा सकता। वाणी तो वाहन है, शब्दों पर चढ़ाकर, शब्दों के घोड़ों पर चढ़ाकर जो भेजा जा रहा है वो शब्द से बहुत पार है। उसकी ही वर्षा जब हो जाती है हृदय पर तो शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, संतोष मिलेगा। असंतों की वाणी कोरी है, खाली है, जिससे मरा हुआ आदमी लाश पड़ी है। और यही आदमी जीवित था कल तक, शरीर अब भी वैसा ही है, लेकिन शरीर के भीतर से कोई चीज उड़ गई। अब तो पिंजड़ा पड़ा रह गया, पक्षी उड़ गया। असंतों की वाणी ऐसी है जैसे मरा हुआ आदमी। शब्द की देह तो है लेकिन अनुभव की आत्मा नहीं। तो असंतों की वाणी से सुगंध तो मिलनी कठिन है, दुर्गंध ही मिलेगी। संतों की वाणी से संतोष मिलेगा, क्योंकि संतोष सत्य की छाया है। यह तो बात ठीक, लेकिन एक बात याद रखना, जिनकी वाणी से संतोष मिल जाए जरूरी नहीं कि वे संत ही हों, और जिनकी वाणी से तुम्हें संतोष न मिले जरूरी नहीं कि वे असंत ही हों। जहां तक संतों की तरफ से संबंध है, संतों की वाणी से संतोष मिलना चाहिए। जहां तक असंतों का संबंध है, असंतों की वाणी से संतोष नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जो मिलता है उसमें अकेला संत थोड़ी भागीदार है, तुम भी भागीदार हो। वर्षा होती हो और घड़ा उल्टा रखा हो तो गैर भरा रह जाएगा। तो संत की भी वाणी से हो सकता है संतोष न मिले, अगर तुम उसे ग्रहण ही ना करो, अगर तुम उसे भीतर ही ना जाने दो, या तुम्हारे पूर्व पक्षपात, तुम्हारी पहले की बनाई धारणाएं रुकावट बन जाएं। तो ऐसा समझो कि जरूरी नहीं है कि संत की वाणी से संतोष मिले ही, तुम लोगे तो ही मिलेगा। और दूसरी बात भी संभव है, असंत की वाणी से भी संतोष मिल जाए अगर तुमने लेने की ही जिद कर रखी। तो जहां कुछ भी नहीं है वहां भी तुम कुछ देख लोगे, क्योंकि इस लेन देन में दो व्यक्ति सम्मिलित है, एक देने वाला और एक लेने वाला। इसलिए लेन देन की ये घटना दोनों पर निर्भर होगी। जैसे अगर कोई जैन किसी सूफी फकीर की वाणी पढ़े उसे संतोष नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ये मान ही नहीं सकता कि मांसाहारी और ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, ये बात ही संभव नहीं। सूफी संत की तो छोड़ दो, एक जैन मुनि मुझसे कहा कि आप रामकृष्ण परमहंस देव का उल्लेख करते, आपको पता है वो मछली खाते थे, तो मछली खाने वाला आदमी कैसे संत हो सकता है। अब इन जैन मुनि को रामकृष्ण की वाणी से संतोष नहीं मिलेगा, इससे ये मत समझ लेना कि जहां से संतोष नहीं मिलता वहां संत नहीं। बौद्धों को जैनों की वाणी में संतोष नहीं है, हिंदुओं को मुसलमानों की वाणी में संतोष नहीं है, मुसलमानों को ईसाइयों की वाणी में संतोष नहीं। तो इसका क्या अर्थ हुआ है? इसका अर्थ हुआ कि संतत्व की भी तुम्हारी धारणा है, उस धारणा के अनुकूल संत पढ़ता हो तो तुम संतोष लोगे, उसके अनुकूल न पढ़ता हो तो तुम्हें जरा भी संतोष न मिलेगा। फिर कभी ये भी हो सकता है कि असंत तुम्हारी धारणा के अनुकूल पढ़ता हो। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन भूखा प्यासा एक गांव में आया, गांव में एक भी मुसलमान नहीं था, गांव शाकाहारियों का था, और गांव का जो साधु पुरुष था उसने सारा जीवन शाकाहार की ही सेवा में लगाया था, बस मांसाहार के ही विपरीत उसका सारा जीवन समर्पित था।
मुल्ला उसकी सभा में गया, वो समझा रहा था कि मांसाहार बुरा है, पशु पक्षियों में भी आत्मा है। मुल्ला बीच में खड़ा हो गया, उसने कहा बिल्कुल ठीक कहते, एक बार एक मछली ने ही मेरे प्राण बचाए थे। साधु तो बहुत प्रसन्न हुआ, उसने कहा आओ भाई आओ, ये तो बड़ा प्रमाण मिला कि एक मुसलमान भी तैयार है गवाही देने को। उन्होंने उसे पास बिठाया, उसके भोजन का भी इंतजाम करवाया और कहा कि तुम यहीं रहो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, ये प्रमाण हो गया। और रोज साधु जब समझाता लोगों को, वो कहता कि पूछो इस मुसलमान भाई से पूछो, एक मछली नहीं इसके प्राण बचाए, मछलियों में भी आत्मा है, उनको खाओ मत। दो चार दिन के बाद एक दिन सांझ को दोनों साथ बैठे थे, वो फकीर साधु कहने लगा मुल्ला नसरुद्दीन को कि तुम तो करीब करीब मेरे गुरु, यद्यपि मैंने जीवन भर शाकाहार की सेवा की, मांसाहार का विरोध किया, लेकिन अभी तक किसी पशु पक्षी ने ऐसा प्रमाण मुझे नहीं दिया जैसा तुम्हें दिया। तुम तो करीब करीब मेरे गुरु हो, अब विस्तार में मुझे कहो कि बात क्या थी, कैसे बचाए तुम्हारे प्राण। मुल्ला ने कहा विस्तार न पूछे तो अच्छा, सब ठीक चल रहा है, विस्तार की क्या जरूरत। पर साधु जिद करने लगा कि नहीं बताना ही पड़ेगा, साधु ने तो पैर पकड़ लिए कि गुरुदेव बताना ही पड़ेगा। तो मुल्ला ने कहा नहीं मानते तो ठीक है, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। साधु ने कहा बात क्या है, इतना रहस्य क्यों बना रहे हो। मुल्ला ने कहा बात यह है कि मैं बहुत भूखा था और मछली को खाने से मेरे प्राण बचे। उसी रात, सुबह भी नहीं, उसी रात मुल्ला निकाला गया। अभी तक इसकी वाणी में बड़ा संतोष मिल रहा था, अब इसकी वाणी में कोई संतोष न रहा। तो तुम पूछते हो कि संतों की वाणी सुनने या पढ़ने से मन या मस्तिष्क का तनाव दूर होता है, सभी संतों की, तो तुम संत हो जाओगे, तब तो तुम्हारे संत होने में फिर कोई बाधा ना रहे, या किन्हीं किन्हीं संतों की। पूछने वाले मित्र मुसलमान है, तो तुमने और किन्हीं संतों की वाणी भी पढ़ी है जिनके विचार इस्लाम से अन्य हो, उनसे संतोष न मिलेगा। और इन्हीं मित्र ने दूसरा प्रश्न पूछा है, उससे जो मैं कह रहा हूं वो साफ हो जाएगा। इनने पूछा है किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना या किसी को इस उपाधि का स्वीकार करना क्या उचित है। फिरौन का सबसे बड़ा अपराध यही तो था कि उसने अपने को खुदा होने का दावा कर रखा था। अब इन मित्र ने इजिप्ट के फिरौन का उल्लेख किया, लेकिन अल हिल्लाज मंसूर को छोड़ दिया। सच है ये बात कि इजिप्ट के सम्राट फिरौन ने घोषणा कर रखी थी कि मैं खुदा हूं, ये उसका अपराध था। लेकिन अपराध इसलिए नहीं था कि उसने घोषणा की थी कि मैं खुदा हूं, अपराध का कारण दूसरा था। अपराध का कारण यह था कि वो कहता था मेरे सिवाय खुदा और कोई नहीं, मैं खुदा हूं, मेरे सिवाय और कोई खुदा नहीं। यही बात तो मंसूर ने भी कही थी, जिनको मुसलमानों ने सूली दी, और मैं समझता हूं कि फारूक खां भी राजी होंगे कि सूली ठीक दी। मंसूर ने भी यही कहा था कि मैं खुदा हूं, लेकिन बड़ा फर्क था उसके कहने में। उसके कहने का मतलब था मैं खुदा हूं क्योंकि सभी खुदा हैं, खुदा के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। मंसूर ने जो कहा वो संत की वाणी थी, और फिरौन ने जो कहा वो संत की वाणी नहीं थी, यद्यपि वक्तव्य दोनों के एक जैसे। दोनों ने यही कहा था मैं खुदा हूं, लेकिन फिरौन कहता था मेरे अलावा कोई और खुदा नहीं, और मंसूर ने कहा कि मैं करूं भी क्या, खुदा होना ही पड़ेगा, उसके सिवा होने का कोई उपाय नहीं क्योंकि खुदा ही है। लेकिन मुसलमानों ने फिरौन को भी अपराधी साबित किया और मंसूर को भी सूली लगा दी। अब अगर मुसलमानों को उपनिषद के ऋषि मिल जाते जिन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, क्या करते तुम उनके साथ, फांसी लगाते ना, सूली लगाते। संत तो तुम्हें वो मालूम नहीं पड़ सकते थे, जो कहता है मैं ब्रह्म हूं वो कैसे संत हो सकता है। मुसलमान नाराज है जीसस पर, क्योंकि जीसस ने दावा किया कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, ये भी कोई दावा है। हमारे मुल्क में लोग हैं जो कहते हैं हम ईश्वर हैं, बेटे का भी क्या दावा करना। मगर मुसलमान इससे नाराज हैं कि ईसा ने दावा किया कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, नहीं ये बात ठीक नहीं। तो तुम बुद्ध को क्या कहोगे, महावीर को क्या कहोगे, कृष्ण को, राम को क्या कहोगे, ये सब तो अपराधी हो गए।
ये तो संत ना रहे। तो मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारा ही दूसरा प्रश्न सबूत देता है कि संत का तुम्हारे मन में क्या अर्थ एक धारणा होगी। संत ऐसा होना चाहिए, धारणा तुम्हारी है, उस धारणा में बैठ जाएगा तो संत, नहीं बैठा तो असंत हो जाएगा। और कौन संत तुम्हारी छोटी मोटी धारणाओं में बैठ सकता है? जो बैठ जाए वो संत ही क्या खाक जो तुम्हारी खिड़की में बैठ जाए, तुम्हारे ढांचे के अनुकूल पड़ जाए वो कोई संत? नकल होगा, संत की नकल ढांचों में बैठ जाती। तुम बड़ा संतोष भी ले लोगे, तुम्हें संतोष इसलिए नहीं मिल रहा है कि संत की वाणी में कुछ सार, तुम्हें संतोष इसलिए मिल रहा है कि तुम्हारा अहंकार तृप्त हो रहा है कि देखो मेरी धारणा संत की कितनी सही है, ये प्रमाण मिल गया, ये आदमी प्रमाण है मेरे संतत्व की धारणा का। तुम अपनी ही धारणा के चरणों में सिर झुका रहे। मैं एक घर में मेहमान था, एक जैन घर में, एक बूढ़े सज्जन मुझे मिलने आए, उम्र होगी कोई 80 साल की, कोई 40 साल से त्यागी का जीवन ही बिताते थे, यद्यपि घर में ही थे लेकिन न दुकान जाते न घर द्वार की बात करते, ज्यादातर सामायिक ध्यान उपवास इसमें ही समय लगाते थे। मैं गांव में आया हूं तो मुझे मिलने आए, अपने घर के बाहर भी नहीं जाते थे, तो उनके साथ 10-5 लोगों का गिरोह भी आया ये देखने कि वो कभी अपने घर के बाहर जाते नहीं, किसके दर्शन को जा रहे हैं। उन्होंने मेरी एक किताब पढ़ी थी साधना पत्र, और उससे वो बहुत प्रभावित थे, वो आके मेरे चरणों में झुके और उन्होंने कहा कि आप तो मेरे लिए तीर्थंकर हैं, आपने जो किताब लिख दी उससे मुझे जो मिला है वो किसी चीज से नहीं मिला, मेरा सारा जीवन उसने बदल डाला है। ऐसे उनसे बातें हो रही थी, तभी घर की गृहिणी ने आके मुझे कहा कि अब आप भोजन कर लें, सांझ हो गई। तो मैंने उनसे कहा कि ये वृद्ध सज्जन आए हैं, अभी बीच में बाधा ना डालो, थोड़ी देर बाद भोजन कर लूंगा। वो वृद्ध सज्जन तो बहुत चौंके, उन्होंने कहा क्या सूरज ढला जा रहा है, सूरज ढलने के बाद भोजन करेंगे? मैंने कहा आप इतनी दूर से चल के आए, बूढ़े हैं, आपके पास बैठना ज्यादा आनंदपूर्ण, भोजन तो घड़ी पर बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा आप समझे नहीं, उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा जिस आदमी को भी यही पता नहीं कि रात्रि भोजन पाप है उसको और क्या पता हो सकता है, आए थे तो मेरे चरण छुए थे, जाते वक्त मुझे उपदेश देके गए कि कम से कम इतना तो करो कि रात्रि भोजन छोड़ दो। अब मैं निश्चित जानता हूं घर जाके किताब उन्होंने जला दी होगी या फेंक दी होगी, किसी को दी होगी ये भी मैं नहीं मान सकता, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट आदमी की किताब किसी को देके क्या भ्रष्ट करना है। आए थे तो मैं तीर्थंकर था, तीर्थंकर के गिरने में देर कितनी लगती, तुम तीर्थंकर को इतनी स्वतंत्रता भी तो नहीं दे सकते कि वो सूरज ढलने के बाद भोजन कर ले। तुम्हारा तीर्थंकर तुम्हारा गुलाम, तुम्हारा संत तुम्हारा गुलाम, तो गुलाम ही तुम्हारे संत हो सकते जो अपने मालिक है, शायद उनसे तो तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा। जो अपने मालिक है वो तो तुम्हें झकझोर देंगे, वो तो आएंगे एक तूफान की तरह आंधी की तरह तुम्हें उखाड़ देंगे, तुम्हारी सारी धारणाओं को उखाड़ देंगे, वो तो आएंगे एक झंझावात की तरह और तुम्हारे बनाए हुए सारे भवनों को गिरा देंगे।

धारणा का मैं सबूत नहीं हूं तो कम से कम ये आदमी सबूत है। इसलिए तुम पूछते हो कि किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना, तुम्हारे प्रश्न में भी तुम्हारी धारणा छिपी। भगवान कोई उपाधि नहीं है, भगवान कोई ऐसा नहीं कि किसी को पद्म भूषण बना दिया कि भारत रत्न बना दिया। भगवान कोई उपाधि नहीं है कि किसी विश्वविद्यालय की डिग्री है, और भगवान बनाना किसी के हाथ में नहीं है। भगवान होना हमारा स्वभाव है, ये उपाधि नहीं है। उपाधि तो बीमारी का नाम है। उपाधि के तो दो अर्थ होते हैं, डिग्री और बीमारी भी। भगवान कोई उपाधि नहीं है, भगवान तो अपने स्वभाव को पहचान लेना है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो और पहचान लेते हो कौन वहां विराजमान है, तब तुम पाओगे कि भगवान हो। भगवत्ता हमारा सामान्य धर्म है, जैसे आग का धर्म जलाना है, ऐसा आदमी का धर्म भगवान। और जब आदमी में तुम्हें भगवान दिखेगा तो धीरे धीरे तुम्हारी आंख और गहरी जाएगी, पशु पक्षियों में भी दिखेगा, फिर और आंख गहरी जाएगी और पौधों में भी दिखेगा, फिर और आंख गहरी जाएगी और चट्टानों में भी दिखेगा। और जिस दिन तुम्हें सब जगह दिखाई पड़ना शुरू हो जाए, कोई ऐसी जगह ना रहे जहां भगवान ना हो, तभी जानना कि तुम घर वापस लौटे। नानक मक्का गए तो सो गए रात, पैर करके पवित्र मंदिर की तरफ। पुरोहित नाराज हुए, उन्होंने आके कहा कि तुम्हें पैर पवित्र मंदिर की तरफ करके सोते लाज नहीं आती, और लोग कहते तुम संत, ये क्या संत हुए तुम, तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि कहां पैर करने। तो कथा बड़ी प्यारी है, कथा कहती कि नानक ने कहा मेरे पैर उस जगह कर दो जहां भगवान ना हो। तब जरा मुश्किल हो गई होगी। पुजारियों ने कहते हैं जहां भी नानक के पैर किए पाया कि काबा उसी तरफ घूम गए। ऐसा काबा घूमा हो ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन कहानी बड़ी अर्थपूर्ण है। काबा घूमा हो इसकी कोई जरूरत भी नहीं, काबा के घूमने की जरूरत नहीं, क्योंकि काबा सब तरफ है ही। इतना ही अर्थ है कहानी में। कहां करोगे पैर, जहां पैर करोगे वहीं भगवान है, सब ओर भगवान है। तो पहली तो बात तुम पूछते हो किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना, उपाधि दी तो बात गलत हो गई, ये उपाधि नहीं, और कोई किसी को दे नहीं सकता। तुम जब अपने स्रोत में उतरते हो तो ये तुम्हारा अनुभव है, या किसी का इस उपाधि को स्वीकार करना। ये उपाधि ही नहीं है, स्वीकार अस्वीकार का सवाल नहीं है। जब तुम जानोगे और पाओगे कि ऐसा है तो फिर करोगे क्या। यही तो अलहिल्लाज मंसूर के साथ हुआ। जिस दिन मंसूर को बोध हुआ उसने घोषणा कर दी अनल हक, मैं परमात्मा, मैं सत्य हूं, मैं ब्रह्म हूं। जिन गुरु के पास मंसूर रहता था, गुरु ने कहा भीतर रख, ये बात बाहर मत निकाल। सूफी ये सदा से जानते रहे मगर मुसलमानों के डर से कहते नहीं। गुरु ने कहा कि रख, भीतर रख, मुझे भी पता है, अब तुझे भी पता हो गया, मगर बाहर मत कह, नहीं तो झंझट खड़ी होगी। झंझट खड़ी हुई। मंसूर ने कहा जो भीतर है उसको बाहर क्यों ना बहने दे, रुकावट कैसे डालू। और फिर मैं थोड़ी कहता हूं, एक भाव दशा आती जब मेरे भीतर ये गुंजार उठता है अनल हक, मेरे भीतर ये घोषणा उठती कि मैं भगवान हूं। गुरु ने तो उनको विदा कर दिया। उन्होंने कहा अगर ये घोषणा करनी है तो तू कहीं और जा, कोई और गुरु चुन ले, किसी और गुरुकुल में रुक जा, यहां हम झंझट नहीं लेना चाहते। दूसरे गुरु के पास भी यही हुआ, तीसरे गुरु के पास भी यही हुआ, चौथे गुरु के पास। गुरु ने कहा कि तेरी तकलीफ समझते, जब होती है ये घटना तो कभी कभी ऐसा होता आदमी अपने वश में नहीं रह जाता, उद्घोषणा होने लगती, मगर इसे रोकना पड़ेगा अन्यथा झंझट आएगी, तू इसे रोक, नहीं तो मैं तुझसे कहता हूं तू फांसी पे चढ़ेगा। कहते हैं मंसूर ने कहा मैं उसी दिन फांसी पे चढ़ूंगा जिस दिन तुम अपना ये सूफी अंगरखा उतार दोगे, उसके पहले नहीं चढ़ूंगा। और कहानी कहती है कि दोनों की भविष्यवाणियां सच सिद्ध हुई। खलीफा ने खबर भेजी गुरु के पास कि तुम्हारे आश्रम में एक आदमी है जो कहता है मैं ईश्वर हूं, उसे निकाल बाहर कर दो, वो अपराध कर रहा है। लेकिन गुरु ने कोई ख्याल न दिया, बात चुपचाप रखे रहा। दोबारा खबर भेजी गई, तीसरी बार खबर भेजी गई, जब सातवीं बार खबर आई

तो साथ में पुलिस के आदमी भी आए, नंगी तलवारें भी आईं, और उन्होंने कहा अब तुम्हें दस्तखत करके देना होगा कि यह आदमी अपराधी और इसको फांसी लगेगी। गुरु ने सोचा कि सूफी के कपड़े पहने हुए कैसे दस्तखत करूं, क्योंकि सूफी सभी जानते हैं इस बात को भीतर की ये बात सच। इसलिए अपना अंगरखा उतार के फेंक दिया। उन सिपाहियों ने कहा यह अंगरखा क्यों फेंक रहा है? उन्होंने कहा सूफी रहते हुए इस तरह की बात पर मैं दस्तखत नहीं कर सकता, यह अंगरखा मुझे उतार देने दो। और ठीक ही कहा था मंसूर ने कि अंगरखा तुम छोड़ोगे उसी दिन मुझे फांसी लगेगी। अंगरखा उतार के रख दिया और मौलवी के कपड़े पहन लिए, फिर दस्तखत कर दिए कि ठीक है यह आदमी अपराधी है और इसको जो भी सजा उचित हो दी जाए। तब मंसूर को सूली लगी। सूफी छिपाए रखे, क्योंकि मुसलमान देशों में सूफियों को प्रकट होने का उपाय नहीं था। इस देश में कोई अड़चन नहीं रही, इस देश में सूफी प्रकट होकर बोले। जहां सूफी भी प्रकट होकर न बोल सके वहां धर्म का क्या उद्भाव होगा, जहां उनको भी छिपा के रखना पड़े। जहां सत्य की आखिरी ऊंचाई चोरों की भांति छिपा के रखनी पड़े, वैसा देश धार्मिक नहीं हो सकता। इस देश की दूसरी परंपरा है। इस देश में बड़ा मुक्त वातावरण रहा है। इस देश में जो तुम्हारे भीतर हो उसकी उद्घोषणा की आज्ञा है। जो तुम्हारे भीतर हो, कौन है दूसरा जो तुम्हें रोके? जो तुम्हारे भीतर हो उसकी उद्घोषणा होने दो। अगर परमात्मा ने यही चुना है तुम्हारे भीतर की घोषणा करे अनल हक अहम ब्रह्मास्मि, तो करने दो घोषणा। ये कोई उपाधि नहीं है, कोई किसी दूसरे को देता लेता नहीं, न कोई स्वीकार करता है अस्वीकार करता है। ये तो तुम्हारे अंततम का दिया जब जलता है तब तुम जानते हो कि ऐसा है। ये तो तथ्य का अनुभव है, ये तो सत्य की प्रतीति है, ये तो साक्षात्कार है। लेकिन तुम्हारी अड़चन मैं जानता हूं, मुसलमान परंपरा में पले हो, उसी ढंग से सोचा है। इसलिए तुमने ये तो कहा कि फिरौन का सबसे बड़ा अपराध यही था कि उसने अपने को खुदा होने का दावा किया। लेकिन तुम भी चालाकी कर गए प्रश्न पूछने में भी। फिरौन को घसीट के लाए, पुराना नाम भी लोग भूल गए फिरौन का, 5000 साल पुराना इजिप्ट का बादशाह, उसको घसीट के लाए। ज्यादा जिंदा नाम, ज्यादा जिंदा आदमी अलहिल्लाज मंसूर के संबंध में क्या ख्याल है? फारूक खान, मंसूर को क्यों छोड़ दिया? तुम भी डरे हो गए कि इस सूफी को बीच में लाना ठीक नहीं। लेकिन तुम्हें बड़ी अड़चन होगी, अगर तुम बुद्ध को मिल जाओगे तो तुम बुद्ध को संत न मान सकोगे, अगर महावीर को मिल जाओगे तो तुम संत न मान सकोगे, राम को मिल जाओगे कृष्ण को मिल जाओगे तो तुम संत न मान सकोगे, क्योंकि ये तो अपराधी है, इनकी वाणी से तुम्हें संतोष कैसे मिलेगा? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं संतों की वाणी में जरूर अमृत है, सुधा है, लेकिन तुम जाने दोगे अपने प्राणों तक तभी ना? और तुम तभी जाने दे सकते हो जब तुम्हारे द्वार दरवाजे खुले, तुम्हारे मन पर कोई धारणाओं का जाल ना हो, तुम्हारे मन पर कोई पूर्व पक्षपात ना हो, पूर्वाग्रह ना हो, तब जरूर संतों की वाणी में बड़ा सहार है। उनका एक शब्द भी चेता सकता है, उनका एक इशारा जगा सकता है। मगर अगर तुम असहयोग करो तो संत भी सिर ठोंक ठोंक के मर जाए तो भी तुम्हारी नींद को नहीं तोड़ सकते। कितने तो संत हुए, तुम सोए हो तो सोए ही हो, कितने तो संत हुए सदियों सदियों में, तुम जहां हो वहीं के वहीं हो, तुम वहां से हटते नहीं। फूल खिलते हैं विदा हो जाते, पत्थर अपनी जगह पड़े पड़े ही रहते, वो फूलों की सुनते नहीं। सुनने का ना कारण, सुनने के पीछे कारण है, कारण यही है कि तुम्हारे कान पहले से भरे हुए हैं। अगर तुमने मुसलमान की तरह सोचा तो तुमने सोचा ही नहीं, अगर हिंदू की तरह सोचा तो सोचा ही नहीं, अगर जैन की तरह सोचा तो सोचा ही नहीं। सोचने वाला आदमी पहले तो ये सब लिबास उतार कर रख देता है, भूल ही जाता है कि मैं कौन हूं। अभी पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, तो ये ऊपर ऊपर की बातें, किसी घर में पैदा हो गए वो मुसलमान था हिंदू था ईसाई था, ये तो सब संयोग की बात है। उस घर में पैदा हो गए, उस घर के लोगों को जो मालूम था उन्होंने तुम्हें सिखा दिया, न उन्हें मालूम था न तुम्हें मालूम हो, उनके माँ बाप उन्हें सिखा गए थे।
न उन्हें मालूम था। ऐसी सिखावन चलती जाती, संस्कार चलते जाते। बुद्ध का वचन है कि संस्कार में दुख है। ये संस्कार है, हिंदू होना, मुसलमान होना, जैन होना, ईसाई होना संस्कार, कंडीशनिंग। माँ बाप तुम्हारे सिर में भरना शुरू कर देते हैं कि तुम मुसलमान हो, कुरान तुम्हारी किताब है, मोहम्मद तुम्हारा पैगंबर है, कि तुम हिंदू हो कि वेद तुम्हारी किताब है, कि तुम ईसाई हो कि बाइबल तुम्हारी किताब है। ऐसा माँ बाप भरना शुरू कर देते, छोटा बच्चा कोमल चित्त, ये सारी बातें इकट्ठी होती चली जाती। सोच विचार पैदा होने के पहले ही मन पर खूब संस्कार और जमघट जम जाता, भीड़ पैदा हो जाती। फिर जीवन भर आदमी उन्हीं संस्कारों से देखता है। तो तुमसे मैं कहूंगा, रंग ऐसा भरो ना रंग नफरत का हो, ना रंग मजहब का हो। रंग ऐसा भरो जिसके छींटों में बस प्यार ही प्यार हो। दूरियां सब मिटे, पास इतने मिले, एक छाया बने, तन से तन भी मिले, मन से मन भी मिले। पांव ऐसे धरो, रंग ऐसा भरो जिसकी आहट में भी प्यार ही प्यार हो, सबकी आंखों में हो, सबकी सांसों में हो, सबकी साधों में हो। एक ही बस गगन, एक ही बस लगन, डोर ऐसी गहो जिसकी गांठों में बस प्यार ही प्यार हो। रंग ऐसा भरो न रंग नफरत का हो, न रंग मजहब का हो। रंग ऐसा भरो जिसके छींटों में बस प्यार ही प्यार हो। तो तुम देख पाओगे सत्य क्या है। संत का अर्थ होता है जहां सत्य अवतरित हुआ है। संत का अर्थ होता है जहां सत्य ने देह धरी। संत का अर्थ होता है जिस देह में सत्य सिंहासन पर विराजमान हुआ है। अगर तुम निष्पक्ष मन, कोरे मन, शून्य मन संत के पास जाओगे, परम संतोष होगा। और संतोष ऐसा कि फिर मिटेगा नहीं। संतोष धारणा का नहीं, मान लिया ऐसा नहीं, सांत्वना जैसा नहीं। संतोष अनुभव का, सुख के अनुभव का। और वैसा संतोष तुम्हें भी संत बनाने लगेगा। रंगे जाने लगोगे, उस रंग में डूबने लगोगे। यहां ऐसे ही रंग को भरने की कोशिश चल रही है, ऐसे ही रंग को रंगने की कोशिश चल रही है। पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। जैसा था बचपन में, जैसा था यौवन में, माटी का रंग अभी वैसा ही है। पलकों के आसपास मंडराते दर्द गई, सपनों का रंग अभी वैसा ही है। थोड़े से हिस्से को रंगने से क्या होगा, एक शहर रंग जाए ऐसा रंग डालो। पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग से क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। रंगों के अंदर भी रंग हुआ करते, रंगों के भीतर जाकर के देखो, बिंबों के अंदर भी सांस हुआ करते। दर्पण के भीतर जाकर देखो, बासंती देहों को रंगना है कायरता। पतझर भी रंग जाए रंग ऐसा डालो, पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। संत का अर्थ है सत्य को उंडेल दे तुम्हें। संत का अर्थ है जो उसे हुआ है उसमें रंग दे तुम्हें। संत का अर्थ है रंगरेज। संत का अर्थ है तुम्हें एक डुबकी लगवा दे उसमें जो अभी तुम्हारे सामर्थ्य के बाहर है। संत का अर्थ है जो उसने देखा है अपनी आंखों के पीछे तुम्हें खड़ा करके थोड़ा अपनी आंखें उधार दे दे, कहे कि जरा मेरी आंखों से देख लो, जो मुझे दिखता है वो देख लो। संत का अर्थ है कि थोड़ी देर को अपना हृदय तुम्हें दे दे, और अगर तुम राजी हो तो ये घट जाता है, इसमें देर नहीं लगती। यहां घट रहा है, तुम अगर राजी हो तो कभी भी किसी भी क्षण जहां राजीपन पूरा होता है अचानक तुम्हारे हृदय की जगह मेरा हृदय धड़केगा, तुम मेरी आंख से देखने लगोगे, और तब सब चीजें और ही हो जाती, तब सब कुछ और ही ढंग से दिखाई पड़ने लगता है। संत को तुमने जानना सीखा, देखना सीखा, जब तुम्हें हिंदू का संत हो कि मुसलमान का, कि ईसाई का, कि बौद्ध का,
सभी का संत पहचान में आने लगे, तब तुम समझे कि संत क्या है। और तब जो संतोष मिलेगा वो संक्रांति है, वो तुम्हें रूपांतरित कर जाएगी, वो तुम्हें नया कर जाएगी, वो तुम्हें द्विज बना देगी, एक नया जन्म देगी। निश्चित ही ये बात असंतों की वाणी में कैसे हो सकती है? वाणी खाली कोरी, वहां कुछ प्राण कहां है? पिंजड़ा है, पक्षी तो नहीं। तो पिंजड़ों के लिए तुम चलते रहो, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पिंजड़ों को लिए ही चलते रहते और मान के चलते कि पक्षी है, होना चाहिए क्योंकि बाप ने कहा, क्योंकि बाप के बाप ने कहा, होना चाहिए क्योंकि भीड़ कहती, समाज कहता, मौलवी कहता, पंडित कहता, होना चाहिए। अपनी तरफ से नहीं देखते कि है या नहीं, डरते भी हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ना हो, इसलिए देखते ही नहीं। अपने पिंजड़े को खूब ढांक के रखते हो कि कहीं दिखाई ना पड़ जाए। तुम्हें भी कभी कभी शक तो आता होगा कि है या नहीं, लेकिन ये शक तुम टिकने नहीं देते। तुम कहते हो शक तो अच्छी बात नहीं, होना चाहिए ही। कोई माता पिता झूठ तो ना बोलेंगे, पंडित पुरोहित झूठ तो ना बोलेंगे, समाज परिवार झूठ तो ना बोलेगा। ये सब लोगों को झूठ बोलने में क्या रखा है, ये क्यों झूठ बोलेंगे सब, होना ही चाहिए। तो तुम कभी उठा के देखते भी नहीं पर्दा के पीछे कोई है, कि तुम खाली मंदिर की पूजा कर रहे। तुम्हारे 100 संतों में से 99 खाली मंदिर है जिनके भीतर कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी पूजा चल रही। अक्सर तो ऐसा होता है कि जिनके भीतर कुछ है उनकी पूजा बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जिनके भीतर कुछ है वो तुम्हारी धारणाएं तोड़ देते, जिनके भीतर कुछ है वो तुम्हारे गुलाम थोड़ी, वो तुम्हारी लीक पर थोड़ी चलते हैं। जिनमें कुछ नहीं है वही लीक पर चलते हैं। उधार वही होता है जिसके पास अपनी नगद संपदा नहीं है। उधारी ऊपर ऊपर से ठीक लगती हो, भीतर भीतर अर्थहीन होती। मैंने सुना एक बड़े धनपति यहूदी के घर के सामने यहूदी बैठा है अपने महल में। उसके दरवाजे पर लोहे के शीशों का बना दरवाजा है। एक फकीर, एक गरीब आदमी अपनी पीठ खुजला रहा है, दरवाजे के शीशों से अपनी पीठ खुजला रहा है। उस अमीर को बड़ी दया आई, उसने फकीर को भीतर बुलाया, अपने नौकरों को आज्ञा दी कि खूब स्नान करवाओ, खूब धो धो के मालिश करो इसकी। उसको खूब धुलवाया गया, खूब स्नान करवाया गया, ऐसे साबुन जो उसने कभी देखे भी न थे। पानी के फवारे के नीचे बिठाया गया, ठंडे गर्म पानी में नहलाया गया, इत्र फूले तेल से उसकी मालिश की गई, अच्छे कपड़े पहनाए गए। और जब वो आया तो उसे भोजन करवाया गया और कुछ रुपयों को भी उस धनपति ने उसे दिया और कहा कि जाओ। ये बात तो गांव भर में फैल गई। दो आदमियों ने सोचा ये तो बड़े गजब की बात है। वो दोनों भी आके दरवाजे पर खड़े होकर पीठ खुजलाने लगे। धनपति ने देखा, उसने अपने आदमी भेजे, कहा कि दोनों को जंजीरें डाल के मेरे सामने ले आओ। वो दोनों को जंजीरें डाल के लाया गया। वो दोनों चिल्लाने लगे कि बात क्या है, क्योंकि अभी अभी तो व्यवहार कुछ और किया गया था। मेरे हाथों में जंजीरें, हमारे हाथों में जंजीरें क्यों डाली जा रही है? वो घसीट के लाए गए। और उस धनपति ने कहा कि यहां से भाग जाओ, कभी दोबारा यहां मत आना, क्योंकि वो अकेला था और अगर उसके पीठ में खुजान उठी थी तो वो खुजा भी नहीं सकता था। तुम तो दो हो, एक दूसरे की पीठ क्यों नहीं खुजला ले? तुम्हें इतनी तो अकल होनी चाहिए। अब भाग जाओ, कभी दोबारा इस तरफ मत आना। अक्सर ऐसा होता है। महावीर को ज्ञान हुआ, वो नग्न खड़े हो गए। बहुतों को लगा कि नग्न खड़े होने से ज्ञान हो जाता है, तो बहुत अभी तक दरवाजों पर पीठ खुजला रहे। वो नग्न खड़े हो गए। नग्न खड़े होने से ही जैन, दिगंबर जैन, दूसरा कोई नहीं, श्वेतांबर जैन भी नहीं, दिगंबर जैन पूछता है, क्योंकि वो मानता है नग्नता संत का लक्षण। महावीर नग्न हुए थे तो उसने संत की परिभाषा कर ली। जैसे महावीर पर संत की परिभाषा चुक जाती है, संत की परिभाषा चुकती ही नहीं, और संत कभी दो एक जैसे हुए नहीं और होंगे भी नहीं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति संतत्व के शिखर को उपलब्ध होता है तो अद्वितीय हो जाता है, अकेला बेजोड़, उस जैसा फिर कभी दोबारा दूसरा आदमी नहीं होगा। इसका यह अर्थ नहीं कि कोई संत ना होगा, संत होंगे लेकिन फिर अपने जैसे होंगे।
सब संत अनूठे होते, बस एक संत एक बार एक जैसा होता, दोबारा फिर नहीं होता। तो हजारों लोग नग्न होकर खड़े, उनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन दिगंबर उनको पूछेगा, क्योंकि उसके संतत्व की परिभाषा में नग्नता जुड़ गई। इसलिए दिगंबर जैन किसी और को नहीं पूछ सकता जो कपड़े पहने हो, क्योंकि कपड़े पहने हुए तो संत हो ही नहीं सकता। दिगंबर जैन के सामने तुम मोहम्मद को खड़ा करो, वो कहेगा कि हजरत अभी भी कपड़े पहने हुए, अभी तक कपड़े पहने हुए तो ज्ञान हुआ ही नहीं, क्योंकि महावीर को जब ज्ञान हुआ तो कपड़े छोड़ गए, आप अभी तक कपड़े पहने हुए। ये बात जैन को नहीं जचेगी, वो मोहम्मद को तो मान ही नहीं सकता। मेरी एक किताब एक जैन मुनि को भेंट की गई, जिन मित्र ने भेंट की उन्होंने मुझे आके बताया कि बड़ी अजीब बात हो गई। उन्होंने किताब पलट के देखी, उन्होंने कहा और तो सब ठीक है, इसमें मोहम्मद का नाम कैसे आया। किताब फेंक दी, किताब महावीर पर थी, किताब फेंक दी क्योंकि इसमें मोहम्मद का नाम कैसे आया, कहां महावीर और कहां मोहम्मद। उनको ये बर्दाश्त के बाहर हो गया कि मोहम्मद का नाम महावीर के साथ आया, और मेरी तो आदत खराब है, मैं तो जोड़ ही देता हूं। उनको ये बात बिल्कुल जची नहीं, मोहम्मद सांसारिक आदमी ग्रस्त। अब अगर तुम जैनी के हिसाब से सोचो तो लगेगा भी, कितनी पत्नी है मोहम्मद की। दिगंबर जैन तो महावीर की एक पत्नी थी उसको भी इंकार करते। महावीर की सच में एक पत्नी थी और एक लड़की भी हुई और दमान भी था, ये ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन दिगंबर जैन अपनी किताबों में लिखते हैं कि उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, क्योंकि ये बात ही उनको अखरती कि महावीर और विवाह करे। हालांकि अज्ञान की अवस्था में करने तो हर्ष क्या है, फिर ज्ञानी तो बाद में हुए, मगर वो मानते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। महावीर तो अज्ञान की अवस्था में भी इतनी ऊंचाई पर थे कि वो विवाह तो कर ही नहीं सकते, इसलिए हुए विवाह को भी इंकार कर दिया है। लड़की पैदा हुई ये तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि लड़की पैदा हुई तो उसका मतलब हुआ उन्होंने संभोग किया होगा। महावीर और संभोग करें, जरा सोचो, ये बात जस्ती नहीं। तो दिगंबर जैन ने ये बात ही जड़ से काट दी कि विवाह ही नहीं हुआ, न रहा बांस न बजेगी बांसुरी। अब इधर मोहम्मद ने 9 विवाह किए, ये बात जरा जस्ती नहीं। लेकिन मोहम्मद की तरफ से सोचो, मोहम्मद को सीधा सोचो, तो मोहम्मद ने 9 विवाह किए और इस किसी विवाह में कोई काम वासना नहीं है। अरब देश लड़ाके देश थे, आदमी तो लड़ते और कट जाते और स्त्रियों की संख्या बढ़ती चली गई, पुरुष कम होते चले गए। जिस समाज में पुरुषों की संख्या कम हो जाए और स्त्रियों की संख्या ज्यादा हो जाए, उस समाज में बड़ा व्यभिचार फैल जाता है, फैल ही जाएगा, क्योंकि इतनी स्त्रियां कामातुर होकर भटकने लगेंगी और पुरुष तो कामातुर है ही। अब स्त्रियां इतनी उपलब्ध हो जाएंगी तो उपद्रव होने वाला है। तो मोहम्मद ने नियम बनाया कि हर मुसलमान कम से कम 4 विवाह करे। अब ये किसी दूसरे को, जिस देश में कभी स्त्री पुरुषों की संख्या में इतना बड़ा अंतर नहीं पड़ा, ये बात बेहूदी लगेगी, लेकिन उस ऐतिहासिक क्षण में ये बात बड़ी सार्थक थी। इन 4 विवाह ने मुसलमान देशों की नैतिकता बचा ली, नहीं तो ये डूब जाते, ये नष्ट हो जाते। खुद मोहम्मद ने 9 विवाह किए, ठीक ही है, अगर शिष्यों से 4 विवाह करवाने हो तो गुरु को 9 करने पड़े, ये बात बिल्कुल तर्कयुक्त है, इसी भी गणित की है। मोहम्मद 2 कदम आगे गए तब तो कहीं तुम चलोगे थोड़ा बहुत, नहीं तो तुम चलोगे नहीं। आदमी एक ही पत्नी से काफी परेशान रहता है, 4 पत्नियां तुम सोचते हो कोई छोटी मोटी साधना। मैं तुमसे कहता हूं कि ब्रह्मचारी की साधना उतनी कठिन नहीं जितनी 4 पत्नियों वालों की साधना कठिन है। मुल्ला नसुद्दीन एक चोरी में पकड़ा गया, मजिस्ट्रेट ने उसने कहा कि तू भला आदमी है और पहली दफे चोरी में पकड़ा गया, तू खुद ही बोल दे क्या सजा। मुल्ला ने कहा जो भी देना हो सजा दे दे, बस एक ही सजा मत देना, 2 विवाह करने की सजा मत देना। तो मजिस्ट्रेट बोला कि ये भी कोई सजा होती 2 विवाह करने की, बात क्या है तू इसको सार को खोल के कह। तो उसने कहा बात ये है, मैं पकड़ाते ही नहीं, इस आदमी की 2 औरतें 2 बजे रात इसके घर में घुसा, उधर मारपीट हो रही थी, एक औरत इसको ऊपर की तरफ खींच रही थी वो ऊपर रहती, और एक औरत इसको नीचे की तरफ खींच रही थी वो नीचे रहती, एक इसकी टांगें पकड़ी थी एक इसके हाथ पकड़े थी, ये सीढ़ियों पे अटका था। इसकी ये घबराहट देख के और ये घर की हालत देख के मैं छिप के बैठ गया कोने में कि अभी इस निपट जाए,
तो या तो मैं कुछ चोरी करूं या निकल भागूं, मगर ये निपटे ही नहीं। सुबह हो गई, मैं घर से निकल ना सका क्योंकि वो सीढ़ियां उतरने का एकमात्र रास्ता था। इसलिए मैं पकड़ा गया, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं जो सजा देनी हो दे देना, मगर दो औरतों से विवाह करने की सजा मत देना। तुम सोचते हो कि ब्रह्मचर्य ही साधना है, तो तुम गलती सोचते हो। चार स्त्रियों का साथ विवाह करना भी साधना ही है, बड़ी साधना हो सकती है। और मोहम्मद का विवाह तुम सोचते हो, मोहम्मद ने एक विवाह किया, पहला विवाह तो अपनी से दुगनी उम्र की, पहले विवाह में तो जो स्त्री थी वो करीब करीब बूढ़ी हो रही थी और मोहम्मद अभी जवान थे, उससे विवाह किया। कोई पुरुष अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह करना पसंद नहीं करता। बड़ी उम्र की तो तुम छोड़ दो, तुमसे अगर एक इंच ऊंची औरत हो तो भी तुम उससे विवाह करना पसंद नहीं करते। अपने से किसी भी स्थिति में बड़ी स्त्री से कोई विवाह करना नहीं पसंद करता। तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो तुम पसंद नहीं करते, तुमसे ज्यादा अनुभवी हो तो पसंद नहीं करते, उम्र ज्यादा हो तो पसंद नहीं करते, क्योंकि कम उम्र की स्त्री ही काफी कब्जा जमा लेती, बड़ी उम्र का तो कहना ही क्या। 5-7 साल पीछे की स्त्री भी तुम्हें धकेल देती, तुम्हारी सब समझदारी रखी रह जाती। तो अगर बड़ी उम्र की स्त्री हुई, ज्यादा अनुभवी हुई, ज्यादा पढ़ी लिखी हुई, तो अड़चन आएगी, बहुत अड़चन आ जाएगी। यद्यपि वैज्ञानिक हिसाब से ज्यादा उम्र की स्त्री से ही विवाह होना चाहिए। क्यों कहता हूं वैज्ञानिक हिसाब से, क्योंकि सारे संसार के आंकड़े ये बात कहते हैं कि स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा जीती, 5 साल से 7 साल ज्यादा। तो अगर तुम 75 साल जियोगे तो तुम्हारी पत्नी 80 या 82 साल जिएगी। अब तुम 5-7 साल छोटी उम्र की स्त्री से विवाह करोगे तो तुम्हारे मरने में, तुम्हारी पत्नी के मरने में 10 साल का फासला होगा, तुम 10 साल के लिए उसे विधवा छोड़ जाओगे। ये अवैज्ञानिक। अगर विज्ञान की बात समझो तो तुम्हें अपने से 5-7 साल उम्र बड़ी स्त्री से विवाह करना चाहिए, ताकि तुम दोनों करीब करीब संसार से विदा हो। 75 साल के तुम होगे, 80 की वो हो जाएगी, दोनों करीब करीब मरोगे, ज्यादा दुख नहीं होगा, ना तुम अकेले छूटोगे ना वो अकेली छूटेगी। मोहम्मद ने बड़ी हिम्मत की कि अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह कर लिया। मोहम्मद की परिस्थिति अलग, मोहम्मद के सोचने के ढंग अलग, मोहम्मद की बात अलग। फिर मोहम्मद जिन लोगों से बोल रहे थे वे लोग बिल्कुल ही खानाबदोश, एकदम गैर पढ़े लिखे लोग, उनको तो छुड़ाना था अभी मूर्ति से। अभी तो उनका सबसे बड़ा उपद्रव यही था कि वो मूर्तियों की पूजा में लगे थे, और एक दो मूर्ति की नहीं, 365 मूर्तियां बना रखी थी काबा में, एक दिन के लिए एक मूर्ति थी, हर दिन नई मूर्ति की पूजा चल रही थी। अभी तो वो बहुत नीचे धर्म में पड़े थे, उनको मूर्ति से किसी तरह छुटकारा दिलाना था। अभी उनसे ये घोषणा करनी कि अहम ब्रह्मास्मि हूं बात ही पागलपन की होती, ये तो वो समझ ही नहीं पाते। ये तो पाठ बहुत आगे का है, ये तो भारत में संभव हो सका, क्योंकि ये पाठ के लिए काफी लंबी परंपरा चाहिए, 1000 साल की परंपरा चाहिए। ये तो धर्म के विश्वविद्यालय की आखिरी कक्षा है जहां घोषणा की जा सकती है अहम ब्रह्मास्मि, और लोग समझेंगे और नाराज ना हो जाएंगे। तो अलग परिस्थितियां, अलग व्यक्तित्व, अलग ढंग। जैन राजी नहीं होगा कि मोहम्मद ज्ञान को उपलब्ध हुए, और मुसलमान राजी नहीं होंगे कि महावीर ज्ञान को उपलब्ध हुए, नंगे खड़े हो गए। ये बात तो जस्ती नहीं, ये तो ठीक नहीं, ये तो अशिष्ट, ये तो असामाजिक। कोई किसी दूसरे के संत से तो राजी नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे संत की एक निश्चित धारणा है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं सब धारणा छोड़ के तुम शून्य भाव से, शांत भाव से, मौन भाव से देखो तो तुम चकित हो जाओगे। मोहम्मद भी उसी महिमा को उपलब्ध हुए जिसको महावीर, बुद्ध भी उसी को उपलब्ध हुए जिसको क्राइस्ट। ये अलग ढंग है, अलग ढंग होने ही चाहिए। और एक व्यक्ति एक ही बार होता है, दोबारा दोहराया नहीं जाता है। परमात्मा इस संसार में किसी को दोहराता नहीं। आदमियों की तो छोड़ दो, तुम एक कंकड़ उठा लो और सारी पृथ्वी खोज डालो तो भी वैसा ही दूसरा कंकड़ ना पा सकोगे। एक पत्ता तोड़ लो इस बगीचे का और सारे जंगल खोज डालो, ठीक वैसा ही दूसरा पत्ता ना पा सकोगे। परमात्मा कार्बन कॉपी बनाते ही नहीं, परमात्मा मूल बनाता, मौलिक। प्रत्येक वस्तु नई और अद्वितीय। तो जब छोटी छोटी चीजों के संबंध में ये सच है, तो क्राइस्ट या मोहम्मद या महावीर या बुद्ध जैसे व्यक्ति तो परम
आखिरी है, ये तो अद्वितीय, इन जैसा दूसरा कोई होता नहीं। नकल में पढ़ना मत, किसी जैसे बनने की कोशिश करना मत। तुम ही बन सको तो ही तुम परमात्मा को उपलब्ध हो सकोगे, और जब तुम अपनी परिपूर्णता में स्वयं हो जाते हो तब तुम्हारे भीतर एक नाद उठने लगता है, वो नाद है अहम ब्रह्मास्मि अनल हक। फिर ओम गलत कहता था, क्योंकि उसने ये कहा कि मैं परमात्मा हूँ और कोई नहीं, और मंसूर ने ठीक कहा कि मैं परमात्मा हूँ क्योंकि सिर्फ परमात्मा है और तो कोई है ही नहीं, परमात्मा ही है, पत्थर भी परमात्मा है तो मैं भी परमात्मा हूँ। इन दोनों वक्तव्यों की समानता के साथ साथ इनके भीतर छिपा हुआ भेद भी ठीक से देख लेना। तीसरा प्रश्न, किसी बुद्ध पुरुष के वचनों के मार्मिक अर्थ को समझ पाना क्या ध्यान को उपलब्ध हुए बिना संभव है? क्या तत्व ज्ञान और ध्यान की स्थिति के बीच कोई गहरा नाता है? इस विषय पर प्रकाश डालने का अनुग्रह करें। किसी बुद्ध पुरुष के वचनों को पूरा पूरा समझना हो तो ध्यान के बिना कोई उपाय नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी झलक मिल सकती है ध्यान के बिना भी, थोड़ी थोड़ी भनक पड़ सकती है बिना ध्यान के भी। और अगर ये भनक न पड़ती होती तो फिर तुम चलोगे ही कैसे? तब तो तुम कहोगे जब ध्यान होगा तब समझ में आएगा, और जब तक समझ में नहीं आया तब तक चलें कैसे? और जब तक चलोगे नहीं तब तक ध्यान कैसे होगा? तब तो तुम्हें बड़े चक्कर में पड़ जाओगे, दुष्ट चक्कर में पड़ जाओगे। तो दो बातें ख्याल रखना, ना तो ये ही बात सच होती है कि जो बुद्ध पुरुष कहते हैं वो तुमने सिर्फ सुन लिया बुद्धि से और समझ में आ जाए, नहीं, अगर इतने से ही समझ में आ जाए तो फिर ध्यान की कोई जरूरत ही ना रहेगी। और ना ही दूसरी बात सच है कि जब ध्यान होगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि अगर ध्यान होगा तभी समझ में आएगा तो तुम ध्यान भी कैसे करोगे? क्योंकि बुद्ध पुरुषों में कुछ रस आने लगे तभी तो ध्यान में लगोगे ना। तो बुद्ध पुरुषों की वाणी सुनते समय पूरी तो समझ में नहीं आती, कभी नहीं आती, पूरी तो तभी समझ में आएगी जब तुम भी बुद्ध पुरुष हो जाओगे, जब तुम भी उन जैसे हो जाओगे तभी पूरा अनुभव होगा, लेकिन अभी थोड़ी भनक तो पड़ सकती। जब छोटा बच्चा चलना शुरू करता है तभी दौड़ नहीं सकता है, ये बात सच है, लड़खड़ा तो सकता है, और अगर तुम कहो कि अभी लड़खड़ा भी नहीं सकता तो फिर कभी चल ही ना सकेगा। छोटा बच्चा जब पहले कदम उठाता है तो देखा कैसा डरा डरा सहारे की आकांक्षा रखता है, माँ हाथ पकड़ ले, माँ का हाथ पकड़ के हिम्मत करके दो कदम चल लेता है। छोटे बच्चे के पास पैर तो है, उसके शरीर को संभालने योग काफी पैर है, तुम्हारे बराबर पैर नहीं तो तुम्हारे बराबर शरीर भी नहीं, लेकिन अनुपात ठीक उतना ही है जितना तुम्हारा, तुम्हारे बड़े शरीर को संभालने के लिए बड़े पैर हैं, उसके छोटे शरीर को संभालने के लिए छोटे पैर, लेकिन उसके शरीर को संभालने के लिए पर्याप्त पैर है, मगर अभी अनुभव नहीं, उसे ये भरोसा नहीं कि मैं खड़ा हो सकूंगा, उसे ये आत्मविश्वास नहीं, तो माँ का हाथ पकड़ के चल लेता है। गुरु का हाथ पकड़ के चलने का इतना ही अर्थ होता है कि जहाँ तुम अभी नहीं चले हो, यद्यपि चल सकते हो लेकिन तुमने कभी प्रयास नहीं किया है, तो कोई जो चल चुका है, कोई जो चल रहा है, तुम उसका हाथ पकड़ लेते, फिर धीरे धीरे माँ अपना हाथ छुड़ाने लगती, फिर उंगली ही पकड़ रखती है, फिर धीरे धीरे उंगली भी खींच लेती है। एक दिन बच्चा पाता है कि अरे वो तो खुद ही खड़ा होकर चल सकता है। जब पहली दफे बच्चे चलते हैं तो तुमने देखा वो रुकते ही नहीं, वो बैठते ही नहीं, तुम लाख उपाय करोगे, अब तू थक गया, अब तू बैठ जा, मगर वो चक्कर मार रहे हैं। इतना आनंद उनको अनुभव होता है कि एक अपूर्व घटना हाथ लग गई कि मैं भी चल सकता हूँ। ऐसी ही घटना ध्यान के मार्ग पर भी घटती। बुद्ध पुरुषों की वाणी पहले तो सिर्फ झलक देगी, जरा सी देर के लिए बिजली कौन जाएगी, एक किरण उतर जाएगी, मगर किरण तुम्हें प्यास से भर जाएगी और तुम्हें ये आश्वासन मिलने लगेगा, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इस व्यक्ति को हुआ है तो मुझे क्यों नहीं हो सकता, मुझ जैसे ही व्यक्ति को तो हुआ है, आखिर बुद्ध के हड्डी मांस मज्जा तुम्हारे जैसे ही है, कुछ भेद तो नहीं, तुम्हारे जैसे आंख कान नाक, तुम जैसा भूख लगते तो भोजन करते और तुम जैसे रात थक के सो भी जाते, तुम जैसे ही जवान हुए, तुम जैसे ही बूढ़े हुए, तुम जैसे ही एक दिन मर भी गए,
तो बुद्ध पुरुष ठीक तुम जैसे बीमार भी होते, रुग्ण भी होते, स्वस्थ भी होते, बूढ़े हो गए तो बाल भी सफेद हो गए, बूढ़े हो गए तो हाथ पैर भी कपने लगे, ये सब तुम जैसा ही है। लेकिन तुम जैसे इस मनुष्य में भी कुछ घटा है जो तुम में लगता है अभी नहीं घटा। इससे हिम्मत बंधती है कि अगर मेरे जैसे व्यक्ति में ये हो सका है तो शायद मुझ में भी हो सके, शायद मैं भी एक संभावना अपने भीतर लिए चल रहा हूँ, एक बीज जिसको ठीक भूमि नहीं मिली, शायद मैं भी अपने भीतर एक संभावना लिए चल रहा हूँ जिस पर मैंने कभी प्रयोग नहीं किया और वास्तविक बनाने की चेष्टा नहीं की। किसी गायक को गीत गाते देखकर तुम्हें याद आ जाती अपने कंठ की कि कंठ तो मेरे पास भी है, और किसी नर्तक को नाचते देखकर तुम्हें याद आ जाती अपने पैरों की कि पैर तो मेरे पास भी है, चाहूं तो नाच तो मैं भी सकता हूं। किसी चित्रकार को चित्र बनाते देखकर तुम्हें भी याद आ जाती है कि चाहूं तो चित्र मैं भी बना सकता हूं। ऐसे ही किसी बुद्ध को देखकर तुम्हें याद आ जाती है कि चाहूं तो बुद्धत्व मैं भी पा सकता हूं। बस यही चाह, ये समझ नहीं है पूरी, प्यास शुरू हुई, उजाला सा बिखर जाता है, चाहे जैसा भी हो हर वक्त गुजर जाता है, बात रह जाती है पर ढेर बिखर जाता है। गम में वैसाख के सूरज की तपन होती है, ऐसे मौसम में समंदर भी उतर जाता है। रोज दिन भर तो अंधेरों में सफर करते हैं, शाम होते ही उजाला सा बिखर जाता है, टूट जाता है हर एक तसलसल यारो, कोई लम्हा कभी ऐसा भी गुजर जाता है, कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती, दिल से कुछ देर को हर बोझ उतर जाता है, उजाला सा बिखर जाता है, कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती। बुद्ध पुरुषों के पास, तीर्थंकरों के पास, सदगुरुओं के पास, परमहंसों के पास, सूफियों के पास कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती, दिल से कुछ देर को हर बोझ उतर जाता है, कुछ देर को ही, क्षण भर को ही सही, कोई पूरा सूरज नहीं उगता लेकिन एक किरण चौंध जाती है। लेकिन उस किरण में तुम्हें अपना भविष्य दिखाई पड़ जाता है कि ये हो सकता है, टूट जाता है हर एक तसलसल यारो, कोई लम्हा कभी ऐसा भी गुजर जाता है, कोई लम्हा एक क्षण भर को, एक पल भर को आंख खुल जाती फिर बंद हो जाती, लेकिन वो एक पल जीवन को बदल देने वाला पल सिद्ध होता है। पूछते हो किसी बुद्ध पुरुष के वचनों के मार्मिक अर्थ को समझ पाना क्या ध्यान को उपलब्ध हुए बिना संभव है? हाँ भी और नहीं भी। हाँ इस अर्थ में कि झलक मिलती है, एक किरण सी उतरती है, एक उमंग जग जाती, एक प्यास उठने लगती, एक अज्ञात खिंचाव पैदा हो जाता है, इसलिए हाँ, और नहीं इसलिए कि सुन के ही कहीं पूरी बात थोड़ी हो जाती, चलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, बहुत कूड़ा करकट है वो जला देना पड़ेगा, आग से

संतों की वाणी सुनने या पढ़ने से मन या मस्तिष्क का तनाव दूर होता है। असंतों के कलाम की यह विशेषता नहीं होती। कृपया बताएं कि इसका कारण क्या है। पूछा है फारूक खान ने। पहली बात, संतों की वाणी सिर्फ वाणी नहीं, वाणी ही हो तो खोल ही है, भीतर कुछ सार नहीं। शब्द ही है, भीतर कुछ सार नहीं। संतों की वाणी वाणी से कुछ ज्यादा है। वाणी तो केवल सहारा है उसे देने का, जो और किसी ढंग से दिया नहीं जा सकता। वाणी तो वाहन है, शब्दों पर चढ़ाकर, शब्दों के घोड़ों पर चढ़ाकर जो भेजा जा रहा है वो शब्द से बहुत पार है। उसकी ही वर्षा जब हो जाती है हृदय पर तो शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, संतोष मिलेगा। असंतों की वाणी कोरी है, खाली है, जिसके मरा हुआ आदमी लाश पड़ी है, और यही आदमी जीवित था कल तक। शरीर अब भी वैसा ही है, लेकिन शरीर के भीतर से कोई चीज उड़ गई। अब तो पिंजड़ा पड़ा रह गया, पक्षी उड़ गया। असंतों की वाणी ऐसी है जैसे मरा हुआ आदमी। शब्द की देह तो है लेकिन अनुभव की आत्मा नहीं। तो असंतों की वाणी से सुगंध तो मिलनी कठिन है, दुर्गंध ही मिलेगी। संतों की वाणी से संतोष मिलेगा, क्योंकि संतोष सत्य की छाया है। यह तो बात ठीक, लेकिन एक बात याद रखना, जिनकी वाणी से संतोष मिल जाए जरूरी नहीं कि वे संत ही हों, और जिनकी वाणी से तुम्हें संतोष न मिले जरूरी नहीं कि वे असंत ही हों। जहां तक संतों की तरफ से संबंध है, संतों की वाणी से संतोष मिलना चाहिए। जहां तक असंतों का संबंध है, असंतों की वाणी से संतोष नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जो मिलता है उसमें अकेला संत थोड़ी भागीदार है, तुम भी भागीदार हो। वर्षा होती हो और घड़ा उल्टा रखा हो तो गैर भरा रह जाएगा। तो संत की भी वाणी से हो सकता है संतोष न मिले, अगर तुम उसे ग्रहण ही ना करो, अगर तुम उसे भीतर ही ना जाने दो, या तुम्हारे पूर्व पक्षपात, तुम्हारी पहले की बनाई धारणाएं रुकावट बन जाएं। तो ऐसा समझो कि जरूरी नहीं है कि संत की वाणी से संतोष मिले ही, तुम लोगे तो ही मिलेगा। और दूसरी बात भी संभव है, असंत की वाणी से भी संतोष मिल जाए अगर तुमने लेने की ही जिद कर रखी। तो जहां कुछ भी नहीं है वहां भी तुम कुछ देख लोगे, क्योंकि इस लेन देन में दो व्यक्ति सम्मिलित है, एक देने वाला और एक लेने वाला। इसलिए लेन देन की ये घटना दोनों पर निर्भर होगी। जैसे अगर कोई जैन किसी सूफी फकीर की वाणी पढ़े उसे संतोष नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ये मान ही नहीं सकता कि मांसाहारी और ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, ये बात ही संभव नहीं। सूफी संत की तो छोड़ दो, एक जैन मुनि मुझसे कहा कि आप रामकृष्ण परमहंस देव का उल्लेख करते, आपको पता है वो मछली खाते थे, तो मछली खाने वाला आदमी कैसे संत हो सकता है। अब इन जैन मुनि को रामकृष्ण की वाणी से संतोष नहीं मिलेगा। इससे ये मत समझ लेना कि जहां से संतोष नहीं मिलता वहां संत नहीं। बौद्धों को जैनों की वाणी में संतोष नहीं है, हिंदुओं को मुसलमानों की वाणी में संतोष नहीं है, मुसलमानों को ईसाइयों की वाणी में संतोष नहीं। तो इसका क्या अर्थ हुआ है? इसका अर्थ हुआ कि संतत्व की भी तुम्हारी धारणा है, उस धारणा के अनुकूल संत पड़ता हो तो तुम संतोष लोगे, उसके अनुकूल न पड़ता हो तो तुम्हें जरा भी संतोष न मिलेगा। फिर कभी यह भी हो सकता है कि असंत तुम्हारी धारणा के अनुकूल पड़ता हो। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन भूखा प्यासा एक गांव में आया, गांव में एक भी मुसलमान नहीं था, गांव शाकाहारियों का था, और गांव का जो साधु पुरुष था उसने सारा जीवन शाकाहार की ही सेवा में लगाया था, बस मांसाहार के ही विपरीत उसका सारा जीवन समर्पित था।
मुल्ला उसकी सभा में गया, वो समझा रहा था कि मांसाहार बुरा है, पशु पक्षियों में भी आत्मा है। मुल्ला बीच में खड़ा हो गया, उसने कहा बिल्कुल ठीक कहते, एक बार एक मछली ने ही मेरे प्राण बचाए थे। साधु तो बहुत प्रसन्न हुआ, उसने कहा आओ भाई आओ, ये तो बड़ा प्रमाण मिला कि एक मुसलमान भी तैयार है गवाही देने को। उन्होंने उसे पास बिठाया, उसके भोजन का भी इंतजाम करवाया और कहा कि तुम यहीं रहो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, ये प्रमाण हो गया। और रोज साधु

जब समझाता लोगों को, वो कहता कि पूछो, इस मुसलमान भाई से पूछो, एक मछली नहीं इसके प्राण बचाए, मछलियों में भी आत्मा है, उनको खाओ मत। दो चार दिन के बाद एक दिन सांझ को दोनों साथ बैठे थे। वो फकीर साधु कहने लगा मुल्ला नसरुद्दीन को कि तुम तो करीब करीब मेरे गुरु, यद्यपि मैंने जीवन भर शाकाहार की सेवा की, मांसाहार का विरोध किया, लेकिन अभी तक किसी पशु पक्षी ने ऐसा प्रमाण मुझे नहीं दिया जैसा तुम्हें दिया। तुम तो करीब करीब मेरे गुरु हो, अब विस्तार में मुझे कहो कि बात क्या थी, कैसे बचाए तुम्हारे प्राण। मुल्ला ने कहा विस्तार न पूछे तो अच्छा, सब ठीक चल रहा है, विस्तार की क्या जरूरत। पर साधु जिद करने लगा कि नहीं बताना ही पड़ेगा। साधु ने तो पैर पकड़ ली कि गुरुदेव बताना ही पड़ेगा। तो मुल्ला ने कहा नहीं मानते तो ठीक है, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। साधु ने कहा बात क्या है, इतना रहस्य क्यों बना रहे हो। मुल्ला ने कहा बात यह है कि मैं बहुत भूखा था और मछली को खाने से मेरे प्राण बचे। उसी रात, सुबह भी नहीं, उसी रात मुल्ला निकाला गया। अभी तक इसकी वाणी में बड़ा संतोष मिल रहा था, अब इसकी वाणी में कोई संतोष न रहा। तो तुम पूछते हो कि संतों की वाणी सुनने या पढ़ने से मन या मस्तिष्क का तनाव दूर होता है, सभी संतों की, तो तुम संत हो जाओगे, तब तो तुम्हारे संत होने में फिर कोई बाधा ना रहे, या किन्हीं किन्हीं संतों की। पूछने वाले मित्र मुसलमान है, तो तुमने और किन्हीं संतों की वाणी भी पढ़ी है जिनके विचार इस्लाम से अन्य हो, उनसे संतोष न मिलेगा। और इन्हीं मित्र ने दूसरा प्रश्न पूछा है, उससे जो मैं कह रहा हूं वो साफ हो जाएगा। इनने पूछा है किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना या किसी को इस उपाधि का स्वीकार करना क्या उचित है। फिरौन का सबसे बड़ा अपराध यही तो था कि उसने अपने को खुदा होने का दावा कर रखा था। अब इन मित्र ने इजिप्ट के फिरौन का उल्लेख किया, लेकिन अल हिल्लाज मंसूर को छोड़ दिया। सच है ये बात कि इजिप्ट के सम्राट फिरौन ने घोषणा कर रखी थी कि मैं खुदा हूं, ये उसका अपराध था। लेकिन अपराध इसलिए नहीं था कि उसने घोषणा की थी कि मैं खुदा हूं, अपराध का कारण दूसरा था। अपराध का कारण यह था कि वो कहता था मेरे सिवाय खुदा और कोई नहीं, मैं खुदा हूं, मेरे सिवाय और कोई खुदा नहीं। यही बात तो मंसूर ने भी कही थी, जिनको मुसलमानों ने सूली दी। और मैं समझता हूं कि फारूक खां भी राजी होंगे कि सूली ठीक दी। मंसूर ने भी यही कहा था कि मैं खुदा हूं, लेकिन बड़ा फर्क था उसके कहने में। उसके कहने का मतलब था मैं खुदा हूं क्योंकि सभी खुदा हैं, खुदा के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। मंसूर ने जो कहा वो संत की वाणी थी, और फिरौन ने जो कहा वो संत की वाणी नहीं थी। यद्यपि वक्तव्य दोनों के एक जैसे, दोनों ने यही कहा था मैं खुदा हूं, लेकिन फिरौन कहता था मेरे अलावा कोई और खुदा नहीं, और मंसूर ने कहा कि मैं करूं भी क्या, खुदा होना ही पड़ेगा, उसके सिवा होने का कोई उपाय नहीं क्योंकि खुदा ही है। लेकिन मुसलमानों ने फिरौन को भी अपराधी साबित किया और मंसूर को भी सूली लगा दी। अगर मुसलमानों को उपनिषद के ऋषि मिल जाते जिन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, क्या करते तुम उनके साथ, फांसी लगाते ना, सूली लगाते। संत तो तुम्हें वो मालूम नहीं पड़ सकते थे, जो कहता है मैं ब्रह्म हूं वो कैसे संत हो सकता है। मुसलमान नाराज है जीसस पर क्योंकि जीसस ने दावा किया कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, ये भी कोई दावा है। हमारे मुल्क में लोग हैं जो कहते हैं हम ईश्वर हैं, बेटे का भी क्या दावा करना। मगर मुसलमान इससे नाराज हैं कि ईसा ने दावा किया कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, नहीं ये बात ठीक नहीं। तो तुम बुद्ध को क्या कहोगे, महावीर को क्या कहोगे, कृष्ण को, राम को क्या कहोगे, ये सब तो अपराधी हो गए, ये तो संत ना रहे। तो मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारा ही दूसरा प्रश्न सबूत देता है कि संत का तुम्हारे मन में क्या अर्थ एक धारणा होगी। संत ऐसा होना चाहिए, धारणा तुम्हारी है, उस धारणा में बैठ जाएगा तो संत, नहीं बैठा तो असंत हो जाएगा। और कौन संत तुम्हारी छोटी मोटी धारणाओं में बैठ सकता है, जो बैठ जाए वो संत ही क्या खाक जो तुम्हारी खिड़की में बैठ जाए, तुम्हारे ढांचे के अनुकूल पड़ जाए वो कोई संत, नकल होगा।
संत की नकल ढांचों में बैठ जाती है। तुम बड़ा संतोष भी ले लोगे। तुम्हें संतोष इसलिए नहीं मिल रहा है कि संत की वाणी में कुछ सार, तुम्हें संतोष इसलिए मिल रहा है कि तुम्हारा अहंकार तृप्त हो रहा है कि देखो मेरी धारणा संत की कितनी सही है। ये प्रमाण मिल गया, ये आदमी प्रमाण है मेरे संतत्व की धारणा का। तुम अपनी ही धारणा के चरणों में सिर झुका रहे। मैं एक घर में मेहमान था, एक जैन घर में। एक बूढ़े सज्जन मुझे मिलने आए, उम्र होगी कोई 80 साल की। कोई 40 साल से त्यागी का जीवन ही बिताते थे, यद्यपि घर में ही थे लेकिन न दुकान जाते न घर द्वार की बात करते, ज्यादातर सामायिक ध्यान उपवास इसमें ही समय लगाते थे। मैं गांव में आया हूं तो मुझे मिलने आए, अपने घर के बाहर भी नहीं जाते थे। तो उनके साथ 10-5 लोगों का गिरोह भी आया ये देखने कि वो कभी अपने घर के बाहर जाते नहीं, किसके दर्शन को जा रहे हैं। उन्होंने मेरी एक किताब पढ़ी थी साधना पत्र, और उससे वो बहुत प्रभावित थे। वो आके मेरे चरणों में झुके और उन्होंने कहा कि आप तो मेरे लिए तीर्थंकर हैं, आपने जो किताब लिख दी उससे मुझे जो मिला है वो किसी चीज से नहीं मिला, मेरा सारा जीवन उसने बदल डाला है। ऐसे उनसे बातें हो रही थी, तभी घर की गृहिणी ने आके मुझे कहा कि अब आप भोजन कर लें, सांझ हो गई। तो मैंने उनसे कहा कि ये वृद्ध सज्जन आए हैं, अभी बीच में बाधा ना डालो, थोड़ी देर बाद भोजन कर लूंगा। वो वृद्ध सज्जन तो बहुत चौंके, उन्होंने कहा क्या सूरज ढला जा रहा है, सूरज ढलने के बाद भोजन करेंगे। मैंने कहा आप इतनी दूर से चल के आए, बूढ़े हैं, आपके पास बैठना ज्यादा आनंदपूर्ण, भोजन तो घड़ी बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा आप समझे नहीं, उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा जिस आदमी को भी यही पता नहीं कि रात्रि भोजन पाप है उसको और क्या पता हो सकता है। आए थे तो मेरे चरण छुए थे, जाते वक्त मुझे उपदेश देके गए कि कम से कम इतना तो करो कि रात्रि भोजन छोड़ दो। अब मैं निश्चित जानता हूं घर जाके किताब उन्होंने जला दी होगी या फेंक दी होगी, किसी को दी होगी ये भी मैं नहीं मान सकता, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट आदमी की किताब किसी को देके क्या भ्रष्ट करना है। आए थे तो मैं तीर्थंकर था, तीर्थंकर के गिरने में देर कितनी लगती। तुम तीर्थंकर को इतनी स्वतंत्रता भी तो नहीं दे सकते कि वो सूरज ढलने के बाद भोजन कर ले। तुम्हारा तीर्थंकर तुम्हारा गुलाम, तुम्हारा संत तुम्हारा गुलाम। तो गुलाम ही तुम्हारे संत हो सकते जो अपने मालिक हैं, शायद उनसे तो तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा। जो अपने मालिक हैं वो तो तुम्हें झकझोर देंगे, वो तो आएंगे एक तूफान की तरह, आंधी की तरह तुम्हें उखाड़ देंगे, तुम्हारी सारी धारणाओं को उखाड़ देंगे। वो तो आएंगे एक झंझावात की तरह और तुम्हारे बनाए हुए सारे भवनों को गिरा देंगे, तुम्हारा सारा तत्व ज्ञान धूल धूसरित हो जाए। असली संत के करीब तो पहले तुम्हारी धारणाएं टूटेंगी, और अगर धारणाएं टूटने में तुम घबराए ना परेशान न हुए, असली संत पहले तो तुम्हें मारेगा। अगर तुम मरने से न डरे तो जरूर संतोष आएगा, और संतोष ऐसा कि फिर जाने वाला नहीं। लेकिन एक ऐसा भी संतोष है जो तुम मान लेते हो, तुम जहां भी अपनी धारणा के अनुकूल किसी को देखते हो तुम्हें संतोष मिलता है। क्या संतोष मिलता है? कि तो मेरी धारणा ठीक है। देखो ये आदमी सबूत है, अगर अपनी धारणा का मैं सबूत नहीं हूं तो कम से कम ये आदमी सबूत है। इसलिए तुम पूछते हो कि किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना, तुम्हारे प्रश्न में भी तुम्हारी धारणा छिपी। भगवान कोई उपाधि नहीं है, भगवान कोई ऐसा नहीं कि किसी को पद्म भूषण बना दिया कि भारत रत्न बना दिया। भगवान कोई उपाधि नहीं है कि किसी विश्वविद्यालय की डिग्री है, और भगवान बनाना किसी के हाथ में नहीं है। भगवान होना हमारा स्वभाव है, ये उपाधि नहीं है। उपाधि तो बीमारी का नाम है। उपाधि के तो दो अर्थ होते हैं, डिग्री और बीमारी भी। भगवान कोई उपाधि नहीं है, भगवान तो अपने स्वभाव को पहचान लेना है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो और पहचान लेते हो कौन वहां विराजमान है, तब तुम पाओगे कि भगवान हो। भगवत्ता हमारा सामान्य धर्म है, जैसे आग का धर्म जलाना है ऐसा आदमी का धर्म भगवान। और जब आदमी में तुम्हें भगवान दिखेगा तो धीरे धीरे तुम्हारी आंख और गहरी जाएगी, पशु पक्षियों में भी दिखेगा,
फिर और आंख गहरी जाएगी और पौधों में भी दिखेगा, फिर और आंख गहरी जाएगी और चट्टानों में भी दिखेगा, और जिस दिन तुम्हें सब जगह दिखाई पड़ना शुरू हो जाए, कोई ऐसी जगह ना रहे जहां भगवान ना हो, तभी जानना कि तुम घर वापस लौटे। नानक मक्का गए तो सो गए रात, पैर करके पवित्र मंदिर की तरफ। पुरोहित नाराज हुए, उन्होंने आके कहा कि तुम्हें पैर पवित्र मंदिर की तरफ करके सोते लाज नहीं आती, और लोग कहते तुम संत, ये क्या संत हुए तुम, तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि कहां पैर करने। तो कथा बड़ी प्यारी है, कथा कहती कि नानक ने कहा मेरे पैर उस जगह कर दो जहां भगवान ना हो, तब जरा मुश्किल हो गई होगी। पुजारियों ने कहते हैं जहां भी नानक के पैर किए पाया कि काबा उसी तरफ घूम गए। ऐसा काबा घूमा हो ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन कहानी बड़ी अर्थपूर्ण है। काबा घूमा हो इसकी कोई जरूरत भी नहीं, काबा के घूमने की जरूरत नहीं, क्योंकि काबा सब तरफ है ही। इतना ही अर्थ है कहानी में। कहां करोगे पैर, जहां पैर करोगे वहीं भगवान है, सब ओर भगवान है। तो पहली तो बात तुम पूछते हो किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना, उपाधि दी तो बात गलत हो गई, ये उपाधि नहीं, और कोई किसी को दे नहीं सकता। तुम जब अपने स्रोत में उतरते हो तो ये तुम्हारा अनुभव है, या किसी का इस उपाधि को स्वीकार करना, ये उपाधि ही नहीं है, स्वीकार अस्वीकार का सवाल नहीं है। जब तुम जानोगे और पाओगे कि ऐसा है तो फिर करोगे क्या। यही तो अलहिल्लाज मंसूर के साथ हुआ। जिस दिन मंसूर को बोध हुआ उसने घोषणा कर दी अनल हक, मैं परमात्मा, मैं सत्य हूं, मैं ब्रह्म हूं। जिन गुरु के पास मंसूर रहता था, गुरु ने कहा भीतर रख, ये बात बाहर मत निकाल। सूफी ये सदा से जानते रहे मगर मुसलमानों के डर से कहते नहीं। गुरु ने कहा कि रख, भीतर रख, मुझे भी पता है, अब तुझे भी पता हो गया, मगर बाहर मत कह, नहीं तो झंझट खड़ी होगी। झंझट खड़ी हुई। मंसूर ने कहा जो भीतर है उसको बाहर क्यों ना बहने दे, रुकावट कैसे डालू। और फिर मैं थोड़ी कहता हूं, एक भाव दशा आती जब मेरे भीतर ये गुंजार उठता है अनल हक, मेरे भीतर ये घोषणा उठती कि मैं भगवान हूं। गुरु ने तो उनको विदा कर दिया। उन्होंने कहा अगर ये घोषणा करनी है तो तू कहीं और जा, कोई और गुरु चुन ले, किसी और गुरुकुल में रुक जा, यहां हम झंझट नहीं लेना चाहते। दूसरे गुरु के पास भी यही हुआ, तीसरे गुरु के पास भी यही हुआ, चौथे गुरु के पास। गुरु ने कहा कि तेरी तकलीफ समझते, जब होती है ये घटना तो कभी कभी ऐसा होता आदमी अपने वश में नहीं रह जाता, उद्घोषणा होने लगती, मगर इसे रोकना पड़ेगा अन्यथा झंझट आएगी, तू इसे रोक, नहीं तो मैं तुझसे कहता हूं तू फांसी पे चढ़ेगा। कहते हैं मंसूर ने कहा मैं उसी दिन फांसी पे चढ़ूंगा जिस दिन तुम अपना ये सूफी अंगरखा उतार दोगे, उसके पहले नहीं चढ़ूंगा। और कहानी कहती है कि दोनों की भविष्यवाणियां सच सिद्ध हुई। खलीफा ने खबर भेजी गुरु के पास कि तुम्हारे आश्रम में एक आदमी है जो कहता है मैं ईश्वर हूं, उसे निकाल बाहर कर दो, वो अपराध कर रहा है। लेकिन गुरु ने कोई ख्याल न दिया, बात चुपचाप रखे रहा। दोबारा खबर भेजी गई, तीसरी बार खबर भेजी गई। जब सातवीं बार खबर आई तो साथ में पुलिस के आदमी भी आए, नंगी तलवारें भी आई, और उन्होंने कहा अब तुम्हें दस्तखत करके देना होगा कि यह आदमी अपराधी और इसको फांसी लगेगी। गुरु ने सोचा कि सूफी के कपड़े पहने हुए कैसे दस्तखत करूं, क्योंकि सूफी सभी जानते हैं इस बात को भीतर की ये बात सच, इसलिए अपना अंगरखा उतार के फेंक दिया। उन सिपाहियों ने कहा यह अंगरखा क्यों फेंक रहा है, उन्होंने कहा सूफी रहते हुए इस तरह की बात पर मैं दस्तखत नहीं कर सकता, यह अंगरखा मुझे उतार देने दो। और ठीक ही कहा था मंसूर ने कि अंगरखा तुम छोड़ोगे उसी दिन मुझे फांसी लगेगी। अंगरखा उतार के रख दिया और मौलवी के कपड़े पहन लिए, फिर दस्तखत कर दिए कि ठीक है ये आदमी अपराधी है और इसको जो भी सजा उचित हो दी जाए। तब मंसूर को सूली लगी। सूफी छिपाए रखे, क्योंकि मुसलमान देशों में सूफियों को प्रकट होने का उपाय नहीं था। इस देश में कोई आचरण नहीं रही, इस देश में सूफी प्रकट होके बोले,
जहां सूफी भी प्रकट होकर न बोल सके वहां धर्म का क्या उद्भाव होगा, जहां उनको भी छिपा के रखना पड़ेगा।

न कोई स्वीकार करता है अस्वीकार करता है। ये तो तुम्हारे अंततम का दिया जब जलता है तब तुम जानते हो कि ऐसा है। ये तो तथ्य का अनुभव है, ये तो सत्य की प्रतीति है, ये तो साक्षात्कार है। लेकिन तुम्हारी अड़चन मैं जानता हूं, मुसलमान परंपरा में पले हो, उसी ढंग से सोचा है, इसलिए तुमने ये तो कहा कि फिरौन का सबसे बड़ा अपराध यही था कि उसने अपने को खुदा होने का दावा किया। लेकिन तुम भी चालाकी कर गए प्रश्न पूछने में भी, फिरौन को घसीट के लाए। पुराना नाम भी लोग भूल गए फिरौन का, 5000 साल पुराना इजिप्ट का बादशाह, उसको घसीट के लाए। ज्यादा जिंदा नाम, ज्यादा जिंदा आदमी अलहिलाज मंसूर के संबंध में क्या ख्याल है? फारूक खान, मंसूर को क्यों छोड़ दिया? तुम भी डरे हो गए कि इस सूफी को बीच में लाना ठीक नहीं। लेकिन तुम्हें बड़ी अड़चन होगी, अगर तुम बुद्ध को मिल जाओगे तो तुम बुद्ध को संत न मान सकोगे, अगर महावीर को मिल जाओगे तो तुम संत न मान सकोगे, राम को मिल जाओगे, कृष्ण को मिल जाओगे तो तुम संत न मान सकोगे, क्योंकि ये तो अपराधी है, इनकी वाणी से तुम्हें संतोष कैसे मिलेगा? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, संतों की वाणी में जरूर अमृत है, सुधा है, लेकिन तुम जाने दोगे अपने प्राणों तक तभी ना? और तुम तभी जाने दे सकते हो जब तुम्हारे द्वार दरवाजे खुले, तुम्हारे मन पर कोई धारणाओं का जाल ना हो, तुम्हारे मन पर कोई पूर्व पक्षपात ना हो, पूर्वाग्रह ना हो, तब जरूर संतों की वाणी में बड़ा सार है। उनका एक शब्द भी चेता सकता है, उनका एक इशारा जगा सकता है। मगर अगर तुम असहयोग करो तो संत भी सिर ठोंक ठोंक के मर जाएं, तो भी तुम्हारी नींद को नहीं तोड़ सकते। कितने तो संत हुए, तुम सोए हो तो सोए ही हो, कितने तो संत हुए सदियों सदियों में, तुम जहां हो वहीं के वहीं हो, तुम वहां से हटते नहीं। फूल खिलते हैं, विदा हो जाते हैं, पत्थर अपनी जगह पड़े पड़े ही रहते, वो फूलों की सुनते नहीं। सुनने का ना कारण, सुनने के पीछे कारण है, कारण यही है कि तुम्हारे कान पहले से भरे हुए हैं। अगर तुमने मुसलमान की तरह सोचा तो तुमने सोचा ही नहीं, अगर हिंदू की तरह सोचा तो सोचा ही नहीं, अगर जैन की तरह सोचा तो सोचा ही नहीं। सोचने वाला आदमी पहले तो ये सब लिबास उतार कर रख देता है, भूल ही जाता है कि मैं कौन हूं। अभी पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, तो ये ऊपर ऊपर की बातें, किसी घर में पैदा हो गए, वो मुसलमान था, हिंदू था, ईसाई था, ये तो सब संयोग की बात है। उस घर में पैदा हो गए, उस घर के लोगों को जो मालूम था उन्होंने तुम्हें सिखा दिया, न उन्हें मालूम था न तुम्हें मालूम हो, उनके माँ बाप उन्हें सिखा गए थे, न उन्हें मालूम था। ऐसी सिखावन चलती जाती, संस्कार चलते जाते। बुद्ध का वचन है कि संस्कार में दुख है, ये संस्कार है। हिंदू होना, मुसलमान होना, जैन होना, ईसाई होना, संस्कार कंडीशनिंग। माँ बाप तुम्हारे सिर में भरना शुरू कर देते हैं कि तुम मुसलमान हो, कुरान तुम्हारी किताब है, मोहम्मद तुम्हारा पैगंबर है, कि तुम हिंदू हो कि वेद तुम्हारी किताब है, कि तुम ईसाई हो कि बाइबल तुम्हारी किताब है। ऐसा माँ बाप भरना शुरू कर देते, छोटा बच्चा कोमल चित्त, ये सारी बातें इकट्ठी होती चली जाती। सोच विचार पैदा होने के पहले ही मन पर खूब संस्कार और जमघट जम जाता, भीड़ पैदा हो जाती, फिर जीवन भर आदमी उन्हीं संस्कारों से देखता है। तो तुमसे मैं कहूंगा, रंग ऐसा भरो ना रंग नफरत का हो, ना रंग मजहब का हो, रंग ऐसा भरो जिसके छींटों में बस प्यार ही प्यार हो। दूरियां सब मिटे, पास इतने मिले, एक छाया बने, तन से तन भी मिले, मन से मन भी मिले, पांव ऐसे धरो, रंग ऐसा भरो जिसकी आहट में भी प्यार ही प्यार हो, सबकी आंखों में हो, सबकी सांसों में हो, सबकी साधों में हो, एक ही बस गगन, एक ही बस लगन, डोर ऐसी गहो जिसकी गांठों में बस प्यार ही प्यार हो, रंग ऐसा भरो न रंग नफरत का हो, न रंग मजहब का हो, रंग ऐसा भरो जिसके छींटों में बस प्यार ही प्यार हो। तो तुम देख पाओगे

सत्य क्या है। संत का अर्थ होता है जहां सत्य अवतरित हुआ है। संत का अर्थ होता है जहां सत्य ने देह धरी। संत का अर्थ होता है जिस देह में सत्य सिंहासन पर विराजमान हुआ है। अगर तुम निष्पक्ष मन, कोरे मन, शून्य मन संत के पास जाओगे, परम संतोष होगा। और संतोष ऐसा कि फिर मिटेगा नहीं, संतोष धारणा का नहीं, मान लिया ऐसा नहीं, सांत्वना जैसा नहीं, संतोष अनुभव का, सुख के अनुभव का। और वैसा संतोष तुम्हें भी संत बनाने लगेगा, रंगे जाने लगोगे, उस रंग में डूबने लगोगे। यहां ऐसे ही रंग को भरने की कोशिश चल रही है, ऐसे ही रंग को रंगने की कोशिश चल रही है। पानी से धुल जाएं ऐसे भी रंग क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। जैसा था बचपन में, जैसा था यौवन में, माटी का रंग अभी वैसा ही है। पलकों के आसपास मंडराते दर्द गई सपनों का रंग अभी वैसा ही है। थोड़े से हिस्से को रंगने से क्या होगा, एक शहर रंग जाए ऐसा रंग डालो। पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग से क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। रंगों के अंदर भी रंग हुआ करते, रंगों के भीतर जाकर के देखो, बिंबों के अंदर भी सांस हुआ करते। दर्पण के भीतर जाकर देखो, बासंती देहों को रंगना है कायरता, पतझर भी रंग जाए रंग ऐसा डालो। पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। संत का अर्थ है सत्य को उंडेल दे तुमने, संत का अर्थ है जो उसे हुआ है उसमें रंग दे तुम्हें, संत का अर्थ है रंगरेज, संत का अर्थ है तुम्हें एक डुबकी लगवा दे उसमें जो अभी तुम्हारे सामर्थ्य के बाहर है। संत का अर्थ है जो उसने देखा है अपनी आंखों के पीछे तुम्हें खड़ा करके थोड़ा अपनी आंखें उधार दे दे, कहे कि जरा मेरी आंखों से देख लो, जो मुझे दिखता है वो देख लो। संत का अर्थ है कि थोड़ी देर को अपना हृदय तुम्हें दे दे, और अगर तुम राजी हो तो ये घट जाता है, इसमें देर नहीं लगती। यहां घट रहा है, तुम अगर राजी हो तो कभी भी किसी भी क्षण जहां राजीपन पूरा होता है अचानक तुम्हारे हृदय की जगह मेरा हृदय धड़केगा, तुम मेरी आंख से देखने लगोगे और तब सब चीजें और ही हो जाती, तब सब कुछ और ही ढंग से दिखाई पड़ने लगता है। संत को तुमने जानना सीखा, देखना सीखा, जब तुम्हें हिंदू का संत हो कि मुसलमान का कि ईसाई का कि बौद्ध का, सभी का संत पहचान में आने लगे, तब तुम समझे कि संत क्या है। और तब जो संतोष मिलेगा वो संक्रांति है, वो तुम्हें रूपांतरित कर जाएगी, वो तुम्हें नया कर जाएगी, वो तुम्हें द्विज बना देगी, एक नया जन्म देगी। निश्चित ही ये बात असंतों की वाणी में कैसे हो सकती, वाणी खाली कोरी, वहां कुछ प्राण कहां, पिंजड़ा है पक्षी तो नहीं, तो पिंजड़ों के लिए तुम चलते रहो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पिंजड़ों को लिए ही चलते रहते और मान के चलते कि पक्षी है, होना चाहिए क्योंकि बाप ने कहा, क्योंकि बाप के बाप ने कहा, होना चाहिए क्योंकि भीड़ कहती, समाज कहता, मौलवी कहता, पंडित कहता, होना चाहिए। अपनी तरफ से नहीं देखते कि है या नहीं, डरते भी हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ना हो, इसलिए देखते ही नहीं, अपने पिंजड़े को खूब ढांक के रखते हो कि कहीं दिखाई ना पड़ जाए। तुम्हें भी कभी कभी शक तो आता होगा कि है या नहीं, लेकिन ये शक तुम टिकने नहीं देते, तुम कहते हो शक तो अच्छी बात नहीं, होना चाहिए ही। कोई माता पिता झूठ तो ना बोलेंगे, पंडित पुरोहित झूठ तो ना बोलेंगे, समाज परिवार झूठ तो ना बोलेगा, ये सब लोगों को झूठ बोलने में क्या रखा है, ये क्यों झूठ बोलेंगे सब, होना ही चाहिए। तो तुम कभी उठा के देखते भी नहीं पर्दा के पीछे कोई है, कि तुम खाली मंदिर की पूजा कर रहे, तुम्हारे 100 संतों में से 99 खाली मंदिर है जिनके भीतर कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी पूजा चल रही। अक्सर तो ऐसा होता है कि जिनके भीतर कुछ है उनकी पूजा बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि जिनके भीतर कुछ है वो तुम्हारी धारणाएं तोड़ देते,
जिनके भीतर कुछ है वो तुम्हारे गुलाम थोड़ी, वो तुम्हारी लीक पर थोड़ी चलते हैं। जिनमें कुछ नहीं है वही लीक पर चलते हैं। उधार वही होता है जिसके पास अपनी नगद संपदा नहीं है। उधारी ऊपर ऊपर से ठीक लगती हो, भीतर भीतर अर्थहीन होती। मैंने सुना एक बड़े धनपति यहूदी के घर के सामने यहूदी बैठा है अपने महल में। उसके दरवाजे पर लोहे के शीशों का बना दरवाजा है। एक फकीर, एक गरीब आदमी अपनी पीठ खुजला रहा है, दरवाजे के शीशों से अपनी पीठ खुजला रहा है। उस अमीर को बड़ी दया आई, उसने फकीर को भीतर बुलाया, अपने नौकरों को आज्ञा दी कि इसे खूब स्नान करवाओ, खूब धो धो के मालिश करो इसकी। उसको खूब धुलवाया गया, खूब स्नान करवाया गया, ऐसे साबुन जो उसने कभी देखे भी न थे। पानी के फवारे के नीचे बिठाया गया, ठंडे गर्म पानी में नहलाया गया, इत्र फूले तेल से उसकी मालिश की गई, अच्छे कपड़े पहनाए गए, और जब वो आया तो उसे भोजन करवाया गया और कुछ रुपयों को भी उस धनपति ने उसे दिया और कहा कि जाओ। ये बात तो गांव भर में फैल गई। दो आदमियों ने सोचा ये तो बड़े गजब की बात है। वो दोनों भी आके दरवाजे पर खड़े होकर पीठ खुजलाने लगे। धनपति ने देखा, उसने अपने आदमी भेजे, कहा कि दोनों को जंजीरें डाल के मेरे सामने ले आओ। वो दोनों को जंजीरें डाल के लाया गया। वो दोनों चिल्लाने लगे कि बात क्या है, क्योंकि अभी अभी तो व्यवहार कुछ और किया गया था। मेरे हाथों में जंजीरें, हमारे हाथों में जंजीरें क्यों डाली जा रही है। वो घसीट के लाए गए और उस धनपति ने कहा कि यहां से भाग जाओ, कभी दोबारा यहां मत आना। क्योंकि वो अकेला था और अगर उसके पीठ में खुजान उठी थी तो वो खुजा भी नहीं सकता था। तुम तो दो हो, एक दूसरे की पीठ क्यों नहीं खुजला ले, तुम्हें इतनी तो अकल होनी चाहिए। अब भाग जाओ, कभी दोबारा इस तरफ मत आना। अक्सर ऐसा होता है। महावीर को ज्ञान हुआ, वो नग्न खड़े हो गए। बहुतों को लगा कि नग्न खड़े होने से ज्ञान हो जाता है, तो बहुत अभी तक दरवाजों पर पीठ खुजला रहे। वो नग्न खड़े हो गए। नग्न खड़े होने से ही जैन, दिगंबर जैन, दूसरा कोई नहीं, श्वेतांबर जैन भी नहीं, दिगंबर जैन पूछता है, क्योंकि वो मानता है नग्नता संत का लक्षण। महावीर नग्न हुए थे तो उसने संत की परिभाषा कर ली। जैसे महावीर पर संत की परिभाषा चुक जाती है, संत की परिभाषा चुकती ही नहीं, और संत कभी दो एक जैसे हुए नहीं और होंगे भी नहीं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति संतत्व के शिखर को उपलब्ध होता है तो अद्वितीय हो जाता है, अकेला बेजोड़, उस जैसा फिर कभी दोबारा दूसरा आदमी नहीं होगा। इसका यह अर्थ नहीं कि कोई संत ना होगा, संत होंगे लेकिन फिर अपने जैसे होंगे। सब संत अनूठे होते, बस एक संत एक बार एक जैसा होता, दोबारा फिर नहीं होता। तो हजारों लोग नग्न होकर खड़े, उनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन दिगंबर उनको पूछेगा, क्योंकि उसके संतत्व की परिभाषा में नग्नता जुड़ गई। इसलिए दिगंबर जैन किसी और को नहीं पूछ सकता जो कपड़े पहने हो, क्योंकि कपड़े पहने हुए तो संत हो ही नहीं सकता। दिगंबर जैन के सामने तुम मोहम्मद को खड़ा करो, वो कहेगा कि हजरत अभी कपड़े पहने हुए, अभी तक कपड़े पहने हुए तो ज्ञान हुआ ही नहीं, क्योंकि महावीर को जब ज्ञान हुआ तो कपड़े छोड़ गए, आप अभी तक कपड़े पहने हुए। ये बात जैन को नहीं जचेगी, वो मोहम्मद को तो मान ही नहीं सकता। मेरी एक किताब एक जैन मुनि को भेंट की गई। जिन मित्र ने भेंट की उन्होंने मुझे आके बताया कि बड़ी अजीब बात हो गई। उन्होंने किताब पलट के देखी, उन्होंने कहा और तो सब ठीक है, इसमें मोहम्मद का नाम कैसे आया। किताब फेंक दी, किताब महावीर पर थी, किताब फेंक दी क्योंकि इसमें मोहम्मद का नाम कैसे आया, कहां महावीर और कहां मोहम्मद। उनको ये बर्दाश्त के बाहर हो गया कि मोहम्मद का नाम महावीर के साथ आया, और मेरी तो आदत खराब है, मैं तो जोड़ ही देता हूं। उनको ये बात बिल्कुल जची नहीं। मोहम्मद सांसारिक आदमी, ग्रस्त। अब अगर तुम जैनी के हिसाब से सोचो तो लगेगा भी, कितनी पत्नी है मोहम्मद की। दिगंबर जैन तो महावीर की एक पत्नी थी, उसको भी इनकार करते। महावीर की सच में एक पत्नी थी और एक लड़की भी हुई और दमान भी था, ये ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन दिगंबर जैन अपनी किताबों में लिखते हैं उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, क्योंकि ये बात ही उनको अखरती कि महावीर और विवाह करें। हालांकि
अज्ञान की अवस्था में कर ले तो हर्ष क्या है। फिर ज्ञानी तो बाद में हुए, मगर वो मानते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। महावीर तो अज्ञान की अवस्था में भी इतनी ऊंचाई पर थे कि वो विवाह तो कर ही नहीं सकते, इसलिए हुए विवाह को भी इंकार कर दिया है। लड़की पैदा हुई ये तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि लड़की पैदा हुई तो उसका मतलब वो उन्होंने संभोग किया होगा। महावीर और संभोग करें, जरा सोचो, ये बात जस्ती नहीं। तो दिगंबर जैन ने ये बात ही जड़ से काट दी कि विवाह ही नहीं हुआ, न रहा बांस न बजेगी बांसुरी। अब इधर मोहम्मद 9 विवाह किए, ये बात जरा जस्ती नहीं। लेकिन मोहम्मद की तरफ से सोचो, मोहम्मद को सीधा सोचो, तो मोहम्मद ने 9 विवाह किए और इस किसी विवाह में कोई काम वासना नहीं है। अरब देश लड़ाके देश थे, आदमी तो लड़ते और कट जाते और स्त्रियों की संख्या बढ़ती चली गई, पुरुष कम होते चले गए। जिस समाज में पुरुषों की संख्या कम हो जाए और स्त्रियों की संख्या ज्यादा हो जाए, उस समाज में बड़ा व्यभिचार फैल जाता है, फैल ही जाएगा, क्योंकि इतनी स्त्रियां कामातुर होकर भटकने लगेंगी और पुरुष तो कामातुर है ही। अब स्त्रियां इतनी उपलब्ध हो जाएंगी तो उपद्रव होने वाला है। तो मोहम्मद ने नियम बनाया कि हर मुसलमान कम से कम 4 विवाह करे। अब ये किसी दूसरे को, जिस देश में कभी स्त्री पुरुषों की संख्या में इतना बड़ा अंतर नहीं पड़ा, ये बात बेहूदी लगेगी, लेकिन उस ऐतिहासिक क्षण में ये बात बड़ी सार्थक थी। इन 4 विवाह ने मुसलमान देशों की नैतिकता बचा ली, नहीं तो ये डूब जाते, ये नष्ट हो जाते। खुद मोहम्मद ने 9 विवाह किए, ठीक ही है, अगर शिष्यों से 4 विवाह करवाने हो तो गुरु को 9 करने पड़े, ये बात बिल्कुल तर्कयुक्त है, इसी भी गणित की है। मोहम्मद 2 कदम आगे गए तब तो कहीं तुम चलोगे थोड़ा बहुत, नहीं तो तुम चलोगे नहीं। आदमी एक ही पत्नी से काफी परेशान रहता है, 4 पत्नियां तुम सोचते हो कोई छोटी मोटी साधना? मैं तुमसे कहता हूं कि ब्रह्मचारी की साधना उतनी कठिन नहीं जितनी 4 पत्नियों वालों की साधना कठिन है। मुल्ला नसुद्दीन एक चोरी में पकड़ा गया, मजिस्ट्रेट ने उसने कहा कि तू भला आदमी है और पहली दफे चोरी में पकड़ा गया, तू खुद ही बोल दे क्या सजा। मुल्ला ने कहा जो भी देना हो सजा दे दे, बस एक ही सजा मत देना, 2 विवाह करने की सजा मत देना। तो मजिस्ट्रेट बोला कि ये भी कोई सजा होती 2 विवाह करने की, बात क्या है तू इसको सार को खोल के कह। तो उसने कहा बात ये है कि मैं पकड़ाते ही नहीं, इस आदमी की 2 औरतें 2 बजे रात इसके घर में घुसा, उधर मारपीट हो रही थी, एक औरत इसको ऊपर की तरफ खींच रही थी वो ऊपर रहती, और एक औरत इसको नीचे की तरफ खींच रही थी वो नीचे रहती, एक इसकी टांगें पकड़ी थी एक इसके हाथ पकड़े थी, ये सीढ़ियों पे अटका था। इसकी ये घबराहट देख के और ये घर की हालत देख के मैं छिप के बैठ गया ये कोने में, कभी इस निपट जाए तो या तो मैं कुछ चोरी करूं या निकल भागूं, मगर ये निपटे ही नहीं। सुबह हो गई, मैं घर से निकल ना सका क्योंकि वो ही सीढ़ियां उतरने का एकमात्र रास्ता, इसलिए मैं पकड़ा गया। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं जो सजा देनी हो दे देना, मगर 2 औरतों से विवाह करने की सजा मत देना। तुम सोचते हो कि ब्रह्मचर्य ही साधना है, तो तुम गलती सोचते हो, 4 स्त्रियों के साथ विवाह करना भी साधना ही है, बड़ी साधना हो सकती है। और मोहम्मद का विवाह तुम सोचते हो, मोहम्मद ने एक विवाह किया, पहला विवाह तो अपनी से दुगनी उम्र की, पहले विवाह में तो जो स्त्री थी वो करीब करीब बूढ़ी हो रही थी और मोहम्मद अभी जवान थे, उससे विवाह किया। कोई पुरुष अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह करना पसंद नहीं करता, बड़ी उम्र की तो तुम छोड़ दो, तुमसे अगर 1 इंच ऊंची औरत हो तो भी तुम उससे विवाह करना पसंद नहीं करते। अपने से किसी भी स्थिति में बड़ी स्त्री से कोई विवाह करना नहीं पसंद करता, तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो तुम पसंद नहीं करते, तुमसे ज्यादा अनुभवी हो तो पसंद नहीं करते, उम्र ज्यादा हो तो पसंद नहीं करते, क्योंकि कम उम्र की स्त्री ही काफी कब्जा जमा लेती, बड़ी उम्र का तो कहने ही क्या, 5-7 साल पीछे की स्त्री भी तुम्हें धकेल देती, तुम्हारी सब समझदारी रखी रह जाती। तो अगर बड़ी उम्र की स्त्री हुई, ज्यादा अनुभवी हुई, ज्यादा पढ़ी लिखी हुई, तो अड़चन आएगी, बहुत अड़चन आ जाएगी। यद्यपि वैज्ञानिक हिसाब से ज्यादा उम्र की स्त्री से ही विवाह होना चाहिए। क्यों कहता हूं वैज्ञानिक हिसाब से, क्योंकि सारे संसार के आंकड़े ये बात कहते हैं कि स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा जीती, 5 साल से 7 साल ज्यादा। तो अगर तुम 75 साल जियोगे तो तुम्हारी पत्नी 80 या 82 साल जिएगी,
अब तुम 5-7 साल छोटी उम्र की स्त्री से विवाह करोगे तो तुम्हारे मरने में, तुम्हारी पत्नी के मरने में 10 साल का फासला होगा। तुम 10 साल के लिए उसे विधवा छोड़ जाओगे। ये अवैज्ञानिक। अगर विज्ञान की बात समझो तो तुम्हें अपने से 5-7 साल उम्र बड़ी स्त्री से विवाह करना चाहिए ताकि तुम दोनों करीब करीब संसार से विदा हो। 75 साल के तुम होगे, 80 की वो हो जाएगी, दोनों करीब करीब मरोगे, ज्यादा दुख नहीं होगा। ना तुम अकेले छूटोगे ना वो अकेली छूटेगी। मोहम्मद ने बड़ी हिम्मत की कि अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह कर लिया। मोहम्मद की परिस्थिति अलग, मोहम्मद के सोचने के ढंग अलग, मोहम्मद की बात अलग। फिर मोहम्मद जिन लोगों से बोल रहे थे वे लोग बिल्कुल ही खानाबदोस, एकदम गैर पढ़े लिखे लोग। उनको तो छुड़ाना था अभी मूर्ति से। अभी तो उनका सबसे बड़ा उपद्रव यही था कि वो मूर्तियों की पूजा में लगे थे, और एक दो मूर्ति की नहीं, 363 मूर्तियां बना रखी थी काबा में। एक दिन के लिए एक मूर्ति थी, हर दिन नई मूर्ति की पूजा चल रही थी। अभी तो वो बहुत नीचे धर्म में पड़े थे, उनको मूर्ति से किसी तरह छुटकारा दिलाना था। अभी उनसे ये घोषणा करनी कि अहम ब्रह्मास्मि हूँ बात ही पागलपन की होती, ये तो वो समझ ही नहीं पाते। ये तो पाठ बहुत आगे का है। ये तो भारत में संभव हो सका क्योंकि ये पाठ के लिए काफी लंबी परंपरा चाहिए, 1000 साल की परंपरा चाहिए। ये तो धर्म के विश्वविद्यालय की आखिरी कक्षा है जहाँ घोषणा की जा सकती है अहम ब्रह्मास्मि, और लोग समझेंगे और नाराज ना हो जाएंगे। तो अलग परिस्थितियां, अलग व्यक्तित्व, अलग ढंग। जैन राजी नहीं होगा कि मोहम्मद ज्ञान को उपलब्ध हुए, और मुसलमान राजी नहीं होंगे कि महावीर ज्ञान को उपलब्ध हुए, नंगे खड़े हो गए। ये बात तो जस्ती नहीं, ये तो ठीक नहीं, ये तो अशिष्ट, ये तो असामाजिक। कोई किसी दूसरे के संत से तो राजी नहीं होता क्योंकि तुम्हारे संत की एक निश्चित धारणा है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ सब धारणा छोड़ के तुम शून्य भाव से, शांत भाव से, मौन भाव से देखो तो तुम चकित हो जाओगे। मोहम्मद भी उसी महिमा को उपलब्ध हुए जिसको महावीर, बुद्ध भी उसी को उपलब्ध हुए जिसको क्राइस्ट। ये अलग ढंग है, अलग ढंग होने ही चाहिए। और एक व्यक्ति एक ही बार होता है, दोबारा दोहराया नहीं जाता है। परमात्मा इस संसार में किसी को दोहराता नहीं। आदमियों की तो छोड़ दो, तुम एक कंकड़ उठा लो और सारी पृथ्वी खोज डालो तो भी वैसा ही दूसरा कंकड़ ना पा सकोगे। एक पत्ता तोड़ लो इस बगीचे का और सारे जंगल खोज डालो, ठीक वैसा ही दूसरा पत्ता ना पा सकोगे। परमात्मा कार्बन कॉपी बनाते ही नहीं, परमात्मा मूल बनाता, मौलिक। प्रत्येक वस्तु नई और अद्वितीय। तो जब छोटी छोटी चीजों के संबंध में ये सच है तो क्राइस्ट या मोहम्मद या महावीर या बुद्ध जैसे व्यक्ति तो परम आखिरी है। ये तो अद्वितीय, इन जैसा दूसरा कोई होता नहीं। नकल में पढ़ना मत, किसी जैसे बनने की कोशिश करना मत। तुम ही बन सको तो ही तुम परमात्मा को उपलब्ध हो सकोगे। और जब तुम अपनी परिपूर्णता में स्वयं हो जाते हो तब तुम्हारे भीतर एक नाद उठने लगता है। वो नाद है अहम ब्रह्मास्मि अनल हक। फिर ओम गलत कहता था क्योंकि उसने ये कहा कि मैं परमात्मा हूँ और कोई नहीं, और मंसूर ने ठीक कहा कि मैं परमात्मा हूँ क्योंकि सिर्फ परमात्मा है और तो कोई है ही नहीं, परमात्मा ही है। पत्थर भी परमात्मा है तो मैं भी परमात्मा हूँ। इन दोनों वक्तव्यों की समानता के साथ साथ इनके भीतर छिपा हुआ भेद भी ठीक से देख लेना। तीसरा प्रश्न, किसी बुद्ध पुरुष के वचनों के मार्मिक अर्थ को समझ पाना क्या ध्यान को उपलब्ध हुए बिना संभव है? क्या तत्व ज्ञान और ध्यान की स्थिति के बीच कोई गहरा नाता है? इस विषय पर प्रकाश डालने का अनुग्रह करें। किसी बुद्ध पुरुष के वचनों को पूरा पूरा समझना हो तो ध्यान के बिना कोई उपाय नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी झलक मिल सकती है ध्यान के बिना भी। थोड़ी थोड़ी भनक पड़ सकती है बिना ध्यान के भी। और अगर ये भनक न पड़ती होती तो फिर तुम चलोगे ही कैसे? तब तो तुम कहोगे जब ध्यान होगा तब समझ में आएगा, और जब तक समझ में नहीं आया तब तक चलें कैसे? और जब तक चलोगे नहीं तब तक ध्यान कैसे होगा? तब तो तुम एक बड़े चक्कर में पड़ जाओगे, एक दुष्ट चक्कर में पड़ जाओगे। तो दो बातें ख्याल रखना, ना तो ये ही बात सच होती है कि जो बुद्ध पुरुष कहते हैं वो तुमने सिर्फ सुन लिया बुद्धि से और समझ में आ जाएगा, नहीं।
अगर इतने से ही समझ में आ जाए तो फिर ध्यान की कोई जरूरत ही ना रहेगी और ना ही दूसरी बात

थे कि जब ध्यान होगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि अगर ध्यान होगा तभी समझ में आएगा तो तुम ध्यान भी कैसे करोगे, क्योंकि बुद्ध पुरुषों में कुछ रस आने लगे तभी तो ध्यान में लगोगे ना। तो बुद्ध पुरुषों की वाणी सुनते समय पूरी तो समझ में नहीं आती, कभी नहीं आती। पूरी तो तभी समझ में आएगी जब तुम भी बुद्ध पुरुष हो जाओगे, जब तुम भी उन जैसे हो जाओगे तभी पूरा अनुभव होगा। लेकिन अभी थोड़ी भनक तो पड़ सकती। जब छोटा बच्चा चलना शुरू करता है तो अभी दौड़ नहीं सकता है, ये बात सच है। लड़खड़ा तो सकता है, और अगर तुम कहो कि अभी लड़खड़ा भी नहीं सकता तो फिर कभी चल ही ना सकेगा। छोटा बच्चा जब पहले कदम उठाता है तो देखा कैसा डरा डरा सहारे की आकांक्षा रखता है, माँ हाथ पकड़ ले, माँ का हाथ पकड़ के हिम्मत करके दो कदम चल लेता है। छोटे बच्चे के पास पैर तो है, उसके शरीर को संभालने योग काफी पैर है। तुम्हारे बराबर पैर नहीं तो तुम्हारे बराबर शरीर भी नहीं, लेकिन अनुपात ठीक उतना ही है जितना तुम्हारा। तुम्हारे बड़े शरीर को संभालने के लिए बड़े पैर हैं, उसके छोटे शरीर को संभालने के लिए छोटे पैर, लेकिन उसके शरीर को संभालने के लिए पर्याप्त पैर है। मगर अभी अनुभव नहीं, उसे ये भरोसा नहीं कि मैं खड़ा हो सकूंगा, उसे ये आत्मविश्वास नहीं। तो माँ का हाथ पकड़ के चल लेता है। गुरु का हाथ पकड़ के चलने का इतना ही अर्थ होता है कि जहाँ तुम अभी नहीं चले हो, यद्यपि चल सकते हो लेकिन तुमने कभी प्रयास नहीं किया है, तो कोई जो चल चुका है, कोई जो चल रहा है, तुम उसका हाथ पकड़ लेते हो। फिर धीरे धीरे माँ अपना हाथ छुड़ाने लगती है, फिर उंगली ही पकड़ रखती है, फिर धीरे धीरे उंगली भी खींच लेती है। एक दिन बच्चा पाता है कि अरे वो तो खुद ही खड़ा होकर चल सकता है। जब पहली दफा बच्चे चलते हैं तो तुमने देखा वो रुकते ही नहीं, वो बैठते ही नहीं। तुम लाख उपाय करोगे, अब तू थक गए, अब तू बैठ जा, मगर वो चक्कर मार रहे हैं। इतना आनंद उनको अनुभव होता है कि एक अपूर्व घटना हाथ लग गई कि मैं भी चल सकता हूँ। ऐसी ही घटना ध्यान के मार्ग पर भी घटती। बुद्ध पुरुषों की वाणी पहले तो सिर्फ झलक देगी, जरा सी देर के लिए बिजली कौन जाएगी, एक किरण उतर जाएगी, मगर किरण तुम्हें प्यास से भर जाएगी और तुम्हें ये आश्वासन मिलने लगेगा, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इस व्यक्ति को हुआ है तो मुझे क्यों नहीं हो सकता, मुझ जैसे ही व्यक्ति को तो हुआ है, आखिर बुद्ध के हड्डी मांस मज्जा तुम्हारे जैसे ही है, कुछ भेद तो नहीं। तुम्हारे जैसे आंख कान नाक, तुम जैसा भूख लगते तो भोजन करते और तुम जैसे रात थक के सो भी जाते, तुम जैसे ही जवान हुए, तुम जैसे ही बूढ़े हुए, तुम जैसे ही एक दिन मर भी गए। तो बुद्ध पुरुष ठीक तुम जैसे बीमार भी होते, रुग्ण भी होते, स्वस्थ भी होते। बूढ़े हो गए तो बाल भी सफेद हो गए, बूढ़े हो गए तो हाथ पैर भी कपने लगे, ये सब तुम जैसा ही है। लेकिन तुम जैसे इस मनुष्य में भी कुछ घटा है जो तुम में लगता है अभी नहीं घटा। इससे हिम्मत बंधती है कि अगर मेरे जैसे व्यक्ति में ये हो सका है तो शायद मुझ में भी हो सके, शायद मैं भी एक संभावना अपने भीतर लिए चल रहा हूँ, एक बीज जिसको ठीक भूमि नहीं मिली, शायद मैं भी अपने भीतर एक संभावना लिए चल रहा हूँ जिस पे मैंने कभी प्रयोग नहीं किया और वास्तविक बनाने की चेष्टा नहीं की। किसी गायक को गीत गाते देख कर तुम्हें याद आ जाती अपने कंठ की, कंठ तो मेरे पास भी है, और किसी नर्तक को नाचते देखकर तुम्हें याद आ जाती है अपने पैरों की, कि पैर तो मेरे पास भी हैं, चाहूं तो नाच तो मैं भी सकता हूं। किसी चित्रकार को चित्र बनाते देखकर तुम्हें भी याद आ जाती है कि चाहूं तो चित्र मैं भी बना सकता हूं। ऐसे ही किसी बुद्ध को देखकर तुम्हें याद आ जाती है कि चाहूं तो बुद्धत्व मैं भी पा सकता हूं। बस यही चाह, ये समझ नहीं है पूरी, प्यास शुरू हुई, उजाला सा बिखर जाता है, चाहे जैसा भी हो हर वक्त गुजर जाता है, बात रह जाती है पर ढेर बिखर जाता है। गम में वैसाख के सूरज की तपन होती है, ऐसे मौसम में समंदर भी उतर जाता है। रोज दिन भर तो अंधेरों में सफर करते हैं, शाम होते ही उजाला सा बिखर जाता है। टूट जाता है हर एक तसलसल यारो, कोई लम्हा कभी ऐसा भी गुजर जाता है। कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती, दिल से कुछ देर को हर बोझ उतर जाता है, उजाला सा बिखर जाता है।
कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती है। बुद्ध पुरुषों के पास, तीर्थंकरों के पास, सदगुरुओं के पास, परमहंसों के पास, सूफियों के पास कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती है। दिल से कुछ देर को हर बोझ उतर जाता है, कुछ देर को ही, क्षण भर को ही सही, कोई पूरा सूरज नहीं उगता लेकिन एक किरण चौंध जाती है। लेकिन उस किरण में तुम्हें अपना भविष्य दिखाई पड़ जाता है कि ये हो सकता है। टूट जाता है हर एक तसलसल यारो, कोई लम्हा कभी ऐसा भी गुजर जाता है, कोई लम्हा एक क्षण भर को, एक पल भर को आंख खुल जाती फिर बंद हो जाती, लेकिन वो एक पल जीवन को बदल देने वाला पल सिद्ध होता है। पूछते हो किसी बुद्ध पुरुष के वचनों के मार्मिक अर्थ को समझ पाना क्या ध्यान को उपलब्ध हुए बिना संभव है? हां भी और नहीं भी। हां इस अर्थ में कि झलक मिलती है, एक किरण सी उतरती है, एक उमंग जग जाती, एक प्यास उठने लगती, एक अज्ञात खिंचाव पैदा हो जाता है। इसलिए हां और नहीं इसलिए कि सुन के ही कहीं पूरी बात थोड़ी हो जाती है। चलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। बहुत कूड़ा करकट है वो जला देना पड़ेगा, आग से गुजरना होगा ताकि सोना निखर जाए। बुद्ध पुरुषों की बात सुन के यात्रा शुरू होती, मंजिल नहीं आ जाती। मंजिल तो आएगी तभी जब ध्यान पूरा होगा, और जब ध्यान पूरा होगा तभी पूरी बात भी समझ में आएगी। क्योंकि पूरी बात समझने का एक ही अर्थ हो सकता है कि जो उनका अनुभव था वो मेरा भी अनुभव हो गया। जब अनुभव एक जैसे हो जाते हैं तभी बात समझ में आती। चौथा प्रश्न, भगवान जिस दिन मैं पालूंगा उस दिन कैसे आपको धन्यवाद दूंगा? अब अभी से व्यर्थ की फिक्र में मत पड़ो, जब पाले नहीं जैसी अपूर्व घटना घट जाएगी तो धन्यवाद भी खोज ही लोगे। ये तो छोटी सी बात रही, उतनी बड़ी बात हो जाएगी तो क्या तुम सोचते हो धन्यवाद देने का कोई ढंग न खोज पाओगे? भगवान को खोज लोगे और धन्यवाद देने का ढंग न खोज पाओगे? हो ही जाएगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। और अभी से कोई अभ्यास थोड़ी करना कि धन्यवाद का अभ्यास करोगे, अभ्यास करोगे तो झूठा होगा, और झूठा अभ्यास अगर रहा तो उस मौके पर भी शायद झूठे अभ्यास से ही धन्यवाद दोगे। उस धन्यवाद को तो कम से कम स्वस्फूर्त रहने दो, उसकी तो तैयारी मत करो, उसका तो रिहर्सल मत करो। मुल्ला नसुद्दीन एक दिन रेल यात्रा से वापस लौटा तो मुझसे कहने लगा कि रास्ते में एक टिकट चेकर उसे बड़े अजीब ढंग से घूर रहा था। तो मैंने पूछा, अजीब ढंग से क्या मतलब तुम्हारा नसरुद्दीन? तो उसने कहा कि यानी वह ऐसे घूर रहा था जैसे मेरे पास टिकट हो ही नहीं। तो मैंने पूछा, फिर तुमने क्या किया नसरुद्दीन? तो उसने कहा, मैं क्या करता, मैं भी उसे ऐसे घूरने लगा जैसे सचमुच मेरे पास टिकट हो। अब ऐसे अभ्यास चल रहे, टिकट चेकर तुम्हें घूर रहा है कि जैसे तुम्हारे पास टिकट ना हो, तुम ऐसे घूर रहे हो जैसे तुम्हारे पास टिकट हो। झूठे अभ्यासों में मत पड़ो, ये बात पूछो ही मत। धन्यवाद निकलेगा उस अनुभव से, सद्य स्नान अभी अभी नहाया हुआ, ताजा, जैसे कोंपल फूटती नई, जैसे सुबह सूरज उगता नया, ऐसा धन्यवाद उगेगा। और उस धन्यवाद की बात ही कुछ और है।

हाय दोस्तों, मैं हूं रूप कुमार राठौड़ और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना पर 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक कथाओं और प्रसंगों के बारे में जिनसे बहुत सारा ज्ञान हमें प्राप्त होता है, और यही ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद है रागलेखा दासी जी, चरणासी त्युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: हरे कृष्ण
0: जी। श्रोताओं, हमने प्रारंभ कर दिया था महाभारत काव्य, जो ये ग्रंथ है इसके बारे में हमने चर्चा पिछले कई एपिसोड से शुरू कर दी थी, और पिछले एपिसोड में हमने रागलेखा दासी जी से एक कथा जानी जिसमें पक्षीराज जो गरुड़ हैं वो कैसे पक्षीराज बने और वो किस तरह से अमृत लेने पहुंच गए थे अपनी माता जी को दासत्व से मुक्त कराने के लिए, हमने ये कथा रागलेखा दासी जी से जानी। तो आज एक नई कथा, एक नया प्रसंग हम इस महाभारत की कथाओं के अंतर्गत जानते हैं रागलेखा दासी जी से। जी रागलेखा दासी जी,
1: अब शौनक आदि जो ऋषि थे उन्होंने पूछा है, सूत नंदन, जब सर्पों को ये बात मालूम हो गई कि माता कद्रु ने हमें शाप दे दिया, तब उन्होंने उसके निवारण के लिए क्या किया? तो उग्र श्रवाद जी कहते हैं, क्योंकि ये संवाद चल रहा है शौनक आदि ऋषि जो 88,000 है, और उग्र श्रवाद जी जो सूत गोस्वामी जी के पुत्र है, उग्र श्रवाद सूत, तो उनके बीच में चल रहा है। तो उग्र श्रवाद जी कह रहे हैं कि उन सर्पों में से एक शेष नाग भी थे, उन्होंने कद्रु और अन्य सर्पों का साथ छोड़ के कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। ये केवल हवा पी कर रहते थे और अपने व्रत का पूर्ण पालन करते थे। वे अपनी इंद्रियों को वश करके गंध मादन, बद्रिकाश्रम, गोकर्ण, हिमालय आदि की तराई में एकांत वास करते और पवित्र तीर्थों और धामों की यात्रा भी करते। उमा जी ने देखा शेषनाग के शरीर का मांस, त्वचा, नाड़ियां सब सूख गई है। उनकी उनका सच्चा धैर्य और तपस्या देखकर वे उनके पास आए और बोले, शेष, तुम अपनी तीव्र तपस्या से प्रजा को संतप्त क्यों कर रहे हो? इस घोर तपस्या का उद्देश्य क्या है? कोई प्रजा के हित का काम क्यों नहीं करते? बतलाओ तुम्हारी क्या इच्छा है? शेष जी ने कहा, भगवान, मेरे सब भाई मूर्ख हैं, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन कीजिए। विनीता और उसके पुत्र गरुड़ और अरुण से द्वेष करते हैं, इसलिए मैं उनसे उब कर तपस्या कर रहा हूँ। विनीता नंदन, गरुड़ निसंदेह हमारे भाई हैं, अब मैं तपस्या करके शरीर छोड़ दूंगा। मुझे चिंता है तो बस इस बात की कि मरने के बाद उन दुष्टों का संग ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मुझसे तुम्हारे भाइयों की करतूत छुपी नहीं है, अब तुम उनकी चिंता छोड़कर अपने लिए जो चाहो वर मांग लो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ क्योंकि सौभाग्यवश तुम्हारी बुद्धि धर्म में अटल है, तुम्हारी बुद्धि सर्वदा ऐसी ही बनी रहे। शेष ने कहा, पितामह, मैं यही वर चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि धर्म, तपस्या और शांति में संलग्न रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मैं तुम्हारे इंद्रियों और मन के संयम से बहुत प्रसन्न हूँ, मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के हित के लिए काम करो। ये सारी पृथ्वी, पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार, नगरों के साथ हिलती डुलती रहती है, तुम इसे इस प्रकार धारण करो कि इससे वह अचल हो जाए। शेष ने कहा, मैं इस पृथ्वी को इस प्रकार धारण करूंगा जिससे वह हिले डुले नहीं, आप इसको मेरे सिर पर रख दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, पृथ्वी तुम्हें मार्ग दे देगी, तुम उसके भीतर घुस जाओ, तुम पृथ्वी को धारण करके मेरा बड़ा प्रिय कार्य करोगे। आज्ञा अनुसार शेष ने भूविवर में प्रवेश करके नीचे चले गए और समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी को चारों ओर से पकड़कर सिर पर उठा लिया। तभी से स्थिर भाव में स्थित है। माता का श्राप सुन के वासुकी नाग को बड़ी चिंता हुई, वे सोचने लगे कि इस प्रकार श्राप का प्रतिकार क्या है। उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और सबसे सलाह करने लगे। अचुकिन कहा, भाइयों, विपत्ति आने से पहले हमें उपाय करने से काम बन सकता है। तब ठीक है कहकर सभी बुद्धिमान और चतुर सर विचार करने लगे। हम लोग ब्राह्मण बनकर जन्मे जय के इससे भिक्षा मांगे कि तुम यज्ञ मत करो। कुछ ने कहा, हम मंत्री बनकर ऐसी सलाह दे कि जिससे यज्ञ ही ना हो पाए। कुछ ने कहा कि हम बादल बनकर यज्ञ की आग बुझा देंगे। कुछ बोले, हम यज्ञ की सामग्री ही चुरा लेंगे। कुछ ने कहा, हम लाखों आज्ञा तो दस लेंगे। अंत में सर्पों ने कहा, वासुके, हम सब तो यही सोच सकते हैं, अब आपको जो अच्छा लगे आप उपाय शीघ्र कीजिए। वासुकी ने कहा, हमें तो तुम लोगों के विचार ठीक नहीं जच रहे हैं, इन विचारों में अव्यर्थता बहुत अधिक है। हम लोग अपने पिता महात्मा कश्यप जी को प्रसन्न करें, उनकी आज्ञा अनुसार काम करें, इस प्रकार हम लोग का हित हो वही काम करना है। मैं सबसे बड़ा हूँ, भलाई बुराई की जिम्मेदारी मेरे ही सिर पर होगी, इसलिए मैं बहुत चिंतित हो रहा हूँ। उनमें से एक इलापत्र नाम का एक नाग था। उसने सब सर्पों और वासुकी की सम्मति सुनकर कहा कि भाइयों, उस यज्ञ का रुकना और अथवा जन्मेजय का मान जाना संभव नहीं है। जिस समय माता ने श्राप दिया था, उस समय डरकर मैं उसी की गोदी में छिप गया था। वह क्रूर श्राप सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, भगवान कठोर हृदय का ध्रुव को छोड़कर ऐसा कौन स्त्री होगी जो अपने मुंह से अपनी संतान को श्राप दे डाले। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, इस समय जगत में सर्प बहुत बढ़ गए हैं, क्रोधी, डरावने, विषैले हैं। प्रजा के हित के लिए मैंने कद्रु को रोका नहीं और इस श्राप से शूद्र प्रापी जहरीले सांपों का ही नाश होगा, धर्मात्मा सर्प सुरक्षित रहेंगे। ये बात भी है कि जयावर वंश में जरतकारु नाम के एक ऋषि होंगे, उनके पुत्र का नाम होगा आस्तिक, वही जन्मेजय का सर्प यज्ञ बंद करा सकेंगे, तब जाकर धार्मिक सर्पों का छुटकारा होगा। जरतकारु की पत्नी का नाम भी जरतकारु ही होगा, वह सर्पराज वासुकी की बहन होगी, उसके घर से आस्तिक का जन्म होगा और वही सर्प उसको मुक्त करेगा। सर्पराज वासुकी, मेरे विचार से आपकी बहन जरतकारु का विवाह उस जरतकारु ऋषि से ही होना चाहिए और जिस समय दीक्षा के समान पत्नी की याचना करें उसी समय उन्हें आप अपनी बहन दे दें, यही इस विपत्ति से रक्षा का उपाय है। इलापत्र की बात सुनकर सभी सर्पों ने प्रसन्नचित्त से कहा, ठीक है ठीक है। सभी से वासुकी नाग बड़े प्रेम से अपनी बहन की रक्षा करने लगे।

0: कि थोड़े दिनों बाद ही समुद्र मंथन हुआ जिसमें वासुकी नाग को नेती मतने वाली रस्सी बनाया गया। वासुकी ने सर्पों को जरत्कारु ऋषि की खोज में नियुक्त कर दिया और उनसे कहा कि जिस समय जरत्कारु ऋषि विवाह करना चाहे उसी समय शीघ्र से शीघ्र आकर मुझे सूचित करना, हम लोगों के कल्याण का यही सुनिश्चित उपाय है। शौनक ऋषि ने पूछा, सूत नंदन, आपने जिन जरत्कारु ऋषि का नाम लिया उनका जरत्कारु नाम क्यों पड़ा और उनके नाम का अर्थ क्या है और उनसे आस्तिक का जन्म कैसे हुआ? विश्वास जी कहते हैं, जरा शब्द का अर्थ है क्षय, कारु का अर्थ है दारुण। तात्पर्य यह है कि उनका शरीर पहले बड़ा दारुण हट्टा कट्टा था, इसे उन्होंने तपस्या करके उसको जीर्ण शीर्ण कर दिया, इसी से उनका नाम जरत्कारु पड़ा। वासुकी नाग की बहन भी पहले वैसी ही थी, उसने भी शरीर को तपस्या के द्वारा शीर्ण कर लिया, इसलिए उसका नाम भी जरत्कारु हुआ। अब आस्तिक के जन्म की कथा सुनिए। जरत्कारु ऋषि बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य धारण करके तपस्या में संलग्न रहे, वे विवाह करना नहीं चाहते थे, जब तब स्वाध्याय में लगे रहते थे, निर्भय होकर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी का विचरण करते। उन दिनों परीक्षित का राजत्व काल था, राज्य था। जरत्कारु का नियम था कि जहाँ सायकाल हो जाता वे वहीं ठहर जाते और पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करते और ऐसे कठोर नियमों का पालन करते जिनको पालना विषय लोलो पुरुषों के लिए असंभव है, केवल वायु पी कर निराहार रहते। इस प्रकार उनका शरीर सूख सा गया। एक दिन यात्रा करते समय उन्होंने देखा कि कुछ पितर नीचे की ओर मुंह करे हुए एक गड्ढे में लटक रहे हैं, वे एक खसका तिनका पकड़े हुए हैं और वो केवल वही केवल बच भी रहा था, उसी तिनके की जड़ को भी धीरे धीरे चूहा उतर रहा था। पितृगण निराहार थे, दुबले और दुखी थे। जरत्कारु ने उनके पास जाकर पूछा, आप लोग जिस खसके तिनके का सहारा लेके लटक रहे हैं उसे एक चूहा कुतरता जा रहा है, आप लोग कौन हैं और अब इस खस की जड़ कट जाएगी तब आप लोग नीचे की ओर मुंह किए गड्ढे में गिर जाएंगे, आप लोग को इस अवस्था में देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप लोग मेरी तपस्या के चौथे तीसरे आधे भाग से त्रिपत्ति से बचे तो बताएं, और तो और क्या मैं अपनी सारी तपस्या का फल देकर भी आप लोग को बचाना चाहता हूँ, आप आज्ञा कीजिए। पितरों ने कहा, आप बूढ़े ब्रह्मचारी हैं, हमारी रक्षा करना चाहते हैं, किंतु हमारी विपत्ति तपस्या के बल से नहीं कर सकती, तपस्या का फल तो हमारे पास भी है किंतु वंश परंपरा के नाश के कारण हम लोग घोर नरक में गिर रहे हैं, इसलिए हमारी बात सुनिए। हम लोग जजावर नाम के ऋषि हैं, वंश परंपरा क्षीण हो जाने से हम लोग पुण्य लोकों से नीचे गिर गए हैं, हमारे वंश में अब केवल एक ही व्यक्ति रह गया है, वह भी नहीं के बराबर है, वह तपस्वी हो गया है, उसका नाम जरत्कारु है, वह वेद वेदांगों का विद्वान तो है ही, संयमी उदार और व्रतशील भी है, तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया है उसने, उसके कोई भाई बंधु अथवा पत्नी पुत्र नहीं है, इसीलिए हम लोग बेहोश होकर अनाथ की तरह गड्ढे में लटक रहे हैं, यदि आपको कहीं मिले तो उसे इस प्रकार कहना, जरत्कारु तुम्हारे पितर नीचे मुंह लटका कर गड्ढे में लटक रहे हैं, तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करो, जब हमारे वंश की के तुम ही एक आश्रय हो। ब्रह्मचारी जी, ये जो आपने घस की जड़ देख रहे हैं यही हमारे वंश का सहारा है, हमारी वंश परंपरा के जो लोग नष्ट हो चुके हैं वही उसकी जड़ी हुई कटी हुई जड़ें हैं, ये अधकटी जड़ ही जरत्कारु है, आप जो कुछ देख रहे हैं ये सब जरत्कारु से कहिएगा और उससे कृपा करके ये बतलाइए कि आप कौन हैं और हमारे बंधु की तरह हमारे लिए क्यों शोक कर रहे हैं। जरत्कारु ने पितरों से कहा कि आप लोग मेरे ही पिता और पितामह हैं, आप लोगों का अपराधी पुत्र जरत्कारु हूँ मैं, आप लोग मुझे अपराधी को दंड दीजिए और मेरे करने योग्य काम बतलाइए। पितरों ने कहा, बेटा ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम संयोग वश यहाँ आ गए, मैं अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करके स्वर्ग प्राप्त करूं। जरत्कारु ने कहा, मेरा अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, परंतु आप लोगों को उल्टे लटकते देखकर मैंने अपना ब्रह्मचार्य का निश्चय पलट लिया, अब मैं आप लोगों के लिए निसंदेह विवाह करूंगा और यदि मुझे मेरे ही नाम की कन्या मिल जाएगी तो वह भी भिक्षा की तरह, तो मैं उस पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा परंतु उसके भरण पोषण का भार नहीं उठाऊंगा, ऐसी सुविधा मिलने पर ही विवाह करूंगा अन्यथा नहीं, आपके कल्याण के लिए मुझसे पुत्र होगा, वह आप परलोक आपको परलोक में सुखी सुख से रहने देगा, शरद कारु अपने पितरों से इस प्रकार कहकर पृथ्वी पर विचरने लगे, परंतु एक तो उन्हें बूढ़ा समझकर उन्हें कोई अपनी कन्या ब्याना नहीं चाहता था और दूसरे उनके अनुरूप कन्या मिलती भी नहीं थी। शरद कारु सोचने लगे, मैं पितरों का दुख मिटाने के लिए उनकी प्रेरणा से कन्या की भीख मांग रहा हूँ, जिस कन्या का नाम मेरा ही हो, जो भिक्षा की तरह मुझे दी जाए और जिसके भरण पोषण का भार मुझ पर न रहे, ऐसी कन्या मुझे प्रदान करो। वासुकी नाग के द्वारा नियुक्त शर्त जगत कारु की बात सुनकर नागराज के पास गए। उन्होंने चट चट अपनी बहन लाकर भिक्षा के रूप में जगत कारु ऋषि को समर्पित की। वासुकी से पूछा इसका क्या नाम है और साथ ही ये भी कहा कि मैं इसके भरण पोषण नहीं करूँगा। वासुकी नाग ने कहा, मैं इसका भरण पोषण और रक्षण करूंगा। इसके अतिरिक्त एक शर्त ये है कि ये कभी मेरा अप्रिय कार्य ना करे, करेगी तो मैं इसे अवश्य छोड़ दूंगा। जरद कारु ऋषि अपनी पत्नी जरद कारु के साथ वासुकी नाग के श्रेष्ठ भवन में रहने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी को भी अपनी शर्त की सूचना दे दी कि मेरे रुचि के विरुद्ध ना हो, ना तो कुछ करना है और ना कहना, ऐसा करूंगी तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। उनकी पत्नी ने स्वीकार कर लिया और वह सावधान रह के उनकी सेवा करने लगी। समय पर उसे गर्भ रह गया और वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन की बात है, जरद कारु ऋषि कुछ खिन्न होकर अपनी पत्नी के गोद में सर रहकर सोए हुए थे। वे सो ही रहे थे कि सूर्यास्त का समय हो आया। उसकी पत्नी ने बड़ी मधुर वाणी से कहा, महाबाग उठिए, सूर्यास्त हो गया है, आचमन करके संध्या कीजिए, यह अग्निहोत्र का समय है। ऋषि जरद कारु जगे, क्रोध के मारे उनका होंठ कांपने लगा। उन्होंने कहा, सर्पिनी, तूने मेरा अपमान किया है, अब मैं तेरे पास नहीं रहूंगा, जहाँ से आया हूँ वही चला जाऊंगा। मेरे हृदय में दृढ़ निश्चय है कि मेरे सोते रहने पर सूर्यास्त नहीं हो सकता, अपमान के स्थान पर रहना अच्छा नहीं है, अब मैं जाऊंगा। अपने पति के हृदय में कपकपी पैदा करने वाली बात सुनकर ऋषि पत्नी ने कहा, भगवान, मैंने अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया, आपके धर्म का लोप ना हो, मेरी यही दृष्टि थी। शरद कारु ऋषि ने कहा, एक बार जो मुंह से निकल गया वह झूठा नहीं हो सकता। मेरे जाने के बाद अपने भाई से कहना कि वे चले गए, और यह भी कहना कि मैं यहाँ बड़े सुख से रहा, मेरे जाने के बाद तुम किसी प्रकार की चिंता मत कर लो। उसकी पत्नी शोकग्रस्त हो गई, सब सूख गया और वाणी गदगद हो गई।
1: और एक बहुत ही सुंदर प्रसंग हम अभी रागलेखा दासी जी से जान रहे थे, अभी बहुत प्यारा सा भजन सुना हमने, उसके बाद हम इस कथा को आगे जारी रखते हैं। जी रागलेखा दासी जी, कहानी आप पूरी कीजिए।
0: जी, तो ऋषि पत्नी जो थी, उसकी पत्नी जो थी जरद कारु की, जो पत्नी थी उसका नाम भी जरद कारु था, तो बोली कि हमारे जाति भाई कद्रु माता के श्राप से ग्रस्त है, आपसे एक संतान उत्पन्न होने की आवश्यकता है, उसी से हमारी जाति का कल्याण होगा। आपका और मेरे सहयोग निष्फल नहीं होना चाहिए, अभी आप मेरे घर से संतान भी तो नहीं हुई है। पत्नी की बात सुनकर ऋषि ने कहा, तुम्हारे पेट में अग्नि के समान तेजस्वी गर्भ है, वह बड़ा विद्वान और धर्मात्मा ऋषि होगा। ये कहकर जरद कारु ऋषि चले गए। समय आने पर वासुकी की बहन जरद कारु ने के गर्भ से एक दिव्य कुमार का जन्म हुआ। उसके जन्म से ही मातृवंश और पितृवंश दोनों का भय जाता रहा। तमशा बड़ा होने पर उसने चवन मुनि से वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। जब वे गर्भ में था तभी पिता ने उसके संबंध में अस्थि है पद का उच्चारण किया, इसलिए उसका नाम आस्तिक हो गया। उग्र शवादी ने कहा, राजा जन्मेजय ने अपने मंत्रियों से पूछा कि मेरे पिता के जीवन में कौन सी घटना घटित हुई, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी, मैं उनकी मृत्यु का वितान सुनकर वही करूंगा जिससे जगत का लाभ हो। क्योंकि परीक्षित महाराज की मृत्यु हो गई थी तो राजा जन्मेजय इनके पुत्र हैं, तो अब वो जानना चाहते हैं कि मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई। मंत्रियों ने कहा, महाराज आपके पिता बड़े धर्मात्मा, उदार और प्रजापालक थे, हम बहुत संक्षेप में उनके चरित्र को सुनाते हैं। वे सारी पृथ्वी की ही रक्षा करते थे, उनकी प्रजा हष्ट पुष्ट रहती थी। भगवान श्री कृष्ण आपके पिता के प्रति बड़ा प्रेम रखते थे। जन्मेजय ने कहा, मैं तो अपने पिता की मृत्यु का कारण जानना चाहता हूँ। मंत्रियों ने कहा कि उन्होंने एक बाण से एक हिरण को मारा और उसके भागने पर उसका पीछा किया। वे अकेले ही पैदल बहुत दूर तक वन में हिरण को ढूंढते हुए चले गए, परंतु उसे पा नहीं सके। वे 60 वर्ष के हो चुके थे, इसलिए थक गए और उन्हें भूख भी लग गई। उसी समय एक मुनि का दर्शन हुआ, वे मौनी था। उन्होंने उसी से प्रश्न किया, परंतु वे कुछ नहीं बोले। उसी समय राजा भूखे और थके माने थे, इसलिए मुनि को कुछ ना बोलते देखकर उनका तिरस्कार करने के लिए धनुष की नोक से मरा हुआ सांप उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया। मौनी ऋषि श्रमिक के पुत्र थे श्रृंगी। उन्होंने हाथ में जल लेकर आपके पिता को श्राप दिया जिसने मेरे लिए अपराध पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप डाल दिया। वह दुष्ट को तक्षक नाग क्रोध करके अपने विष से 7 दिन के भीतर ही जला देगा। समीप मुनि ने ये सब सुनकर अच्छा नहीं समझा। तक्षक अपने विष से 7 दिन के भीतर ही आपको जला देगा, आपके पिता सावधान हो गए। 7वें दिन जब तक्षक आ रहा था, उसने कश्यप नामक एक ब्राह्मण को देखा। उसने सोचा, ब्राह्मण देवता, आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं? कश्यप ने कहा, मैं जहाँ जा रहा हूँ राजा परीक्षित को तक्षक सांप जलाएगा, मैं वही जा रहा हूँ, उसे तुरंत जीवित कर दूंगा। मेरे पहुँच जाने पर तो सर्प उसे जला भी नहीं सकेगा। तक्षक ने कहा, मैं ही तक्षक हूँ, आप मेरे डसने के बाद इस राजा को क्यों जीवित करना चाहते हैं? मेरी शक्ति देखिए, मेरे डसने के बाद आप उसे जीवित नहीं कर सकेंगे। ये कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया। उसी क्षण वृक्ष जलकर राख हो गया। कश्यप ब्राह्मण ने अपनी विद्या के बल से उस वृक्ष को उसी समय हरा भरा कर दिया। उसने कहा, तुम जो चाहो मुझसे ले लो। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो धन के लिए वहाँ जा रहा हूँ। तब तक्षक ने कहा कि तुम उस राजा से जितना धन लेना चाहते हो मुझसे ले लो और यहीं से लौट जाओ। ऐसा कहने पर कश्यप ब्राह्मण मुंह मांगा धन लेकर लौट गए। उसके बाद तक्षक छल से आया और उसने आपके महल में बैठे और सावधान धार्मिक पिता को विष के आग से भस्म कर दिया। तदनंतर आपका राज्य अभिषेक सम्पन्न हुआ। तक्षक ने आपके पिता को डसा है और उत्तंग ऋषि को भी बहुत परेशान किया है। अब जैसा उचित समझे करें। उनके ने कहा, महाराज, तक्षक ने जिस वृक्ष को डसा था उस पर पहले से ही एक मनुष्य सूखी लकड़ियों के लिए चढ़ा हुआ था। ये बात तक्षक और कश्यप दोनों में से किसी को मालूम न थी। तक्षक के डसने पर वृक्ष के साथ वह मनुष्य भी भस्म हो गया। कश्यप के मंत्र के प्रभाव से वृक्ष के साथ वह भी जीवित हो गया। तक्षक और कश्यप की बातचीत उसी से सुनी थी और वहां से आकर उसने हम लोगों को सूचित किया था। अपने पिता की मृत्यु का इतिहास सुनकर जन्मेजय को बड़ा दुख हुआ। वे क्रुद्ध होकर हाथ से हाथ मलने लगे। शोक के कारण उनकी लंबी और गर्म सांस चलने लगी। आंखें आंसू से भर गईं। वे दुख, शोक और क्रोध में भरकर आंसू बहाते हुए हाथ में जल लेकर बोले, रे पिता, किस प्रकार स्वर्गवासी हुए? ये बात मैंने विस्तार के साथ सुन ली है। मेरे पिता की मृत्यु में सारा अपराध तक्षक का ही था, इसलिए मैं उससे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प करता हूँ। देवताओं ने आपके लिए एक महायज्ञ निर्माण कर रखा है, ऋषिकों ने कहा, हमें इस यज्ञ की विधि मालूम है। राजा ने कहा ब्राह्मणों से, मैं वही यज्ञ करूंगा, आप लोग इसके लिए सामग्री संग्रह कीजिए। इसी समय एक विचित्र घटना घटित हुई। सूर्य जी ने कहा, जिस स्थान और समय में यज्ञ मंडप मापने की क्रिया प्रारंभ हुई, उसे देख कर ये मालूम होता था कि किसी ब्राह्मण के कारण ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगा।
1: जी जी, बहुत ही सुंदर कथा। हम जान रहे हैं कि किस तरह से अब जन्मे जी जो हैं, उन्होंने ये सोच लिया है कि वो उनके पिता की मृत्यु कैसे हुई पता चलने के बाद बदला लेंगे। और अब इस कथा में आगे क्या होगा ये हम जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त आपसे इजाजत लेने का हो चुका है। तो रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
0: हरे कृष्ण
1: जी। तो श्रोताओं, इस महाभारत काव्य और इस ग्रंथ के अंदर जितनी भी कथाएं हैं वो हम आपको बताते रहेंगे अपने एपिसोड्स में, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 के साथ। और भी कार्यक्रम तो आप एंजॉय कर सकते हैं रेडियो मनोरचना 107.8 FM के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए RMR 107.8। फील गुड, फील लाइव।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन। अपना रेडियो।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूं आपकी कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और हम आपके लिए लाए हैं शिव पुराण। दोस्तों, शिव पुराण सुनवाने का जो हमारा उद्देश्य है वह है भक्ति का प्रचार प्रसार करना और जन जन के दुखों का विनाश करना, उनका सरल से सरल उपाय ढूंढना। और वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो बताएगा हमें शिव पुराण। और शिव पुराण सुनाएंगी हमको डॉक्टर लीना सिन्हा जी। तो लीना सिन्हा जी आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। लीना जी, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, आपने पिछले एपिसोड में हमारे श्रोताओं को बहुत ही मनोरम दृश्य का वर्णन प्रसंग ऐसा सुनाया था कि मन अभी तक भी उन्हीं दृश्यों में खोया हुआ है। और बहुत से फ़ोन आए कि जो दृश्य शिव पुराण में भगवान शिव और माँ आदि शक्ति के विवाह का सुनाया गया, अभी तक भी हम उस पर चिंतन करते रहते हैं, उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। आपने बताया कि पहले तो मैं ना तैयार नहीं हो रही थी माँ पार्वती की माँ, लेकिन जब सब विष्णु जी ने समझाया और नारद जी ने शिव को कहा कि आप अपने वास्तविक रूप में आइए, तो मैं ना हैरान हो गई थी उनकी सुंदरता देखकर। तब रत्नों से सुशोभित संसार के देवता को अपने सामने पाकर मैं ना अचंभित सी हो गई थी। तब शिव ने भी, फिर उन दोनों ने, शिव और माँ पार्वती ने अंदर विवाह मंडप में प्रवेश किया। शिव ने भी शिवा को देखा। तब सभी देवताओं ने जो थे उन माँ आदि शक्ति की देखकर, उनकी सुंदरता देखकर, अनुपम छटा देखकर, उनके सामने नतमस्तक होकर सबने प्रणाम किया। और गर्ग ऋषि ने हिमालय से कहा कि अब आप भगवान शिव को पाणी ग्रह के लिए अपने घर में ले आइए। अब उनका विवाह शुरू होने वाला था कि अब मंत्रोच्चारण से, विधि विधान से। तो अब लीना जी हमें बताइए कि हिमालय राज भगवान शिव को पाणी ग्रह संस्कार के लिए अपने घर में ले आए, अब वहाँ क्या हो रहा है वो हम सुनना चाहते हैं
1: जी। अब रुद्र संहिता के पार्वती खंड का,
0: हाँ जी,
1: 47वां अध्याय है। और इस 47वें अध्याय में हम देखते हैं कि आगे क्या होता है कि कहते हैं कि बारात तो अंदर आ गई, शिव जी अंदर आ गए, सभी बड़े खुश, इतना खूबसूरत दूल्हा, इतना अप्रतिम वर और इतने अद्वितीय पति शिव जी बनने वाले थे पार्वती के। और पार्वती भी अनिद्य सुंदरी थी, यानी कि जो सर्वांग सुंदरी कहा जाए, आदिशक्ति हैं, सारा सौंदर्य ब्रह्मांड का जिनमें समाया हुआ है वो आदिशक्ति हैं और सदाशिव हैं। तो ऐसे सुंदर वर वधु का मिलन होने जा रहा था इस विवाह मंडप में, विवाह संस्कार में। और बाराती जो बन रहे थे वो गदगद हो रहे थे, वो धन्य हो रहे थे। धन्यता तो थी ही, क्योंकि ये जिस परमेश्वर को पाने के लिए ऋषि मुनि कितने काल तक तपस्या करते रहते हैं, साधना रत रहते हैं, उपासना में रत रहते हैं, कोई एक पैर पर खड़े रहते हैं, क्योंकि ध्यान से उनको देखा जाता है।